0: मुश्किल तो होता है क्योंकि पेपर के बाद एक पढ़ने वाले मोमेंटम से हम शिफ्ट करते हैं घूमने वाले और एंजॉय करने वाले मोमेंटम में, उसके बाद फिर जब पेपर कैंसिल होता है तो फिर दोबारा उस मोमेंटम में फिर पढ़ने वाले में आना पड़ता है, तो उसमें टाइम भी लगता है, मुश्किल भी आई थी। उसके बाद अब जैसे पेपर कैंसिल हुआ तो मेरे लिए तो फायदा है क्योंकि पेपर लीक होना गलत है लेकिन पेपर कैंसिल होना सही है, क्योंकि पेपर कैंसिल होने से ये है कि जो चीटिंग करने वाले बच्चे थे वो अब नहीं कर पाएंगे।
1: कोटा ही नहीं, सीकर में भी जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में जयपुर रेंज के आईजी और पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई।
2: सीकर जिले में लगभग 27,000 से अधिक बच्चों को अपीयर होना है और चूंकि ये बच्चे नियमित रूप से उसी संस्थानों के संपर्क में रहते हैं, तो जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ मिलकर के सभी कोचिंग संस्थानों से वार्तालाप की गई ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना यदि बच्चों में होती है तो उस समय बद्ध रूप से हमारे तक, प्रशासन तक, पुलिस तक पहुंचे और उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
1: मध्य प्रदेश में भी नीट परीक्षा के लिए 30 जिलों के 283 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भोपाल के परीक्षा केंद्रों पर एनटीए ने परीक्षा को लीक प्रूफ बनाने के लिए साइबर सेल ने पूरी तैयारी कर ली है।
3: 21 जून यानी रविवार को देश भर में री नीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये नीट परीक्षा दोबारा हो रही है क्योंकि पिछली परीक्षा में जो खामियां थी, जो गड़बड़ियां हुई थी और जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद उसे रद्द कर दिया गया था और अब ये रीनीट 21 जून को रखी गई है, जिसे लेकर के परीक्षा केंद्रों पर पहले से कहीं ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिख रही हैं। हम भोपाल के जिस परीक्षा केंद्र में मौजूद हैं यहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों पर हर एक कमरे में यहाँ पे 24 छात्रों को बैठाया जाएगा जो परीक्षा देंगे। सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से वो तमाम उपकरण आ चुके हैं। सामने भी अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों में तैयारियां चल रही हैं। गर्मी का मौसम है और ऐसे में जो छात्र परीक्षा देने आएंगे तो उनको गर्मी ना लगे तो उसके लिए यहाँ पे कूलर भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको सीसीटीवी कैमरा हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हर परीक्षा केंद्र के हर कमरे में इसी तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
1: नीट री एग्जाम को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है, एयरफोर्स की मदद ली जा रही है, एग्जाम सेंटर के बाहर पुलिस व्यवस्था और चेकिंग की जा रही है जिससे बच्चों के मन में डर पैदा हो रहा है, लिहाजा उन्हें समझा बुझा कर एग्जाम सेंटर में भेजना होगा जिससे वो दबाव महसूस ना करें।
4: देख रहे हैं कि एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं पेपर्स कहीं ना कहीं यहाँ से कोचिंग सेंटर्स तक ले जाने के लिए। आप लोग कैसे देखते हैं इन स्टेप्स को, क्योंकि मिक्स प्रक्रिया आ रही है, सरकार ने जो स्टेप्स लिए इसको लेकर।
5: मैं सर बच्चों से ये कहना चाहूंगा जब वो सेंटर पे जाएंगे तो उनकी चेकिंग भी बड़ी मुस्तैदी से होगी, वो परेशान भी होंगे, उनको लगेगा कि जैसे बहुत बड़ी चीज हम देने जा रहे हैं, बच्चा नर्वस होगा। लेकिन सर मेरा बच्चों से ये कहना है कि ये जो मुस्तैदी है और ये जो केयर हो रही जो सरकार लगी है ये उन्हीं के भले के लिए लगी है, तो हम तो बच्चों तुमसे ये कहेंगे कि तुम अच्छे से स्माइल देना, वेरी गुड, अब कोई गलती नहीं होगी और एग्जामिनेशन फेयर होगा, हमारा रिजल्ट फेयर होगा और मुझे कॉलेज मिलेगा।
4: आपको लगता है
5: बच्चों के ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा जब वो देखेंगे पुलिस एयरफोर्स, तो डर तो लगेगा, लगता है जैसे बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं।
1: कानपुर में काउंसलिंग सेंटर चलाने वाले निखिल सचान कहते हैं कि पेपर लीक जैसे हालात की वजह से स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जाते हैं, लिहाजा उन्हें समझाना और मोटिवेट करना होता है।
4: आप ये बताइए कि इस एग्जाम जो लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, आपके पास जो है स्टूडेंट्स आते हैं, काउंसलिंग होती है, प्लेसमेंट होती, क्या फर्क आया है और क्या इंटरेक्शन आप जब करते हैं, क्या इफेक्ट ग्राउंड पे और स्टूडेंट्स के ऊपर?
6: अभी जैसे कि सभी को पता है कि 49 डेज का एक एग्जाम पोस्टपोन कर रहा है, तो ये जो 50 दिन का है एक अंतर, ये कहीं ना कहीं जल्दी से अब ये लोग रिजल्ट्स देंगे। पहले रिजल्ट्स आने में 45 दिन 50 दिन का समय ले जाते थे, अब मुझे लगता है कि अगर 21 जून को एग्जाम है तो 21 जुलाई तक रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगी। उसका रीजन ये है कि NMC है जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, वो MBBS कॉलेजेस को परमिशंस प्रोवाइड करती है। तो आमतौर पे क्या होता था, कॉलेजेस की जो परमिशंस आने में थोड़ा सा डिले हो जाता था, तो वो कॉलेजेस लास्ट में देखने को मिलते थे। बट अब ऐसा होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलेजेस बहुत शुरुआती दौर में ही देखने को मिलेंगे।
1: प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सुरक्षा का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 21 जून को तय समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरा सिस्टम मिशन मोड में जोर शोर से जुटा हुआ है। सीकर से सुशील जोशी और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ कोटा से मौसमी सिंह, गुड न्यूज टुडे। आज द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन विजय के तहत टोरोलिंग चोटी पर ऐतिहासिक जीत प्राप्त करने की 27वीं वर्षगांठ मनाई गई। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आज द्रास में भारतीय सेना ने कारगिल वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन विजय के तहत टोरोलिंग पर जीत की 27वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टोलोलिंग चोटी को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराना उस युद्ध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ था। टोलोलिंग चोटी पर ऑपरेशन विजय के दौरान आज ही के दिन ऐतिहासिक जीत हासिल की गई थी। पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां लगातार जारी हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर यात्रा के भगवती नगर बेस कैंप में सुरक्षा बलों ने तलाशी और सफाई अभियान चलाया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। इस साल की माता खीर भवानी यात्रा के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस यात्रा के लिए जम्मू के नगरोटा से लगभग 8,000 से 9,000 श्रद्धालुओं का जत्था कल रवाना होगा। राहत और पुनर्वास विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए JK रोड ट्रांसपोर्ट की लगभग 200 बसें उपलब्ध कराई हैं। यात्रा के लिए हर साल की तरह इस साल श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माता खीर भवानी का सालाना पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 22 जून को है। आज CM योगी अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण कर दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि ये म्यूजियम आने वाले समय में अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार होगा और बड़ी संख्या में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। अयोध्या पहुंचे CM योगी ने आज सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, फिर वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में भी आराधना के लिए पहुंचे। साथ ही CM योगी ने यहां आयुर्वेदिक कॉलेज, अस्पताल और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। राजधानी दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह ने 26वीं ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रमाण इकट्ठा करके और चार्जशीट देने तक की प्रक्रिया की ट्रेनिंग देने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 3 नए कानून से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य को साबित करना होगा। शाह के मुताबिक कोर्ट में सूचना को इंटेलिजेंस में परिवर्तित करने की कवायद बहुत जरूरी है। गृहमंत्री ने इसके बाद AI के जरिए डेटा का आकलन करके फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधियों को पकड़ने में इसका इस्तेमाल करने की बात कही। अबाश श्रमदान से नदी को मिलेगा जीवनदान। जी हाँ, अगर नदी जीवित रहेगी तो गांव जीवित रहेगा। इस संदेश के साथ ये अभियान पूरे महाराष्ट्र के लिए एक आदर्श बन गया है। महाराष्ट्र के अकोला जिले के चांदूर गांव में स्थानीय निवासियों और बचपन के दोस्तों ने श्रमदान से नदी सफाई की एक अनोखी पहल शुरू की। इस मुहिम का मकसद नदी को गाद और कचरा मुक्त करके भूजल स्तर बढ़ाना और गांव के जल संकट का समाधान करना है। की ये तस्वीरें महाराष्ट्र में अकोला के चांदूर गांव की है, जहां फावड़े और कुदाल के जरिए एक सूखी नदी में जान डालने की कोशिश चल रही है। बताया जा रहा है कि यहां बचपन के कुछ दोस्तों ने मिलकर वो कर दिखाया जो पहले के बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाए। इन दोस्तों ने सूखी और सिकुड़ी मोरना नदी को फिर से जीवन देने का जो संकल्प लिया वो अब हकीकत बनकर सामने आ रहा है।
7: गांव के बचपन के दोस्तों ने अगर ठहरा लिया कि बचपन के दिन फिर से लाने हैं, गर्मी से बचने के लिए नदी में हमें कूद कर तैरना है, लेकिन हम जिस नदी में यहां पर खड़े हैं उस मोरना नदी के जलपात्र में इस वक्त सिर्फ मिट्टी है, पानी नहीं है, क्योंकि ये काम जो चल रहा है ये उन दोस्तों का है जिन्होंने बचपन में इसी नदी में गर्मी से बचने के लिए जो है इसमें कूद कर तैरते थे, लेकिन इस वक्त पानी इसलिए नहीं है क्योंकि इस नदी जो है ये मिट्टी के गाद से या झाड़ियों से पूरी तरीके से घिरी पड़ी थी, लेकिन दोस्तों ने सोचा ये करना है। और देखिए आप यहाँ पर सभी दोस्त जो है वो यहाँ पर इस गाद को हटाने को, इस मिट्टी को हटाने को लगभग 1 से 1.5 महीने से अधिक कार्यकाल से लगातार चल रहे हैं।
1: गर्मी के दिनों में जिस मोरना नदी में कभी ये दोस्त तैरते थे वही नदी अब गाद और झाड़ियों से भरकर सिकुड़ चुकी है, लेकिन गांव के इन लोगों ने ठान लिया कि नदी को फिर से जिंदा करना है और इसे दोबारा इसके पुराने स्वरूप में वापस लाना है। लिहाजा ये तय हुआ कि दिन में मजदूरी और शाम को श्रम दान करना होगा। इस संकल्प को साथ लेकर पिछले 1.5 महीने से लगातार ये लोग नदी की सफाई में जुटे हैं।
8: दोस्तों की कहावत ये थी सर कि हमारे अकोला जिले के अंदर धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। अब हमारे बचपन में इस कदर होता था कि नदी का पानी बहता हुआ था और 80 के दशक में, 85 के दशक में हम नहाने जाते थे, हमको उससे राहत मिलती थी धूप से, गर्मी से। लेकिन जब हमने नदी की तरफ देखा तो नदी एकदम सिकुड़ के थोड़ी सी रह गई। तो फिर दोस्तों ने कहा क्या करें अपन यार, इसके ऊपर कुछ रास्ता होना चाहिए अपने को, क्योंकि गाल आता, मट्टी आती, सब उसमें धस जाती और इसकी लेवल कम हो जाती, फिर पानी नहीं रहता नदी में और बदबू मारता। तो हमारे ख्याल में जब आया दोस्तों ने सब कहा कि चलो कुछ काम करते है, तो काम इस कदर का करे कि सब मिलके कुदाली, फावड़ा, घमेला लेकर नदी में कूद पड़े।
1: इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मोरना नदी में जमा गाद कुदाल और फावड़ों से हटाई जा रही है, झाड़ियों को साफ किया जा रहा है। कुछ दोस्तों की ओर से चलाई गई ये मुहिम आज एक आंदोलन बन गई है। गांव के बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे सब इसमें जुट गए हैं। वहीं जो लोग श्रमदान नहीं कर पाए उन्होंने आर्थिक मदद दी है।
9: एक दोस्त ग्रुप ने जब कर दिखाया, जो ठान लिया मन में, तो आज देखो एक पूरी गांव की जो मैंने जो यहाँ का जो परिसर है नदी का ये पूरी कायनात बदल चुका है। सब जो बुजुर्ग है हमारे वो बोले कि हमारी पूरी जिंदगी नहीं गई, लेकिन हम ये कर नहीं सके, लेकिन आपने कर दिखाया। हमारा तो ये हमारा भी विश्वास नहीं बनता, क्योंकि हमने जब चालू किया गाँव यानी स्वच्छता मुहिम जब चालू की हमने, तो हमने शुरुआत में ऐसे 10-20 लोग हम जो बैच थे उन्होंने चालू किया, लेकिन धीरे धीरे हमारे साथ लोग इकट्ठा हुए और हमने ठान लिया कि अब ये छोटा सा बहुत जो अपना रास्ते साफ करना, नालियां साफ करना ये बहुत हो चुका, चलो अपन कुछ बड़ा सा उपक्रम हाथ में ले लेंगे। ये उपक्रम जब हमने हाथ में लिया तो हमको यकीन नहीं था कि इतने पैमाने पर बड़ा हो जाएगा।
1: सिकुड़ी हुई नदी को साफ करने के लिए जेसीबी, पोकलेन और ट्रैक्टर की मदद ली जा रही है और नदी की गहराई और चौड़ाई बढ़ाने का काम तेजी से जारी है। हालांकि अकोला जैसे गर्म इलाके में पानी की भारी किल्लत है, यहाँ दिसंबर जनवरी के बाद ही नदी सूख जाती है। ट्यूबवेल और हैंडपंप भी जवाब दे देते हैं, जिससे खेती पर संकट गहरा जाता है, लेकिन अब हालात बदलने की उम्मीद है।
7: साल जो है अलनीनो के चलते जो है बारिश कम ज्यादा आने वाली है, बारिश का रुख जो है वो अब मानसून आने की और भी देरी होने के चलते इस साल जो है कम बारिश होगी, और इसीलिए जो है इन लोगों ने और इन दोस्तों ने, इन गांव वालों ने एक जिद कर ली कि हमें कुछ करना है। गांव की स्वच्छता तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस नदी पात्र में जो गाल या गाद बचा है उसे पूरा बाहर निकाल कर नदी पात्र जो है बड़ा कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर निरंतर एक महीने से डेढ़ महीने से ये सभी गांव वाले जो है एक एक कर अपनी मजदूरी छोड़कर, यानी ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं है, मजदूरी करने वाले लोग है और ये लोग निरंतर ये सब कुछ करते आ रहे हैं। और सबसे अहम बात यही है कि अगर कहते हैं ना कि किसी ने अगर ठान लिया कि हमें ये करना है तो वो कर गुजरता है, बस यही बात यहाँ पर हुई है। और इन सभी बचपन के दोस्तों ने इस साल जो है कम बारिश होने के बाद में भी जो है नदी में ग्रीष्मकाल के दिन जो अकोला और आसपास में काफी गर्मी होती है, ग्रीष्मकाल के दिनों में नदी में तैरने के लिए पानी हो यही सोच

0: अपने हाथ में लिया और उन्होंने लगभग 60 से 70% जो है इस नदी का 5 किलोमीटर तक का जो है इलाका साफ कर दिया।
1: इस साल कम बारिश की आशंका के बीच चांदूर गांव के लोगों ने एक बड़ा संदेश दिया है और संदेश ये है कि पानी बचाना है तो मिलकर काम करना होगा और अब उम्मीद है कि इस नदी में साल भर पानी रहेगा। इसके साथ ही भूजल स्तर बढ़ेगा और किसानों को रबी फसल के लिए भी पानी मिलेगा। अकोला से धनंजय साबली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
3: सोशल मीडिया पर इस जुगाड़ के वॉकर और उसके सहारे चलने वाले बेबी और उसके दादाजी की तस्वीरें वायरल है। दादाजी खुद अपने हाथों से ये वॉकर बनाकर बेबी को चलना सिखा रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और बेबी और उसके दादा को प्यार दे रहे हैं। अब इस छुटकू वेट लिफ्टर से मिलिए जरा, इनको किसी ने चैलेंज नहीं दिया है कि इस पहिए को उठा के बताओ, लेकिन इन्होंने मानो चैलेंज ही ले लिया है और चक्के को उठाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं और आखिरकार किसी प्रोफेशनल वेट लिफ्टर की तरह उसे उठाने में सफल हो जाते हैं। और वजनी चक्के को उठा लेने के बाद जो रिएक्शन दिया है उस पर तो पूरा सोशल मीडिया लट्टू हो रहा है। ये तस्वीरें सिंक्रोनाइज डांस की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। छोटे बड़े बच्चों का ये ग्रुप डांस कर रहा है और इनके बीच डांस स्टेप्स का ये तालमेल देखिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है इनके सिंक्रोनाइजेशन की और परफेक्ट डांस स्टाइल की तारीफ किए बिना नहीं रह रहा। इंटरनेट पर वायरल ये डांस बच्चों को खूब लुभा रहा है। अब एक डॉगी का ड्रामा देखिए जरा। अपनी इस नौटंकी की वजह से ये गोल्डन रिट्रीवर डॉग ड्रामा किंग की उपाधि से नवाजा जा रहा है। डॉगी महाशय अपने मालिक के साथ वॉक पर थे और वो जैसे ही पुलिस की गाड़ी को पास से गुजरते देखते हैं तो उल्टा होकर लेट जाते हैं। अब इसका ये जबरदस्त ड्रामा किंग अवतार देख सब मुस्कुरा रहे हैं और पुलिस को पहचानने वाले इस डॉगी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यूं तो भेड़ों को चराने गड़ेड़िए निकलते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में इस पिल्ले को मिला है भेड़ों को चराने का मौका और पहले दिन ही भेड़े अपने इस खास गड़ेड़िए को अनीजी महसूस नहीं होने दे रही। वो सब न सिर्फ बेहद सब्र रखी हुई है बल्कि उसे कंफर्ट भी फील करा रही है और मदद करने वाला बर्ताव कर रही है। अब सोशल मीडिया पर भेड़ों और पिल्ले का ये वीडियो वायरल हो गया है और यूजर्स को भावुक कर रहा है।
2: अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। बाद बिहार के दूसरे वैभव, बिहार की युवा बैटर अक्षरा गुप्ता ने महिला घरेलू क्रिकेट में नए रिकॉर्ड बनाए। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में 18 जून से शुरू बीसीए महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के शुरुआती मैचों के दौरान अक्षरा ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई। क्रिकेट में बिहार के वैभव सूर्यवंशी की तरह खेलने के लिए 15 साल की अक्षरा को बिहार क्रिकेट का दूसरा वैभव और बिहार क्रिकेट का दूसरा बवंडर कहा जा रहा है।

बिहार क्रिकेट में वैभव के बाद एक और सनसनी का पदार्पण हुआ है। क्रिकेट खेलती ये लड़की बिहार क्रिकेट का नया बवंडर कही जा रही है। इस बवंडर का नाम है अक्षरा गुप्ता। अक्षरा ने वनडे में 13 शतक जमाकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। अक्षरा ने यहाँ के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में 18 जून से शुरू हुए बीसीए महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी टूर्नामेंट में

0: चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
2: ऐसा होना चाहिए आपके घर का मुख्य द्वार, बेडरूम और रसोई में रंगों का क्या ध्यान रखें, बाथरूम में किस बात की सावधानी सबसे ज्यादा रखें, घर के कोनों से क्या है कुंडली के ग्रहों का संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: कैसा होना चाहिए आपके घर का मुख्य द्वार? बेडरूम और रसोई में रंगों का क्या ध्यान रखें? बाथरूम में किस बात की सावधानी सबसे ज्यादा रखें? घर के कोनों से क्या है कुंडली के ग्रहों का संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन. टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स.
7: आज देश को मिलेगी विकास की नई सौगात. ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. किसानों के खातों में भेजी जाएगी किसान निधि की किस्त. उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा के बीच उत्तराखंड में आज बारिश की चेतावनी. मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की अपील. पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां. जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर. 3 जुलाई से शुरू होगी ये यात्रा. एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भगवान महाकाल के किए दर्शन. वहीं पत्नी संग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साई दरबार में लगाई हाजिरी, खुशहाली की मांगी दुआ. नीट री एग्जाम से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए. 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा. कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा. भारत और अफगानिस्तान के बीच आज चेन्नई में खेला जाएगा तीसरा एक दिवसीय मुकाबला. पहले दोनों मैच जीतकर सीरीज में अजेय है टीम इंडिया. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंचवास्तव और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे. और अब देखते हैं अच्छी बात धीरेन्द्र शास्त्री के साथ.
8: आज का सूत्र सुनो, यथा दृष्टि तथा सृष्टि. जैसा देखोगे वैसा ही दिखाई देगा. ये आज की कथा का सूत्र है. जैसी दृष्टि वैसी. सुनो, एक मंदिर बन रहा था. 3 मजदूर थे. पहले वाले से पूछा, क्या कर रहे हो? बोले, कुछ नहीं कर रहे, माथा पच्ची कर रहे, पत्थर फोड़ रहे. दूसरे से पूछा, क्या कर रहे हो? अरे बोले, कुछ नहीं कर रहे, रोजी रोटी के लिए मजदूरी कर रहे. तीसरे से पूछा, क्या कर रहे हो? एक ही जगह है तीनों, भगवान का घर बना रहे हैं. बात समझ आई? मंदिर एक ही है, एक ही जगह है, पर दृष्टि तीन है। एक कह रहा समय काट रहे, एक कह रहे मजदूरी कर रहे, पर तीसरा कह रहा भगवान का क्या बना रहे हैं, घर बना रहे। मेरे पागलो, एक बात तुम जीवन में याद रखना, जिंदगी भी ऐसी है, चाहे रोके काटो चाहे हंस के काटो, जिंदगी को गुजारना पड़ेगा। पर दृष्टि यदि अच्छी वाली रखोगे तो संसार अच्छा ही अच्छा दिखाई पड़ेगा। हम सही नजर रखेंगे तो सब लोग सही दिखाई, और गलत नजर रखेंगे तो सब लोग, चोर को सब चोर ही लगते हैं, जिनका पेट खराब हो उन्हें सबके पेट खराब नजर आते। अपनी जैसी दृष्टि होगी संसार की सृष्टि भी वैसी ही होगी। दूसरा उदाहरण सुनो, बहुत अच्छा उदाहरण है। एक आधा गिलास पानी का भरा हो तो दो दृष्टि हैं देखने की, दो तरीके हैं, कितने? पहला तरीका है गिलास आधा भरा हो और उसको कोई देखे तो जो नकारात्मक सोच वाला होगा वो क्या कहेगा, आधा खाली है। लेकिन जो अच्छी सोच वाला होगा वो क्या कहेगा, आधा भरा है। अब तुम विचार करो तुम कौन सी सोच के, और सोच बदलोगे जीवन बदल जाएगा। आप आधा गिलास खाली है ये देखना बंद करो, आधा भरा है ये देखना प्रारंभ करो, जीवन में खुशियां आने लगेगी। यथा दृष्टि तथा। तीसरा उदाहरण सुनो, एक गांव में आग लग गई। आग लगी तो गांव के लोग भागने लगे, होगा नागपुर की घटना। गांव के लोग भागने लगे तो सब लोग जाने लगे। इतने में एक चिड़िया, हमारे मध्य प्रदेश की चिड़िया, चोंच में पानी भर के लाए, जलती हुई आग में डाले, फिर उड़कर जाए नदी से पानी भर के लाए, फिर डाले, फिर उड़कर जाए, फिर बूंद भर पानी लाए और डाले। तो गांव का एक व्यक्ति बोला, अरे चिड़िया पागल है क्या, बाबरी है, तेरा दिमाग खराब है, आग इतनी बड़ी है हम लोग बुझा नहीं पाए, तू चोंच भर एक बूंद पानी में क्या खाक आग बुझा पाएगी, चल भाग, यहाँ पानी बुझाने में समय बर्बाद ना कर। पता है चिड़िया ने क्या जवाब दिया, भैया तुम चले जाओ मुझे अपना काम करने दो। बोले क्यों, चिड़िया बोली जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मुझे पता है आग बुझनी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोशिश ना करूं। हम भगवान को पाने की कोशिश करें, मिले ना मिले वो भगवान का काम है, ना मिले वो अलग बात, कल दरबार लगना है, हमारी जी लगाने के लिए बैठेंगे, हम ना लगे तो ये भगवान की कृपा है, हम क्या करें। पर हम तो अपनी कोशिश पूरी करेंगे जी, बोलो हाँ या ना। तो यथा दृष्टि, इतने में कोई और मिल जाता जो कमजोर माइंड का होता या कमजोर सोच का होता, छोटी सोच का, वो क्या कहता, कहां पड़े हो, चलो घर, बेफिजूली में समय बर्बाद कर रहे और तुम भी बातों में पड़ गए। हाँ हाँ सही कह रहे, चलो चलो चलो। पर धन्य है चिड़िया ने, कितना अच्छा संकेत दिया, संदेश दिया, मेरे पागलो देखने का तरीका बदलो। तुम संसार को देखने का तरीका बदलोगे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमेशा अच्छा सोचो, क्या सोचो, बोलो बोलो बोलो। एक उदाहरण और सुनो, हम जब नए नए बाबा बने, नए नए, अभी भी नए ही है, पुराने नहीं है, अभी तो पराए घर भी नहीं गए, तो नए नए बाबा बने, हमारे पास एक गाड़ी थी 800। एक चेला ने हमको गाड़ी दी बड़ी, उस गाड़ी का नाम था मांझा, मांझा कार, थोड़ा बड़ी थी, पुरानी थी, सेकंड हैंड पर अभी भी है। जिस दिन उसने दान में दी हमें बहुत खुशी हुई, खुजली चढ़ी कि हम चलाएं। अब होती है खुजली, नई नई गाड़ी मिले तो खुजली होती है, हमने सोचा हम चलाएं। अब जजमान जाए तो हम चलाएं, जिसने दान में दी वो बैठा है। अब वो कह रहा गुरु जी बताओ गाड़ी कैसी है, हमें मन में लगे कि तुम कब जाओ और हम कब चलाएं, जैसी होगी हम सब देख लेंगे। अब वो हमें एक एक चीज बताए, ये गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है। हम बीच ही में टोक के कहें हाँ हाँ हमें पता है। अच्छा वो समझे ना, और हम समझाना चाह रहे कि जा बोला अच्छा गुरु जी अब गाड़ी आई गई पूजन कर ले, मन तो हुआ कि हम कल कर लेंगे आज जाओ, लेकिन कहें क्या, तुरंत तिलक मंगाया, चंदन लगाया, अगरबत्ती ली, दिया जलाया, नारियल रखा, हमने बढ़िया पूजा की, हमने कहा अच्छा चला अब घर जा गुरु जी चाय और हो जाए। अब मन ही मन हमने कहा बताओ, एक तो तुम गाड़ी दान में रात को लाए, ऊपर से तुम जा नहीं रहे, हमें खुजली उठी। अंत तो गत्वा वो चेला चला ही गया, क्योंकि नागपुर का था, चला गया। अब हमें खुजली चढ़ी, हमने गाड़ी में बढ़िया चाबी लगाई, पांव परे जय बजरंगबली नाम लेकर के गाड़ी चलाई। अच्छा उसमें गियर जो पीछे वाला डलता था वो आगे डलता था, बैक गियर, और हमने पहला गियर समझ के बैक गियर डाल दिया। और जैसे ही क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर पे पैर रखा, हम तो देख रहे थे आगे जाएगी पीछे फटा, और जैसे ही भटा कुड़ी तो बीपी हाई हो गए। हमारे बगल में एक पंडित जी बैठे थे, बोले घल गई हम गई, ये बचाओ बताओ अपन लोग बचे हैं। गाड़ी से नीचे उतरे, जब हमने देखा पीछे जाके दोनों लाइटों की चाउमीन निकले आई, आते सी लटक गई, जैसे भीतर की आते लटक जाती वैसे ही आते लटक गए। हमने कहा ले ओ। इतने में जो पंडित जी बगल में बैठे थे वो अरे राम राम राम बताओ, पहले ही दिन गाड़ी ली, पहले ही दिन घल गई, बड़ा अपशगुन हो गया, बड़ा अपशगुन हो गया, बहुत बुरा हुआ, अरे राम राम राम राम। हमने कहा ऐसा नहीं सोचते हैं, बड़ा अपशगुन हुआ। पंडित जी बोले अब तो इस गाड़ी को बेच देना, बेच देना मत रखना, पहले ही दिन अपशगुन हो गया। अरे हम कहा छोड़ो इसको नहीं बेचेंगे, इसी को रखेंगे, भगवान की बड़ी कृपा है, जो एक्सीडेंट बाद में बड़ा होना था वो आज ही भगवान ने छोटे रूप में निकाल दिया, ये भगवान की माया है। इस घटना ये घटना सच घटना बताई हमने अपनी जिंदगी की। भैया इस घटना को देखने का आशय है, कोई और होता तो गलत दृष्टि से देखता तो गाड़ी बेच देता और जीवन भर पछताता, और हमने कौन सी दृष्टि लगाई, अच्छी वाली, भगवान की कृपा है। इसलिए कुछ भी गड़बड़ हो जाए ना उसमें भगवान की कृपा समझना, होना तो बहुत बुरा था, भगवान की कृपा है छोटे में निकाल दिया, ये दृष्टि रखना। हम दो तीन साल में नागपुर क्यों आते हैं, बड़े लफड़े यहां पर छोटे में निकल जाते हैं। अपनी अपनी दृष्टि है, हो सकता कहीं हम विदेश में बड़े लफड़े में फंसते तो भगवान की बड़ी कृपा है, नागपुर में छोटे लफड़ों में निकल जाते हैं, ये भगवान की दया। मेरे पागलो दृष्टि ठीक रखोगे सृष्टि ठीक हो जाएगी, अपनी नजर बदलोगे नजारे बदल जाएंगे, किस्ती बदलोगे किनारे बदल जाएंगे। इसलिए मेरे पागलो दृष्टि को ठीक रखो, किसको ठीक रखो, बोलो बोलो बोलो बोलो जरा जोर से बोलो। अच्छा कांटों के बीच में गुलाब होता, बोलो हाँ या ना, होता है। अच्छा कांटों के बीच में गुलाब होता, दो जन दो नजर रख सकते, जजमान जी पूछो कौन कौन सी, पूछो। जो गलत सोच वाला आदमी होगा वो गुलाब नहीं देखेगा कांटे देखेगा, अरे बताओ तो कितने कांटे। और जो अच्छी सोच वाला होगा वो क्या कहेगा, कांटे जरूर है पर देखो गुलाब क्या खिला हुआ है, है? ये दो नजर है। तो दृष्टि बदली, क्या बदली, बोलो बोलो बोलो बोलो सृष्टि। अच्छा पांचवा उदाहरण सुनो दृष्टि बदलने का, पांचवा उदाहरण, कोयल काली है कि गोरी, काली, कितनी काली, भयंकर काली, बोलो हाँ या ना, है, बोलो बोलो बोलो। कोयल काली है, किसी की नजर खराब हो दृष्टि खराब हो सोच खराब हो तो वो क्या कहेगा, गाती तो ठीक है लेकिन करिया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बारात में जाएंगे तो घर वापस आएंगे तो पूछेंगे, क्यों भाई बारात कैसी रही? बोले और तो सब ठीक रहा, पानी टाइम पे नहीं दिया। अच्छा पनीर तुम 2 किलो खा गया ठटरी के भरे, 4 रसगुल्ला खा गया, 4 लाख के टेंट की लाइट में तुम फोटो खिंचवाता रहा, 1 मिनट पानी लेट क्या हो गया तो पानी याद रहा, पनीर याद नहीं रही मूसर चंदा। लेकिन गलत सोच वाले आदमी, कुछ लोग कथा पंडाल में आएंगे और जो गलत सोच वाले अच्छी सोच वाले 2 प्रकार के आएंगे। जो अच्छे लोग होंगे उनसे कहा जाए, क्यों भाई नागपुर की कथा कैसी हुई? है जो अच्छी सोच, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया पंडाल में, बहुत लंबा पंडाल था, 100x600 का, 45x300, 45x300 भारी पंडाल लगा था, LED लगी थी, ग्राउंड में थी, कूलर जगह जगह लगे थे। अच्छा अब जो गलत सोच वाला होगा उससे पूछा जाए, क्यों भाई बागेश्वर बाबा की कथा नागपुर में हुई कैसी हुई? गर्मी थी और तो सब ठीक था। अच्छा और ज्यादा खराब सोच का होगा तो वो क्या कहेगा? और तो सब ठीक है, गुरुजी के चेले खराब थे, मंच पे नहीं चढ़ने दिया। और ज्यादा खराब सोच का होगा तो क्या कहेगा? भंडारा दूर नहीं रखना चाहिए था, नजदीक ही करना था। पागलो ये सोच है, अच्छी सोच रखोगे सब अच्छा दिखाई पड़ेगा, बुरी सोच रखोगे सब बुरा दिखाई पड़ेगा। कोयल काली है, यदि गलत सोच होगी तो सुर पर ध्यान नहीं जाएगा, रंग पर ध्यान जाएगा, और यदि तुम्हारी सोच बढ़िया होगी तो रंग पर ध्यान नहीं जाएगा, सुर पर ध्यान जाएगा। अपनी दृष्टि का कमाल है, जैसा आप देखोगे वैसा दिखाई पड़ेगा, जो आप देखोगे वही दिखाई पड़ेगा। अच्छा आदमी भी बड़ा खतरनाक है, इतना सब कुछ दिखाई देता उस पर ध्यान नहीं जाता। 100 लोग राम राम करें उनकी तरफ नजर नहीं जाती, जो राम राम ना करें उन पे जाती। ये कौन है जो राम राम नहीं कर रहा? सब लोग प्रणाम करें उन पे नजर नहीं जाती, जो प्रणाम ना करे उस पे नजर जाती। ये कौन है? ये हम लोगों की सोच है मेरे पागलो। हम लोग इसीलिए परेशान है क्योंकि हमेशा उल्टा सोचते हैं। और यदि तुम्हें प्रसन्न रहना है हमारा मंत्र घर ले जाओ, काम करेगा तुम्हारा जिंदगी भर, तुम्हारा जीवन बदल देगा, खुशियों से जीवन भरा रहेगा। मंत्र यही है, हमेशा अच्छा सोचो, बुरा भी हो जाए उसमें भी अच्छा सोचो, यही सोचो जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब है।
2: कैसा होना चाहिए आपके घर का मुख्य द्वार? बेडरूम और रसोई में रंगों का क्या ध्यान रखें? बाथरूम में किस बात की सावधानी सबसे ज्यादा रखें? घर के कोनों से क्या है कुंडली के ग्रहों का संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: It feels good to be in control. No matter what, keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
10: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
4: सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
2: Schwarber to right field, and it will leave.
1: From the first pitch of the season to the stretch run.
2: And that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: जानने के लिए देखिए News Pulse, राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: आज देश को मिलेगी विकास की नई सौगात। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसानों के खातों में भेजी जाएगी किसान निधि की किस्त। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा के बीच उत्तराखंड में आज बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की अपील। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर। 3 जुलाई से शुरू होगी ये यात्रा। भारतीय सेना ने मनाई करगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग फतह करने की 27वीं वर्षगांठ। कारगिल वार मेमोरियल से तोलोलिंग चोटी तक विशेष अभियान, जवानों की जाबाजी को किया गया याद। एमपी के सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भगवान महाकाल के किए दर्शन। वहीं पत्नी संग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साई दरबार में लगाई हाजिरी, खुशहाली की मांगी दुआ। नीट री एग्जाम से पहले आज देशभर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा। कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज चेन्नई में खेला जाएगा तीसरा एक दिवसीय मुकाबला। पहले दोनों मैच जीतकर सीरीज में अजेय है टीम इंडिया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
11: जम्मू में माता खीर भवानी यात्रा के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी। नगरोटा से आज 8 से 9 हजार श्रद्धालुओं का जत्था होगा रवाना। गांधरबल के तुलमुला स्थित मंदिर में उमड़ेगा आस्था का मेला। कश्मीरी पंडितों में माता खीर भवानी यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। श्रद्धालुओं के लिए लगभग 200 जम्मू कश्मीर रोडवेज की बसें तैनात। राहत और पुनर्वास विभाग ने यात्रा के लिए किए व्यापक इंतजाम। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भगवती नगर बेस कैंप में सुरक्षा बलों की सघन तलाशी अभियान। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भगवती नगर बेस कैंप में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन तेज। उत्तराखंड में आस्था भक्ति के साथ पवित्र चारधाम यात्रा जारी। अब तक 38 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में कल सबसे ज्यादा 16,470 श्रद्धालु पहुंचे। अब तक 12,02,000 से ज्यादा भक्तों ने लगाई हाजिरी। केदारनाथ में कल 8,308 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब तक करीब 12,80,000 भक्तों ने की बाबा केदार की पूजा। गंगोत्री धाम में अब तक 6,26,000 भक्तों ने किए दर्शन, जबकि यमुनोत्री धाम में कुल आंकड़ा 5,91,000 के पार है। हेमकुंड साहिब में 3,745 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। अब तक 1,13,000 श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर में ओडेश्वर महादेव मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र, सबसे प्राचीन शिवालयों में ओडेश्वर महादेव मंदिर की गिनती। शिवलिंग पर हमेशा चावलों से अच्छा दान के अनोखी परंपरा, श्रद्धालु बेलपत्र दूध और गंगा जल अर्पित कर करते हैं भगवान की पूजा अर्चना। ओडेश्वर महादेव मंदिर में विशाल शिवलिंग है, गर्भगृह की प्रमुख पहचान, ग्राम पंचायत देवल का रावल परिवार पीढ़ियों से कर रहा है इसकी सेवा। श्रद्धालु स्वयं शिवलिंग को सीधे स्पर्श नहीं कर सकते हैं, देश विदेश से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर दूर दूर से मंदिर पहुंचते हैं। ओडेश्वर महादेव मंदिर में पूरे वर्ष धार्मिक अनुष्ठान और दर्शन रहते हैं जारी, लोगों में ओडेश्वर महादेव के प्रति गहरी आस्था और विश्वास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान राम की आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों के सुख शांति की कामना की, भगवान राम की आरती में भी हुए शामिल, मंदिर के दान पत्र में किया दान। सीएम योगी ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगाई अपनी हाजिरी, विधि विधान से की पूजा अर्चना, लिया बजरंग बली का आशीर्वाद। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में हुए शामिल, बैठक में राष्ट्रहित और सांस्कृतिक विषयों पर हुआ मंथन। सीएम धामी ने साधु संतों का लिया आशीर्वाद, बैठक में भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन पर हुई चर्चा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 88वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे शिरडी में बाबा के दरबार, हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ साईं बाबा के किए दर्शन, खुशहाली की मांगी दुआ। साईं बाबा मंदिर प्रशासन की ओर से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का किया गया सम्मान, शॉल उड़ाकर और साईं बाबा की मूर्ति देकर उन्हें किया गया सम्मानित। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की समीक्षा, रामबन के डिविजनल कमिश्नर ने बनिहाल में यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर बढ़ाई सुरक्षा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भगवान महाकाल के किए दर्शन पूजन, महाकाल की शयन आरती में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के रामबन में सालाना गलाधार मेले का आयोजन, हजारों की संख्या में श्रद्धालु मेले में शामिल हुए और लिया भगवान का आशीर्वाद। श्रद्धालुओं ने पहाड़ी की चोटी पे स्थित मां चामुंडा मंदिर में किए दर्शन पूजन, पूजा में स्थानीय विधायक भी शामिल हुए और अमन चयन और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। महाराष्ट्र के अमरावती में संत गजानन महाराज के विजय ग्रंथ महापरायण और पादुका दर्शन का आयोजन, पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी किया पाठ। आयोजन में सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल, पूरी पवित्रता से 1 या 7 दिन में पढ़ने होते हैं ग्रंथ के सभी 21 अध्याय, पाठ के बाद श्रद्धालुओं को बांटा गया महाप्रसाद।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर
12: ऐसा होना चाहिए। आपके घर का मुख्य द्वार, बेडरूम और रसोई में रंगों का क्या ध्यान रखें, बाथरूम में किस बात की सावधानी सबसे ज्यादा रखें, घर के कोनों से क्या है कुंडली के ग्रहों का संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
13: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
14: खबरों को परख कर परोसना,
4: हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
2: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president.
1: It was to live sports action.
3: To the near side corner, to wrap around, he scores!
1: And your favorite music.
4: You and I stargazing.
1: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
0: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।

कर्क राशि में चंद्रमा और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की बीमारियों के बारे में। महिलाओं की जो बीमारियां हैं उनकी खास बातें ज्योतिष में क्या हैं? देखिए, बीमारियों के मामले में महिलाएं पुरुषों से अलग हैं क्योंकि महिलाओं की शारीरिक संरचना अलग है। महिलाओं के स्वास्थ्य का मामला चंद्रमा और मंगल पर मुख्य रूप से निर्भर करता है और जो बाकी ग्रहों का असर पड़ता है वो भी इन्हीं के माध्यम से पड़ता है। महिलाओं के साथ चूंकि चंद्रमा जुड़ा हुआ होता है इसीलिए महिलाओं की बीमारियां बहुत ज्यादा भावनाओं पर भी निर्भर करती हैं। इसीलिए महिलाओं की बीमारी को जब देखिए और समझिए तो इसके साथ हमेशा उनकी मन स्थिति को भी देखिए, उनकी मानसिक स्थिति को भी देखना पड़ेगा। यानी महिलाओं की बीमारियां चंद्रमा और मंगल पर निर्भर करती हैं और महिलाओं की बीमारियों में उनके मेंटल स्टेटस का, उनकी मानसिक स्थिति का बड़ा योगदान होता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को होती है वो गायनिक प्रॉब्लम है या गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो पीरियड्स से, यूट्रस आदि से जुड़ी होती है। अगर किसी महिला को गायनिक प्रॉब्लम बार बार होती है तो कारण क्या है और उपाय क्या है? किसी भी महिला को गायनिक प्रॉब्लम होती है चंद्रमा की गति के आधार पर और मंगल की स्थिति के आधार पर। इस समस्या के होने पर महिला को ठंडी चीजों को खाने से बचना चाहिए। महीने में दो एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का लिक्विड लेकर के व्रत रखना चाहिए। तांबे के गिलास से या तांबे के पात्र से जल पीने का प्रयास करना चाहिए। और अगर गायनिक प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हो रही है तो सलाह लेकर के एक मूंगा अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में आगे महिलाओं की बीमारियों पर चर्चा जारी रहेगी लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अक्सर महिलाओं को हड्डियों की समस्या होती है और खास तौर से प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को हड्डियों की समस्या ज्यादा होती है। तो अगर महिलाओं को हड्डियों की समस्या है तो कारण क्या, उपाय क्या? महिलाओं को हड्डियों की समस्या हो

होती है चंद्रमा और सूर्य की वजह से, मुख्यतः सूर्य की भूमिका होती है। तो क्या करेंगी, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, दूध वाली चीजें जैसे दूध है, दही है, क्रीम है, इनका प्रयोग ज्यादा करिए, और हड्डियों की समस्या होने पर सलाह लेकर एक मोती या एक माणिक्य धारण करिए। और अगर हड्डियों की समस्या है आपको तो गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा करिएगा। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है उनकी मानसिक या भावनात्मक समस्या। तो अगर महिलाओं को कोई मानसिक या भावनात्मक समस्या है तो क्या करेंगे, महीने में एक पूर्णिमा आती है, महीने की पूर्णिमा को उपवास रखिएगा, भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग बढ़ा दीजिए है, महीने की पूर्णिमा को उपवास रखिएगा, भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग बढ़ा दीजिएगा, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगी, और घर के उसी कमरे में सोइए या उसी कमरे में रहिए जहां थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सूर्य का प्रकाश आता हो। और अगर भावनात्मक समस्या ज्यादा है, इमोशनली आप हर समय परेशान रहते हैं या रहती हैं, तो मोती या ओपल बहुत सोच समझकर पहनिएगा, वही बेहतर होगा। ऐसी स्थिति में सलाह लेकर एक देसी मूंगा अगर आप धारण करें तो मन को मजबूत करना थोड़ा आसान होगा। देखिए, अगर आप महिला हैं और स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रही हैं तो आपको चंद्रमा और मंगल वाले हिस्से पर काम करना होगा। सलाह लेकर के एक मूंगा पहनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्यास्त के बाद जब चंद्रोदय हो जाए, जब चंद्रमा निकल जाए, उसके बाद चंद्रमा के मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा। और महिलाओं को किसी न किसी रूप में चांदी जरूर पहननी चाहिए, चांदी का छल्ला, चांदी की चेन, चांदी का कड़ा, चांदी की पायल। अपने शरीर में अगर आप चांदी धारण करें तो चंद्रमा रेगुलेटेड रहेगा, चंद्रमा कंट्रोल में बना रहेगा और आपकी ज्यादातर स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आज हमने बात की महिलाओं की बीमारियों के बारे में, अब जान लेते हैं आपके लिए लकी टिप। अपने धन के स्थान पर हमेशा एक पीले वस्त्र में लपेटकर
हल्दी की कम से कम दो गांठ रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से धन की बचत करना आसान होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 20 जून दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: आज देश को मिलेगी विकास की नई सौगात। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। किसानों के खातों में भेजी जाएगी किसान निधि की किस्त। उत्तराखंड में जारी चार धाम यात्रा के बीच उत्तराखंड में आज बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की अपील। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर जोर। 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। भारतीय सेना ने मनाई कारगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग फतह करने की 27वीं वर्षगांठ। कारगिल वॉर मेमोरियल से तोलोलिंग चोटी तक विशेष अभियान, जवानों की जाबाजी को किया गया याद। नीट री एग्जाम से पहले आज देशभर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा, कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज चेन्नई में खेला जाएगा तीसरा एक दिवसीय मुकाबला। पहले दोनों मैच जीतकर सीरीज में अजेय है टीम इंडिया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
4: नमस्कार।
3: देखिए, घर और मकान, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है, क्योंकि घर में छिपी होती है आपकी खुशियां और साथ ही में यहां से होता है ऊर्जा का संचार और इसी से कनेक्शन होता है आपकी जिंदगी, आपके भाग्य का। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कैसे घर को सुधारने से सुधर सकता है आपका भाग्य। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
4: अगर आपको किसी कानूनी मामले के लिए या किसी मुकदमे के काम से जाना है तो कमर के ऊपर जो अपर आउटफिट है उसमें सफेद रंग का कपड़ा पहनकर जाइएगा। शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता जो भी पहन के जाते हैं वो वाइट कलर का पहन के जाएंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी।
3: तो चलिए, बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 20 जून 2026 यानी कि दिन शनिवार का पंचांग क्या है।
4: दिनांक 20 जून 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 3:46 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, प्रातः 9:25 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
3: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पंडित जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि घर एक ऐसी जगह होती है जहां हम सिर्फ रहते नहीं हैं, बल्कि हमारी खुशियों की चाबी, हमारा जो भाग्य होता है ये भी उससे जुड़ा होता है। ऐसे में हम अपने घर को किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, किस तरीके से अपने घर में परिवर्तन करके हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
4: जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप अपने घर के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग जगहों को बेहतर रखते हैं तो आप अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। क्या संबंध है घर का भाग्य से? देखिए, घर के अलग अलग स्थान अलग अलग ग्रहों से नियंत्रित होते हैं। जैसे पूजा घर सूर्य से, बेडरूम शुक्र से, बाथरूम राहु और केतु से। तो घर के इन विशेष स्थानों को ठीक रख के आप अपने ग्रहों को ठीक रख सकते हैं और अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। इन स्थानों को बेहतर करके आप अपनी कुंडली के खराब ग्रहों को भी सुधार सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुंडली का जो कोना खराब होता है या जिस कोने में खराब ग्रह आपकी कुंडली में हैं, वही हिस्सा घर का गड़बड़ होता है। अगर आप घर के उस हिस्से को बेहतर कर लें तो आप अपनी कुंडली के उस नकारात्मक ग्रह को बेहतर जरूर बना पाएंगे।
3: तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं घर के मुख्य द्वार यानी कि एंट्रेंस की। कितना महत्वपूर्ण होता है घर का मुख्य द्वार, ये कैसा होना चाहिए और कैसे इसमें सुधार किया जाए, आइए जानते हैं।
4: घर का जो मुख्य द्वार है यानी मेन डोर है, इसका महत्व क्या है और क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, घर के मुख्य द्वार से आपके घर में खुशियां भी आती हैं और आपके घर में समस्याएं भी आती हैं। घर के मुख्य द्वार को ठीक करके ही घर में खुशियां लाई जा सकती हैं। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना चाहिए और मेन डोर अंधेरा ना हो, यहां पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। अपने मुख्य द्वार पर एक नेम प्लेट आपको लगाना चाहिए जो काले रंग की नहीं होनी चाहिए और मुख्य द्वार पर निकलते समय लेफ्ट साइड में शनिवार को एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में रहने वाले स्वस्थ रहेंगे, घर में बीमारियां नहीं रहेंगी, सफलता पाना आसान होगा।
3: तो चलिए, घर का मुख्य द्वार कैसा हो, आपका घर कैसा हो, इस पर हमारी जो चर्चा है लगातार यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है।
4: मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, रिश्तों में समस्या हो सकती है। काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, नए अवसर आपको मिलेंगे, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं घर के लिविंग एरिया यानी कि ड्राइंग रूम की, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो भी घर में आता है सबसे पहले इसी एरिया में बैठता है। कैसा होना चाहिए आपका घर का लिविंग एरिया, आइए पंडित जी से जानते हैं।
4: तो घर का जो लिविंग एरिया है, ड्राइंग रूम है, वो कैसा होना चाहिए? देखिए, इस स्थान से घर में आनंद और रिश्ते देखे जाते हैं। और अगर आप अपने घर के लिविंग एरिया को, ड्राइंग रूम को ठीक रखते हैं तो जीवन के अवसाद को, डिप्रेशन को और तनाव को दूर कर सकते हैं। लिविंग एरिया अगर गड़बड़ होगा, 24 घंटे की टेंशन घर में बनी रहेगी। लिविंग एरिया को, ड्राइंग रूम को प्रकाशित रखिए, इनलाइटेंड रखिए। यहां पर हल्की सुगंध की व्यवस्था करिए, थोड़ी खुशबू आती रहे। और इस स्थान पर ढेर सारे फूल या फूलों के चित्र लगाइएगा। लिविंग एरिया में, ड्राइंग रूम में जूते चप्पल रखने की जगह ना बनाएं। बेहतर होगा कि ड्राइंग रूम में या लिविंग एरिया में जूते चप्पल ना रखे जाएं। उसको जितना सुंदर, जितना प्रकाशित और जितना व्यवस्थित रखेंगे उतना ही आनंद आपको जीवन में प्राप्त होगा।
3: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है।
4: कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के मामलों में सावधानी रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
3: तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
4: जी आज का पहला प्रश्न दीक्षा जी ने हमें लिखा है और दीक्षा जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई सन 2000। जन्म का समय रात में 9:35। जन्म स्थान है पंचकुला। मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। ये कह रही हैं कि मैं अभी कंप्यूटर सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में नौकरी करती हूँ और अब मैं नौकरी भी बदलना चाहती हूँ और स्थान भी बदलना चाहती हूँ। क्या ऐसा हो सकेगा? क्या ऐसा कर पाना मेरे लिए ठीक रहेगा? दीक्षा, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप फरवरी 2027 तक जहां हैं वहीं रहिए। फरवरी 27 तक कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। फरवरी 2027 के बाद अगर आप नौकरी बदलती हैं तो नौकरी बदलेंगी, स्थान बदलेगा और बेहतर जगह आप पहुंच जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
3: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम रोज देखते हैं और पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं तो इसका तरीका बेहद आसान है। आप देखेंगे कि टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं।
4: जी अगला प्रश्न कविता गुलाटी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 मार्च 1978। जन्म का समय सुबह के 9:35। जन्म स्थान है दिल्ली। कविता कह रही हैं कि मैं मानसिक समस्याओं से, भावनात्मक समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। हर बात पर मुझे चिंता होती है, तनाव होता है और डॉक्टर की दवाई चल रही है मेरी, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कविता, सबसे पहले बता दें कि जो डॉक्टर की आपकी साइकोलॉजिकल दवाई चल रही है मानसिक स्थिति की, वो दवाई अपने मन से बीच में बंद मत करिएगा। डॉक्टर की बात और डॉक्टर का परामर्श मानिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको लाभ जरूर होगा। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को अपने गले में पहने, या कोई चेन पहनती हैं तो उसमें बुधवार की शाम को डालकर पहन लीजिएगा। महीने में दो एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखिए और सुबह दोपहर शाम रात चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पंडित जी, अक्सर आप कहते हैं कि सबसे पर्सनल स्पेस बेडरूम के बाद अगर कोई और स्थान होता है तो वो होता है आपके घर की रसोई, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। तो ऐसे में कैसी हो आपके घर की रसोई, आइए जानते हैं।
4: अगर आपके घर के किचन की बात करें, रसोई की बात करें, तो यहां पर किन बातों का ध्यान देना है। घर की जो रसोई है उस स्थान से घर के लोगों का स्वास्थ्य देखा जाता है, घर के लोगों के हेल्थ के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपके घर में रसोई में सूर्य का थोड़ा भी प्रकाश आता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। रसोई घर में बर्तन को, डिब्बों को, चीजों को व्यवस्थित रखना चाहिए और रसोई को पर्सनल रखिए। हर व्यक्ति आपकी रसोई में घुस जाए, आपकी रसोई में बर्तन छूने लगे, काम करने लगे, ये उचित नहीं है। और रसोई घर में जब आप शाम को पूजा कर लेते हैं या कर लेती हैं तो रसोई घर में धूप बत्ती जलाकर जरूर दिखाइए ताकि रसोई घर में शुभता प्रवेश करे। और रसोई घर में दो बातों का बहुत ध्यान रखिए। खाना बनाते समय किसी भी हाल में आपका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। आप फ्लैट में रहते हो, आप मकान में रहते हो, खाना बनाते समय चेहरा साउथ में ना हो। या तो रसोई घर को सफेद रंग का रखिएगा, वाइट कलर का, या रसोई में हल्के लाल रंग का और ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं।
3: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
4: तुला राशि, आर्थिक रूप से आपको लाभ होता दिख रहा है, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, परिवार में विवादों से बचाव करें। अगर फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपके घर के शयन कक्ष यानी बेडरूम के बारे में। तो आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण स्थान यानी कि आपका बेडरूम कैसा होना चाहिए, आइए जानते हैं।
4: अगर बेडरूम की बात करें, शुक्र का आधिपत्य है यहां पर आपके बेडरूम में, आपके शयन कक्ष में जो इंपैक्ट है, जो प्रभाव है वो है शुक्र का। तो आपके बेडरूम से सुख और समृद्धि दोनों देखी जाती है। बेडरूम का रंग हल्का रखें, लाइट शेड रखें, हल्का हरा या गुलाबी रंग या वाइट कलर बेडरूम का रखना अच्छा होगा। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में टेलीविजन ना लगाएं। हल्के संगीत की व्यवस्था आप चाहें तो अपने बेडरूम में कर सकते हैं। जहां तक संभव हो बेडरूम में पलंग पर बैठकर या कैसे भी खाना खाने से बचना चाहिए। अपने शयन कक्ष में ऐसी व्यवस्था करें कि सूर्य का प्रकाश और वेंटिलेशन, हवा अच्छी तरह से आती रहे। देखिए बेडरूम बहुत व्यक्तिगत जगह है, इसीलिए अपने बेडरूम में हर व्यक्ति को प्रवेश मत करवाइए। और बेडरूम में अगर बहुत मजबूरी नहीं है तो देवी देवताओं का चित्र रखने से या लगाने से भी बचना चाहिए।
3: तो चलिए इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं आपके घर के बाथरूम की। तो बाथरूम कैसा होना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं।
4: आपके घर का जो बाथरूम है, चूंकि वहां पानी है तो चंद्रमा तो स्वाभाविक रूप से होगा, लेकिन उसके अलावा वहां राहु और केतु भी होते हैं, इसीलिए आपके घर के बाथरूम से जीवन की समस्याएं नियंत्रित होती हैं, जीवन की समस्याएं कंट्रोल होती हैं। बाथरूम को हमेशा आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। बाथरूम में पानी का प्रयोग जरूर करिए, लेकिन पानी की बर्बादी मत करिए। बाथरूम में नीले रंग का प्रयोग या पर्पल रंग यानी बैंगनी रंग का प्रयोग करना लाभकारी होगा। और बाथरूम साफ रहे, प्रयोग करने के बाद सूखा रहे और हल्की सुगंध आती रहे तो काफी अच्छा होगा। जिन लोगों के कमरों से अटैच्ड बाथरूम है वो बाथरूम का दरवाजा बंद रखें। बाथरूम का दरवाजा हमेशा खुला ना रखें, बाथरूम को बंद करके रखें प्रयोग करते समय भी और प्रयोग करने के बाद भी।
3: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है।
4: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आपके सवाल का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
4: जी, अगला प्रश्न अनिल जी ने हमें यूएसए से लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 3 जून 2010। जन्म का समय शाम के 7:25। जन्म स्थान है कैलिफोर्निया, अमेरिका। ये पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा आगे किस क्षेत्र में करियर बनाए, किस क्षेत्र में जाना इसके लिए बेहतर होगा। अनिल जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर ये मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, अकाउंट्स के क्षेत्र में जाएं, तो इन क्षेत्रों में बिजनेस या कॉमर्शियल क्षेत्रों में करियर बनाना अच्छा रहेगा। आपके बेटे के स्वास्थ्य के लिए जो आपने लिखा है उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है, केवल इनके खान पान का और इनके डाइजेशन का ध्यान रखना होगा। आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक मूंगा लगभग 6 से 8 रत्ती तांबे या सोने के लॉकेट में बनवा कर लाल धागे में मंगलवार को सवेरे अपने बेटे को पहनाएं, शुभ रहेगा।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का चौथा और अंतिम सवाल भी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारा ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी पसंद करते हैं और पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं।
4: जी, आज का अंतिम प्रश्न नूपुर ने हमें लिखा है और नूपुर हमें जयपुर राजस्थान से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 जनवरी 1974। जन्म का समय है 11:25। जन्म का स्थान है बांदीकुई, जयपुर राजस्थान। नूपुर जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और अब तक मेरे 2-3 ऑपरेशन भी हो चुके हैं, कुछ न कुछ स्वास्थ्य में मेरे समस्या लगी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन बेहतर हो। नूपुर, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य में दिक्कत का समय अभी चल रहा है और स्वास्थ्य को लेकर के अप्रैल 2027 तक सतर्क रहिए। हड्डियों, नसों और आंखों की समस्या का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका स्वास्थ्य आने वाले समय में ठीक रहेगा, लेकिन अपनी हड्डियों पर, अपनी नसों पर ध्यान बनाए रखिएगा। डॉक्टर से समय समय पे सलाह लेते रहिएगा। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहने, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
3: पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि घर में रहते हुए नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं है, तो अगर ऐसा किसी दर्शक के साथ भी हो रहा है तो क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं उस स्थिति को ठीक करने के लिए?
4: जी, अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके घर का बाथरूम सही ना बना हो, आपके घर के किचन का कलर बहुत अच्छा ना हो, या बेडरूम में कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से जीवन में थोड़ी दिक्कत आपको महसूस हो रही हो। तो देखिए, तुरंत पेंटिंग करवाना, तुरंत तोड़ फोड़ करवाना पॉसिबल नहीं होता कई बार। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने घर को अच्छा रखना चाहते हैं, उसकी तरंगों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में आप रोज सुबह स्नान करके पूजा स्थान पे बैठिए, या तो शंख में जल भर के रख लीजिए सामने, या एक छोटे से लोटे या कटोरी में जल भर करके सामने रख लीजिए और बोल बोल कर 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। जब मंत्र जप कर लें, पूजा समाप्त हो जाए, उसके 10 मिनट बाद उस जल को अपने हाथ में लेते जाइए और घर के कोने कोने में, कमरे में, बाथरूम में, किचन में, रसोई में, हर जगह उसको छिड़किए और बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दीजिए। तो अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो घर की तरंगे बड़ी अच्छी हो जाएंगी, घर के वाइब्रेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे और वास्तु के दोष होने के बावजूद भी आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिनका जन्मदिन 20 जून को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
4: जिन लोगों का जन्मदिन 20 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में लगातार सुधार होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, करियर में किसी तरह का जोखिम ना लें, अविवाहितों का विवाह इस साल में हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
3: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
4: आज की जिज्ञासा है कि क्या मंगलवार को धन का, रुपए पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए? देखिए, मंगलवार को धन या कर्ज लेना देना उचित नहीं होता, और देना तो बिल्कुल उचित नहीं होता, क्योंकि अगर आप मंगलवार को पैसा देते हैं, बांटते हैं, तो इससे दिया हुआ धन डूब सकता है। लेकिन अगर मिल रहा है तो चलिए तब भी ठीक है, लेने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा देना, पैसा बांटना, पैसा लगाना, पैसे संबंधी कोई बड़ा निर्णय लेना, ये मंगलवार को करने से बचना चाहिए।
3: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जान लेते हैं कि शुभ पहर का समय और उसका उपाय क्या है।
4: दिनांक 20 जून 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिएगा। ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, शाम को 6 बजे से 7:30 तक का समय शुभ पहर का समय रहेगा।
3: और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हम जानते हैं कि आज की गुड लक राशि आखिर कौन सी है।
4: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा पढ़ाई के हालात कैसे रहते हैं। आज की गुड लक राशि है कुंभ, एक्वेरियस। इनकी शिक्षा सामान्यतः मध्यम रहती है। अक्सर जीवन के मध्य में 35-40 के बाद ये दोबारा पढ़ाई शुरू करते हैं, ऐसा भी देखा गया है।
3: और अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
4: जी अगर आपका छोटा बच्चा है, 12 साल या 12 साल से कम उम्र का है और जिद बहुत करता है, तो क्या करेंगे? छोटे बच्चे के गले में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को चांदी का एक चंद्रमा धारण करवाइएगा। रोज जब बच्चा सुबह नहाकर तैयार हो जाता है, उसके कंठ पर छोटा सा हल्दी का तिलक लगाइएगा और बच्चे की सद्बुद्धि के लिए बच्चे की माता रोज सुबह 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगी।
3: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
4: धन्यवाद।
3: तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दे जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
2: I drive my bus in a busy city. That's why road safety is so important to me. I know that I must slow down and be extra careful when I make a wide turn. Buses need more room than cars. Everyone can help keep our roads safe. Next time you're driving, remember to give buses plenty of time and space to finish turning before driving ahead. Let's all plan to share the road safely. Learn how at www.sharetheroadsafely.gov.
3: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
4: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
3: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
5: अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी

0: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
1: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
2: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league. From the first pitch of the season to the stretch run.
3: That's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: देखिए गाने तो कई सारे होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई गीत सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। उसके शब्द कानों से ज्यादा दिल तक पहुंचते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक लोकगीत सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के दिलों को छू रहा है। इंस्टाग्राम की रील्स हो, यूट्यूब के शॉर्ट्स हो या फिर फेसबुक के फीड, हर जगह कोक स्टूडियो भारत के नए गीत कचौड़ी गली की धूम है। यूट्यूब पर लाखों व्यूज बटोर चुका कचौड़ी गली आज लोक संगीत की ताकत बनकर उभरा है। एक ऐसा गीत जो गाँव की चौपाल से निकलकर डिजिटल दुनिया के करोड़ों दिलों तक पहुंच गया है। रेखा भारद्वाज और उत्पल अदित की मिट्टी से जुड़ी गायकी ने इस गीत को ऐसा रंग दिया है कि ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक एहसास बन चुका है।
2: सेजिया पे लोटे काला नाग, कचौड़ी गली सुन कैला बलमो, इन अल्फाजों में केवल सुर नहीं है बल्कि विरह का बहाव है। एक औरत का दर्द जिसका पति रोजी रोटी की तलाश में मिर्जापुर गया है। घर सूना है, आंगन सूना है और कचौड़ी गली भी सूनी है। यही विरह, यही इंतजार इस गीत की आत्मा है।
3: कचौड़ी गली सुन कैला बलमो।
2: ये लोक गीत कई बार गाया गया, दोहराया गया, लेकिन हर बार इसकी मिठास और इस गीत में छिपा दर्द नए रूप में सामने आया। ये गीत उस दौर का है जब पूर्वांचल और बिहार के हजारों लोग रोजगार की तलाश में घर छोड़कर दूसरे शहरों की ओर जाते थे और पीछे छूट जाती थी उनकी पत्नियां, उनकी प्रेमिकाएं और उनका इंतजार।
4: सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमो।
2: कोक स्टूडियो भारत ने इसी गीत को नई पीढ़ी के सामने नए अंदाज में पेश किया। रेखा भारद्वाज की आवाज और बिहार के लोक गायक उत्पल उदित की माटी से जुड़ी गायकी ने इस गीत को नई पीढ़ी तक पहुंचा दिया है। इस गाने को YouTube पर अब तक 78 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। सहरसा से बनारस तक, हारमोनियम के पहले सुर से कोक स्टूडियो के मंच तक, आज उत्पल उदित नए मिशन पर है। वो फोक को सहेज रहे हैं, उसे नई जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं। कोक स्टूडियो भारत पर आए कचौड़ी गली ने उत्पल को न केवल नई पहचान दी है बल्कि उन्हें लोक गीतों का नया सितारा बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: महिलाओं की बीमारियों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, किस तरह की बीमारियां सामान्यतः महिलाओं को ज्यादा होती हैं, महिलाओं की बीमारियों के लिए क्या है ज्योतिष का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
7: You hear it once and remember everything.
8: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
7: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
9: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
18: आसमान में सेना की तीसरी आंख, आ गया बैलिस्टिक ब्रिगेड का नया कप्तान, संपूर्ण भारत की सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
20: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
1: आज देश को मिलेगी विकास की नई सौगात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसानों के खातों में भेजी जाएगी किसान निधि की किस्त। जम्मू में माता खीर भवानी यात्रा के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी, आज नगरोटा से रवाना हो रहा है श्रद्धालुओं का जत्था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चारधाम यात्रा के बीच उत्तराखंड में आज बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की अपील। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज। श्रीनगर में युवाओं ने किया जल योग। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में देंगे योग संदेश। भारतीय सेना ने मनाई कारगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग फतह करने की 27वीं वर्षगांठ। कारगिल वॉर मेमोरियल से तोलोलिंग चोटी तक विशेष अभियान, जवानों की जबाजी को किया गया याद। नीट री एग्जाम से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी एनटीए। 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा। कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज चेन्नई में खेला जाएगा तीसरा एक दिवसीय मुकाबला। आज क्लीन स्वीप के लिए मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन फ्लीट में शामिल होने के लिए तैयार है नया बोइंग 747 विमान। कतर ने दिया था गिफ्ट। ओवरहॉलिंग, रंग रोगन और टेस्टिंग के बाद ट्रंप ने लिया जायजा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर।
1: जम्मू में माता खीर भवानी यात्रा के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी। नगरोटा से आज 8,000 से 9,000 श्रद्धालु का जत्था होगा रवाना। गांधरबल के तुलमुल्ला स्थित मंदिर में उमड़ेगा आस्था का मेला। कश्मीरी पंडितों में माता खीर भवानी यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। श्रद्धालुओं के लिए लगभग 200 जम्मू कश्मीर रोडवेज की बसें तैनात। राहत और पुनर्वास विभाग ने यात्रा के लिए किए व्यापक इंतजाम। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भगवती नगर बेस कैंप में सुरक्षा बलों की सघन तलाशी अभियान। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भगवती नगर बेस कैंप में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन तेज। उत्तराखंड में आस्था भक्ति के साथ पवित्र चारधाम यात्रा जारी। अब तक 38,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में कल सबसे ज्यादा 16,470 श्रद्धालु पहुंचे। अब तक 12,02,000 से ज्यादा भक्तों ने लगाई हाजिरी। केदारनाथ में कल 8,308 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब तक करीब 12,80,000 भक्तों ने की बाबा केदार की पूजा। गंगोत्री धाम में अब तक 6,26,000 भक्तों ने किए दर्शन, जबकि यमुनोत्री धाम में कुल आंकड़ा 5,91,000 के पार। हेमकुंड साहिब में 3,745 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। अब तक 1,13,000 श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर में ओडेश्वर महादेव मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र। सबसे प्राचीन शिवालयों में ओडेश्वर महादेव मंदिर की गिनती। शिवलिंग पर हमेशा चावलों से आच्छा दान की अनोखी परंपरा। श्रद्धालु बेलपत्र, दूध और गंगा जल अर्पित कर करते हैं पूजा। ओडेश्वर महादेव मंदिर में विशाल शिवलिंग है गर्भगृह की प्रमुख पहचान। ग्राम पंचायत देवल का रावल परिवार पीढ़ियों से सेवा में। श्रद्धालु स्वयं शिवलिंग को सीधे स्पर्श नहीं कर सकते। देश विदेश से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर दूर दूर से मंदिर पहुंचते हैं। ओडेश्वर महादेव मंदिर में पूरे वर्ष धार्मिक अनुष्ठान और दर्शन रहते हैं जारी। लोगों में ओडेश्वर महादेव के प्रति गहरी आस्था और विश्वास है। सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान राम की आस्था और भक्ति में सराबोर सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों की सुख शांति की कामना की। भगवान राम की आरती में भी हुए शामिल। मंदिर के दान पात्र में किया दान। सीएम योगी ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगाई अपनी हाजिरी। विधि विधान से की पूजा अर्चना कर लिया भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में हुए शामिल। बैठक में राष्ट्रहित और सांस्कृतिक विषयों पर हुआ मंथन। सीएम धामी ने साधु संतों का लिया आशीर्वाद। बैठक में भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन पर हुई चर्चा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 88वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे शिरडी में साईं बाबा के दरबार। हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ साईं बाबा के किए दर्शन, खुशहाली की मांगे दुआ। साईं बाबा मंदिर प्रशासन की ओर से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का किया गया सम्मान, शॉल उड़ाकर और साईं बाबा की मूर्ति देकर किया सम्मानित। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। रामबन के डिविजनल कमिश्नर ने बनिहाल में यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर बढ़ाई सुरक्षा, चप्पे चप्पे की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे जवान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भगवान महाकाल के किए दर्शन पूजन, महाकाल की शयन आरती में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के रामबन में सालाना गलाधार मेले का आयोजन, हजारों की संख्या में श्रद्धालु मेले में शामिल हुए और भगवान का लिया आशीर्वाद। श्रद्धालुओं ने पहाड़ की चोटी पर स्थित मां चामुंडा मंदिर में किए दर्शन, पूजा में स्थानीय विधायक के शामिल हुए और अमन चैन और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। महाराष्ट्र के अमरावती में संत गजानन महाराज के विजय ग्रंथ महापरायण और पादुका दर्शन का आयोजन, पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी किया पाठ। आयोजन में सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल, पूरी पवित्रता से 1 या 7 दिन में पढ़ने होते हैं ग्रंथ के सभी 21 अध्याय, पाठ के बाद श्रद्धालुओं को बांटा गया महाप्रसाद। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों के लिए जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तमिलनाडु के मदुरई में हुई भारी बारिश, बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में बारिश के बीच दिल्ली में 39 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया तापमान। वीकेंड पर आंधी और बारिश का अनुमान, येलो अलर्ट जारी। पिछले कुछ समय से दुनिया का सबसे गर्म स्थान बना यूपी का बांदा, बांदा में तापमान बढ़ने की वजह की जांच के लिए जमीन पर उतरी विशेषज्ञों की टीम। असम और अरुणाचल में भारी बारिश से बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारों तक पहुंचा पानी, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। आज देश को मिलेगी 47,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा मयूरभंज में करेंगे उद्घाटन और इसका शिलान्यास, कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू भी होंगे शामिल। आज देश भर के 9,44,00,000 से ज्यादा किसानों को मिलेगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त, किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए भेजेंगे प्रधानमंत्री। नौसेना को मिलेगा ताकत का बूस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में 3 नवनिर्मित युद्ध पोतों INS दूनागिरी, INS अग्रह और INS संशोधक को नौसेना में करेंगे शामिल। पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर आज प्रदेश को मिलेगी नई विकास योजनाओं की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पश्चिम बंगाल को रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास और पशुपालन क्षेत्र की योजनाओं की मिलेगी सौगात, राज्य में कई केंद्र योजनाओं की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों को मिली योजना की किस्त, प्रधानमंत्री मोदी ने वितरित की 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। झारखंड के जमशेदपुर में 300 से ज्यादा गरीब परिवारों के अपने घर का सपना हुआ पूरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला घर। सांसद विद्युत महतो और विधायक पूर्णिमा दास ने लाभार्थियों को सौंपी घरों की चाबी, घर का सपना सच होने पर कई लोगों की आंखों से निकले खुशी के आंसू। यूपी बिहार के लोगों को नई ट्रेन की सौगात, बिहार के छपरा से दिल्ली के आनंद विहार के बीच शुरू हुई साप्ताहिक ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना, नई ट्रेन चलने पर रेल यात्रियों ने खुशी का किया इजहार। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज खेला जाएगा 3रा एक दिवसीय मुकाबला, चेन्नई में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा ये मैच। 3 मैचों की सीरीज के पहले 2 मैच जीतकर 2-0 से आगे है टीम इंडिया, लखनऊ वनडे में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रन से दी है मात। वैभव सूर्यवंशी के बाद बिहार के अक्षरा कधमाल BCA महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में 126 गेंदों में ठोक दिए 306 रन, 55 चौके और 8 छक्कों की खेली शानदार पारी। बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी आकाशदीप और मुकेश कुमार को नौकरी देगी राज्य सरकार। खेल विभाग को भेजी गई डीएसपी पद पर नियुक्त करने की सिफारिश। श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी गुरुपर्व पर पाकिस्तान गए 518 श्रद्धालु लौटे स्वदेश। 10 दिन की यात्रा में श्रद्धालुओं ने ऐतिहासिक गुरुद्वारों और गुरुधामों के किए दर्शन। संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल नियुक्त किए गए। एफएटीएफ के वाइस प्रेसिडेंट, पहली बार एफएटीएफ का उप उपाध्यक्ष बनेगा भारत। जून 2027 तक होगा कार्यकाल। तेज गेंदबाजों की तलाश में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने शुरू किया टैलेंट हंट। प्रयागराज के केपी कॉलेज ग्राउंड में शुरू हुआ 2 दिवसीय ट्रायल। पेसर टैलेंट हंट में किस्मत आजमाने पहुंचे प्रयागराज और वाराणसी मंडल के करीब 1300 युवक। प्रतिभा दिखाने पहुंचे युवाओं में लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल। मध्य प्रदेश के श्योपुर से सामने आया प्रेम का अनोखा मामला। 60 साल के एक पुरुष और 60 साल की महिला ने की शादी। 2 से 3 हफ्ते पहले मंदिर में हुई थी मुलाकात। मंदिर में परिक्रमा के दौरान हुई थी दोनों की मुलाकात। पहले कोर्ट मैरिज के फिर रीति रिवाज से लिए 7 फेरे। जीवन साथी के दुनिया से विदा होने के बाद अकेले थे दोनों। पंजाब के एक छोटे से गांव के युवक की बड़ी सफलता। देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में देश में हासिल किया 10वां स्थान। संगरूर जिले के बिंबड़ा गांव के युद्धवीर सिंह की सफलता से परिवार में खुशी के लहर। दोस्त रिश्तेदार और गांव वाले दे रहे हैं बधाई। युद्धवीर की सफलता की पूरे इलाके में चर्चा। गुजरात में केसर आम का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए शानदार रहा यह साल। 61 दिन के सीजन में मार्केट में पहुंचे रिकॉर्ड 9.44 लाख पेटी केसर आम। किसानों के मुताबिक अनुकूल मौसम की वजह से आम के उत्पादन ने तोड़े पिछले साल के रिकॉर्ड। अच्छी पैदावार और बेहतर गुणवत्ता के कारण किसानों को ही अच्छी कमाई। देश के लोगों के साथ साथ दूसरे देशों के लोगों ने भी चखा गुजरात के केसर आम का स्वाद। ब्रिटेन, दुबई, कनाडा समेत कई देशों में निर्यात किए गए करीब 90 टन आम। सेना के जवानों ने लद्दाख के द्रास में किया टूलिंग एक्सपेडिशन। तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए 0 डिग्री से कम तापमान में दुर्गम परिस्थितियों में किया अभ्यास। योग दिवस से पहले सेना ने लद्दाख के तंगस्त में गांव वालों के लिए योग सत्र का किया आयोजन। कार्यक्रम में 200 से ज्यादा ग्रामीण उत्साह के साथ हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के जयपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति का किया अनावरण। आदिवासी समुदाय के विकास के लिए योजनाओं का किया ऐलान। चेन्नई के जीईएम अस्पताल में ऑपरेशन इन्फिनिटी की शुरुआत। देश के पहले डुअल सिटी रोबोटिक सर्जरी नेटवर्क वाला अस्पताल बना। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री भी हुए शामिल। देहरादून में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। द्रास में कारगिल युद्ध की ऐतिहासिक वर्षगांठ का जश्न। ऑपरेशन विजय की 27वीं वर्षगांठ पर हुआ विशेष समारोह। कारगिल वॉर मेमोरियल पर भारतीय सेना की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। सेना ने टोलोलिंग चोटी पर कब्जे को कारगिल युद्ध का टर्निंग पॉइंट बताया। कार्यक्रम में शौर्य और बलिदान की गाथा को फिर से जीवंत किया। रांची के मिलिट्री हॉस्पिटल नामकुम में 4 दिवसीय आई कैंप संपन्न। ऑपरेशन दृष्टि के तहत मेगा सर्जिकल कैंप आयोजित। तीन सौ बीस से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई गई। 2500 मरीजों की आंखों की हुई जांच। 260 से ज्यादा हुए मोतियाबिंद ऑपरेशन। नीट री एग्जाम के लिए देश भर में पुख्ता इंतजाम। परीक्षा से पहले एनडीए कल देश भर में मॉक ड्रिल करेगा। नीट परीक्षा केंद्रों पर रहेगी सख्त सुरक्षा। इक्कीस जून को देश के 551 शहरों में नीट परीक्षा। 5500 परीक्षा केंद्रों पर तैनात होंगे 2 लाख कर्मचारी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी। एनटीए ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। सीके में परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, डीजीपी ने वीसी के जरिए अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने की पहल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 राष्ट्र प्रमुखों को दिए भारतीय उपहार। GI टैग वाले पारंपरिक प्राकृतिक उत्पाद उपहार में दिए G7 लीडर्स को, मेघालय की हल्दी, नगौरा अश्वगंधा का उपहार, रामबन का शहद, बनारसी सिल्क स्टोल भी उपहार में दिए। अमेरिकी वायुसेना ने जारी की बोइंग 747-8i बिजनेस जेट के अपग्रेडेड वर्जन VC-25B की पहली तस्वीर, राष्ट्रपति के बेड़े में शामिल होने बेस पहुंचाई विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने देखा दुनिया के सबसे लग्जूरियस विमान का अपग्रेडेड वर्जन, पिछले साल कतर से ट्रंप को तोहफे में मिला था यह विमान। एयरफोर्स वन में शामिल होने के लिए अपग्रेड किया गया है यह विमान। इस जंबो विमान को कंपनी L3Harris टेक्नोलॉजीज ने किया है अपग्रेड, ट्रंप ने पैनल पर किए साइन। अपग्रेड होने के बाद की जा चुकी है विमान की टेस्टिंग, ट्रंप के पसंदीदा लाल, सफेद, गहरे नीले और सुनहरे रंगों से रंगा गया है यह विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति के बेड़े में शामिल होने वाले इस विमान में राष्ट्रपति, उनके सहयोगी, सुरक्षा टीम और मीडिया के लोग करेंगे यात्रा। चीन के सिचुआन प्रांत में ड्रैगन बोट उत्सव के दौरान इंसानों के साथ ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने भी चलाई नाव, रोबोटों और इंसानों के बीच दिखा जबरदस्त तालमेल। रोबोटों को 2 हफ्तों से अधिक समय तक विशेष प्रशिक्षण दिया गया, इसके बाद वो मानव खिलाड़ियों के साथ मिलकर ड्रैगन बोट रेस में शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान इंसानी नाविकों ने चप्पू चलाना बंद कर दिया, तब रोबोटों ने अकेले ही नाव को धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ाया। रोबोट्स ने पारंपरिक चीनी चावल का केक और चीनी डिश जोंगजी बनाने का भी अभ्यास किया, इससे उनके संतुलन क्षमता और पानी में काम करने की तकनीक बेहतर हुई। साल 2026 वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 22 से 26 अगस्त तक बीजिंग में होंगे। इस प्रतियोगिता में 30 से ज्यादा खेलों के जरिए रोबोट तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। जर्मनी में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, डार्टमुंड चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खास इंतजाम किए गए। ओरांगुटान ठंडा पानी पीकर ले रहे हैं राहत, जबकि गेंडों के लिए कीचड़ भरे तालाब किए गए हैं तैयार। कुछ पक्षियों ने गर्मी का लिया आनंद, धूप में लेटकर की शरीर की सिकाई। म्यूनिक में लोग और बच्चे नदी में नहाकर गर्मी से पा रहे हैं राहत, कई लोग अपने पालतू डॉग्स को भी पानी में ठंडक दिलाने ले गए। जर्मनी में बढ़ती गर्मी के बीच आइसक्रीम की बिक्री बढ़ने की उम्मीद, दुकानदार ने वर्ल्ड कप स्पेगेटी आइसक्रीम की लॉन्च। पेरिस में भीषण गर्मी का असर, लोग गर्मी से बचने के लिए छांव और फवारों का ले रहे सहारा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार तक पेरिस का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पेरिस घूमने आए पर्यटक छतरियों और पानी की बोतलों के साथ नजर आए, कई लोग फवारों के पास ठंडक तलाशते हुए नजर आए। इस बार फ्रांस में दूसरी बार लू जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, पहली हीट वेव मई के अंत में सामान्य समय से पहले आई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण हीट वेव की घटनाएं बढ़ेंगी, आने वाले वर्षों में ये पहले और ज्यादा बार देखने को मिल सकती है। उत्तर मैसेडोनिया के कलाकार ने फेंकी हुई चीजों को नई कलाकृतियों में तब्दील किया, बेकार समझी जाने वाली वस्तुओं को नया और उपयोगी रूप दिया। उनकी नई कलाकृतियां स्कोपजे में प्रदर्शित की गई, पुराने ट्रक के तिरपाल को देखकर अचानक आया आइडिया। कलाकार ने फेंके जाने वाले ट्रक तिरपाल को दोबारा इस्तेमाल करने का फैसला किया, ऐसी चीजों को नया जीवन देकर कचरा कम किया जा सकता है। पीले रंग के पुराने तिरपालों को बादलों की पेंटिंग इससे बनाई गई, कुछ तिरपालों को बैग और अन्य फैशन एक्सेसरीज में भी तब्दील किया गया। अम्मार का अचार की कला का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है, लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास करना है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
5: महिलाओं की बीमारियों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, किस तरह की बीमारियां सामान्यतः महिलाओं को ज्यादा होती हैं, महिलाओं की बीमारियों के लिए क्या है ज्योतिष का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
6: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
3: Nobody does it better than Regent Seven Seas Cruises. Enjoy all-inclusive, unrivaled luxury with unlimited shore excursions, indulgent cuisine, personalized service, and more aboard spacious all-suite ships. Visit rssc.com to experience the unrivaled.
21: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
22: भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है,
23: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
23: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
23: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं,
2: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
24: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
25: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
18: आसमान में सेना की तीसरी आंख, आ गया बैलिस्टिक ब्रिगेड का नया कप्तान, संपूर्ण भारत की सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
20: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: आज देश को मिलेगी विकास की नई सौगात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे PM। किसानों के खातों में भेजी जाएगी किसान निधि की किस्त। जम्मू में माता खीर भवानी यात्रा के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी, आज नगरोटा से रवाना हो रहा है श्रद्धालुओं का जत्था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, श्रीनगर में युवाओं ने किया जल योग, कल PM मोदी कोलकाता में देंगे योग संदेश।

नवाज, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं रीनीट 2026 की। 21 जून को होने जा रही इस परीक्षा में देश भर की नजर है। परीक्षा में नकल या फिर किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रश्न पत्रों के ले जाने से लेकर सेंटर्स पर निगरानी करने तक सुरक्षा की अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। आज हम आपको इनके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे जरूरी ये जानना है कि दूसरी बार परीक्षा दे रहे छात्रों में कितना जोश है। पेपर लीक के बाद जब परीक्षा रद्द हुई तो स्वाभाविक है कि छात्र निराश हुए, पर अब उनकी तैयारी एक बार फिर से एग्जाम क्रैक करने की है। आज आपको कोटा से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाएंगे और छात्रों का माइंडसेट भी समझाएंगे। मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में स्कूलों में कैसी सुरक्षा है, इस पर भी आगे बात होगी। पेपर लीक के बाद जब नीट को रद्द किया गया तो कुछ दिनों के लिए लाखों छात्र मायूस हो गए, लेकिन घर वालों के साथ और टीचर्स या फिर कोचिंग के सहयोग से उनमें जल्दी ही तैयारी का जुनून लौट आया। रीनीट को लेकर छात्रों में कैसा जोश है, इसे समझने के लिए हमारी टीम पहुंची कोटा, जहां एक बार फिर से हजारों की तादाद में छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। देखिए कोटा से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।

मेहनत पर भरोसा है, तैयारी पर इत्मीनान है। क्या हुआ अगर 24 घंटे बाद ही कठिन इम्तिहान है? पहले भी दम दिखाया, इस बार भी जोर लगाएंगे और मुश्किल मुकाबले में अपनी जगह बनाएंगे। कोटा की सड़कों पर, गलियों में, हॉस्टल में, कोचिंग में नीट को लेकर एक बार फिर से वही जज्बा, वही जुनून नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत तनाव तो लाजमी है, पर घबराहट नहीं। कहीं किसी कमरे में गिटार के तार पर जीत का संगीत है और परीक्षा की इस घड़ी में अर्जुन की तरह उद्घोष, न दैन्य न पलायनम, यानी निराशा से निकलकर जूझेंगे और जीतेंगे।

0: कोटा देश का कोचिंग कैपिटल है। पिछले 4 दशकों में 50 लाख से ज्यादा छात्रों ने यहाँ के कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई की है। हर साल 1 लाख से ज्यादा छात्र यहाँ पे भर्ती लेते हैं और इम्तिहानों की तैयारी करते हैं। आशाएं, उम्मीदें, नाउम्मीदी और टूटे सपनों को एक साथ समाये हुआ है उच्च शिक्षा का ये नर्व सेंटर। लेकिन नीट की दोबारा परीक्षा से पहले यहाँ के छात्रों में क्या मूड, क्या माहौल है?
1: जागती आंखों ने जो सपना देखा है, ये घड़ी उसे साकार करने की है। साल, दो साल या उससे भी ज्यादा वक्त से जिसके लिए साधना की, अब उसे आजमाने का समय है। कोटा के कोचिंग सेंटर में और बंद कमरों में छात्र जी जान से जुटे हैं। इस दौरान भूख लगे तो पोहा है ना?
0: पोहा खा के उसके बाद लंबा टाइम होता है, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ाई करनी होती है, तो थोड़ी एनर्जी चाहिए। और यहीं पे हमें मिल गए 2 स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं नीट की तैयारी और नीट की परीक्षा सर पर है। तो पूछ ही लेते हैं आपसे कि कितना टेंशन है, तनाव है?
2: तनाव तो मैम कुछ नहीं है, 21 तरीके को एग्जाम है, मतलब पूरी तरीके से प्रिपेयर है और अच्छे से एग्जाम देना है।
3: कहाँ से आए हैं?
2: मैं एमपीसी ओपुर से आया हूँ, दो साल से ही कोटा में हम, यहाँ 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम गया था वैसे, लेकिन अब रीनीट होगा तो वापस देना पड़ेगा, 21 तारीख को पेपर देंगे वापस।
0: पिछला दिया था आपने?
2: मतलब 3 को दिया था ना, 3 मई को दिया था पेपर।
0: 3 मई के बाद कितना मुश्किल हुआ दोबारा समझाना खुद को कि पढ़ना है फिर से?
2: दोबारा तो मतलब थोड़ी दिक्कत आती है रिवीजन करना, मतलब रिवीजन किया ना तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है थोड़ा, तो भूल जाते हैं ना, रिदम टूट गया था। मतलब 8-10 दिन घर पे रहे उस टाइम, हाँ तो उस टाइम मतलब घर पे पढ़ा वड़ा नहीं, फिर यहाँ पे आए तो थोड़ा 2-4 दिन लगे रिदम बनाने में इसे।
0: चलिए, मेंटली टफ होना तो बहुत जरूरी है। आप कहाँ से आए हैं?
4: मैं 12 से हूँ, राजस्थान, यहाँ पास में ही पड़ता है मेरे तो।
0: और खा लीजिए, खाते रहिए।
4: खाते खाते
0: आपका ब्रेकफास्ट डिस्टर्ब कर दिया मैंने। हाँ बताइए, तो फिर आप भी घर चले गए थे?
4: मेरा तो पेपर हो गया था 3 मई को, मैं घूमने आया था पूरा महीना मई का, बट क्या हुआ फिर बाहर था कि न्यूज आई कि पेपर कैंसिल हो गया है, तो फिर ना एंजॉय कर पाए वाला तो वैसे सबका ना।
0: अच्छा अच्छा,
4: तो वही था बस कि कैंसिल वगैरह हो गया था, वरना मैं तो फन करने वगैरह थोड़ा घूमने वगैरह आया था, क्योंकि कोटा में मेरे सेकंड ड्रॉप है, 4 साल में तक घूम वगैरह नहीं पाया था क्योंकि पढ़ाई वगैरह में लगा हुआ था। तो मैं तो सोचा कि लास्ट ईयर है वैसे, लास्ट ड्रॉप है मेरा भी, तो मई में ना कि थोड़ा बहुत घूमेंगे, तो बट वो 12 तारीख को पेपर कैंसिल हो गया था। फिर
0: मूड सेट करना पड़ा कि पढ़ना है?
4: नहीं, मूड सेट तो क्या, पढ़ाई तो कभी भी कर लो, ऐसा है नहीं ना कि डिप्रेस वगैरह, ऐसा कुछ होते नहीं है, मेंटालिटी डिफरेंट रखनी चाहिए।
0: आप बड़ा मजबूत मैसेज बाकी अपने फेलो स्टूडेंट्स को देते हैं उससे।

0: कोटा, जिसकी पहचान इंजीनियर और डॉक्टर की फैक्ट्री के तौर पर है, वहाँ सिर्फ किताबों में डूबे चेहरे नहीं, घंटों की पढ़ाई के दरमियान थोड़ा बहुत वक्त शौक के लिए भी निकल आता है, और संगीत का शौक पढ़ाई और तैयारी के तनाव को कम कर देता है।
1: कोटा में यहाँ पे जगह जगह जा रहे हैं, तो आपको बताना चाहते हैं कि कोटा में एक पूरी छात्रों की दुनिया है, और उस दुनिया में एक छोटी सी दुनिया इन म्यूजिशियंस की है, इन संगीतकारों की है, जो कि अपना रॉक बैंड लॉस्ट कॉड्स, द लॉस्ट कॉड्स, इन्होंने अपना रॉक बैंड बनाया है। और एक तरफ जहां इतनी एग्जाम की टेंशन होती है, आई एम श्योर दिस इज अ बिग स्ट्रेस बस्टर फॉर ऑल ऑफ यू।

0: मतलब जैसे सीट्स वगैरह भी बहुत कम है कॉलेजेस में, और जैसे कि अगर कॉलेज करना चाहे तो, और जितने स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं एग्जाम्स के लिए, कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जैसे कि नीट जेईई कोई सा भी हो, तो फिर उसका मतलब एक बहुत कम सेलेक्टेड बच्चे जाते हैं, तो सीट्स बहुत कम है उस चीज के
1: लिए. आई एम श्योर आप लोग क्वालिफाई भी करेंगे, पास भी करेंगे विद फ्लाइंग कलर्स, और आपका रॉक बैंड भी बहुत हिट होगा.
2: 3 मई 2026 को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा को एनटीए ने पेपर लीक और धांधली के आरोपों के बाद रद्द कर दिया था. अकेले कोटा में ही 37,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी. मेहनत पर इस तरह पानी फिरने से निराशा तो हुई, पर टीचर्स और संस्थानों ने फिर से जोश भरा और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है.
3: उनको लग रहा था ऐसा कि अब यहाँ पर आने की इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, तो उन्होंने अपने सेंटर्स को चेंज कर दिया. लेकिन मैक्सिमम बच्चे, ऑलमोस्ट 80% बच्चे ऐसे थे जो डेडिकेटेड थे, जिन्होंने सोचा था कि हाँ हमको कुछ और बेहतर करना है, और उनके पास ये वाले जो एक महीने के आसपास का जो टाइम पीरियड मिल रहा था, तो उसको देखते हुए वो बच्चे सब वापस कोटा आए. और कोटा आए तो मैक्सिमम हॉस्टल्स वाले थे या बाकी लोग थे, कोचिंग्स की बात हम करें, सभी ने उनको हाथों हाथ लिया और सबके लिए बेस्ट पॉसिबल जो भी फैसिलिटीज मिल सकती हैं यहाँ पर वो सब प्रोवाइड की उनको. टेस्ट यहाँ पर लगातार हो रहे हैं, उसके लिए कोई एडिशनल किसी से पैसे नहीं लिए गए.
1: अच्छा.
3: ये सब चीजें हैं जो हम लोग बच्चों के बेहतरी के लिए किया.
2: कोटा एक बार फिर से अपने रिकॉर्ड्स को दोहराने के लिए तैयार है. 21 जून को नीट में शामिल हो रहे छात्रों के दिलो दिमाग में नेगेटिविटी नहीं, यहाँ तक कि कोचिंग और टीचर्स ने माता पिता और घर वालों को भी मानसिक तौर पर मजबूत बनाया है.
4: तो हाँ, काफी डिप्रेसिंग फेज था. वापस लाइक कैसे भी करके हिम्मत वापस करके आए हैं, और लाइक ठीक है, हाँ इस बार देंगे पूरी कोशिश करके.
5: नीट एग्जाम जब ये कैंसिल हो गया जो हमारा, तो एक होता है ना, मतलब एक करने के बाद फिर से रीस्टार्ट करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है. तो फिर उस दिन में तो बुरा बहुत ज्यादा लगा कि फिर से फिर वो रोए भी, मतलब एक हो गया था, मतलब क्या कहते हैं, तो बहुत ज्यादा बुरा लगा. तो फिर से स्टार्ट करने में थोड़ा मुसीबत हुई, लेकिन जो टीचर हमारे एलएन के हैं सब अच्छे हैं, तो सपोर्ट किए, तो जिसकी वजह से अभी हैं, अब एग्जाम देने के कगार पे हैं.
2: सिस्टम की नाकामी से दिल में मलाल है, पिछली बार ही पास हो जाते ये भी ख्याल है, पर उदासी को दरकिनार करके कोटा के छात्र हाथी जैसी दिखने वाली चुनौती से आंख मिलाकर भिड़ने को तैयार हैं. उनकी ही भाषा में कहें तो एक बार फिर से नीट फोड़ने को तैयार हैं. कोटा से मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे.

तो ही छात्रों की बात, जिनमें री एग्जाम के लिए जबरदस्त जोश है, लेकिन इसके साथ ही एनटीए ने परीक्षा के लिए भी जबरदस्त इंतजाम किए। चलिए आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं। दरअसल देश और विदेश के 5,500 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में 22.79 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए एनटीए ने 2 लाख से अधिक कर्मियों को तैनात किया है। इनमें 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 स्वतंत्र पर्यवेक्षक शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र अधीक्षक, निरीक्षक, जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस बल भी शामिल है। एजेंसी के मुताबिक परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी निगरानी के साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन वाले प्रश्न पत्र का भी इंतजाम है। परीक्षा सामग्री को जीपीएस वाले वाहनों के जरिए पुलिस सुरक्षा में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी, जिन्हें केंद्रीय नियंत्रण कक्षों से जोड़ा गया है। सेंटर पर छात्रों की जांच हाई सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर के जरिए होगी। गर्मी को देखते हुए सेंटर्स पर पानी, बिजली और मेडिकल सुविधा सुनिश्चित की गई है। एंट्री के लिए छात्रों को दोपहर 1:30 बजे तक सेंटर पर पहुंचना होगा, क्योंकि इसके बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे। एनटीए ने लोगों से अफवाह से बचने की अपील भी की है और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-4075-9000 और 011-6922-7700 जारी किए हैं। बनने का सपना देखने वाले लाखों छात्र नीट क्लियर करना चाहते हैं, यानी इस बार इस एक परीक्षा पर उनकी कड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए जरूरी है कि परीक्षा निष्पक्ष हो, और इसीलिए 21 जून की परीक्षा के लिए व्यापक और अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। यहां तक कि प्रश्न पत्रों को सुरक्षित सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। देखिए रिपोर्ट।

0: ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, पर ऐसा है तो अच्छा है, क्योंकि इससे पेपर लीक की गुंजाइश खत्म हो गई। रीनीट के प्रश्न पत्रों को लेकर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर उड़े, अलग अलग सेंटर पर पहुंचे। एयरफोर्स के 200 उड़ानों का नतीजा ये होगा कि रास्ते में पेपर लीक या छेड़छाड़ की संभावना नहीं रही। लेकिन पेपर लीक होने के बाद यही एक इंतजाम नहीं है, तमाम बदलाव किए गए हैं। सबसे ज्यादा फोकस परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा पर है। बाहर और भीतर सुरक्षा के कई लेयर बनाए गए हैं। केंद्रों के अंदर जिम्मेदारी सीधे CRPF को दी गई है। इसके अलावा रीनीट परीक्षा केंद्र हॉल में प्रवेश करने से पहले और बाद में ज्यादा सख्त जांच प्रक्रिया होगी। इसके लिए हर एक जरूरी जगह पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मेटल डिटेक्टर, घड़ियां, कैनोपी और दूसरी जरूरी चीजें सेंटर्स पर पहुंच चुकी हैं।
1: परीक्षा केंद्र में मौजूद है, यहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों पर हर एक कमरे में यहां पे 24 छात्रों को बैठाया जाएगा जो परीक्षा देंगे। छात्रों की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए यहां पे आपको दिखा दें CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं, और ये सभी CCTV कैमरे और इसके साथ तमाम जो उपकरण इस बार इस्तेमाल में होने हैं परीक्षा केंद्रों पर, जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे, वो अभूतपूर्व तैयारियां हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल के स्कूल में। और यहां पे अगर आप देखें तो बाकायदा जो सरकार की तरफ से NTA की तरफ से वो तमाम उपकरण आ चुके हैं। सामने भी अगर आप देखें तो परीक्षा केंद्रों में तैयारियां चल रही हैं। गर्मी का मौसम है और ऐसे में जो छात्र परीक्षा देने आएंगे तो उनको गर्मी ना लगे, तो उसके लिए यहां पे कूलर भी लगाए जा रहे हैं। यहां पे भी अगर आप देखें तो आपको CCTV कैमरा हम आपको दिखा देते हैं, यहां पे भी CCTV कैमरा लगा हुआ है। हर परीक्षा केंद्र के हर कमरे में इसी तरीके से CCTV कैमरे लगाए गए हैं, और ये जो छात्राएं आएंगी उनकी फ्रिस्किंग होगी पूरी तरीके से यहां पे, तो उसके लिए कैनोपीज आ चुकी हैं। इस कैनोपी को जो प्रवेश द्वार है वहां पे भी लगाया जाएगा और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी रखा जाएगा। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये मेटल डिटेक्टर्स हैं जो यहां पहुंच गए हैं भोपाल के इस परीक्षा के

0: पर चुनौतियां मौजूद हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश में पुलिस ने बाकायदा टीम को ऑपरेशन पर लगा दिया है, जो परीक्षा से पहले और बाद तक मुस्तैद रहेगी।
1: देश भर में 21 जून को रीनीट की परीक्षा होनी है, यानी वो परीक्षा जो इससे पहले पेपर लीक की वजह से रद्द कर दी गई थी, लेकिन 21 जून को अब जब दोबारा नीट की परीक्षा होगी तो उसके लिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में साइबर सेल ने अपनी कमर कस ली है, उसकी एक तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में करीब 44 साइबर कमांडोज तैयार किए गए हैं, जो कि इंटरनेट की दुनिया में या फिर डिजिटल दुनिया में किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधि जो होगी उस पर नजर रखेंगे और वहीं पे तुरंत उसे जो है फ्लैग किया जाएगा, उसे खत्म किया जाएगा, ताकि लीक जिसकी वजह से बदनामी हो रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की और इस पूरी परीक्षा को लेकर के, उसे देखते हुए इस बार ये खास इंतजाम किए गए हैं। यानी परीक्षा केंद्रों पर तो CRPF हो, लोकल पुलिस हो और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसकी तो नजर रहेगी, लेकिन डिजिटल दुनिया में जहां सबसे ज़्यादा खतरा पैदा होता है लीकेज का, पेपर लीक का, वहां पर समय रहते कार्रवाई हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस साइबर सेल जो है वो भी इस बार मैदान में है।
0: न सिर्फ MP बल्कि देश के सभी राज्यों में जहाँ जहाँ रीनीट के सेंटर हैं, सरकार और प्रशासन दोनों सतर्क और सावधान हैं। रीनीट में एक बड़ा बदलाव समय को लेकर है। इस बार छात्रों को परीक्षा पूरी करने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। रीनीट 2026 परीक्षा अब दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त समय उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र पूरा करने और OMR उत्तर पुस्तिका को आराम से भरने में मदद के लिए दिया गया है।
2: तैयारियों की समीक्षा की गई, सभी को पूरी मुस्तैदी से काम करने की हिदायत दी गई और 20 की गाइडलाइंस के संदर्भ में जो भी क्लैरिफिकेशन थे वो जारी किए गए और तदुपरांत सीकर जिले में लगभग 27,000 से अधिक बच्चों को एडमिट होना है और चूंकि ये बच्चे नियमित रूप से कोचिंग संस्थानों के संपर्क में रहते हैं तो जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ मिल करके सभी कोचिंग संस्थानों से वार्तालाप की गई ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना यदि बच्चों में होती है तो उस समय बद्ध रूप से हमारे तक, प्रशासन तक, पुलिस तक पहुंचे और उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
0: सेंटर पर छात्रों को अपना एडमिट कार्ड, एक फोटो ID प्रूफ और जरूरी दस्तावेज ले जाना होगा, जिसकी पहचान सत्यापित नहीं होगी उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। छात्र आसानी से सेंटर तक पहुंचे इसके लिए कई राज्य सरकारों ने छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा का ऐलान किया है।
1: इस बार की परीक्षा में होने वाले सभी उपकरणों को परीक्षा केंद्र पर भिजवाना शुरू कर दिया है और गोपनीयता इतनी कि खुद जो केंद्र के संचालक हैं उन तक को नहीं पता है कि जब उनके हाथों में यहाँ परीक्षा के दिन पेपर पहुंचेंगे तो वो भोपाल में आकर रखे कहां गए हैं। कुल 32 केंद्र है राजधानी भोपाल में, जिनमें 13,000 से ज्यादा छात्रों को परीक्षा देनी है। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में 230 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, जो रीनीट की एग्जाम होगी जहां पर 21 जून रविवार दोपहर 2 बजे से, और इस बार अतिरिक्त समय रहेगा यानी शाम 5:15 तक कड़े सुरक्षा घेरे और अभूतपूर्व इंतजामों के बीच इस बार नीट का एग्जाम होने वाला है। रवीश पाल सिंह, भोपाल।
3: और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: States, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
5: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
6: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ कुछ दिल को छू जाती है।

0: ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
7: आज देश को मिलेगी विकास की नई सौगात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम, किसानों के खातों में भेजी जाएगी किसान निधि की किस्त। जम्मू में माता खीर भवानी यात्रा के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी, आज नगरोटा से रवाना हो रहा है श्रद्धालुओं का जत्था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, श्रीनगर में युवाओं ने किया जल योग, कल पीएम मोदी कोलकाता में देंगे योग संदेश। भारतीय सेना ने मनाई कारगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग फतह करने की 27वीं वर्षगांठ, कारगिल वॉर मेमोरियल से तोलोलिंग चोटी तक विशेष अभियान, जवानों की जाबाजी को किया गया याद। नीट री एग्जाम से पहले आज देश भर में एनटीए की मॉक ड्रिल, 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों परखा, कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज चेन्नई में खेला जाएगा तीसरा एक दिवसीय मुकाबला, आज क्लीन स्वीप के लिए मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन फ्लीट में शामिल होने के लिए तैयार है नया बोइंग 747 विमान, कतर ने दिया था गिफ्ट, ओवरहॉलिंग, रंग रोगन और टेस्टिंग के बाद ट्रंप ने लिया जायजा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे महिलाओं की बीमारियों के बारे में। क्या महिलाओं की बीमारियां पुरुषों से अलग होती हैं? महिलाओं की बीमारियों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और बीमारियां हो जाने पर कौन से उपाय करने चाहिए? बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 जून 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 3:46 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र प्रातः 9:25 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9:10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 20 जून 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, शुक्र और बृहस्पति कर्क राशि में, चंद्रमा और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की बीमारियों के बारे में। महिलाओं की जो बीमारियां हैं उनकी खास बातें ज्योतिष में क्या हैं? देखिए, बीमारियों के मामले में महिलाएं पुरुषों से अलग हैं क्योंकि महिलाओं की शारीरिक संरचना अलग है। महिलाओं के स्वास्थ्य का मामला चंद्रमा और मंगल पर मुख्य रूप से निर्भर करता है और जो बाकी ग्रहों का असर पड़ता है वो भी इन्हीं के माध्यम से पड़ता है। महिलाओं के साथ चूंकि चंद्रमा जुड़ा हुआ होता है इसीलिए महिलाओं की बीमारियां बहुत ज्यादा भावनाओं पर भी निर्भर करती हैं। इसीलिए महिलाओं की बीमारी को जब देखिए और समझिए तो इसके साथ हमेशा उनकी मन स्थिति को भी देखिए, उनकी मानसिक स्थिति को भी देखना पड़ेगा। यानी महिलाओं की बीमारियां चंद्रमा और मंगल पर निर्भर करती हैं और महिलाओं की बीमारियों में उनके मेंटल स्टेटस का, उनकी मानसिक स्थिति का बड़ा योगदान होता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें
कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, रिश्तों में समस्या हो सकती है, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, नए अवसर मिलेंगे, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को होती है वो गायनिक प्रॉब्लम है या गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो पीरियड्स से, यूट्रस आदि से जुड़ी होती है। अगर किसी महिला को गायनिक प्रॉब्लम बार बार होती है तो कारण क्या है और उपाय क्या है? किसी भी महिला को गायनिक प्रॉब्लम होती है, चंद्रमा की गति के आधार पर और मंगल की स्थिति के आधार पर इस समस्या के होने पर महिला को ठंडी चीजों को खाने से बचना चाहिए। महीने में दो एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का लिक्विड लेकर के व्रत रखना चाहिए। तांबे के गिलास से या तांबे के पात्र से जल पीने का प्रयास करना चाहिए। और अगर गायनिक प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हो रही है तो सलाह लेकर के एक मूंगा अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में आगे महिलाओं की बीमारियों पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के मामलों में सावधानी रखें,
काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, आर्थिक रूप से लाभ होगा, कोई छोटी यात्रा हो सकती है, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अक्सर महिलाओं को हड्डियों की समस्या होती है और खास तौर से प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को हड्डियों की समस्या ज्यादा होती है। तो अगर महिलाओं को हड्डियों की समस्या है तो कारण क्या, उपाय क्या? महिलाओं को हड्डियों की समस्या होती है चंद्रमा और सूर्य की वजह से, मुख्यतः सूर्य की भूमिका होती है। तो क्या करेंगी? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, दूध वाली चीजें जैसे दूध है, दही है, क्रीम है, इनका प्रयोग ज्यादा करिए, और हड्डियों की समस्या होने पर सलाह लेकर एक मोती या एक माणिक्य धारण करिए। और अगर हड्डियों की समस्या है आपको तो गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा करिएगा। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है उनकी मानसिक या भावनात्मक समस्या। तो अगर महिलाओं को कोई मानसिक या भावनात्मक समस्या है तो क्या करेंगे? महीने में एक पूर्णिमा आती है, महीने की पूर्णिमा को उपवास रखिएगा। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग बढ़ा दीजिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगी और घर के उसी कमरे में सोइए या उसी कमरे में रहिए जहां थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सूर्य का प्रकाश आता हो। और अगर भावनात्मक समस्या ज्यादा है, इमोशनली आप हर समय परेशान रहते हैं या रहती हैं, तो मोती या ओपल बहुत सोच समझकर पहनिएगा, वही बेहतर होगा। ऐसी स्थिति में सलाह लेकर एक देसी मूंगा अगर आप धारण करें तो मन को मजबूत करना थोड़ा आसान होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, परिवार में विवादों से बचाव करें। अगर फल का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता के योग हैं, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा, अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अगर आप महिला हैं और स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रही हैं तो आपको चंद्रमा और मंगल वाले हिस्से पर काम करना होगा। सलाह लेकर के एक मूंगा पहनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्यास्त के बाद जब चंद्रोदय हो जाए, जब चंद्रमा निकल जाए, उसके बाद चंद्रमा के मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा। और महिलाओं को किसी न किसी रूप में चांदी जरूर पहननी चाहिए। चांदी का छल्ला, चांदी की चेन, चांदी का कड़ा, चांदी की पायल, अपने शरीर में अगर आप चांदी धारण करें तो चंद्रमा रेगुलेटेड रहेगा, चंद्रमा कंट्रोल में बना रहेगा और आपकी ज्यादातर स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आज हमने बात की महिलाओं की बीमारियों के बारे में, अब जान लेते हैं आपके लिए लकी टिप। अपने धन के स्थान पर हमेशा एक पीले वस्त्र में लपेटकर हल्दी की कम से कम दो गांठ रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से धन की बचत करना आसान होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 20 जून दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Hey guys, Lady Luck here. Are you going on any road trips this summer? I know I'm going to be going on a bunch of road trips. And being that I'm going to be passenger princess, I love playing on SpinQuest.com. SpinQuest has all of my favorite slot games, live blackjack, live craps. Head on over to SpinQuest right now and get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
3: La Que Buena.
2: ESPN Radio.
4: We know LeBron has to be the best player on the planet to get
2: The Daily.
5: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
2: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
6: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

आज का सूत्र सुनो, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा देखोगे वैसा ही दिखाई देगा। ये आज की कथा का सूत्र है, जैसी दृष्टि वैसी। सुनो, एक मंदिर बन रहा था, तीन मजदूर थे। पहले वाले से पूछा, क्या कर रहे हो? बोले, कुछ नहीं कर रहे, माथा पच्ची कर रहे, पत्थर फोड़ रहे। दूसरे से पूछा, क्या कर रहे हो? अरे बोले, कुछ नहीं कर रहे, रोजी रोटी के लिए मजदूरी कर रहे। तीसरे से पूछा, क्या कर रहे हो? एक ही जगह हैं तीनों, भगवान का घर बना रहे हैं। बात समझ आई? मंदिर एक ही है, एक ही जगह है, पर दृष्टि तीन है। एक कह रहा समय काट रहे, एक कह रहे मजदूरी कर रहे, पर तीसरा कह रहा भगवान का क्या बना रहे हैं, घर बना रहे। मेरे पागलो, एक बात तुम जीवन में याद रखना, जिंदगी भी ऐसी है, चाहे रोके काटो चाहे हंस के काटो, जिंदगी को गुजारना पड़ेगा। पर दृष्टि यदि अच्छी वाली रखोगे तो संसार अच्छा ही अच्छा दिखाई पड़ेगा। हम सही नजर रखेंगे तो सब लोग सही दिखाई, और गलत नजर रखेंगे तो सब लोग, चोर को सब चोर ही लगते हैं, जिनका पेट खराब हो उन्हें सबके पेट खराब नजर आते। अपनी जैसी दृष्टि होगी संसार की सृष्टि भी वैसी ही होगी। दूसरा उदाहरण सुनो, बहुत अच्छा उदाहरण है। एक आधा गिलास पानी का भरा हो तो दो दृष्टि हैं देखने की, दो तरीके हैं। कितने? पहला तरीका है, गिलास आधा भरा हो और उसको कोई देखे तो जो नकारात्मक सोच वाला होगा वो क्या कहेगा, आधा खाली है। लेकिन जो अच्छी सोच वाला होगा वो क्या कहेगा, आधा भरा है। अब तुम विचार करो, तुम कौन सी सोच के? और सोच बदलोगे जीवन बदल जाएगा। आप आधा गिलास खाली है ये देखना बंद करो, आधा भरा है ये देखना प्रारंभ करो, जीवन में खुशियां आने लगेगी। यथा दृष्टि तथा, तीसरा उदाहरण सुनो। एक गांव में आग लग गई, आग लगी तो गांव के लोग भागने लगे, होगा नागपुर की घटना। गांव के लोग भागने लगे तो सब लोग जाने लगे। इतने में एक चिड़िया, हमारे मध्य प्रदेश की चिड़िया, चोंच में पानी भर के लाए, जलती हुई आग में डाले, फिर उड़कर जाए नदी से पानी भर के लाए, फिर डाले, फिर उड़कर जाए, फिर बूंद भर पानी लाए और डाले। तो गांव का एक व्यक्ति बोला, अरे चिड़िया पागल है क्या, बाबरी है, तेरा दिमाग खराब है, आग इतनी बड़ी है हम लोग बुझा नहीं पाए, तू चोंच भर एक बूंद पानी में क्या खाक आग बुझा पाएगी, चल भाग, यहाँ पानी बुझाने में समय बर्बाद ना कर। पता है चिड़िया ने क्या जवाब दिया? भैया तुम चले जाओ, मुझे अपना काम करने दो। बोले क्यों? चिड़िया बोली, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मुझे पता है आग बुझनी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोशिश ना करूं। हम भगवान को पाने की कोशिश करें, मिले ना मिले वो भगवान का काम है, ना मिले वो अलग बात, कल दरबार लगना है, अमर्जी लगाने के लिए बैठेंगे हम, ना लगे तो ये भगवान की कृपा है, हम क्या करें। पर हम तो अपनी कोशिश पूरी करेंगे जी, बोलो हाँ या ना। तो यथा दृष्टि, इतने में कोई और मिल जाता जो कमजोर माइंड का होता या कमजोर सोच का होता, छोटी सोच का, वो क्या कहता, कहां पड़े हो, चलो घर, बेफिजूली में समय बर्बाद कर रहे,
और तुम भी बातों में पड़ गए। हाँ हाँ सही कह रहे, चलो चलो चलो। पर धन्य है चिड़िया ने, कितना अच्छा संकेत दिया, संदेश दिया, मेरे पागलो देखने का तरीका बदलो। तुम संसार को देखने का तरीका बदलोगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमेशा अच्छा सोचो। क्या सोचो? बोलो बोलो बोलो। एक उदाहरण और सुनो। हम जब नए नए बाबा बने, नए नए, अभी भी नए ही है, पुराने नहीं है, अभी तो पराए घर भी नहीं गए। तो नए नए बाबा बने, हमारे पास एक गाड़ी थी 800। एक चेला ने हमको गाड़ी दी बड़ी, उस गाड़ी का नाम था मांझा, मांझा कार, थोड़ा बड़ी थी, पुरानी थी, सेकंड हैंड, पर अभी भी है। जिस दिन उसने दान में दी, हमें बहुत खुशी हुई, खुजली चढ़ी कि हम चलाएं। अब होती है खुजली, नई नई गाड़ी मिले तो खुजली होती है। हमने सोचा हम चलाएं, अब जजमान जाए तो हम चलाएं। जिसने दान में दी वो बैठा है, अब वो कह रहा गुरु जी बताओ गाड़ी कैसी है। हमें मन में लगे कि तुम कब जाओ। चला गया। अब हमें खुजली चढ़ी, हमने गाड़ी में बढ़िया चाबी लगाई, पांव परे, जय बजरंगबली।

0: can never have too many tools. Shop DeWalt Deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: You hear it once and remember everything.
2: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
1: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, rule the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
3: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
4: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje Good News Today par.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
10: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
11: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
9: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
12: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
10: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
13: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
14: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
10: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
15: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
10: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
16: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
10: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
17: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
18: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
17: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
15: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
10: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
13: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
10: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
19: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
13: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
20: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
21: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम।

0: आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द जैसे घुटने का दर्द कमर का दर्द कंधे का दर्द पूरी तरह ठीक हो रहा है।
1: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
2: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
3: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
4: मैं तो 12 महीने केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
6: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
7: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
8: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को

0: पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
5: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
6: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
7: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
8: Jack, you're killing me.
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free today.
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है
13: कि संभव मुझ में ही है।
14: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
12: अविश्वास में विश्वास बसता है।
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है।
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
15: आज देश को मिलेगी विकास की नई सौगात। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। किसानों के खातों में भेजी जाएगी किसान निधि की किस्त। जम्मू में माता खीर भवानी यात्रा के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी। आज नगरोटा से रवाना हो रहा है श्रद्धालुओं का जत्था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज। श्रीनगर में युवाओं ने किया जल योग, कल पीएम मोदी कोलकाता में देंगे योग संदेश। भारतीय सेना ने मनाई कारगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग फतह करने की 27वीं वर्षगांठ। कारगिल वार मेमोरियल से तोलोलिंग चोटी तक विशेष अभियान, जवानों की जबाजी को किया गया याद।

परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों को परखा, कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज चेन्नई में खेला जाएगा तीसरा एक दिवसीय मुकाबला। आज क्लीन स्वीप के लिए मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन फ्लीट में शामिल होने के लिए तैयार है नया बोइंग 747 विमान। कतर ने दिया था गिफ्ट। ओवरहॉलिंग, रंग रोगन और टेस्टिंग के बाद ट्रंप ने लिया जायजा।

0: संपूर्ण शुभ योग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा और बात 21 जून यानी कि इंटरनेशनल योगा डे की हो रही। वो दिन जब भारत ने दुनिया को सेहत का मंत्र दिया, तो कैसे हमारी संस्कृति में सेहत का खजाना छिपा और कैसे हम योग और श्वास क्रिया से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। योगा डे का मकसद बिल्कुल यही है। तो योग में समाया है सेहत का खजाना। कपालभाति से कैसे चेहरे पर लाए नूर ग्लो, प्राणायाम से कैसे बीमारियां रहेंगी दूर, इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ देश के बड़े योगा एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। तो आज की भागती दौड़ती जिंदगी में समय किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी वक्त निकालकर हम योग को दे दें तो यकीन मानिए कि हमारी जिंदगी बदल सकती है और इसकी पहचान दुनिया में हो भी रही है। भारत के योग का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं योगा के, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि देश भर में योग दिवस की तैयारी हो चुकी है। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसी को लेकर देश में 100 से ज्यादा जगहों पर सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से कार्यक्रम होने वाले हैं। कोलकाता के रेड रोड पर मुख्य कार्यक्रम होगा, जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। इस बार का जो थीम रखा गया है वो है स्वस्थ आयु के लिए योग। लिहाजा दुनिया भर में 2500 जगहों पर योग कार्यक्रम होने वाले हैं। भारतीय दूतावास पर भी कार्यक्रम होगा। इस दौरान भारत समेत दुनिया भर में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी हो रही है और भारत ने योग से दुनिया को जोड़ा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हुगली नदी में 500 से ज्यादा नावों पर योग रिकॉर्ड बनने वाला है और साथ ही साथ योग के कई लाभ भी वहां से बताए जाएंगे। इससे मन में शांति मिलती है, यानी कि केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि हमारे मन के लिए भी बहुत जरूरी है, यानी कि मेंटल हेल्थ के लिए योग बहुत इंपॉर्टेंट है। मांसपेशियां इससे मजबूत होती हैं, बेहतर फिटनेस के लिए भी आप कह सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इस तरह से योग हमारी जिंदगी को बदल सकता है और कहा जाता है कि खाली पेट योग करना बेहतर होता है। अगर आप योग करें तो धीरे धीरे इसकी शुरुआत करें, आसनों को धीरे धीरे बढ़ाएं, उनकी रेपिटेशन को धीरे धीरे बढ़ाएं, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। भारत हासिल हो जाएगी आपको योग में और ये योग आपके लिए जिंदगी में बहुत सारे नए रास्ते, नई सोच लाने में भी मददगार साबित होगा। तो देश भर में योग उत्सव को लेकर किस तरह का उत्साह है आप इन तस्वीरों में देखिए। देश के अलग अलग हिस्सों से इंटरनेशनल योगा डे की तैयारियों की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, चाहे वो श्रीनगर की पोखरीवल झील में वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े खिलाड़ियों ने अपनी तरह का पहला फ्लोटिंग योगा का प्रदर्शन किया है। योगा के इस नए अवतार में वाटर स्पोर्ट्स का जज्बा भी देखने को मिल रहा है। इस इवेंट में हिस्सा लेने वालों ने पानी के खूबसूरत नजारों के बीच तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर कई तरह के योगासन किए और इसमें फिजिकल हेल्थ और एडवेंचर स्पोर्ट्स का गजब का मेल दिख रहा है और संतुलन भी देखने को मिल रहा है। वेस्ट बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह से पहले जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में रन फॉर योग इवेंट का आयोजन किया गया है और इसमें अधिकारियों, छात्रों और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। जाहिर सी बात है कि शहर हो, कोई भी शहर हो, कार्यक्रम का मकसद सीधे तौर पर यह है कि लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और साथ ही साथ गुड हेल्थ फिटनेस का संदेश देना। पश्चिम बंगाल के ही आसनसोल में मैथन डैम पर योग अभ्यास किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। गुजरात के जामनगर की तस्वीरें देखिए, जहां अभी से ही योग दिवस को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। यहां भी 12 जिलों में योगाभ्यास किया गया। राजस्थान के धौलपुर में लोगों को योग के प्रति प्रेरित करने के लिए योग उत्सव मनाया जा रहा है। इधर मुंबई में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया और फिटनेस के महत्व का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड और खेल जगत की जानी मानी हस्तियों ने भी शिरकत की और इस बार योग उत्सव की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि स्वस्थ आयु के लिए योगा। भारत में इस थीम के खास मायने भी है।
1: योगा फॉर हेल्दी एजिंग, क्योंकि हमारी एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब बढ़ गई है। जैसे ही बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर है, इन्फेक्शियस डिजीजेस कम हो गई, इन पे रोकथाम है, तो इसलिए एजिंग पॉपुलेशन बढ़ गई है। परंतु प्रॉब्लम जब आती है, जब जो एजिंग लाइफ स्पैन तो बढ़ गई है पर हेल्थ स्पैन नहीं बढ़ा। सो जो लास्ट डेकेड्स ऑफ लाइफ होते हैं, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, कभी कोई ऑटो इम्यून इशू हो गया, डिप्रेशन हो गया, और फिर जैसे डिमेंशिया, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज बहुत बढ़ गया है. एंड इस कारणवश ये जो गवर्नमेंट ने जो ये थीम डिसाइड किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ स्पैन के साथ हेल्थ स्पैन भी बढ़े. तो हमने स्टडीज करी है एजेड इंडिविजुअल्स पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट योग की फाइंडिंग्स ये हैं कि योग हर उम्र का इंसान कर सकता है. तो जैसे कि कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, कि ये जरूरी नहीं है कि तुम फ्लोर पे बैठ के योग करो, अगर चेयर पे बैठ के जितना आप कर सकते हो धीरे धीरे वो करो. परंतु योग का मतलब केवल कोई कठिन आसन नहीं होते, आसान आसन करो, उसके साथ प्राणायाम और ध्यान करना है. तो जब हम प्राणायाम और ध्यान करते हैं, उससे बहुत मानसिक तनाव कम होता है और ओवरऑल मेंटल वेलबींग बढ़ती है. सो हमने देखा है कि हमारी स्टडीज ने दिखाया है कि योग से बोथ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग इम्प्रूव होती है. इन एडिशन टू दैट, आर स्टडीज, दिस एविडेंस बेस्ड रिसर्च हैज क्लियरली शोन दैट यू कैन रिड्यूस द रेट ऑफ एजिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र 75 एज है और आप पहले से ही योग कर रहे हैं, तो आपकी एक्चुअल बायोलॉजिकल एज होगी अराउंड 50.
0: तो चलिए, गुड हेल्थ के लिए योगा, और आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे. मीनल पाठक, योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है. बहुत स्वागत है आपका मीनल. हमारे साथ डॉक्टर अक्षय आनंद हैं, प्रोफेसर इंचार्ज हैं CCRYN योगा सेंटर से, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. बहुत स्वागत है सर आपका. डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर फिजिशियन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं. डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, और डॉक्टर साहब हमेशा हमें योगा के जरिए फिट रहने का संदेश भी देते हैं. अब क्योंकि योगा का सीधा कंसर्न मेंटल हेल्थ से है, तो इसी को समझाने के लिए डॉक्टर निशा खन्ना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आज के इस विषय पर जब हम चर्चा करेंगे, तो योगा केवल हमारे शरीर के लिए नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. डाइट उसमें कितना रोल प्ले करती है, और साथ ही साथ कैसे योगा हमें फिट रखता है फिजिकली भी. अब क्योंकि इस बार का थीम भी एजिंग को लेकर है, तो शुरुआत आप ही से करूंगी मीनल. सबसे पहला, क्योंकि आपने अभी सुना, हमारे एक्सपर्ट भी इसको लेकर बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले क्यों जरूरी है, और क्या ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए योगा इंपॉर्टेंट है, या फिर हमारी मेंटल हेल्थ को भी इक्वली बैलेंस करता है? आज की डेट में मेंटल हेल्थ इशू बहुत ज्यादा याद रखिए.
2: मुझे ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया को ये गिफ्ट है इंडिया की तरफ से, इंडिया के कल्चरल हेरिटेज की तरफ से, कि आज स्ट्रेस का कोई भी एक मेडिसिन नहीं है. मतलब आप कोई भी स्ट्रेस के लिए एक मेडिसिन नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, आप स्ट्रेसफुल कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए योग प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं. आप नींद आने के लिए दवाइयां खा सकते हैं, लेकिन नींद आपको अच्छी ऐसी नींद आए जो रेस्टोरेटिव हो. हमारे इतने सारे रेस्टोरेटिव योगा पोजेज हैं जो आप सोने से पहले कर सकते हैं. यू कैन इंश्योर कि यू हैव अ डीप नाइस स्लीप. ये सारे जो आसन हैं बहुत सिंपल टू डू हैं, जैसे विपरीत करनी या आप बाल आसन, चाइल्ड पोज, ये आपको मेंटली रिलैक्स रखते हैं. आपके पूरा जो स्कल का एरिया है उसमें आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, और जो आपका पूरा दिन फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन रहता है ना, कॉर्टिसोल, उसको रिलैक्स करते हैं. तो इमेजिन करिए, बिना किसी मेडिसिन के आप सिर्फ कुछ आसन, ब्रीदिंग मूवमेंट और मोबिलिटी के थ्रू अपने पूरे सिस्टम को रेस्ट एंड रिलैक्सेशन में ला सकते हैं. और सिंपल है,
0: नहीं मतलब ये आसन सुबह करने या सोने से पहले करने, ये भी बताना पड़ेगा आपको.
2: आप कभी भी कर सकते हैं. आइडियली जो ब्रीदिंग है ना, वो तो मुझे लगता है कि वो सारे प्रोफेशनल्स जो पूरा दिन जॉब पे रहते हैं, उनको तो हर 1 or 2 hours के बाद बॉक्स ब्रीदिंग या ऐसा कोई ब्रीदिंग मैकेनिज्म करना चाहिए, सो दैट उनका जो एक पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, वो भी एक्टिवेट हो. नहीं तो पूरा टाइम कॉर्टिसोल एक्टिवेटेड रहता है, एंड दे ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम कि बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, स्ट्रेस्ड है. तो दैट इज योर एनवायरमेंट. लेकिन योग की देन ये है कि आप आराम से कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं अपनी चेयर पे, कहीं पर भी. वो आपको वो ब्रेक्स देगा, आपके नर्वस सिस्टम को ब्रेक्स देगा, जिसमें योर बॉडी विल फील कि सब सही चल रहा है.
0: चलिए एक आसन बताते चलिए साथ ही साथ हमारे.
2: तो हम ब्रीदिंग करते हैं, आई थिंक वो सबसे इजी है. आप सिंपल यू नो नॉर्मल जिस तरह से बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाइए. अपने दोनों थम्स को इस तरह से जोड़ लीजिए और अपने चेस्ट पे ये हाथ रख लीजिए, और धीरे से आंखों को बंद करिए. दिस इज वेरी यू नो अमेजिंग, बिकॉज यू कैन कनेक्ट विद योर हार्ट बीट हियर, अदरवाइज नहीं हो पाता है. इनहेल करेंगे फॉर द 4 counts. अब इसको होल्ड करेंगे फॉर 4 counts, और अब एक्सहेल स्टार्ट करेंगे. हियर द मैजिक हैपेंस. एक्सहेल करेंगे फॉर 8 counts. फिर से रिपीट करेंगे, इनहेल फोर, होल्ड फोर, और आप धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। सो ये जो लॉन्गर एक्सहेल है ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम को ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देता है। आप जितना भी स्ट्रेस में हो, जितना भी आप डेडलॉक पोजीशन में हो, आपका ब्रेन ही शिफ्ट हो जाएगा। इमेजिन आपका ब्रेन ऐसे पैराशूट की तरह खुल जाएगा।
3: चलिए डॉक्टर अक्षय, मैं आपको इंक्लूड करूंगी। नींद को लेकर बहुत सारी समस्याएं जिसका जवाब डॉक्टर वली और डॉक्टर निशा से लेंगे, लेकिन एक बार डॉक्टर अक्षय आपको मैं इंक्लूड करना चाहूंगी। आज की तारीख में योगा कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, ऐसे में जब भागती दौड़ती जिंदगी है, चाहे वो इनफैक्ट मैं दूर नहीं हम जाएंगे, आप आजकल देखिए बच्चों पर ही कितना स्ट्रेस है। बच्चों के लिए भी मैं स्पेसिफिकली अगर बोलूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्ट्रेस है, पेरेंट्स का एक तरीके से प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, उनके लिए भी लाइफ बहुत टफ हो गई, मेंटल प्रेशर उन पर भी है, तो कितना जरूरी है योगा ऐसे में?
4: इतना ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों ने पीजीआई चंडीगढ़ में वर्क प्लेस योगा शुरू किया है। उसको हम वाई ब्रेक कहते हैं और वो 5 मिनट का योगा है, और जैसा भी रीमा दादा कह रही थी कि हम बैठ के चेयर में भी कर सकते हैं, तो जैसे मैं चेयर में बैठा हूँ और ऐसे मेरे काफी साथी प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ है, वो लोग अपने अपने ओपीडी या ऑपरेशन थिएटर के बाहर या कुछ इन पेशेंट वेटिंग एरियाज हैं, जो मैं पीजीआई मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो वहीं पे हम लोग उन लोगों को योगा 5 मिनट का कराते हैं, और वो इतना स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं कि इवन हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि जो दरवाजे पे खड़े आके अपनी लाइन का इंतजार कर रहे होते थे, बुलाकर चल रहा था, वो भी शांत हो जाते हैं। तो आप देखिए कि जो लोग इन पेशेंट्स वेटिंग इन एरिया में जो वेट कर रहे हैं, जो पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट, वो भी एकदम शांत हो जाते हैं। तो ये शांति वर्क प्लेस योगा पे जो काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है, स्ट्रेस भी कम करती है, टीम वर्क भी बढ़ाती है, और एज ए नेशन अगर आप सारे मेडिकल संस्थानों को जोड़ लें तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो पेशेंट केयर भी बढ़ेगा, और अगर हर वर्क प्लेस योगा अडॉप्ट करे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कॉरपोरेट सेक्टर, तो पूरे भारतवर्ष की ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना। बीमारी तो चलो बढ़ेगी, नींद अच्छी आएगी, और जो बीमारी आनी है, मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन कंट्रोल और जो अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उनका रोकथाम और हेल्थ केयर बजट तो बढ़े कम होगा ही होगा, पर जो स्फूर्ति आएगी और जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नेशन की, आई थिंक वो सबसे जरूरी है।
3: बिल्कुल, इसीलिए बहुत जरूरी है। अब वापस मीनल की बात को आगे बढ़ाती हूँ, डॉक्टर वली आपके पास आऊंगी, आपका तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आप खुद योगा प्रैक्टिस करते हैं हमेशा और लोगों को कहते हैं कि योगा कीजिए। अच्छी नींद का हमारी गट हेल्थ से भी सीधे तौर पर ताल्लुक है, नींद अच्छी नहीं होती हमारी गट हेल्थ उतनी खराब होती है, और जो रिफ्लेक्ट करती है हमारे बिहेवियर में, चाहे वो एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, वो उसको उतना ही बढ़ाती है, यानी ये पूरा साइकिल है, और इस पूरे साइकिल को अगर आपको ठीक करना है तो कहीं ना कहीं आपको योग की मदद लेनी पड़ेगी।
5: जी बिल्कुल, अब तो सबसे पहला तो आपने प्रेरित कर दिया लोगों को, आप खुद योग मुद्रा में बैठ गई, तो ये योग जो है इट्स ए नॉट ए थिंग, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। योगा जो है ना, इसको हमको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे सोना रूटीन है, तो उसमें अगर कोई डिफेक्ट आएगा तो रूटीन ही की चीज से वो ठीक होगा, डॉक्टर की गोली से नहीं होगा। मैंने बहुत लोगों को गोलियां बंद करी हैं और वो बहुत खुश हैं। मैं रोज एक दो लोगों की नुस्खे में से नींद की गोलियां काटता हूं, और मुझे बड़ी दुख होता है कि 6-6, 7-7 एक बहुत बड़े टीवी के जर्नलिस्ट परसों मेरे पास आए थे, बहुत मशहूर, आपसे दूसरे चैनल में थे वो, उनको 9 दवाएं चल रही थी, 8 नींद की थी, तो अब क्या करूं, सर फोड़ने के अलावा तो कोई काम नहीं था मुझे। तो मैंने उनको कहा आप 1 दवा अभी रखिए और 8 दवा बंद करी, और वो बहुत खुश गए मेरे पास। तो हम दवा का जो सहारा ले रहे हैं, आपने जो मूल बात आज इस प्रोग्राम के जरिए से प्रोपेगेट करनी है कि वो ये है कि शरीर को भगवान ने, खुदा ने, ईश्वर ने मोबाइल रहने के लिए बनाया है। हमने कुर्सी आसन और सोफासन से इसको स्टैटिक कर दिया है। जो रही सही कमी है वो हमारे मोबाइल बाबा ने कर दी है, रात को नीली लाइट देख देख के नींद गायब कर देते हैं। एंग्जाइटी, फिकर, रोजमर्रा की कमाई से जुड़े कारण, बच्चों के रिलेशनशिप से जुड़े कारण, हजारों ऐसी चीजें हैं जो हमारी नींद को अफेक्ट करती हैं। तो ऐसे में व्यायाम के अलावा जो सबसे अच्छा मित्र है और जिसको हम केमिस्ट की दुकान से पैसे लेके भी नहीं खरीदना पड़ेगा, वो हमारा योग है, योगासन है, योग के 8 चीजें, 8 स्तंभ जो आप अभी प्रोग्राम के शुरू में दिखा रहे थे वो हैं, और हमारी डेली रूटीन में योग शामिल होना चाहिए। इसमें ये भी नहीं है 5 days a week जो हम एक्सरसाइज का बताते हैं। योग इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि योग एक पद्धति है जो किसी से जुड़ी है, नहीं, इट्स लाइफ से जुड़ी है।
3: इट इज अ लाइफस्टाइल, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी लाइफस्टाइल से सीधे तौर पर, बिल्कुल।
5: तो इसको हमें अपने लाइफ का ही हिस्सा बनाना पड़ेगा,
3: बिल्कुल।
5: और मैं देख रहा हूँ कि जो लोग इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मीनल की तो रोज में एक नई रील देखता हूँ, उससे इंस्पायर होता हूँ। तो उसको ये देखिए, अब जो दो लेडीज आ रही हैं, ये लोग आ रहे हैं, सब हेल्दी रहना चाहते हैं। आप जो बैकड्रॉप में पतली कमर की लड़कियां दिखा रही हैं, कोई औरत नहीं होगी जो कहेगी मेरी कमर ऐसी हो
3: जाए। डॉक्टर वली, डॉक्टर वली को बुलाने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम एक आसन कर लेते हैं, हम खूब खुश हो लेते हैं, हम हंस लेते हैं।
5: दिखाइए करके प्रैक्टिकल। और एक कपिल योगा की भी मैं बात करूंगा, जो हस्बैंड वाइफ सेम एज के हैं, वो घर में एक साथ योग कर सकते हैं और कुछ आसन दोनों साथ करके।
3: चलिए उस पर मैं आऊंगी डॉक्टर साहब। देखिए आपने ऐसी बात कर दी कि पूरे स्टूडियो में एक तरीके से एक आसन तो कम से कम हम मुस्कुरा लिए, हंस लिए ना। और वो देखिए डॉक्टर निशा भी विंडो में मुझे नजर आ रही है, बहुत खुश है। डॉक्टर अक्षय भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं वहां पर। सवाल डॉक्टर निशा अब आपसे, जब हम योग की बात करते हैं, केवल फिजिकल हेल्थ नहीं, हम ठीक है उसको एक, एक अभी डॉक्टर साहब ने यहां पर कहा कि उसको एक स्पेसिफिक धार्मिक एंगल नहीं दीजिए, क्योंकि ठीक है हमारी संस्कृति, हमारी पद्धति है ये, लेकिन आज की तारीख में, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आज की तारीख में मेंटल हेल्थ के लिए योगा कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है?
6: मैम आई वुड से मेरे हर प्रिस्क्रिप्शन में, और अगर हम स्पिरिचुअलिटी की भी बात करते हैं और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मैं खुद भी योगा करती हूँ हर रोज मॉर्निंग में, मेरे ट्यूटर आते हैं मुझे करवाने के लिए। तो आई वुड से दैट योगा कहीं ना कहीं जितने भी आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है। हमारे सब एक्सपर्ट्स ने कहा है नींद आने में उसका हेल्प है, डिप्रेशन एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, स्ट्रेस को मैनेज करने में उसका हेल्प है। हमारे फिजिकल बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जो योगा से, जितने भी आप स्ट्रेचेस करते हैं, क्योंकि कई बार जब आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं तो हमारी बॉडी, या अगर एक्टिविटी लेवल नहीं है, जैसे कि सर ने कहा है कि वर्क योगा करवा रहे हैं वो चंडीगढ़ में पीजीआई में, तो वो सारी चीजें, मेरे जैसे एक्सपर्ट जो घंटों बैठे रहते हैं, 10-10, 12-12 घंटे हमारे सिटिंग आवर्स होते हैं, उन सब के लिए बॉडी पार्ट्स पर क्योंकि असर पड़ता है, आप यूज नहीं करते। जैसे एक टीचर है वो खड़ी रहती है तो उनके बॉडी पार्ट्स पर असर होता है, सेम वे में बॉडी को एक एक्टिविटी लेवल की जरूरत होती है। तो योगा जैसा कि सर ने कहा एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मैं वही कह रही हूँ कि मेरे प्रिस्क्रिप्शन में, चाहे अगर स्पिरिचुअलिटी की नाम के, तो मैं इसे किसी धर्म से ना जोड़कर, हिंदू से ना जोड़कर, इवन अगर आप पढ़े तो हार्वर्ड का भी एक आर्टिकल है दैट योगा शुड बी द पार्ट ऑफ द डेली रूटीन, और उसका मेंटल हेल्थ पर इतना असर पड़ता है कि आपका ब्रेन शार्प होता है। आप अगर डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अगर आप डेली रूटीन में योगा को इंकल्ड करेंगे तो बहुत ज्यादा आपके इमोशनल रेगुलेशन में भी हेल्पफुल होगा। तो कहीं ना कहीं एक तो एक घंटा जो सर कह रहे थे कि मोबाइल और नीली लाइट की दुनिया है, क्योंकि हम योगा आसन करेंगे तो मोबाइल से तो ऑटोमेटिकली दूर रहेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन योगा करते हैं, आप घर पे टीवी को चलाकर आगे सामने योगा कर सकते हैं। देखिए आई वुड से जिसे अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना है, और जैसा कि सर ने कहा कि हर इंसान को खूबसूरत दिखना है, तो अब मुझे लगता है कि हर मेल और फीमेल को ये अपने लाइफस्टाइल में अपनाना बहुत जरूरी है, ताकि उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो बैलेंस्ड हो। लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वो आती थी, आती हैं और आती रहेंगी। अगर आप योगा को डेली रूटीन में अपनाते हैं, आपकी बॉडी भी फ्रेश फील करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप उसे डेली रूटीन का मॉर्निंग में अगर हिस्सा बनाते हैं, जल्दी उठते हैं, तो उससे भी आपकी बहुत सारी चीजें जो है इंप्रूव हो जाती है।
3: बिल्कुल लौटती हूं अब मीनल आपके पास सीधा आऊंगी, क्योंकि हमारे दर्शक यहाँ पर आपको देख भी रहे हैं, हम और आप दोनों मैट पर बैठे भी हैं। मैं चाहूंगी कि जरा एक आसन, कुछ एक बेसिक आसन जो हम अगर कहें कि हमारे पास वक्त नहीं, बहुत से लोगों का एक्सक्यूज यही रहता है कि वक्त नहीं है, सुबह समय नहीं मिला इसलिए हम नहीं कर पाए, लेकिन ऐसे बेसिक आसन जो कि आपको घर से करके निकलने, जैसा कि डॉक्टर वली ने भी यहां पर बताया कि उसको दैट इज मस्ट, वो आपको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, तो उसमें कौन सा आसन बता?
2: सबसे पहले तो हम बटरफ्लाई पोज करते हैं, ये बहुत बेसिक है, सिंपल है। अपने पंजों को जोड़ लीजिए, अपने एड़ी को जितना अंदर की तरफ खींच सकते हैं खींच लीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, राउंड नहीं करेंगे। जो आपका बेस है ना सिट्स बोन से रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और बटरफ्लाई की तरह फ्लैप करेंगे। ये बहुत सिंपल पोज है और आइडियली सबको करना चाहिए, मेल और फीमेल्स, बट फीमेल्स के लिए इसका बहुत ज्यादा फायदा है बिकॉज ये आपके जितने भी यूट्रस और आसपास जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी अच्छी सी मसाज करता है और वो सभी लोग जो पेरीमेनोपॉज यू नो हिट करने वाले हैं या हिट कर रहे हैं, पीसीओडी, पीकोज, इन सभी बीमारियों के लिए ये बहुत सिंपल है और बहुत इफेक्टिव है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप घर में बैठे हैं या बात कर रहे हैं तो आप बटरफ्लाई आसन में बात करिए, बात कर सकते हैं और आराम से ये भी कर सकते हैं। इसके बाद आइए करते हैं मल आसन, अगेन अ डीप स्क्वाट पोजीशन, हम इसको ऐसे तो बैठ के ही कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पंजों को थोड़ा सा खोल लेंगे, स्पेस बना लीजिए, अपने एल्बोस से सपोर्ट करते हुए अपने नीज को पूरा अच्छे से खोल लीजिए और डीप स्क्वाट पोजीशन में आराम से बैठ जाइए। बहुत अच्छा पोज है, बहुत इफेक्टिव है और पूरे दिन जो लोग कुर्सियों पर बैठते हैं ना उनके लिए तो बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह से ये आपके हिप फ्लेक्सर्स, इनर थाइज, काफ मसल्स, इन सबको खोल रहा है, ऐसा कोई भी और आसन नहीं है जो खोलेगा। इनफैक्ट आपकी स्पाइन भी पूरे अच्छे से एलोंगेट हो रही है राइट फ्रॉम द टिप ऑफ द हिप बोन। आप ऐसे दिन में कम से कम 3-4 बार ब्रेक लीजिए, सुबह उठ के निकल गए कोई बात नहीं, 11-12 बजे एक मिनट के लिए ऐसे बैठ जाइए। इनफैक्ट वो सभी लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और सुबह पेट साफ नहीं होता है, सुबह उठ के गर्म पानी पीजिए और मल आसन में बैठिए फोर फाइव मिनट्स, गारंटेड आपका पेट साफ हो जाएगा, इतना इफेक्टिव पोज है। और दोपहर को बैठिए, रात को बैठिए, और इनफैक्ट मैं तो बहुत सारे इवेंट्स में जाती हूँ तो मैं स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों से ये करवाती हूँ, बैठ नहीं पाते, जैसे आप इतनी आसानी से बैठ गई ना एक सेकंड में वो गिर जाएंगे, उनका बैलेंस नहीं है। दिस इज सपोज टू बी एन एशियन स्क्वाट और देखिए ना, मतलब आजकल बच्चे ये करते ही नहीं है तो बॉडी में वो लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है ही
3: नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए ये कुछ एक आसन है क्योंकि मीनल आपसे और भी आसन आगे जानेंगे, लेकिन अब डॉक्टर अक्षय आपके पास सीधे तौर पर मैं आना चाहूंगी। आप क्या बताएंगे, आपने कहा कि आपने वहां पीजीआई में ही ये प्रैक्टिस शुरू की है डॉक्टर्स के लिए, अब एंग्जाइटी कम करना या फिर डिप्रेशन को कम करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए?
4: हम लोग आज ही एक वर्कशॉप थी योगा एंड जी में, उसी हॉल में भी हूँ, अभी खत्म हुई है, तो अलग अलग विशेषज्ञ आए थे, तो हम लोग सब ना बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं प्रोटोकोलाइजेशन में। तो योग का प्रोटोकोलाइजेशन यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं, किताबें लिखे, पेपर्स लिखे, तो एंग्जाइटी स्ट्रेस के भी प्रोटोकॉल्स हैं और वो हमने यहाँ बनाए हैं, दो डीएम स्टूडेंट्स रादर अपना एडोलेसेंट एंग्जाइटी और चाइल्ड एंग्जाइटी पर डीएम अपनी कर रहे हैं और उसका एक प्रोटोकॉल है बहुत सुंदर, वो प्राणायाम बेस्ड ज्यादा है क्योंकि आसन से भी ज्यादा प्राणायाम का बहुत लाभ होता है हमारे को अपना सेल्फ रेगुलेशन में, जिसे हम न्यूरो रेगुलेशन भी कहते हैं। और जैसा आपने खुद पैरासिम्पेथेटिक रिस्पॉन्स की बात की ना, पैरासिम्पेथेटिक एक्टिवेशन के लिए एंग्जाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन मैनेजमेंट बड़ा सीमलेस और ईजी हो जाता है, तो उस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं हम। इन दोनों डीएम रेजिडेंट्स जिन्हें हम कहते हैं जो अपनी थीसिस कर रहे हैं, उन्होंने इन चाइल्ड और एडोलेसेंट ग्रुप्स लेके आधे लोगों को ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन का प्रोटोकॉल दिया है और आधों को नहीं दिया। आधों को यूजुअल किया जो भी वो डॉक्टर देते हैं दवाई वो दे रहे हैं और उसी से वो लोगों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि एंग्जाइटी में बहुत ज्यादा रिडक्शन हुआ है और स्ट्रेस रिडक्शन हुआ है और डिप्रेशन में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है उस ग्रुप में जिसने के एंग्जाइटी और स्ट्रेस वाला योगा प्रोटोकॉल किया, नियमित रूप से किया, 30 मिनट किया, 5 दिन इन अ वीक किया, वो 3 मंथ्स किया और कुछ पेशेंट्स को 6 मंथ तक फॉलोअप किया। ये दोनों ही अपने डीएमसी से सबमिट करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे पीजीआई में और इस तरह के जो INIs है ना इंडिया में मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, काफी ओवरबर्डन है पेशेंट्स से और बहुत सारे मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, तो स्ट्रेस, बर्नआउट, एंग्जाइटी और फिर बहुत सारे नॉन मेडिकल काम भी करने पड़ते हैं, फॉर्म फिलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, तो बड़ी मल्टीटास्किंग हो जाती है। तो बट नेचुरल है कि थोड़ा बर्नआउट और एंग्जाइटी तो हो ही जाती है ना, तो अब उसके लिए दवाई एल्प्रेक्स तो लेंगे नहीं, तो सबसे सुंदर तरीका है जिम जाएं। तो जिम भी रेगुलर नहीं होता तो जिम को भी रेगुलर करने के लिए अगर अपने आप में एक अनुशासन लाना है तो योग का सहारा लेना पड़ता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: योग का सहारा भी आ जाता है, जिम भी आ जाता है, खाना पीना भी ठीक हो जाता है। एक दूसरे शब्दों में लाइफस्टाइल और जैसा आप जिक्र कर रहे थे सारे, जीवन ही नियमित और अनुशासित हो जाता है।
3: बिल्कुल।
4: तो फिर कोई इसमें कारण नहीं रहता कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस आगे बढ़े, अनलेस कुछ।
3: बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ हमें रुकना है, खास मेहमान बने हुए हैं, कैसे योगा हमारे लिए जरूरी है, कितना जरूरी है और कैसे कम समय में भी हम कुछ एक आसन करके खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, इन सब पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
2: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
1: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
3: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
4: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
5: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
4: Big 12 Radio.
6: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
4: down. And talk sports.
7: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
4: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
8: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
9: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
10: न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
13: गुड न्यूज टुडे.
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे. अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
13: गुड न्यूज टुडे.
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड हेल्थ का संपूर्ण शुभ योग जिसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं। अच्छी हेल्थ के लिए आपको क्या करना है, योग करना है, योग के फायदे क्या क्या है, ना सिर्फ आपके शरीर के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ योग में ही छिपा है। डॉक्टर वली, आपके पास आती हूँ, चाहे वो डिमेंशिया हो या अल्जाइमर हो। अभी जब हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, एक डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि कैसे इन दो बीमारियों पर स्पेसिफिकली योग में बहुत कुछ बताया गया है, उस पर काम हो सकता है।
1: बिल्कुल, देखिए मेंटल हेल्थ की बात जो हम करते हैं ना, तो ये हमारे पूरी लाइफ स्पैन से जुड़ी हुई है। एक और हम बॉडी बिल्डिंग की जब बात करते हैं, जिम की बात करते हैं, वो हमारे मसल के साइज से जुड़ी हुई है। इन दो को इनमें सामंजस्य रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए योग ही एक ऐसी शक्ति है, आई विल कॉल इट ए शक्ति, जो दोनों में कोऑर्डिनेशन कर सकती है। आजकल आम तौर से लोगों में ये हो रहा है, सामने बंदा खड़ा हुआ है, नाम नहीं याद आ रहा, अरे भाई क्या हो गया, और कानों का तो हाल बुरा हो गया, इसकी बात आज नहीं करेंगे। तो हमारी जो शरीर की अंतर आत्मा की परवरिश है वो ऑक्सीजन से होती है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, और वो ऑक्सीजन शरीर को सबसे अच्छा प्राणायाम और योग से मिलती है। मैं योग शब्द यूज कर रहा हूं जो सही है। तो योग, योगाभ्यास ऐसा है जैसे कि खेती के लिए पानी, अगर हम योग छोड़ देंगे तो हमारी मेंटल जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। मैं तो देख रहा हूं लोगों के ब्रेन का सही श्रिंक हो जा रहा है, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, गलत टाइम पे सो रहे हैं, यंग एज में उनके MRIs में ब्रेन का, बिलीव करिए, और इस बात को मैं जोर देके कह रहा हूं, सब सुन ले ध्यान से, उनके ब्रेन का साइज छोटा होता जा रहा है और हम लोगों के बच्चों का ब्रेन का साइज छोटा होता जा रहा है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, और योग इसका इलाज है। योग से जब हम प्राणायाम से ऑक्सीजन पंप करते हैं बॉडी में, वो एक बहुत बड़ा अभ्यास, एक सिंपल एक्सरसाइज है ब्रीदिंग, लेकिन जब मैंने करके देखी तो मुझे पता लगा इसमें बहुत सारा अभ्यास है, इसमें बहुत सारी मेहनत है। मेरे का एक दिन ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अपने बच्चे पे चिल्लाया, और मेरा ट्रेनर आ गया एक्सरसाइज वाला। अब मैंने ब्लड प्रेशर देखा और धीरे से चुपके से दवाई खा के चला गया अपने कमरे में, जिम वाले में। अब मैंने एक्सरसाइज शुरू की, फिर ब्लड प्रेशर देखा, मेरा ट्रेनर बहुत अच्छा है, उसने कहा आप डीप ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करवाया, फिर ब्लड प्रेशर देखा तो कम हुआ। जो चीज दवा नहीं कर सकी वो प्राणायाम कर सका। ये डॉक्टर वली कह रहे हैं गुड न्यूज चैनल पे, ये सच्चाई है, और ये सच्चाई गलत हो ही नहीं सकती
0: जी।
1: तो हमको इसका अभ्यास करना है, इसको अपने जीवन शैली का एक अंग बनाना है, इसको जोड़ना है। देखिए आपने कितनी अच्छी बात कही कि योग से कितनी कंट्रीज जुड़ गई। मैं उस पहले प्रोग्राम में था जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराया था, नड्डा साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, राष्ट्रपति जी के साथ में, उसके इंडिया गेट के आगे वो जो राजपथ है वहां बैठ के वो प्रोग्राम मैंने देखा, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट शो। और आप उसके बाद जो है 2015 में यूएन असेंबली में योग की बात हुई, 174 कंट्री ने एंडोर्स किया, ये कोई छोटी बात थोड़ी है,
0: बिल्कुल,
1: पूरा विश्व इसको मान रहा है, और हमारे बच्चे जो है शनिवार देख रहे हैं 3-3 बजे रात तक, ये नहीं चलेगा।
0: बिल्कुल,
1: हमारे कोई भी, देखिए कोई भी ये नहीं जाएगा कि मेरी जीवन शॉर्ट हो, मेरा मेरी लाइफ छोटी हो जाए, मैं जल्दी मर जाऊं। तो भैया अगर तुम जल्दी नहीं मरना चाह रहे हो तो ऐसे
0: उसके
1: सारे
0: लिए अपने लाइफस्टाइल को बदलना होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब,
1: लाइफस्टाइल और योगा से चीज के लिए कोई चीज नहीं।
0: जी जी, लौट यू, चले
1: बेस्ट एंड बेटर देन योगा।
0: बिल्कुल डॉक्टर निशा, डॉक्टर निशा आपके पास तमाम ऐसे पेशेंट्स आते होंगे मेंटल हेल्थ को लेकर, क्या आप भी योगा रिकमेंड करती हैं उनको, कुछ स्पेसिफिक आसन वगैरह रिकमेंड करती हैं उनको?
2: देखिए स्पेसिफिक आसन तो नहीं, क्योंकि ये बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है। कुछ लोग योगा करना पसंद करते हैं तो उनको डेफिनेटली, क्योंकि ये माना जाता है, क्योंकि कई लोग जो है वॉक ले जाना चाहते हैं, बट अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ा हुआ है और आप जिम नहीं जाना चाहते, आपको एक अलग तरीके का होता है, तो शुरुआत योगा से कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, और मतलब इन सेल्फ केयर में अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, जैसा सर ने कहा था, डॉक्टर वली ने कहा था कि जिम जाना या डॉक्टर पीजीआई से भी सर ने कहा अक्षय जी ने कि योगा को जिंदगी का हिस्सा बनाना, तो जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हर कोई जिम जाके कंफर्टेबल नहीं होता है या कोई वॉक करना नहीं जा सकता, तो कोई हैवी वेट्स नहीं उठाना चाहता, हालांकि इन सब एक्सरसाइजेस का आपकी बॉडी पर असर पड़ता है, बट आप किसी भी वजह से अगर घर से बाहर नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहते ड्यू टू व्हाट एक्स वाई जेड कमिटमेंट्स की वजह से, तो ऐसे केसेस में मैं योगा रिकमेंड करती हूँ। और जैसा कि रिसर्च अभी आई थिंक सो मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी एक रिसर्च किया है कि योगा का मेंटल हेल्थ पर कितना असर होता है, आई थिंक सो 2500 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है एंड दे फाइंड इट आउट कि इमोशनल रेगुलेशन में योगा बहुत हेल्पफुल होता है। जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पीटीएसडी, इन सारे केसेस में योगा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप बेसिक स्ट्रेचेस भी और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना शुरू करें, जैसा कि मीनल ने कहा था, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये पर्टिकुलर पोज कर लीजिए, आपको डायबिटीज है ये पर्टिकुलर पोज कर लीजिए। देखिए, बॉडी को मूवमेंट की जरूरत है, और उस मूवमेंट को अगर हम बॉडी को मूवमेंट में लाएंगे तो मेजर डिप्रेशन में भी, जितने भी लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और जिनका कुछ भी मन नहीं करता, इट शुड नॉट बी कि आपका मन कर रहा है, अगर आप इसको ऐसे भी कर ले कि मेरी एक फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा है, तो वो आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा। आई विल से टुडे मॉर्निंग इवन मैं अपनी योगा जो टीचर है उनके साथ बात कर रही थी, तो वी विल सेइंग इट टाइट, आई मे नॉट फील मोटिवेटेड बट आई डू इट एज द पार्ट ऑफ चेक बॉक्स, बट इट मेड मेंटेन माई एक्टिविटी लेवल, तो उसकी वजह से मैं 10 घंटे काम कर पाती हूँ दिन में। तो आई थिंक सो वो
3: ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर निशा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बोर हो जाते हैं, मेरे ख्याल से इसका जवाब शायद आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, कि हम एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो जिम जा रहे हैं, थोड़ा समय बाद बोर हो जाते हैं, योग कर रहे हैं, योग के बाद बोर हो जाएंगे, एरोबिक्स कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, वो बहुत एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हमेशा रहता नहीं है सबके साथ, तो उसमें कैसे खुद को मोटिवेट करें?
2: देखिए, चेंज करना एक्टिविटीज को वो कोई दो राय नहीं है, आप अलग अलग एक्टिविटीज सीख भी सकते हैं, चाहे अगर आप अभी जिम जा रहे हैं तो आपने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया, बैडमिंटन बंद किया तो आपने पिकल बॉल खेलना शुरू कर दिया, पिकल बॉल बंद कर दिया आपने योगा शुरू कर दिया, इसमें कोई भी दो राय नहीं। आप कराटे सीख सकते हैं, आप काम बागा कर सकते हैं, आजकल तो इतनी एक्टिविटीज हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, तो जिसे फिजिकल एक्टिविटी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है साइकिलिंग कर सकते हैं, अब जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, हर उस एक्टिविटी का असर है, पर योगा का अपना असर है। और योगा की कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें कंसंट्रेशन होती है, त्राटक क्रिया होती है, जब कंसंट्रेशन का फोकस को लेकर इश्यूज होता है, स्टूडेंट्स में भी इश्यू होता है, तब भी उनको हम त्राटक क्रिया बताते हैं, एज ए थेरेपिस्ट मैं बताती हूँ कि उन्हें त्राटक क्रिया करनी चाहिए, कंसंट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज है तो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है योगा। और अगर ध्यान और मेडिटेशन भी योगा की एक स्टेज है, क्योंकि मैंने खुद ने भी पीजी डिप्लोमा कर रखा है योगा मेडिटेशन में, तो हम इसे बोलते हैं ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है, जिसे आप किसी धर्म से या किसी चीज
3: से ना जोड़ा जाए,
2: शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे, और उस शारीरिक स्वास्थ्य पर अगर आपने ध्यान देना है तो उसको योग को जिंदगी में अपनाएं, क्योंकि उसमें फोकस, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। और मैं आपको बता दूं, डैनियल गोलमैन का अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का आप कोर्स करते हैं तो मेडिटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस माना गया है हमारे इमोशनल रेगुलेशन में, और ये भी माना जाता है कि हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेज तब अच्छे से कर सकते हैं जब हमारी बॉडी पूरी तरह से, हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स पूरी तरह से स्मूथ फंक्शनिंग कर रहे हैं, और उस स्मूथ फंक्शनिंग में योगा का एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो रिसर्च भी यही कहती है, तो इंडिया में भी ये बहुत सारी।
3: बिल्कुल डॉक्टर निशा मीनल, इसी एक तो इसी सवाल का जवाब मैं चाहूंगी आपसे, क्योंकि आप भी मल्टीपल चीजें करती हैं। दूसरा सवाल बड़ा ये है कि आप कई कॉर्पोरेट्स के साथ भी जुड़ी हुई, फिट इंडिया के साथ भी आप जुड़ी हुई हैं, तो किस तरीके से, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर आपके पास, आपके आने का समय होता है, जाने का कोई समय नहीं होता, तो उसमें कैसे खुद को फिट रखा जाए, उसके लिए भी एक योगा बताइए, दोनों सवालों का जवाब।
4: ठीक है, सबसे पहले मुझे तो ये लगता है कि जो फिटनेस का शेड्यूल होता है ना आपका, ये आपके दिन का फर्स्ट विन है, सो इट इज नॉट अ मोटिवेशन दैट यू नीड, इट इज यू नो इट्स अ डिसिप्लिन, को आपको डिसिप्लिन के तौर से सुबह उठ के 30 मिनट्स अपने बॉडी के लिए देना है, चाहे आप उस दिन योग कर लीजिए, आप उस दिन अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लीजिए, आप चाहे तो रनिंग कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि इस वीक में मुझे इन दिनों में स्ट्रेंथ करना है, इन दिनों में योग करना है, इन दिनों में अपना कार्डियो के लिए वर्कआउट करना है, और वो कीजिए, और बहुत अच्छा है कि आप सुबह कीजिए, बिकॉज आप सोचिए हर दिन आपका माइंड आपको बोलेगा कि मुझे आज ये वर्कआउट नहीं करना है, एंड वो लेजी आउट होना करना चाहेगा, और हर दिन जब आप वर्कआउट करेंगे ना, उस तरह से आप अपने मन से जीतते हैं, और वो आपका घर से बाहर निकलने से पहले ही आपके दिन की पहली जीत है, और उसके बाद आप पूरा दिन जीत जाते हैं। दिस इज लाइक यू नो कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो इस तरह से आप पहले ही अपने मन के ऊपर से जीत ले लेते हैं। तो दिस इज दैट्स हाउ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जितने भी लोग ऑफिस में बैठते हैं, तो उनके लिए बहुत यू नो स्पेसिफिकली डिजाइन चेयर योगा करवाते हैं। उसका एक आसन मैं आपके साथ करती हूँ। अपने दोनों फिंगर्स को डबटेल कर लीजिए और अपने जो आपका ब्रिज ऑफ नेक है ना, वहां पर रख लीजिए। वो सारे लोग जिनको अभी भी पेन है, इन्फ्लेमेशन है, वो भी कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस भरते हुए खोल लीजिए अपनी एल्बोज को जितना खोल सकते हैं, खोलिए खोलिए अच्छे से। अब उसके बाद पीछे की तरफ चले जाइए, जहां तक जा सकते हैं, सीलिंग को देखिए, उसके पीछे भी खोल सकते हैं तो खोल दीजिए। दिस इज एब्सोल्यूट ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू डू ऑल डे। वो फॉरवर्ड बेंडिंग, वो जॉ लाइन को पूरे अच्छे से क्लेंच करके रखना, और वो फोरहेड पे फ्राउनिंग करना, ये उसका पूरा ऑपोजिट है। और धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाइए। सिंपल पोज है बट बहुत इफेक्टिव। आपने देखा किस तरह से आपके पेक्टोरल्स, चेस्ट, शोल्डर्स, रोटर्स सब खुल गए। और जस्ट बिकॉज आप इसको सपोर्ट्स के साथ कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग। मतलब आप वहां तक ही जाएंगे जहां तक आप खोल पा रहे हैं,
3: जितना आपसे हो पाए, वही क्षमता के हिसाब से आप।
4: हाँ, तो इट्स लाइक अ सीटेड भुजंग। आपने पूरा कोबरा पोज कर लिया, खोल लिया अपने चेस्ट को, लंग्स को, लंबी गहरी सांस भी भर ली, सब कुछ एंगेज कर लिया।
3: बिल्कुल। चलिए एक और आसन बताइए हमें।
4: अच्छा, तो इसी के साथ हम बैठे बैठे ट्विस्ट पोज करते हैं। वो सभी लोग जिनको स्टमक की प्रॉब्लम्स रहती है ना, एसिडिटी, गैस, उन सबके लिए है। आप अपनी पाओ की जो एड़ी है उसको नीचे दबा लीजिए। नॉट नेसेसरली कि आपके हिप्स को उस पर रेस्ट करना है, जहां तक ले जा सकते हैं ले जाइए, और ऊपर वाले पाओ को बस घुटनों के पास ले आइए। ठीक है, ये जो पूरा थाइस का हिस्सा है ना, इसको पेट को दबा दीजिए इससे। हाँ, दबा दीजिए अच्छे से। अब एल्बो को इसके ऊपर से निकाल दीजिए, यही वाला एल्बो। हाँ, चाहे तो पकड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, नथिंग लाइक दिस, आराम से। और उसके बाद ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ आपको अपना वेस्ट पूरा ट्विस्ट करना है। तो आप इस आसन को देखकर समझ पा रहे हैं, दिस इज लाइक द मोस्ट फेवरेट पोज फॉर बॉडी डिटॉक्स। आजकल डिटॉक्स बहुत फैशन में है ना, तो ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन आपकी बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर देता है। वापिस आ जाइए, तो आप देखिए आपने पूरे अपने शरीर को ट्विस्ट कर दिया।

0: डॉक्टर अक्षय, आपके पास आऊंगी। कोई एक ऐसा आसन या प्राणायाम जिसको हमें अपने पूरी दिनचर्या में इंक्लूड करना चाहिए, और ऐसा बताइएगा कि चाहे आप घर पे हो, दफ्तर है, कहीं भी, जो हम कर सकते हैं।
1: अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट ऑस्ट्रल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, दैट्स माय फेवरेट और सबसे सुंदर टिकाऊ, कोई भी कर सकता है, किसी भी आयु का, किसी भी अवस्था में वो कर सकता है। हमारे भारतीय नागरिकों के लिए जानना आवश्यक है, जैसे कि वो अच्छे डॉक्टर चयन करते हैं, अच्छे लॉयर को ढूंढते हैं, और आपको पता है कितने महंगे महंगे कोच होते हैं ना, इतने एथलीट्स के, बैडमिंटन प्लेयर्स के, एक अच्छा घर भी हम बड़े इधर उधर जाके ढूंढते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट लेना है तो एक अच्छा योगा ट्रेनर लेना होगा, और वो योगा ट्रेनर कैसे लेंगे, भारत सरकार ने उसका बड़ा अच्छा तरीका निकाला है, लेवल 1 ट्रेनिंग, लेवल 2 ट्रेनर, लेवल 3, इसके एग्जाम होते हैं। तीन तरह से लोगों को देखा जाता है, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज कितनी है, योग शास्त्रों की, योग सूत्रों की, ग्रैंड संहिता की, ये सब देखा जाता है। दूसरा, वो कैसे टीचर है, टीचिंग का उनका टेस्ट लिया जाता है। तीसरा, परफॉर्म कैसे करते हैं वो किया जाता है। ये लोग BNYS, PhD, MDs होते हैं, तो आप जितना अच्छा ट्रेनर लोगे ना,
0: बिल्कुल उतना ज्यादा फायदा होगा। डॉक्टर साहब, वक्त अभी हमारे पास इतना ही है, तो योगा डे पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कही। देखिए, फिटनेस लाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन खुद को फिटनेस के लिए उस रूटीन में लेकर आना ज्यादा टफ है। तो अपने मन को मजबूत कीजिए। मीनल ने बहुत अच्छी बात कही थी, मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। अपने मन को मजबूत कीजिए और अपनी विल पावर स्ट्रांग कीजिए कि आपको घर से निकलने से पहले कम से कम 30 मिनट खुद को देने हैं, अपने आप को देने हैं। शरीर फिट रहेगा, मन भी फिट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, तमाम खास मेहमानों को। तो अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
2: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
1: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए रिश्तों में प्यार भी और तकरार भी।

0: आसमान में सेना की तीसरी आंख, आ गया बैलिस्टिक ब्रिगेड का नया कप्तान, संपूर्ण भारत की सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
5: जम्मू के नगरोटा बेस कैंप से 200 बसों में 9000 श्रद्धालुओं का जत्था माता खीर भवानी मेले के लिए रवाना। आज शाम कश्मीर घाटी पहुंचेंगे भक्त, सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। देवभूमि उत्तराखंड में बड़े उत्साह के साथ जारी है चारधाम यात्रा। केदारनाथ धाम पहुंचे 13 लाख से अधिक श्रद्धालु, 12 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बद्री विशाल के दर्शन। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, श्रीनगर से लेकर प्रयागराज तक युवाओं ने किया जल योग, कल पीएम मोदी कोलकाता में देंगे योग संदेश। सूरत के दादा के पास महंगी और विदेशी साइकिलों का एक अनूठा संग्रह है, पिछले 57 वर्षों से कर रहे हैं साइकिलिंग, लोगों को पर्यावरण और ईंधन बचत के लिए कर रहे हैं प्रेरित। नीट री एग्जाम से पहले आज देशभर में एनटीए की मॉक ड्रिल, 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों को परखा गया, कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज चेन्नई में खेला जाएगा तीसरा एक दिवसीय मुकाबला, आज क्लीन स्वीप के लिए मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन फ्लीट में शामिल होने के लिए तैयार है नया बोइंग 747 विमान, कतर ने दिया था गिफ्ट, ओवरहॉलिंग, रंग रोगन और टेस्टिंग के बाद ट्रंप ने लिया इसका जायजा।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में मंगल एक ऐसा ग्रह है ना जो बड़ा क्विक, बड़ा तेज परिणाम देता है और मंगल का बदलाव तुरंत दुनिया भर में उथल पुथल पैदा कर देता है। अब मंगल राशि बदल रहे हैं और जा रहे हैं वृष राशि में। वृष राशि में मंगल जितने दिन रहेंगे वो आपकी जिंदगी पर, दुनिया पर कैसा असर डालेंगे, क्या क्या करने वाले हैं, क्या हो सकता है, क्या ध्यान रखना चाहिए आपको, इन तमाम विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम। कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम। मंगल देव का ध्यान मंत्र है और बड़ा प्रभावशाली है। अगर जिंदगी में कभी मुकदमे में फंस गए हैं, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मामला चल रहा है, बार बार दुर्घटनाओं की स्थितियां बन रही हैं, तो ऐसी दशा में आप एक नियम बना लीजिए कि रोज सुबह जब आप पूजा करते हैं 3 बार ये श्लोक पढ़ेंगे, 3 बार या 9 बार, और मंगल देव से कृपा की प्रार्थना करेंगे। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करने लगे तो मंगल की जो समस्या है, मुकदमेबाजी, दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, बेवजह के विवाद, कर्जे, इन तमाम चीजों से आप छुटकारा पा जाएंगे। तो मंत्र फिर से दोहराता हूं मैं, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम। अब आते हैं अपने विषय पर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन की। मंगल का ये राशि परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण है, क्या होने जा रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पूरी स्थिति क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, मंगल अभी तक मेष राशि में विद्यमान थे। अब मंगल 21 जून को मध्य रात्रि में वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 20 और 21 तारीख की जो दरमियानी रात है, मध्य की रात है, उसमें वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृषभ राशि जो है वो मुख्यतः है शुक्र की राशि, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो मंगल यहां पर निगेटिव नहीं होते। मंगल की जो पोजीशनिंग है, मंगल की जो सिचुएशन है, वो कुल मिला जुला के यहां पर एवरेज होती है। मंगल वृषभ में पहुंच रहे हैं और मीन में शनि पहले से विद्यमान है, तो शनि की तीसरी दृष्टि अब मंगल पर पड़ेगी। तो मंगल इस परिवर्तन में शनि के सीधे प्रभाव में आ जाएंगे, शनि के सीधे कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि शनि अपनी तीसरी दृष्टि से मंगल को देखेंगे। और मंगल की ये स्थिति कि मंगल वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, ये स्थिति 4 अगस्त तक बनी रहेगी। अब चूंकि इसमें गड़बड़ी ये है कि मंगल तो वृषभ में गए, कुल मिला के मामला देखिए एवरेज है, लेकिन मंगल के ऊपर जो शनि का प्रभाव आ गया, जो शनि की दृष्टि आ गई, इस वजह से मंगल की जो नकारात्मकता है, मंगल की जो क्रूरता है वो बढ़ेगी। और मंगल इस स्थिति में देश दुनिया में लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याओं को जन्म देंगे। अब मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जिस समय मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय सूर्य और बुध एक साथ हैं, मंगल के राशि परिवर्तन के समय चंद्रमा और केतु भी एक साथ विद्यमान हैं, जो खतरे की घंटी है। राशि परिवर्तन के समय चंद्रमा का निगेटिव होना बहुत अच्छा नहीं है। और सबसे ज्यादा नकारात्मक बात है शनि और मंगल का आपसी संबंध बना हुआ है राशि परिवर्तन के समय। तो चंद्र केतु, शनि मंगल, ये जो हालत है ये दुनिया भर में अशांति फैला सकता है, दुनिया भर में अशांति हो सकती है। मंगल शनि का संबंध दुर्घटना और विस्फोट का कारण बनता है, तो भयंकर दुर्घटना और विस्फोट जैसी स्थिति बन सकती है। अंतरिक्ष में, संचार के साधनों में और वायुयान दुर्घटना के योग इस समय में बन रहे हैं। भारत में आंतरिक अशांति फैल सकती है। मंगल जो है वो लोकतंत्र का बिल्कुल एंटी है, निरंकुशता का प्लेनेट है, ये लोकतंत्र पे नहीं चलता। और शनि जो है वो लोकतंत्र का मालिक है। तो शनि मंगल का जो संबंध है, एक तो वो है, दूसरे चंद्रमा केतु जो हैं वो इमोशंस को, भावनाओं को भड़का सकते हैं। तो भारत में आंतरिक अशांति फैल सकती है और राजनैतिक रूप से उथल पुथल हो सकती है। किसी राज्य की सरकार के लिए इस समय दिक्कतें आ सकती हैं, लोग पार्टियां बदल सकते हैं और बड़े बड़े उठा पटक इस समय राजनीति में हो सकते हैं। अब देखिए, चंद्रमा केतु के साथ इन्वॉल्व है और शनि जल की राशि में बैठे हैं, इसीलिए जलीय आपदाएं, पानी से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के आने की, भूकंप जैसी समस्याओं के आने की संभावना बन सकती है। तो देखिए, मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है ना, ये दुनिया भर में एक महीने तक बड़ी उठापटक करेगा। और आप देखेंगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि शांति हो रही है या शांति होने वाली है, लेकिन शांति नहीं होगी। शांति के पीछे से भी झगड़े, झंझट, विवाद, उपद्रव चलते रहेंगे। तो देश दुनिया का हाल तो देखिए मंगल के हिसाब से आपने समझ लिया। अब अपनी राशि के हिसाब से जानिए कि मंगल का राशि परिवर्तन अगले एक सवा महीने तक आपकी राशि पर, आपके जीवन पर कैसा असर डालेगा। अगर मेष राशि की बात करें, देखिए मेष राशि वालों की जो पैसे रुपए की मुश्किल है, जो धन की मुश्किल है, वो थोड़ी बढ़ सकती है। हालांकि सूर्य की अनुकूलता है, इस बात से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मंगल का वृषभ राशि में जाना इनके धन के लिए समस्या बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा, सेहत को लेकर के इस समय मेष राशि वालों को दिक्कत हो सकती है। दुर्घटना और शल्य चिकित्सा की स्थिति बन रही है, मेष वाले चोट चपेट से बचें, क्योंकि अगर चोट चपेट लगेगी तो आपकी सर्जरी होगी, आपकी दुर्घटना होगी, शल्य चिकित्सा भी हो सकती है। देखिए, मेष वालों के स्वास्थ्य के मामले और धन के मामले अगले कुछ दिनों तक नकारात्मक, निगेटिव दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मेष वालों को इस समय अपने जीवन के बड़े निर्णयों में, बड़े डिसीजंस में सावधानी रखनी चाहिए, बड़े निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। वृषभ राशि, मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो वृषभ राशि में हो रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव वृषभ राशि पर पड़ने वाला है। आपको अपनी आंखों का ध्यान देना है, चोट चपेट ना लगे, हड्डियां ना टूटें, हड्डियों में दिक्कत ना हो, इसका ध्यान भी आपको बनाए रखना है। पैसा इस समय जरूर आएगा, उससे हम इनकार नहीं करेंगे, पैसे आपके पास अवश्य आएंगे, लेकिन धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, पैसे रुपए का खर्चा आपके ऊपर बढ़ सकता है, काम की जिम्मेदारियां आ सकती हैं। पारिवारिक मामले इस समय वृषभ वालों को ज्यादा परेशान करेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में, आपके नजदीकी रिश्तों में इस समय अशांति हो सकती है, लंबे समय से चला आ रहा रिश्ता इस समय टूट सकता है। बेवजह की मुकदमेबाजी और बेवजह के विवाद की नौबत आ सकती है, ये संभावना इस समय वृषभ वालों के लिए बनी हुई है। तो वृषभ वाले ये समझ लें कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, रिश्तों का टूटना और बेवजह के विवाद आपको परेशान कर सकते हैं, इसको लेकर के वृषभ वालों को सतर्क रहना चाहिए, शांति और धैर्य बनाए रखें। मिथुन राशि, मंगल 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो मिथुन वाले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आंखों का ध्यान दें, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान दें, कान नाक और गले का ध्यान देना भी मिथुन वालों के लिए जरूरी रहेगा। आपके बड़े महत्वपूर्ण काम, जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे थे या शादी की बात फाइनल करने जा रहे थे, वो तमाम महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं। वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि मैरिटल लाइफ में झगड़े बढ़ेंगे बिना कारण के, कुछ दिन तक मन मुटाव और अशांति रह सकती है। बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, बेवजह के वाद विवाद से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। तो मिथुन वाले अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। अगर कोई महत्वपूर्ण काम रुक रहा है तो उसको लेकर के ज्यादा परेशान ना हो। कुछ समय बाद आपका महत्वपूर्ण काम होगा, लेकिन अगर इस समय रुक रहा है तो उसको लेकर परेशान मत होइए। कर्क राशि, मंगल का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके पैसे रुपए के हालात बेहतर होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी और हो सकता है नई नौकरी मिले, नया काम शुरू करें, करियर में कोई नई शुरुआत इस समय हो सकती है। आपके काम में जो तमाम रुकावट चली आ रही थी, आपके काम में जो तमाम बाधा अचानक आ गई थी, वो बाधा वो रुकावट आपकी दूर होगी और हर महत्वपूर्ण काम इस एक सवा महीने में आप निपटा ले जाएंगे। अगर आप प्रयास करेंगे, इस समय आलस्य नहीं दिखाएंगे, मेहनत करेंगे, तो प्रयास करने से आपको अपने करियर में और अपने जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। सिंह राशि, मंगल का राशि परिवर्तन आपको करियर में एकदम से बचा करके उठा देगा। सिंह वालों को करियर की जो तमाम परेशानियां थीं, जो करियर की तमाम चिंताएं थीं, इनसे सिंह वालों को राहत मिलेगी और आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे हो जाएंगे। खास तौर से करियर और पैसों का जो मामला है, करियर और पैसों का जो काम है, वो इस समय पूरा होगा। संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है, प्रॉपर्टी का फायदा होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। यानी इस समय आप अपने महत्वपूर्ण काम करेंगे, धन का, करियर का और संपत्ति का फायदा भी इस समय आप उठा सकते हैं। लेकिन देखिए, सिंह राशि वाले बहुत जल्दी जोश में आ जाते हैं, बहुत जल्दी इंपल्सिव हो जाते हैं, तो सिंह राशि के लोग जोश में आ करके कोई निर्णय इस समय नहीं लेंगे। कन्या राशि, पारिवारिक मामले आपके मुश्किलें बढ़ाएंगे। भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में चीजें बिगड़ सकती हैं, इसलिए कन्या राशि के लोग पारिवारिक मामलों में सावधानी रखें। बेवजह का तनाव परिवार के कारणों से बढ़ सकता है और आपको पेट में या सर पर चोट लग सकती है, उसका ध्यान आपको बनाए रखना है। करियर में अचानक बदलाव हो सकता है, आपने कोई प्रयास नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की, अचानक ट्रांसफर का आर्डर आ गया और करियर में आपके बदलाव हो गया। तो करियर में अचानक बदलाव हो सकता है और कन्या वाले कीमती चीजें और पैसा संभाल कर रखें, धन के मामलों में सतर्कता रखें, नहीं तो आपका धन डूब सकता है, आपको पैसे का बड़ा झटका लग सकता है। तुला राशि, अगर मंगल के राशि परिवर्तन की बात करें और तुला राशि को समझना चाहें तो आठवें स्थान में मंगल का गोचर हो रहा है। आपके जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का, आपके पति हो या आपकी पत्नी हो, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। दुर्घटनाओं से और शल्य चिकित्सा से बचिएगा। इस समय आपको चोट चपेट लग सकती है और अचानक आपके ऑपरेशन की, आपके सर्जरी की नौबत आ सकती है। उच्चाधिकारियों के साथ, जो आपके बॉस हैं ऑफिस में, आपके काम करने की जगह पर आपके सीनियर्स हैं, वहां पर बेवजह का विवाद हो सकता है और संबंध बिगड़ सकते हैं, संबंध खराब हो सकते हैं। बिना वजह के झगड़े मत करिए। दो बातों का ध्यान रखिए। एक, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में लापरवाही मत करिए। ऑफिस में, पड़ोस में विवाद ना करें और उच्चाधिकारियों के साथ बहस मत करिएगा, वरना कोई बड़ा मौका, कोई बड़ी सफलता आपके हाथ से चूक जाएगी। वृश्चिक राशि, आपके करियर को लेकर इस समय प्रॉब्लम आ सकती है। करियर में कोई इंटरनल परिवर्तन हो सकता है। करियर में किसी आंतरिक परेशानी की संभावना दिख रही है और रोजगार के अलावा, नौकरी के अलावा पारिवारिक जीवन में परेशानी रह सकती है, खास तौर से बच्चों को लेकर या पति पत्नी को लेकर इस समय आपकी परेशानी बढ़ सकती है। चोट चपेट से बचाव करिएगा। खास तौर से कोई एडवेंचरस काम मत करिएगा कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, ये सब मत करिएगा, वरना दुर्घटना के भयंकर शिकार हो सकते हैं। कर्ज जो आपने लिया है उसको समय से चुकाने का प्रयास करिए। पैसे आपके पास आते रहेंगे, आप कर्जा चुकाते रहिए। अगर कर्ज चुकाने में लापरवाही करेंगे तो आपको अपयश का या बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तो कृपा करके कर्जा चुकाइए, शांत रहिए, दूसरों के मामले में अड़ंगा मत डालिए तो चीजें ठीक रहेंगी। धनु राशि, पिछले दिनों आपने बड़ी मेहनत की है अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, करियर में सफलता पाने के लिए। तो धनु राशि के लोग ये जान लें कि उस फायदे का समय आ गया है। करियर में बड़ा और लाभकारी बदलाव आपके लिए हो सकता है। करियर में बड़े लाभकारी बदलाव के योग बन रहे हैं। मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है और अगर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, इस समय प्रयास करिए, आपके लिए बेहतर होगा। पुरानी तमाम समस्याएं आपकी हल होती जाएंगी। थोड़ी सी कोशिश करिए, करियर और रोजगार को तो बढ़िया कर ही लेंगे, अगर प्रयास करेंगे तो पुरानी समस्या भी समाप्त होगी। इस समय धनु वालों के करियर का और पैसे का मामला बहुत अच्छा बना रहेगा, निरंतर धन इनके पास आता रहेगा, पैसे की दिक्कत परेशान नहीं करेगी। मकर राशि, मंगल मकर राशि में निगेटिव होता है तो बहुत ज्यादा और पॉजिटिव होता है तो और भी ज्यादा, लेकिन ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है ये नकारात्मक है, इसीलिए मकर वाले स्वास्थ्य और चोट चपेट का ध्यान दें। अगर गाड़ी चलाते हैं या चलाती हैं तो बड़े सावधानी से गाड़ी चलाइए या साइकिल चलाइए ताकि कोई चोट चपेट ना लगे। करियर में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए, कोई बड़ा परिवर्तन मत कीजिए, जैसे हाल चल रहे हैं वैसे चलने दीजिए, क्योंकि करियर में इस समय अगर आप रिस्क लेंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। संपत्ति और धन के विवादों से बचिए, प्रॉपर्टी के मुकदमे, पैसे के झगड़े झंझट परिवार वालों के साथ चल रहे हैं, शांति से हल करने का प्रयास करिए। इस समय अगर कोशिश करेंगे तो लाभ हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में ईमानदार रहें, पति या पत्नी के अलावा अन्य रास्तों पर चलने का प्रयास ना करें। कुंभ राशि, देखिए मंगल आपके मेंटल लेवल पर ज्यादा बुरा असर डाल सकता है, मंगल आपको मेंटली परेशान कर सकता है, आपका तनाव बढ़ा सकता है, और इस समय गाड़ी चलाने में कुंभ राशि के लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, दुर्घटनाओं से सावधान रहने की आवश्यकता जरूर है। तो इस समय प्रेशर बढ़ेगा कुंभ वालों पे, शांत रहिए। करियर में किसी तरह का जोखिम, किसी तरह का रिस्क मत लीजिएगा और जरूरत से ज्यादा शारीरिक परिश्रम, बहुत ज्यादा दौड़ना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत शरीर पर प्रेशर डालना उचित नहीं होगा। मीन राशि, मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा दिख रहा है, इसके परिणाम अच्छे दिख रहे हैं, तो स्वास्थ्य के मामले में और मन के मामले में आपके सुधार होगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, संतान और परिवार को लेकर जो चिंताएं चली आ रही थी वो चिंताएं समाप्त होंगी। कोशिश करके देखिए, आपके जो रुके हुए काम हैं, प्रॉपर्टी वाला है, बच्चे वाला है, घर खरीदने वाला है, इस समय आप एक सवा महीने में निपटाइएगा, बहुत आसानी से निपटेगा। करियर में मनचाही सफलता मिलेगी, आपका प्रमोशन तो होगा ही, आपको धन का भी ज्यादा लाभ होगा। जो आपके शत्रु हैं, आपके विरोधी हैं, वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, शत्रु और विरोधी मीन वालों के परास्त होंगे। देखिए मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो केवल चार राशियों के लिए अच्छा है, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि। बाकी आठ राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। तो अगर मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर नहीं है तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, ये जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए ज्यादा निगेटिव है, ज्यादा प्रतिकूल है, इनके लिए सबसे ज्यादा खराब है। जिनके लिए ये परिवर्तन अच्छा नहीं है, कहीं भी जरा सा जोखिम हो, ट्रैक करने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, अगर आपको जरा सा भी रिस्क दिखाई देता है, जरा सा भी जोखिम दिखाई देता है, तो बचने का प्रयास करिएगा। इस समय आप रिस्क लेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, ऐसे लोग किसी तरह का जोखिम ना लें। इस समय रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। ज्यादा दिक्कत है तो जल में थोड़ी रोली मिला सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इस समय रोज सवेरे सूर्य देव को सादा जल या प्लेन वाटर अर्पित करेंगे। सुबह और शाम एक एक बार घर के पूजा स्थान पर बैठ करके शांति से संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, इस स्तुति को सुबह शाम दोनों समय एक एक बार पढ़िएगा। जब भी आपको मौका मिले, रोज चाहे तो रोज, नहीं तो हर मंगलवार को गुड़ का दान करिएगा या गाय को गुड़ खिलाइएगा तो बहुत बेहतर होगा। और ये समय मंगल का बहुत सारी राशियों के लिए नकारात्मक है, इसीलिए अगर आपकी राशि कर्क नहीं है, सिंह नहीं है, धनु नहीं है, मीन नहीं है, तो कृपा करके दुर्घटनाओं से बचें। लाल रंग की चीजों का और लाल रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो भी दुर्घटना को आकर्षित कर सकता है। देखिए, मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो अगर इन राशियों के लोग, कर्क, सिंह, धनु और मीन वाले, अपने करियर में कोई निर्णय लेना चाहें, करियर में आगे बढ़ना चाहें या प्रयास करना चाहें, तो इनको फायदा जल्दी होगा, ये सफलता जल्दी पा सकेंगे। और इन चार राशि के लोगों को इस समय प्रॉपर्टी के मामले में, मुकदमे के मामले में सफलता की कोशिश करनी चाहिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। कर्क वालों को धन का फायदा होगा मंगल की वजह से, सिंह वालों को पद प्रतिष्ठा और रुतबे का फायदा होगा, धनु वालों को करियर में बड़ा फायदेमंद बदलाव होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, और मीन राशि वालों की पारिवारिक चिंताएं, फैमिली की दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। इसका आप ध्यान रख करके समय का सही सदुपयोग करिएगा। फिर से बता दूं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आप ज्यादा कुछ ना भी कर पाए तो सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, लाल रंग से परहेज करें, और जब भी मौका मिले हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी का दर्शन करिएगा, आप सुरक्षित बने रहेंगे। तो मंगल देव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, आपका सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
2: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: आसमान में सेना की तीसरी आंख। आ गया बैलिस्टिक ब्रिगेड का नया कप्तान। संपूर्ण भारत की सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए रिश्तों में प्यार भी और तकरार भी। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
2: Such an ordinary thing to walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go, seemed perfectly safe, until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
3: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.
4: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: कभी कभी कोई गीत सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है, उसके शब्द कानों से ज्यादा दिल तक पहुंचते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक लोकगीत सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के दिलों को छू रहा है। इंस्टाग्राम के रील्स हो, यूट्यूब के शॉर्ट्स हो या फिर फेसबुक के फीड, हर जगह कोक स्टूडियो भारत के नए गीत कचौड़ी गली की धूम है। यूट्यूब पर लाखों व्यूज बटोर चुका कचौड़ी गली आज लोक संगीत की ताकत बनकर उभर रहा है। एक ऐसा गीत जो गाँव की चौपाल से निकलकर डिजिटल दुनिया के करोड़ों दिलों तक पहुंच गया है। सिंगर उत्पल उदित की मिट्टी से जुड़ी गायकी ने इस गीत को ऐसा रंग दिया है कि ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक एहसास बन गया है।

सुन कैला बलम सुन कैला बलम मिर्जापुर कैला गुलजार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
1: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
2: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
3: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
2: Learn more at emory.edu.
4: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: आसमान में सेना की तीसरी आंख, आ गया बैलिस्टिक ब्रिगेड का नया कप्तान। संपूर्ण भारत की सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: टीआईटी भोपाल जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
6: जम्मू के नगरोटा बेस कैंप से 200 बसों में 9000 श्रद्धालुओं का जत्था माता खीर भवानी मेले के लिए रवाना, आज शाम कश्मीर घाटी पहुंचेंगे भक्त, सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। देवभूमि उत्तराखंड में बड़े उत्साह के साथ जारी है चार धाम यात्रा, केदारनाथ धाम पहुंचे 13 लाख से अधिक श्रद्धालु, 12 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बद्री विशाल के दर्शन। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, श्रीनगर से लेकर प्रयागराज तक युवाओं ने किया जल योग, कल पीएम मोदी कोलकाता में देंगे योग संदेश। सूरत के दादा के पास महंगी और विदेशी साइकिलों का एक अनूठा संग्रह, पिछले 57 वर्षों से कर रहे हैं साइकिलिंग, लोगों को पर्यावरण और ईंधन बचत के लिए कर रहे हैं प्रेरित। नीट प्री एग्जाम से पहले आज देश भर में एनडीए की मॉक ड्रिल, 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों को परखा, कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज चेन्नई में खेला जाएगा तीसरा एक दिवसीय मुकाबला, आज क्लीन स्वीप के लिए मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन फ्लीट में शामिल होने के लिए तैयार है नया बोइंग 747 विमान, कतर ने दिया था गिफ्ट, ओवरहॉलिंग रंग रोगन और टेस्टिंग के बाद ट्रंप ने लिया जायजा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: जम्मू में माता खीर भवानी यात्रा के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी, नगरोटा से 9000 श्रद्धालुओं का जत्था हुआ रवाना, प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए 200 बसों की मुफ्त व्यवस्था की, यात्रियों को कराई जा रही है सुरक्षित और आरामदायक यात्रा, सभी यात्रियों के ठहरने और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए, श्रद्धालु आज शाम तक कश्मीर घाटी पहुंच जाएंगे। राहत और पुनर्वास विभाग के कमिश्नर डॉक्टर अरविंद करवानी ने जत्थे को दिखाई हरी झंडी, माता खीर भवानी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। हर साल हजारों कश्मीरी पंडित माता खीर भवानी मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, वो अपने पुनर्वास और घर वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं। उत्तराखंड में आस्था भक्ति के साथ पवित्र चारधाम यात्रा जारी, अब तक 38 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: सास बहु और बेटिया में आज देखिए रिश्तों में प्यार भी और तकरार भी, दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
8: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the 3 dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
1: अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
13: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद। यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु। लज्जालु पर जर्नल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
14: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
15: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
14: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
16: सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें
10: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
17: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
17: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
6: जम्मू के नगरोटा बेस कैंप से 200 बसों में 9000 श्रद्धालुओं का जत्था माता खीर भवानी मेले के लिए रवाना, आज शाम कश्मीर घाटी पहुंचेंगे भक्त, सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। देवभूमि उत्तराखंड में बड़े उत्साह के साथ जारी है चार धाम यात्रा, केदारनाथ धाम पहुंचे 13 लाख से अधिक श्रद्धालु, 12 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बद्री विशाल के दर्शन। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, श्रीनगर से लेकर प्रयागराज तक युवाओं ने किया जल योग, कल पीएम मोदी कोलकाता में देंगे योग संदेश। ओडिशा के रायरंगपुर में लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन पर दी बधाई, राष्ट्रपति ने बर्थडे पर बच्चों को बांटी चॉकलेट। नीट री एग्जाम से पहले आज देशभर में एनटीए की मॉक ड्रिल, 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों को परखा, कई राज्यों में छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा। अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन फ्लीट में शामिल होने के लिए तैयार है नया बोइंग 747 विमान, कतर ने दिया था गिफ्ट, ओवरहॉलिंग, रंग रोगन और टेस्टिंग के बाद ट्रंप ने लिया जायजा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती।
19: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, स्वागत है आप सबका सास बहु और बेटिया के इस वीकेंड स्पेशल एपिसोड में। तो क्या है आपका वीकेंड प्लान? वेल, हमारा प्लान तो सिर्फ एक ही है कि लेकर आए आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। जी हाँ, आज तो तैयार है हमारे पास एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट, चाहे हो आपके फेवरेट टीवी शोज, वेब शोज, फिल्मी खबरें या फिर कोई गॉसिप, ऑफ कोर्स सितारों से मुलाकात, ये सब और बहुत कुछ है हमारे आज के इस एपिसोड में। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं हमारी ये सैटरडे वाली पार्टी हेडलाइंस के साथ।
7: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां के वीकेंड स्पेशल एपिसोड में आज देखिए ईशा की हथेली पर सजेगी सूरज के प्यार की मेहंदी। तन्वी की मुंह दिखाई की रस्म में आएगा ट्विस्ट, युग बनेगा रक्षक।
20: यहां से कहां जाऊं?
7: दिव्या के तानों पर फूट फूट कर रोएगी रीत, क्या राघव देगा रीत का साथ?
20: मैं कैसे लगाऊं?
7: सीरियल मन सुंदर में रूही करेगी गोयनका हाउस में एंट्री, होगा रुहान संग आमना सामना। सीरियल मन अति सुंदर में बदलेगा सभी का अंदाज, कहानी होगी 10 साल पुरानी।
21: ये डायरी नहीं, ये तो मेरा खजाना है, मेरी सारी सीक्रेट रेसिपी।
7: अनुपमा की सीक्रेट डायरी पर होगी श्रुति की नजर, क्या प्रेम करेगा चोरी?
22: जीतने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं प्रेम, और जो डरता है उसको पता है ना क्या कहते हैं? लूजर।
7: और साथ ही करेंगे मुलाकात हस्तिनापुर के वीर केस शकुनी मामा यानी कि चंदन आनंद से, जो ढलेंगे शकुनी के अंदाज में सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

तो क्या कह रही है यहाँ पर नाहर और रूही की ये कहानी, क्या प्लान है इनका इस वीकेंड? वेल, प्लान तो ये दोनों तब बनाएंगे ना जब इनकी कहानी में इन्हें मिलेंगे फुर्सत के पल, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है फुर्सत, यहाँ तो है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट जोरदार। चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको मानसुंदर के सेट पर।

में गोयनका हाउस में हुई रूही की एंट्री। नाहर को रूही के होने का एहसास। रूही और रुहान का हुआ आमना सामना। दंगल टीवी के सीरियल मनसुंदर में आज दादी का जन्मदिन है, ऐसे में गोयनका हाउस में पार्टी रखी गई है और उस पार्टी में सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा खुश है दादी, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में रूही जो नहीं है, पर उन्हें ये नहीं पता कि जिस केटर सर्विस को उन्होंने बुलाया है वो केटर सर्विस रूही ही संभालती है, जो अब सुहानी बन चुकी है, हालांकि उसकी याददाश्त जा चुकी है। खैर, दादी तो अपना जन्मदिन खुशी खुशी सभी के साथ मनाती है, सभी का मुँह मीठा करती है।

0: लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रूहान भागते हुए गिर गया और जैसे ही उसको चोट लगी तो उसने माँ को पुकारा और माँ के रूप में सबसे पहले रूही सामने आई और देखिए कैसे वो रोते हुए रूहान को समझा रही है। इतना ही नहीं, वो तो रूहान को अपने साथ बाहर भी लेके गई जहाँ पर वो कुकिंग सर्विस कर रही है। वहाँ बिठाकर उसने रूहान की मरहम पट्टी की। इसी बीच रूही ने अपने चेहरे का नकाब भी उतार दिया और रूहान की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी तो उसे याद आ गया, यहाँ रूही उसकी मरहम पट्टी कर रही है और रूहान उसको देख रहा है। उसे देखकर तो रूहान को अपनी माँ ही याद आ रही है।
1: बेटा, अब करो, दर्द तो करो बाय और स्माइल तो करो हाय। अब कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगा?
2: वो मैंने पापा को स्वच्छ कर दिया।
1: हाँ बेटा, आप ना बहुत तेज बॉय हो।
0: वही जाने अनजाने रूही ने रूहान पर जो ममता जताई है, रूहान को उसमें अपनी माँ ही नजर आई है। खैर, रूहान उसकी हर बात मानता है। ऐसे में रूही उसे समझाती है और पार्टी में जाने का आदेश भी देती है। वहीं दूसरी ओर पार्टी में सभी लोग स्वाद चख रहे हैं जो रूही की केटरिंग सर्विस के द्वारा बनाया गया है। ऐसे में कोई पहचाने न पहचाने लेकिन नाहर को रूही के हाथों का स्वाद याद आ गया है। खैर, अब देखना होगा क्या नाहर उस कुकीज बनाने वाली को ढूंढ पाएगा और क्या उसी के जरिए रूही और नाहर का आमना सामना हो पाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: ओह माय गॉड, हमारी पार्टी में अभी हुआ है धमाका। अरे डोंट वरी, सास बहू और बेटा की पार्टी में तो होते हैं एंटरटेनमेंट के धमाके। चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको हमारी इस अगली कहानी की ओर, जिसमें कहानी का लेखक लेकर आया है एक नया मोड़, जिससे आ रहा है कहानी में एक नया ड्रामा, जो लेकर आ रहा है कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट। ओ माई गॉड, क्या मैंने इसे कॉम्प्लिकेट कर दिया है? तो चलिए करते हैं इसे सिंप्लीफाई, लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ।

0: अनोखी मुंह दिखाई की रस्म। सारा शहर मीडिया के सवालों पर तन्वी ने लगाया ब्रेक। मुंह दिखाई की रस्म में व्योम को मिली चेतावनी। दंगल टीवी के सीरियल 30 के पार जब मिला प्यार में आज है तन्वी की मुंह दिखाई की रस्म और अक्का साहब ने तैयारी की है वो भी अनोखी। सामने लाकर रख दिए हैं 5 शीशे और सबके सामने कह दिया है कि 5 तत्वों का आशीर्वाद मिलेगा अगर ऐसे मुंह दिखाई की रस्म होगी। बस फिर क्या, अक्का साहब की बातें मानते हुए तन्वी शीशों के सामने खड़ी तो हो जाती है लेकिन तभी आता है ट्विस्ट, शीशे टूट जाते हैं। इससे पहले कि शीशे तन्वी को लगते, युग उसकी ढाल बन जाता है। बस फिर क्या, शीशे के टूटने पर मच जाता है बवाल और तन्वी को लेकर होने लगती हैं अपशगुन वाली बातें।
1: महंगे कपड़े पहन के, जूते पहन के क्या मतलब, जब अक्कल दो पौड़ी गिन गए ताज है इतना धूप है, इतना गर्मी है, गर्मी से क्रैक आ जाता है काजो। हर चीज की एक्सप्लेनेशन साइंस में है बट ये क्या ऑप्शन उन शगुन लेके बैठे हैं आप लोग। हाँ बढ़ो, इन सबसे ऊपर तो बढ़ो। ठीक है, अगर मैं बैठा होता ना इस काज के साथ और अगर टूटा होता काज तो मुझे कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि मैं आदमी हूँ और ये शगुन अपशगुन औरतों के इसमें है। बोलो, इनका देखा लिया है क्या? है ना? अच्छा नहीं, तुम इन सब लोगों पे ध्यान मत दो। बस लो, और क्या प्रॉब्लम हो गया वो दिखाई कर ना, जस्ट ब्रेक इन वॉच देखो।
2: ताने तो रोज ही मिलते हैं क्योंकि फिर वो अपने लोगों से हो, समाज से हो, ताने तो कुछ छूटते नहीं है तन्वी के पीछे से।
3: सो एज यूजुअल यहाँ पे अक्का साहब हमारे अगेंस्ट एक यू नो प्लान रच रहे हैं एंड फिर वो एग्जीक्यूट भी हो जाता है उनका। थोड़ा सा एक्शन सीक्वेंस है यहाँ पे, थोड़ा सा ड्रामेटिक हीरोइक हीरो ये सब सीक्वेंस है यहाँ पे। सो काज टूटता है, मैं बचाता हूँ इन्हें और फिर उसके बाद यू नो देयर इज अ वेरी गुड सोशल मैसेज इन दिस एंड जो मैं भी देता हूँ और ये भी देती हैं एंड आफ्टर दैट बस यही है इन दिस सीक्वेंस दैट यू नो लिटिल बिट ऑफ romance, little bit of heroic movements and a little bit of social message and of course like hum dono kamre mein jaise bhi hain, matlab you know we don't like seeing each other's face kamre mein but bahar aake hum ek dusre ko support karte hain, hum ek dusre ke liye stand lete hain. So yes, this is what aap dekhenge yahan pe is episode mein hamare. Yes,
0: ab muh dikhai ki rasm to hokar hi rahegi kyunki yug ne uski taiyari bhi kar li hai. सभी के सामने कपबोर्ड ला दिया और उसके ऊपर रख दिए 5-5 मोबाइल और साथ ही अपनी बीवी तन्वी को उन मोबाइल के सामने खड़ा कर दिया ताकि सभी तन्वी का चेहरा देख सकें। बस फिर क्या, युग के पापा ने इस पर तालियां बजा दी और तभी आ गया कहानी में ट्विस्ट क्योंकि मीडिया वालों ने तन्वी और युग के सामने सवाल रख दिया उनके एज गैप को लेकर। ऐसे में युग कुछ कह पाता तन्वी सामने आ गई और वहां पर खड़ी हर औरत से उसके पति की एज के बारे में पूछा और फिर मीडिया वालों को करारा जवाब दिया।
4: कुछ नया नाम होगा तो वो भी बोल देना, औरत को चाहे जो नाम
0: अब तन्वी ने इतनी समझदारी वाली बात की है तो ससुर जी की तारीफ करना तो बनता है। ऐसे में युग के पापा ने मुंह दिखाई की रस्म को आगे बढ़ाया और बारी आई बहू रानी को मुंह दिखाई का नेक देने की। युग के पापा अपनी बीवी को ले आए, लेकिन वहाँ पर तन्वी की सासू माँ ने उसे अपनी बहू माने से इनकार कर दिया और नाराज होकर चली गई। और फिर बारी आई व्योम की। जरा देखिए कैसे व्योम पहुँच गया और मुंह दिखाई में नेक में उसे अपनी ही अंगूठी देने लगा। इस पर युग कुछ कहता, तन्वी ने ही हाथ जोड़कर व्योम को अपने से दूर कर दिया।
2: जो इतने सालों से तन्वी फेस कर रही है और सब सह रही है, तो अभी वो उस नोट पे आ चुकी है कि अभी जो कुछ भी है इसने पहले तो ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी शादी यू के साथ हो चुकी है और वो इस घर की बहू बन चुकी है। तो अभी जो है जैसे भी है, अगर मेरी आई जो है मतलब यू की जो आई है वो गिफ्ट देती है, अभी वो बहुत ही नाराज़ है मुझसे। तो तन्वी ऐसी लड़की है कि अगर कोई नाराज़ है तो वो पहले उनकी नाराज़गी दूर करेगी। तो पहले उसकी वही कोशिश रहेगी कि जो भी वो देना चाहती है, फिर वो प्यार हो या तोहफा, वो दिल से होना चाहिए। तो पहले वो उसकी नाराज़गी दूर करेगी। और जो व्योम जी आते हैं, तो व्योम जी के बारे में जो सच है, व्योम जी जैसे है तन्वी को उनका जो सच है वो पता चल चुका है। तो अभी उसी के हिसाब से उनके जो सीन्स रहेंगे, तो वो कहती है कि तू आप दूर ही रहना तो अच्छा है, तो उसी के हिसाब से हमारा रिश्ता आगे भी रहेगा। तो इस हिसाब से तन्वी सबको भी जवाब ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन जो अभी सब सह रही थी अभी वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस होने लगी है।
3: ऑफ कोर्स दिक्कत है मुझे, बिकॉज नाउ दैट आई हैव नोन कि व्योम कैसा है पर्दे के आगे पर्दे के पीछे, सो उस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे कोई भी यू नो आदमी जिन्होंने मेरी अभी वाली धर्मपत्नी के साथ नाइंसाफी की है वो उनके आसपास भी रहे। एंड ये सिर्फ मेरा नहीं, इन जनरल यू नो सबका ऐसा ही नेचर होता है, हर मर्द का ऐसा नेचर होता है अपनी बीवी को लेके, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, कि वो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा इंसान उनके सामने आए जो जिसके साथ पास रह चुका है या फिर जिन्होंने यू नो थोड़ी बहुत परेशानी दिक्कतें ये सब की हो। तो यस, वैसे ही मैं आता हूँ और ऑफकोर्स मुझे नहीं पसंद होता है ये सब।
0: खैर, युग और तन्वी दोनों को ही व्योम का असली चेहरा पता चल गया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि व्योम को बढ़ावा अक्का साहब दे रही हैं, यानी अब इनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां खड़ी करेंगे व्योम और अक्का साहब, जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: और प्रथम आज तो हम है फुल ऑन पार्टी मोड में, और आज हमारी ये वीकेंड वाली पार्टी चलेगी नॉनस्टॉप, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपकी कहानी में आते हैं नॉनस्टॉप ट्विस्ट। इनफैक्ट यहाँ तो होती है ट्विस्ट की बौछार, या फिर मैं कहूँ यहाँ होती है ट्विस्ट वाली पार्टी। लेकर चलते हैं आप सबको मनाती सुंदर के सेट पर।
0: बदला प्रथम का अंदाज, बदले राध्या के ससुराल वालों के मिजाज, बदली मन अति सुंदर की कहानी।
5: काश हम उस वक्त के पहिए को पलट पाते जब राधा की किस्मत इस घर से ली थी।
0: कहानी हुई 10 साल पुरानी। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राध्या से नफरत के चलते दादी ने ऐसा खेल खेला है कि ये रिश्तों की कहानी सीधा 10 साल पुराने समय में पहुंच गई है। राध्या तो वर्तमान में ही रहेगी, लेकिन दादी का पूरा परिवार भूतकाल में पहुंच गया है, वो भी 10 साल पहले, जहां पर अहम और एकता का रिश्ता तय किया जा रहा है। जरा देखिए कैसे एकता दुल्हन बनकर बैठी हुई है। अहम भी एकता संग शादी रचाने के लिए बहुत खुश है। रजनी, प्रथम और प्रथम की बुआ जी सभी के अंदाज बदले हुए हैं, क्योंकि ये 10 साल पुराने वाले अंदाज हैं। ऐसे में अहम की शादी में रजनी अपने बेटे प्रथम की नज़र भी उतारती है और उस पर अपना प्यार भी जताती है, कि तभी अहम ले आता है ट्विस्ट और अपनी माँ रजनी को बताता है कि अहम किसी से प्यार करता है। बस फिर क्या, ये जानते ही रजनी प्रथम से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है और प्रथम सीधा हाथों से इशारा कर अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी माँ के सामने ले आता है। उसे देखकर रजनी बहुत खुश होती है, क्योंकि वो उसमें अपनी बहू जो देखने लगी है।
6: कितनी प्यारी बेटी
0: अब ऐसे में अपने बेटे की खुशी में अपनी खुशी को मानते हुए रजनी उसके हाथों में मेहंदी का शगुन लगाने ही जाती है कि तभी आ जाता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि आ जाएगी राध्या जो सभी के सामने ये बताएगी कि प्रथम शादीशुदा है, वो भी उसके साथ। अब देखना होगा कि राध्या की बातें सुनकर जो सभी को जोरदार झटका लगा है, क्या सभी उस पर यकीन कर पाएंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: गुरु और रूहानी, वीकेंड आ गया है, पार्टी तो बनती है। अरे आप दोनों भी घिरे रहते हैं किसी ना किसी लाइफ सिचुएशन में, तो चलिए आप सबको भी लेकर चलते हैं सीधा इश्क जुनूनी के सेट पर और देखते हैं क्या यहाँ पर अब भी है इश्क का जुनून या फिर किसी नए ट्विस्ट का। वेल, कहानी में आया है फिर से एक इंटरेस्टिंग ड्रामा, लेकर चलते हैं आप सबको सीधा यहाँ।
0: गुरु बना रूहानी का सहारा, तेजू का नया पोस्टर, रूहानी को लेकर घर में मजा बवाल,

0: दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में रूहानी की हालत खराब है। जरा देखिए कैसे उसके होश उड़े हुए हैं, उसके चेहरे पर खून के निशान हैं। असल में अस्पताल में एक बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिस सदमे में रूहानी है और गुरु उसका सहारा बना हुआ है, इसीलिए तो उसे अपने घर पर लाया है। लेकिन घर आते ही उसके सामने आ गया है ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि तेजू लेकर आई है, क्योंकि तेजू ने घर के दरवाजे पर पोस्टर लगा दिया है और इनडायरेक्टली रूहानी को कातिल बता दिया है।
1: अंदर आने से पहले ये नोटिस पढ़ लेना, खूनियों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं।

0: जो जो जो फैसला सुना दी, जब तक सच सामने नहीं आ जाता ना, बेगुनाह है कंपाउंडर।
1: भाई गुरु तो अपने पापा की भी नहीं सुनता, फिर ये तेजू क्या चीज है। ऐसे में गुरु रूहानी को घर के अंदर ले भी आता है और उसे कमरे में छोड़कर वापस सभी घर वालों के सामने आता है। बस फिर क्या, उसे अपने सामने देखकर गुरु के पापा रूहानी के बारे में अनाप शनाप बोलने लगते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो गुरु के सामने रूहानी को हथियारन तक बता दिया।
2: जानते हैं उसके दामन पे खून के छींटे लगे हुए हैं।
3: आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इस घर में गंगा जल के छींटे पड़े हैं। हम सब साधु हैं।
4: हाथ भले ही मैले है पर हमारा आंचल साफ है गुरु। इसके चेहरे पे सना खून का रंग देखा है हमने। हथियारन कहीं की
3: हथियारन वो नहीं हम है जो अपने मतलब के लिए दूसरों की जान लेते हैं। वो तो उल्टा दूसरों की जान बचाती है।
2: बेटा दूसरों की जान तो अपने ईमान के लिए लेते हैं। हमारे काम का हिस्सा है ये
3: उसके काम का हिस्सा है।
1: भाई गुरु ने तो 100% की बात बोली है और अपने पापा की बोलती बंद करा दी, लेकिन तेजू ने आकर गुरु के सामने रूहानी के लिए उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। ऐसे में गुरु तेजू पर ही भड़कने लगा है और तो और उसने तेजू को दे दिया है अल्टीमेटम भी। खैर देखना होगा कि जब तक रूहानी अपने आप को बेगुनाह साबित करेगी तब तक कहानी में और कौन से नए ट्विस्ट आएंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: ट्विस्ट, ऐसा तो कह रहे हैं ये तमाम ट्विस्ट जो आप पहुंचे हैं हमारी एंटरटेनमेंट की कहानी में। अब देखिए कितनी सारी कहानियां हैं हमारे पास, उतने ही सारे हैं उनमें आए हुए ट्विस्ट। तो चलिए फिर फटाफट दिखा देते हैं आप सबको ट्विस्ट का ये सिलसिला, वो भी एक साथ। कैसे? ऐसे।

0: अब अनुपमा अंश के मम्मी पापा की तस्वीर तो सामने ले आई और सभी से गुजारिश करने लगी कि कोई रोएगा नहीं, पर उसके खुद के ही आंसू बह रहे हैं जिन्हें वो पूछते पूछते अपनी खुशी भी जाहिर कर रही है। इतना ही नहीं, अंश और प्रेरणा को उनका आशीर्वाद लेने के लिए कह रही है। भाई जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, मम्मी पापा का आशीर्वाद तो बनता है। वहीं दूसरी ओर परी भी तैयार शैयार होकर हाथ में गिफ्ट लेकर सभी घर वालों के सामने आ गई है, ये बताने के लिए कि वो अपने घर जा रही है क्योंकि उसके भाई की शादी होने वाली है। बस फिर क्या, ये सुनकर राही हैरान है और तो और वो राही से भी गुजारिश करती है साथ चलने को। ऐसे में गौतम और मोटीबा नहीं चाहते कि राही वहां जाए, इसलिए देखिए राही उनकी बात मानते हुए अपने ही घर की शादी में जाने से इनकार कर देती है क्योंकि दिग्विजय ने अभी तक माफी जो नहीं मांगी है।
1: नहीं मोटीबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। टिंकू ने शर्त रखी थी कि दिग्विजय उससे माफी मांगेगा। दिग्विजय ने माफी नहीं मांगी, इसलिए राही नहीं जाएगी और परी को हम जाने नहीं देंगे।
2: प्रेम,

0: दिग्विजय कोठारी परिवार तो आया ही, ऐसे में सभी ने अपना टशन दिखाना शुरू कर दिया और प्रेम उसका तो गुस्सा अभी भी चढ़ा हुआ है। इससे पहले राही कुछ कह पाती, दिग्विजय ने प्रेम के आगे हाथ जोड़कर माफी मांग ली, क्योंकि दिग्विजय भी चाहता है कि अनुपमा की खुशियों में उसकी बेटी राही जरूर शामिल हो। अब देखना होगा कि कैसे कोठारी परिवार इस शादी में शामिल होगा और कैसे श्रुति इस कहानी में ट्विस्ट लाएगी।
1: ये डायरी नहीं, ये तो मेरा खजाना है। मेरी सारी सीक्रेट रेसिपीज और सारे मसालों के राज सब कुछ इस डायरी में बंद है।
2: जीतने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं प्रेम, और जो डरता है उसको पता है ना क्या कहते हैं, लूजर।
3: क्रिश को पता,
4: उसे क्यों बताना है?
0: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा को लगा है झटका, क्योंकि उसे पता चल गया है कि तान्या माँ बनने वाली है। ऐसे में अभीरा चाहती है कि तान्या ये गुड न्यूज घर वालों को जरूर बताए और उसी के आधार पर अपनी जिंदगी का आगे का फैसला ले, क्योंकि तान्या ने फैसला कर लिया है क्रिश से डाइवोर्स लेने का। लेकिन फिर भी अभीरा चाहती है कि इस बात की जानकारी क्रिश को होनी चाहिए कि वो पापा बनने वाला है।
5: तान्या तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुमसे उस घटिया क्रिश को एक और मौका देने के लिए नहीं कह रही हूँ। तान्या जब पेरेंट्स के बीच में नफरत होती है ना, तो उसका सबसे बुरा असर बच्चे पर ही पड़ता है। बच्चे सब कुछ नोटिस करते हैं। जब तुम्हारा बच्चा ये देखेगा कि जब मेरे पेरेंट्स मिलते हैं वो लड़ते हैं, एक दूसरे को ताने सुनाते हैं, तो उस पर असर पड़ेगा जो वो डिजर्व नहीं करता। इसके लिए क्या तुम एक बार क्रिश के और अपने रिश्ते को थोड़ा सा वक्त देके अपनी चीजें सॉर्ट आउट करके देखना चाहती हो? सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हारा डिवोर्स शांति से दोनों की मर्जी से म्यूचुअली हो जाए?
4: वो तो क्रिश के साथ पॉसिबल ही नहीं है बीरा। डिवोर्स शब्द सुनते ही तुमने उसका रिएक्शन नहीं देखा था? वो आदमी मेरी लाइफ नर्क बनाता रहेगा, मुझ पे चीट करता रहेगा, मुझे कभी खुद से डिवोर्स नहीं देगा। कि डिवोर्स आज हो, कल हो, 10 साल बाद हो, होगा तो लड़ झगड़ के, वरना ये इसे भी अपने जैसा बना देगा अभीरा। इसलिए मैं जल्द से जल्द कृष्ण से दूर जाना चाहती हूँ अभीरा।
0: अब अभीरा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है तान्या को समझाने की, लेकिन तान्या ने फैसला ले लिया है कि वो क्रिश को कुछ भी नहीं बताएगी। इसी बीच वहाँ पर दादीसा, संजय और पूरे परिवार वाले आ जाते हैं। ऐसे में उन्हें देखते ही तान्या डर जाती है और अभीरा से प्रेगनेंसी किट लेकर फेंक देती है, ताकि घर वालों को इस बात का पता न चल पाए कि वो प्रेग्नेंट है। इतना ही नहीं, अभीरा को भी झटका लगा है, क्योंकि अब क्रिश का केस कोई और नहीं बल्कि संजय लड़ेगा।
5: तान्या, डिवोर्स केस लंबा चलता है, तुम फुल टाइम अपनी प्रेगनेंसी को सीक्रेट नहीं रख पाओगे। तुम्हें सबको और एटलीस्ट क्रिश को तो पता नहीं पड़ेगा।

0: बेटा तानिया, अभी भी वक्त है, अपना इरादा बदल दो, क्योंकि क्रिश की तरफ से केस मैं लड़ूंगा और मैं अपने बेटे का घर टूटने नहीं दूंगा।
1: यहाँ पर अभीरा ने अपनी कमर कस ली है ये केस लड़ने की, साथ ही साथ अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए भी अभीरा तैयार है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि अरमान ठीक तो हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से ठीक वो तब होगा जब उसकी ब्रेन सर्जरी होगी।
2: उसमें क्या आया है डॉक्टर?
3: देखिए दवाइयाँ अपना असर दिखा रही है, पर
4: डॉक्टर साहब साफ साफ बताइए,
3: जल्द से जल्द मिस्टर पोदार की सर्जरी करनी होगी।
4: सर्जरी से ये ट्यूमर सब सॉर्ट हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। राइट,
3: ब्रेन सर्जरी इतनी सिंपल नहीं होती मिस्टर पोदार।
2: आप सीरियस क्यों लग रहे हो पापा?
4: क्योंकि मैं कुछ सीरियस करने वाला हूँ, आप मेरी मदद करोगे?
2: हाँ, पर आप क्या करने वाले हो?
4: मैं ऋषभ का भांडा फोड़ने वाला हूँ।
5: हमारी इस सैटरडे वाली पार्टी को एंटरटेनमेंट के रंगों से भरने आ गए हैं अब हमारी टीम सास बहू और बेटियां, जिन्होंने मुलाकात की है चंदन आनंद से। जी हाँ, जो हैं हस्तिनापुर के वीर के शकुनी मामा। डर लगता है ना शकुनी मामा से। आज तो हमारी टीम कर रही है इनके साथ एक लुक स्टोरी, यानी पता करते हैं कि किस तरह चंदन जी बन जाते हैं यहाँ पर शकुनी मामा। गेट सेट,

0: जीवन का शकुनी अंदाज।
1: चींटियां सदैव कर्तव्य के मार्ग पर चलती हैं और राजकुमार अधिकार के मार्ग पर। और तय तुम्हें करना है कि तुम किस मार्ग पर चलना चाहोगे, कर्तव्य के अधिकार के। हाँ जी,
0: नया सीरियल, नया रूप।

0: मामा ने क्या कहा था स्मरण है ना भांजे?
1: शकुनी मामा के षड्यंत्रों का खेल।
2: भीम ने पूरे बल से वार किया था। हम पूरे छल से पांडवों की पीठ पर वार करेंगे।
1: सोनी सब पर शुरू हो चुका है नया सीरियल जिसका नाम है हस्तिनापुर के वीर, जिसमें चंदन आनंद निभा रहे हैं शकुनी का किरदार। तो आज हम देखेंगे कि कैसे चंदन शकुनी के किरदार में ढलते हैं, कैसे उन्होंने उनकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया है, कैसा है इनका लुक, मेकअप में क्या खास है और इसी के साथ उन्होंने इस लुक में अपनी तरफ से क्या कुछ एड ऑन किया है जिससे रूप निखर कर आए। शकुनी के बोलने का अंदाज, उनके चलने का अंदाज, भाई माइथोलॉजिकल शो है तो भाई लुक के साथ साथ भाषा पर भी खासा ध्यान दिया जाता है और ये सारी चीजें चंदन ने की है और देखिए कैसे इस रोल को बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे में इस किरदार में क्या कुछ खास हो इसके लिए कैरेक्टर के साथ साथ उन्होंने अपनी कई चीजें और अपना अंदाज भी जोड़ा है,

0: इससे पहले भी चंदन आनंद कई सीरियल्स कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं और अब फिलहाल वो शकुनी मामा बनकर कर रहे हैं दर्शकों का मनोरंजन। तो आइए सीधा चलते हैं शकुनी मामा यानी चंदन के पास और देखते हैं कैसे चंदन अपना मेकओवर करते हैं और साथ ही उनके बारे में भी कई और चीजें जानेंगे।
1: हाँ स्क्रिप्ट आई है, अभी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। मेरा सबसे पहले यही होता है कि मुझे स्क्रिप्ट मिल जाए, उसके बाद मैं मेकअप और सारी चीज़ें शुरू करता हूँ। बिकॉज क्योंकि जैसे ही अभी आप देखेंगे मेकअप कॉस्ट्यूम्स आएंगे तो वो लग जाएंगे चार पांच जने, तो मुझे स्क्रिप्ट देखने का टाइम नहीं मिलता है। तो जब तक स्क्रिप्ट नहीं है बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम मैं फिर सोचता रहता हूँ, अच्छा ऐसा सीन है, अच्छा ऐसा वर्ल्ड है, अच्छा इसमें ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ जो आप शैतानी कहते हो, तो वो शैतानियाँ खोजनी होती है स्क्रिप्ट में। हाँ जी
2: कितना मज़ा आ रहा है, शकुनी बने हुए हैं और मतलब जब ऑफर हुआ तो मतलब क्या लगा कि अरे शकुनी करना चाहिए?
1: देखिए पहले तो मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट था कि मतलब इतने होनहार कलाकार शकुनी प्ले कर चुके हैं, तो पर मैंने कहा ये अच्छी चीज़ है कि लोगों ने देखा हुआ है और वो ये जान पाएंगे कि मैं किस लेवल का एक्टर हूँ अगर मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। नॉर्मली मुझे लगता है कि ऐसे चैलेंजेस पिक करना शायद कईयों के लिए टफ होता होगा, पर बीइंग अ ट्रेंड एक्टर और इतने सालों की तपस्या की हुई है तो मैंने सोचा, क्योंकि इतना मुझे समझ आ गया है कि हर किसी का अभिनय अपना अलग निकलता है, तो मैं भी अभी इस खोज में हूँ कि मुझसे क्या निकलता है। तो बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी सी चीज़ें निकल कर आ रही हैं और ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही है, तो अभी तो खेला बाकी है, तो इस खेल में देखते हैं कि क्या क्या होगा, क्या क्या रंग निकलते हैं। और हाँ सबसे अच्छी चीज़ है कि बच्चे हैं इसमें, तो बच्चों के साथ एक अलग ही आनंद आता है अभिनय करने का, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ प्रोसेसेस नहीं होते हैं कि हाँ मैं ऐसी टेक्निक खेलूंगा, ये करूंगा, ऐसे सोचूंगा। वो बड़ी इम्प्रॉम्प्टू आते हैं और ऐसे प्यार से मक्खन की तरह अभिनय कर देते हैं, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसा कैसे होता है। तो किताबों में लिखा होता है कि अभिनेता को अपना बच्चा हमेशा बरकरार रखना चाहिए, तो बड़ी अच्छी लर्निंग भी है इस सेट पर। हाँ जी
0: भाई, ये पहली बार नहीं है जब चंदन शकुनी मामा का किरदार निभा रहे हैं। इससे पहले भी फिल्मों में कई और माइथोलॉजिकल शोज में शकुनी मामा का किरदार निभाया गया है, तो ऐसे में चंदन पर प्रेशर था कि वो अपनी तरफ से इसमें क्या कुछ खास रखें जिससे इनका कैरेक्टर और भी ज्यादा उभर कर आए, ये तो हम जानेंगे ही। इसी के साथ साथ आज हम देखते हैं चंदन का मेकअप रूम, कैसे उन्होंने अपने रूम को सजाया है।
1: छोटा सा रूम है ये, मुझे कोट बड़ा अच्छा लगा, लाइज रन स्प्रिंट्स बट ट्रूथ रन मैराथन। हालांकि मैं शकुनी का किरदार प्ले कर रहा हूँ पर अंदर से तो मैं इन सारी फिलोसफीज को बिलीव करता हूँ कि आप सच की राह पर चलें तो बड़ा सुकून मिलता है। और हाँ प्यार बांटते चलें, छोटी सी लाइफ है। और ये एक हेनरी मेटिस एक पेंटिंग थी, हालांकि मेरे को एक्टर की है, तो उसने मुझे बोला था कि वो शूट से आप उठा लेना, और उसने कभी ली नहीं वापस, तो मैंने बोला मैंने लगा लिए भाई। विभव हमारे को एक्टर रहे हैं शैतानी के, तो ये एक और था थोड़ा सा, बस मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा लिवेबल बना लूँ अपने रूम को थोड़ा सा प्यारा। ये कर्टन जो है बड़ा ही पुराना कर्टन है, मतलब आज से कुछ 15 साल पहले मैंने एक जब एक फ्लैट लिया था, तो जब आप उस फेज में होते हैं कि थोड़े कम रेंटल में एक फ्लैट मिल जाए, तो ये कर्टन था मेरे पास, तो मैंने बोला या मेरा घर तो खैर अब मड में है, तो मैंने बोला दिस इज समथिंग विच विल फिट इन दिस रूम। तो ये जब बच्चे आते हैं तो कई बार रील बनाते हैं इसके सामने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वाह। ये बेसिकली क्या है, अब आप सब जानते हैं कि शो अभी बस दूसरा ही हफ्ता हुआ है तो हमने शुरू किया है, तो मेरी अगली 1-2 साल की लाइफ यहीं पर रहेगी। तो मैंने जो है मिरर यहाँ प्रोडक्शन से लगवाया है, बिकॉज मैं ये मेरा बेसिकली वर्किंग एरिया होगा, मैं वर्कआउट कर लूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो ये पुल अप बार भी मैंने मंगवा रखी है, तो हाँ ये फिट होगा। अभी तो घर से ही सुबह वर्कआउट कर आया हूँ मैं, लेकिन अब जैसा वो दौर आ गया है कि रात दिन हमारी शूटिंग होगी क्योंकि हमें ऑडियंस आप सबको एपिसोड पहुंचाना होगा, तो ऐसे दौर में यहीं पर ही थोड़े से पुल अप हो गए, पुशअप हो गए, क्योंकि फिजिकल बॉडी अच्छी रहे एक्टर की तो मजा आता है अभिनय करने में। हाँ जी, बहुत अच्छी केतकी ने हमारे लिए शकुनी की कॉस्ट्यूम डिजाइन की है। मैं जो पहनूंगा तो आपको समझ आएगा, ऐसे तो एक साड़ी और एक मतलब दो थान का क्लॉथ लगेगा आपको, बट थोड़ा गांधार का फील दिया है और एक टर्बन है और जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लैक एंड सिल्वर और ग्रे और गोल्डन समथिंग, सो इट लुक्स नाइस, सो वेन एवर आई वेयर इट आई गेट कॉम्प्लीमेंट्स, सो ऑल थैंक्स टू आर डिजाइनर केतकी।

0: नहीं क्या पोटली पोटली बाबा की तो यहाँ जो है पोटली चंदन की, तो इस पोटली में क्या क्या है?
1: देखिए सबसे पहले तो जब कभी मैं लिफ्ट से निकलता हूँ तो बच्चे ये सोचते हैं कि इसमें कोई पेट है, क्योंकि नॉर्मली यू मस्ट हैव सीन कि पेरेंट्स जो हैं वो पेट को इस टोकरी में रखते हैं, वो इजीली मतलब कैरी कर सकते हैं। पर हैंड बैग्स और मेरा एक बैग तो बेसिकली बुक्स के साथ भरा होता है, कि अगर मेरे पास 2-3 घंटे हैं तो कोई कहानी कोई किताब या कोई फिलोसफी पढ़ लूँ। बट ये टोकरी मैंने एक को एक्टर से देखी थी, मैंने बोला यार ऐसा कुछ मुझे चाहिए, बिकॉज बैग्स में क्या होता है आपको सेटिंग करनी पड़ती है कि ये यहाँ यहाँ, और टोकरी क्या है बींग अ लड़का तो ऐसे ही सब डाल देता हूँ तो सारा काम हो जाता है। फर्स्ट ऑफ देखो ऐसे ही चार्जर आ जाते हैं, ठीक है ना, एक मेरे ब्लूटूथ स्पीकर्स के लिए और एक मेरे मोबाइल के लिए, ये अगर किसी दिन मिस हो जाए तो मतलब गए आप काम से, ठीक है। देन एक मेरी मेकअप किट है, इसके अंदर एक कॉम है, मेरा मेकअप का ब्रश है, देन एक डीओ है, देन मेकअप का सामान है, देन स्पॉन्ज है, देन लिप बाम है, हैं कुछ नहीं छोड़ा मैंने, ठीक है। देन मस्कारा, एक डीओ है, देन मेकअप का सामान है, देन स्पॉन्ज है, देन लिप बाम है, हैं कुछ नहीं छोड़ा मैंने, ठीक है, देन मस्कारा, या सो दीज आर द बेसिक्स कि जब कभी मेकअप टीम के पास कुछ नहीं है तो वो मेरे पास हूँ, बिकॉज दीज आर माई इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू जस्ट या टू क्रिएट द कैरेक्टर, क्योंकि कई बार मैं लाइनर काजल भी बनाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव शेड आ जाता है, तो अगर किसी के पास कमी है उस चीज़ की तो मैं बोलता हूँ अच्छा मैं निकालता हूँ। देन ये मेरा एक बैग है जिसमें मेरा एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर होता है जो कि मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, म्यूज़िक मतलब मेरे को रिलैक्स करता है। देन मेरे हेडफोन्स हैं कि अगर कोई कॉल आती है तो हर किसी को नहीं सुनाना चाहता तो मैं काम करते हुए भी ब्लूटूथ स्पीकर लगे रहें। देन एक मॉइस्चराइज़र है, देन कुछ मेरे ये बैंड्स हैं जिनके थ्रू मेरे वर्क बेसिक वर्कआउट्स हो जाते हैं, मतलब अगर बैक मसल्स, देन फुट के मसल्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर खाने में जो है मेरा एक प्रोटीन और कॉर्नफ्लेक्स और ये सब इसमें रहता है, देन बॉइल्ड एग्स रहते हैं और कुछ खाने का सामान होता है, क्योंकि मन तो करता है जब यहाँ पर नाश्ता आता है, कई बार समोसे आते हैं, छोले भटूरे आते हैं, टिक्कियाँ आती हैं, तो जब लगता है कि नहीं अभी पुट ऑन हो गया है तो आ जाओ अपनी औकात में खा लो, ठीक है ना, विच इज़ नीडेड। ज्वेलरी जो है हाँ बहुत ही देख रहे हैं, मतलब सोना चाहे जितना महंगा हो जाए शकुनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सोना तो हम ऐसे जैसे आलू प्याज की तरह खरीदते हैं, ठीक है ना। तो बाकी हाँ सर ने कहा है कि मत खरीदें तो अब मैंने रोक दिया है, तो बाकी हाँ गोल्ड बहुत है हमारे पास, कोई कमी नहीं है गोल्ड की। तो पहले टर्बन जो है बहुत हैवी, मतलब उसका वेट ही मतलब बहुत ज़्यादा था, तो आप देख रहे हैं साइज़ कितना है, उसके ऊपर ये गोल्ड की चेन्स लगी हैं और ये कड़ा सा लगा हुआ है, तो पहले तो इसका 7-8 kg वेट था, फिर मैंने उन्हें बोला कि मेरे नेक पेन शुरू हो जाएगी, सो इट्स नॉट ईजी, तो उन्होंने फिर जो है विद इन 2-3 days एक बड़ी ही लाइट सी बना दी है। तो मेरी पगड़ी देखते हुए बाकी कई आर्टिस्ट ने भी मतलब ये डिमांड की है कि हमारी भी लाइट वेट करवाओ, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऐसे माइथोलॉजिकल कॉस्ट्यूम ड्रामास पहले भी किए हैं, क्योंकि वो तब अच्छा लगता है कि हाँ सब सही है, बट वेन यू आर शूटिंग एवरी डे एंड फॉर 2-3 years, सो हाँ वो आपको फिर आपको पता नहीं चलता वो धीरे धीरे, क्योंकि आप बैठे हुए हैं मुकुट पहन के, नेक आपकी इस एंगल पर है, देन आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है पेन आने। वेन यू आर शूटिंग एवरी डे एंड फॉर 2-3 years, सो हाँ वो आपको फिर आपको पता नहीं चलता वो धीरे धीरे, क्योंकि आप बैठे हुए हैं मुकुट पहन के, नेक आपकी इस एंगल पर है, देन आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पेन आनी शुरू हो जाती है।
2: तो भाई अब बिना देरी किए झटपट से रेडी होते हैं और देखते हैं कैसे चंदन शकुनी के किरदार में ढलते हैं और इनके मेकअप में क्या क्या खास होता है।
1: पहले जितने भी महारथी एक्टर थे पेंटल साहब या प्रणीत, इन सब ने बहुत ही उम्दा उम्दा कलाकारी की है। तो लेकिन अभिनय का एक ऐसा कमाल है कि हर शरीर से एक अलग अभिनय फूटता है, ठीक है ना। तो मतलब बस इसी बात से मैं ये रोल मैंने एक्सेप्ट किया, और अब जो भी निकल कर आ रहे हैं एक अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं कि बड़ा ही सुंदर दिख रहा है, एक राजकुमार जैसा दिख रहा है, और बड़े प्यारे प्यारे जेस्चर्स हैं।

0: कि जब मैं घर से नहीं आता हूँ, मैं बेसिकली घर से आता हूँ लेकिन जो मेरा अपना घर है वो मड आइलैंड में, विच इज़ लाइक 2.5 hours अवे. सो जब मड से आ रहा होता हूँ तो मेरी सारी चीज़ें तैयार होती हैं, पर जब कभी रेगुलर शूट होती है तो मैंने एक लोकेशन के पास भी घर रखा हुआ है, तो जब वहाँ से आता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा शेव करता हूँ. वैसे तो बियर्डेड लुक है मेरी शकुनी के पार्ट में, क्योंकि ये कंटिन्यूटीज और जगह भी चल रही हैं, तो लकीली इसमें भी फिट हो गया. तब मैं इनसे डिमांड करता हूँ कि मुझे रेजर, तो फाइनली ये समझ गए कभी भी ऐसे आ सकता है, तो यहीं पर ही क्रीम पड़ी होती है और हाँ एक रेजर की नीक होती है. सुभाष नाम है, बहुत ही बढ़िया, मतलब एक्रोबैट आर्टिस्ट भी हैं ये फ्लिप्स मारते हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं और कमाल के अभिनेता हैं, और बड़ा ही प्यारा बच्चा है. अब ये देखो मेरे कमरे में आते हैं, रील्स बनाते हैं, फिर मैं जब देखता हूँ ऑनलाइन इनको, फिर ये वहीं पर ही
1: सॉरी मांगते
0: हैं, वहीं पर ही सॉरी लिखते हैं, सॉरी आपका कमरा यूज किया. मैंने बोला अरे तो ठीक है, मेरा क्या कमरा है, ये सबका कमरा है.
1: मेरे को डायलॉग्स करने हैं नागो के साथ,
0: सीधे तेरा नागो के साथ
1: शक्तियाँ दिखानी है मुझे बीमार. चलो मम्मा एक बार बता दो, कर दो चला गया
0: क्या, कर दो चल, ये सब मेरे से डिमांड करते हैं ऐसे.
1: ये हमें ले आता है.

0: तो भाई मेकअप प्रिपरेशंस और शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इसी के साथ साथ चंदन ने हमें बताया कि शकुनी के लुक में उन्होंने अपनी तरफ से क्या इनपुट्स दिए हैं। तो वो है ये लेंस, जो कि वो सिर्फ एक आंख में ही पहनते हैं, ताकि शकुनी का किरदार और भी ज्यादा पर्दे पर उभर कर आए।
1: तो ये मैंने अपनी टीम से कहा, सर से पूछा कि मैं एक आंख में लेंस रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही रिसर्च की थी थोड़ी सी, तो जो 26/11 का हेडली डेविड हेडली मास्टरमाइंड था, सो ही हैड लाइक टू डिफरेंट शेड्स ऑफ आईज, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो थोड़ा सा जब आप स्क्रीन देखेंगे ऐसे तो ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन कैमरे के सामने एक बिल्कुल ये लेंस जो है बिल्कुल ही एक अलग कैरेक्टर देता है मुझे। सो या

0: को अब हम थोड़ा सा मेकअप करेंगे। हालांकि मेकअप जितने भी सीनियर्स रहे हैं सबने बोला आपकी स्किन बड़ी अच्छी है, मेकअप बड़ा अच्छा करती है। तो इनका ऐसा भी होता है कि मेकअप के लिए कैसा स्किन का टेक्सचर है, तो समटाइम्स मेकअप मास्टर दे जैसे कि आपकी स्किन अच्छी है वो पकड़ लेती है। चलिए तो थोड़ा सा एक शेडिंग रखनी पड़ती है कि उस कैरेक्टर के पास जा सके। जैसे भी राजा महाराजा रहे हैं विदाउट मेकअप जाऊँगा तो मैं पता नहीं क्या कर लूँगा। वैसे तो कर दूँगा मैं विदाउट मेकअप कैरेक्टर को, लेकिन मेकअप करके एक फील आ जाती है।
1: तो भाई बेस लगाने से मेकअप की शुरुआत हो चुकी है और अब फाउंडेशन बेस के साथ साथ लगाया जाएगा काजल, होगा ये बड़ा सा तिलक। तो आइए देखते हैं इनका ये लुक।

तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, हमारी उलझन सुलझाओ भगवान। तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं।

0: Oye, ¿qué hago de eso? Rose. पर आपने रोज लगाया हमें तो थोड़ा सा शेडिंग आ जाती है. अब इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जब वो लाइट फेंकते हैं तो ये जो शेडिंग ज़रा सी ब्रश से दिख रही है आपकी नेकेड आई से नहीं दिखेगी, लेकिन जब इन पर लाइट डलती है हमारे डीओपी साहब की तो एक बड़ा अच्छा सा लुक बनकर निकलता है. मूविंग इमेजेस बनती हैं, जब कहते हैं 36 फ्रेम होते हैं, पहले होते थे जब रोल हुआ करता था, बट ईच एंड एवरी फ्रेम इज जस्ट लाइक एक पिक्चर, एक स्टिल पिक्चर पर जब 36 या ऐसे लगा दी जाती हैं तो वो एक रील सी और एक मूविंग पिक्चर बन जाती है. तो एक एक फ्रेम पर जब लाइट पड़ती है शेडिंग तो बड़ा ही खूबसूरत सा दिखता है. अब ये लग रहा है हमारे
1: तिलक,
0: तिलक

0: हाँ कॉस्ट्यूम में आएंगे तो आप ही बताएंगे कैसा लग रहा है। सो मेकअप इज डन।
1: तो भाई मेकअप हुआ पूरा, अब कॉस्ट्यूम पहनकर बारी है भारी भरकम ये गहने पहनने की, क्योंकि शकुनी के लुक में ढेर सारी एक्सेसरीज है, चाहे फिर वो मुकुट हो या हो हार या बाकी की सभी चीजें, छोटी छोटी चीजों पर भी खासा ध्यान दिया जाता है।

Ahora, nahiro ko nga nagbenta na ako nga kaking gold to matlab na ni Essig प्याज के भाव खरीद रहा है मैं बता नहीं सकता प्याज में वैसे तो आलू बोलते हैं लेकिन हाँ सो यार अभी फिर नहीं रोकूंगा अभी और गोल्ड पहनूंगा और पहनूंगा मैं गोल्ड जितना महंगा होता जाए गोल्ड की कमी नहीं होनी चाहिए और हाथों पर क्या पैरों में भी पहनूंगा

और ये देखो ये नकली बाल लगाए, अब इसके ऊपर हम पगड़ी पहनेंगे और शकुनी हो जाएगा तैयार। तो ये एक नकली बाल होते हैं, मेरे नकली मतलब असली इतने लंबे बाल नहीं है। तो जो है ये पीछे इसको बोलते हैं बैक पट्टी, ठीक है। तो ये हमने ये पगड़ी लगाई और ये देखो ऐसा लगता है ना रियल बाल पीछे से आया कि मेरे बाल इतने लंबे हैं। ये डायमंड स्टडेड जो है ये स्टड जो है बहुत ही मतलब सॉरी हाँ ये एक स्टड बड़े महंगे हैं।

0: बस अब इस पर थोड़ा सा मसाला डालूंगा और खेल खेलूंगा और हमारा शकुनी आप सबके लिए तैयार हो जाएगा।
1: तो भाई इस लेंस के साथ साथ चंदन ने इस कैरेक्टर में जान भरने के लिए एक और चीज की है, जो कि है इनका ये तकिया कलाम कह लो या फिर ये एक्शन।
0: हमारा शकुनी आप सबके लिए तैयार हो जाएगा।
1: तो भाई इस लेंस के साथ साथ चंदन ने इस कैरेक्टर में जान भरने के लिए एक और चीज की है, जो कि है इनका ये तकिया कलाम कह लो या फिर ये एक्शन।
2: जब हम स्टेज पर जाते हैं, मतलब सेट पर, फिर मेरा प्रोसेस शुरू होता है। आई स्टार्ट इमेजिनिंग द वर्ल्ड एंड देन टेक्स्ट इज देयर। फिर डायरेक्टर साहब मानसर जो ब्रीफिंग देते हैं, दे जस्ट टेल मी, बिकॉज उनके जहन में और उनके विजन में पूरी पिक्चर होती है। फिर वो हमें हमारे कैरेक्टर का रुख बताते हैं, क्योंकि जब हम बैक टू बैक चल रहे हैं तो भीम कहाँ से आ रहा है, कुंती जी क्या कर रही हैं, वो कहाँ पर है, तो वो सब हमें बताते हैं कि ऐसी ऐसी पिक्चर हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ से आप ऐसे जाएंगे और ये करेंगे, लेकिन इस टाइम आपको इतना एग्रेशन नहीं दिखाना है, इतना रखना है और वो करना है। देन आई गेट इन टू माई पाथ एंड कैरेक्टर एंड देन वॉट एवर कम्स आउट दैट्स फॉर मी एंड फॉर अदर्स एज वेल। ये टर्बन है, पहले मुझे लग रहा था बहुत बढ़िया है, लेकिन केतकी जैसे हमारी डिज़ाइनर हैं तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके कि कांधार उस दौर में ये कैसे ड्रेसअप रखते थे, तो टर्बन उस ईरा और उस टाइम और उस रीजन को रिप्रेजेंट करती है। देन ब्लैक कलर शायद इसलिए चूज किया होगा बिकॉज टू जस्ट पोर्ट्रे द इविलनेस ऑफ दिस कैरेक्टर, क्योंकि हाँ, और उसके ऊपर इन्होंने जो गोल्ड और सिल्वर, तो बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम निकल कर आ रही है। और जो स्टाइलिंग है ऐसे एक दुपट्टा फॉर्मेशन में, और नीचे धोती है। हाँ, हमने वो लिंपिंग रखी है क्योंकि कई जगह तो लिखा हुआ है कि ऐसा था, लेकिन कई जगह नहीं भी लिखा है। बट ये इतना आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका है कि अगर आज हम इसको निकाल देंगे तो आई डोंट नो वेदर व्हाट विल हैपन। सो एलन सर का यही था कि इसको हम रखते हैं बट थोड़ा सा। मुझे ध्यान आया कि मेरे ग्रैंडफादर, पिताजी कहते थे, दादाजी मेरे बेसिकली, तो जब मैं छोटा था तो मुझे खुश करने के लिए कुछ ऐसे हैंड जेस्चर यूज करते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर उन्होंने बोला कि कुछ एक नया आ जाए इसमें, क्योंकि बच्चों का शो है और बच्चे हैं। तो हाँ, जब मैं बच्चों से मिलता हूँ तो मैं करता हूँ जे,
3: और ये मिलते
2: जे। जीवन जीने के दो मार्ग होते हैं, एक कर्तव्य का और एक अधिकार का। चींटियां सदैव कर्तव्य के मार्ग पर चलती हैं और राजकुमार अधिकार के मार्ग पर। अब तय तुम्हें करना है कि तुम किस मार्ग पर चलना चाहोगे, कर्तव्य के अधिकार के।

0: तो भाई शकुनी मामा के किरदार में चंदन पूरी तरह से ढल चुके हैं और अब ये शकुनी मामा चल पड़े हैं अपने सेट की ओर, जहां वो सेट की सैर कराएंगे और अपने कास्ट से भी मिलवाएंगे।
1: ऐसे फिल्में देखते थे और बड़े बड़े स्टूडियोज देखते थे, तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि आज बीइंग एन एक्टर आप ऐसे बड़े बड़े फ्लोर्स पर और आप शूट कर रहे हैं, मतलब आप अभिनेता बन चुके हैं। तो सपना जी रहा हूँ मैं किसी लेवल पर, कभी सोचा नहीं था कि इतना आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिलेगा। बढ़िया, आई एम प्लेइंग शकुनी। और हाँ देखिए, ये जो है आप उस तरफ कैमरा करेंगे तो आपको ये कॉरिडोर दिखेगा, ये हस्तिनापुर का कॉरिडोर है जहाँ पर हम शूट करते हैं। मगर अगर आपने वो देखा होगा एक सीन जहाँ पर मैं गली से गुजर कर जा रहा हूँ और फिर एक डोर खोलता हूँ, जिसके हाथों में चिन्ह था उसको मारता हूँ, तो वो इसी कॉरिडोर में शूट किया गया था। बाकी यहाँ शूट चल रही है, ये हमारा एक फ्लोर है। ये देखो, ये हमारे बच्चे ऐसा कॉपी करते हैं हमें, ये सारे तालियां कर रहे हैं सब के सब। और ये देख रहे हो ये छोटे छोटे चिन्नू मिन्नू, कैसा है, ये हमारे भाई लोग हैं।
0: तो भाई देखा आपने कैसे चंदन पूरी तरह से अब शकुनी मामा के किरदार में ढल चुके हैं। अब वक्त तो चला है इन्हें बाय बाय कहने का। भाई हम तो यही कहेंगे कि शकुनी मामा यूं ही षड्यंत्र रचकर करते रहें सीरियल के जरिए अपने दर्शकों का मनोरंजन।
1: मैं चंदन के आनंद, और जैसा कि आपने देखा कि मैं अब शकुनी के रूप में तैयार हो गया हूँ, हालांकि आत्मा अभी नहीं लाया हूँ उसकी, मैं वो मैं स्टेज पर ही लाऊंगा। बट हाँ, ये बहुत सोचकर समझकर जितना मुझे आता है अभिनय, तो सारी शैलियों का प्रयोग करके इस किरदार को, एक आइकॉनिक कैरेक्टर को खेलने की मैंने कोशिश की है, और कुछ नए एलिमेंट्स इसमें ऐड किए हैं। आप देखिए और सराहिए, और जब मौका मिले हमें अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच।
0: मुंबई से नुपुर मावजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: ईशा बांध ही लीजिए मेरी बात, ले लीजिए एक ब्रेक, हो जाएं हमारी इस पार्टी में शामिल, यूं सेकंड्स में हो जाएंगी आप रिफ्रेश और रिचार्ज्ड। क्योंकि देखिए हमारी पार्टी की ना कुछ वाइब ही ऐसी है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको पति ब्रह्मचारी के सेट पर और देखते हैं किस हाल में है आज हमारी प्यारी प्यारी ईशा।
0: मेहंदी ने बना दी सूरज ईशा की जोड़ी, ईशा के हाथों में रचा सूरज का नाम। मोनिका ने मचाया हंगामा, देख सूरज के निशान। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा कर रही है चुटकी की मेहंदी की तैयारी। जरा देखिए कैसे ईशा मेहंदी को खुद ही पीस रही है, वो भी सिलबट्टे में। लेकिन उसे हो रही है परेशानी, क्योंकि कभी बाल उड़ रहे हैं तो कभी मच्छर आ रहे हैं। ऐसे में वहाँ सूरज आ जाता है ईशा का हाथ बटाने, और देखिए कैसे सूरज और ईशा की जोड़ी जम जाती है मेहंदी पीसते पीसते। लेकिन इसी बीच मच्छर ईशा को कर रहे हैं बेहद ही परेशान, और सूरज से ये देखा नहीं जाता, इसलिए देखिए कैसे वो जाकर ले आता है मॉस्किटो कॉइल, ताकि मच्छर ईशा को परेशान ना करें। ऐसे में सूरज की नजर पड़ जाती है ईशा की मेहंदी पर।
3: मेहंदी पीसते पीसते कैसे मेहंदी रच गई आपके
4: हाथों में?
5: तो
4: जैसे कि हम गांव आए हैं छुटकी की शादी में, तो वहीं मेहंदी पीस रहे क्योंकि अगले दिन मेहंदी की रस्म है। तो मोनिका भाभी को आलस आ रही होती है, काम चोरी कर रही होती है, तो ताइमा को मैं कहती हूँ ताइमा आप दोनों चाहिए आराम करिए, मैं सारा काम कर लूँगी। और मैं मेहंदी पीसने लगती हूँ तभी सूरज आता है, सूरज मेरी हेल्प करने आता है और उसी बीच वो रोमांस बिल्ड होता है कि हाँ दोनों साथ में मेहंदी पीस रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और मच्छर हमें बीच में बहुत तंग कर रहा है तो मैं बार बार ये जो कर रही हूँ, तो सूरज अगरबत्ती ले आता है कि ईशा जी को मच्छर ना काटे, तो उसी में वो देखता है कि मेहंदी रच गई ईशा के हाथों में, तो वो कहते हैं ईशा जी, तो फिर मैं समझाती हूँ कि जो पति अपनी पत्नी से प्यार करे तभी गहरा रंग रचता है, तो ये मेहंदी। और फिर सूरज अपने हाथों से मेरे हाथों में सूरज लिखता है कि अब हुई आपकी मेहंदी पूरी।
0: भाई ईशा के हाथों में मेहंदी रच तो गई है लेकिन ये मेहंदी अधूरी है क्योंकि सूरज लेकर आ जाता है मोर पंख और देखिए कैसे मोर पंख के जरिए वो ईशा के हाथों में अपना नाम लिखता है और ये देख ईशा खुश भी हो रही है, या यूं कह लो मेहंदी इनकी जोड़ी जमा रही है।

0: या बिल्कुल, सूरज ईशा हमेशा से मतलब कि दूर होके भी साथी थे, मैं पहले भी बोला, और आज तो एकदम पास में है, तो जो भी है रोमांस है, आंखों से है, मतलब कि वी कैन से टेलीपैथी वे से दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वही बहुत है। बिकॉज ये हमारी जो स्टोरी है ये इट्स ऑल अबाउट द नो टच लव स्टोरी, सो इसमें उसी चीज़ को बरकरार करते हुए हम ऑडियंस के दिलो दिमाग में घुस चुके हैं एंड ऑडियंस भी इसे बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है। तो थैंक्स कहना चाहता हूँ ऑडियंस को, व्यूवर्स को, फैंस को, मेकर्स को, दंगल चैनल को, कि इतना अच्छा शो लेकर आए, एंड आप सभी को भी, बिकॉज आप सब हैं तो हम हैं, हमेशा से मेरा एक ही डायलॉग है।
1: अब सूरज और ईशा को तो अपने दायरे पता है, इसीलिए तो सूरज के चले जाने पर ईशा अपनी हथेली पर उसका नाम देखकर खुश हो रही है। खैर, ईशा ने मेहंदी की रस्म की पूरी तैयारी कर ली है और अगले ही दिन मेहंदी की रस्म शुरू भी हो जाती है। सारी औरतें घर में आ जाती हैं और मोनिका वो तो झूम झूम कर नाच रही है क्योंकि उसे ताई माँ ने नाचने का काम जो दिया है। इसी बीच जैसे ही वहाँ पर आता है सूरज, उसे देखकर मोनिका के थिरकते कदम रुक जाते हैं और वो हो जाती है हैरान।

0: कल रात को बहुत मच्छर
1: हमने मच्छरों का काटना देखा है और इंसानों का काट खाना भी।
2: अब मान भी लो कलेक्टर साहब, ब्रह्मचर्य टूट गया आपका।
3: ये एक लव बाइट है जो कि ईशा जी ने दिया है। अब सब ये आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि ब्रह्मचर्य टूट गया क्या? या बिल्कुल वही शौक मेरी ताई माँ और मोनिका भाभी को लगा है एंड इवन मेरी बुआ जी को भी लगा है। लेकिन जब ईशा जी आती हैं तो यू नो क्लैरिफिकेशन देती हैं कि ये लव बाइट नहीं, मतलब कि इन शॉर्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये मच्छरों ने काटा है सूरज को। एंड वो क्लियर करती है तब जाके सबको राहत आती है। उसके पहले कुछ महिलाएं होती है गांव की जो कि सूरज के सामने मजाक उड़ाते रहती है कि कलेक्टर साहब अब आपका ब्रह्मचर्य टूट गया, ये हो गया। एक्चुअली रात को कुछ हुआ नहीं रहता है, रात को मच्छर काटे रहते हैं इससे बहुत, एंड वो लव बर्ड वाले निशान बन गए हैं। तो मतलब कि इन शॉर्ट जो अगर देखेगा कि एक शादीशुदा कपल है, अभी रिसेंटली दोनों साथ आए हैं, तो उन्हें तो यही डाउट आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सो दैट्स द ट्रैक, मॉस्किटो बाइट है या मॉस्किटो लव बाइट। या
4: भाई ये मॉस्किटो बाइट देखकर तो मोनिका गलतफहमी की शिकार हो गई और झटपट चली गई ताई माँ को बताने। ये सुनते ही ताई माँ भी हैरान है और वो आ जाती है सूरज से बात करने के लिए। वो सूरज के निशान देखकर हैरान तो होती है कि इसी बीच वहाँ पर ईशा भी आ जाती है चुटकी को लेकर, क्योंकि चुटकी को मेहंदी जो लगने वाली है। लेकिन ताई माँ उससे पहले ही ईशा को पकड़ लेती है और उसे सुनाने लगती है, क्योंकि अब तक कुल देवी की पूजा जो नहीं हुई है। लेकिन ईशा बड़ी ही समझदारी से ताई माँ को सारी बातें समझाती है। बस फिर क्या, ईशा की बातें सुनकर ताई माँ का गुस्सा मोनिका पर फूट जाता है।
1: मेरी बहू शहर की है लेकिन बहुत संस्कारी है। ये तो ये जारी की बात का पतंगड़ बनाती है जीजी।
3: कुल देवता का जो पूजा है अभी तक हुआ नहीं है, तो सूरज अभी नो टच पे ही है, क्योंकि सूरज को अच्छे से पता है कि अगर ताईमा ने कुछ बोला है तो सोच समझ के बोला है। लेकिन अब कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो रहे हैं कि ईशा जी को भला बुरा बोला जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, ये मतलब पढ़ी लिखी होने के बाद भी चूल्हा चौका चला रही है, बुआ जी वगैरह की ये सब बातें सूरज सुन रहा है, कुछ नोटिस भी कर रहा है। एंड अब अगला क्या पड़ाव आने वाला है ये तो देखने में ही मजा आएगा।
1: मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। हां हां चलो चलो।
4: खैर जो गलत फहमियाँ थी वो सारी मिट चुकी हैं और चुटकी की मेहंदी की रस्म भी शुरू हो गई है। चुटकी के हाथों में उसके पिया का नाम लिखा जा रहा है, लेकिन चुटकी के बगल में उनकी माँ बैठी है जिनको आ जाता है कॉल और वो परेशान है। अब देखना होगा क्या सूरज और ईशा उनकी परेशानी को समझ पाएंगे और सुलझाएंगे या फिर खुद उलझ कर रह जाएंगे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: हमारे रीत और राघव है ना, ये परफेक्ट जोड़ी, कितने अच्छे से करते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट। वैसे रीत और राघव, मैं जानती हूँ आप दोनों क्या सोच रहे हैं कि अभी से शुरू कर दी सैटरडे वाली पार्टी, अब यही है हमारे शो का टाइम और हम तो सेट करना चाहते हैं इस वीकेंड पर फुल ऑन पार्टी मोड। क्योंकि देखिए सब अपनी अपनी प्रॉब्लम से जूझते हैं, काम पर जाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एक वीकेंड ही तो होता है थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए। तो चलिए फिर पता कर आते हैं ऐसा क्या हो रहा है कहानी में। आज लेकर चलते हैं आपको फटाफट जाने अनजाने हम मिले के सेट पर।
6: यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ।
4: रीत की तड़प,
6: हूँ खुद से अलहदा, ये आधा सा।
4: राघव का दर्दे दिल,
6: कैसे बसाऊं रूठे दिल, रूठे दिल।
4: बुआ जी ने किया दोनों का जीना मुश्किल,
6: झूठे दिल, झूठे दिल, झूठे दिल।
4: जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में दिव्या हाथ धोकर रीत के पीछे पड़ गई है, वो भी बुआ जी के कहने पर। इसीलिए आज उसने रसमलाई और पीहू को अपना जरिया बना लिया। जरा देखिए कैसे रसमलाई तो ले आई, साथ ही पीहू को बुला लिया और पीहू से रीत को बुलाने के लिए कहा ताकि वो पूनम को रीत के खिलाफ भड़का सके।
7: रसमलाई खाओगी?
4: भाई पीहू के मुंह से रीत के लिए माँ सुनकर पूनम हैरान हो जाती है और वीरेन वो भी परेशान है। ऐसे में जैसे ही रीत आती है तो पूनम उसे सवाल जवाब करने लगती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं रीत उससे उसकी बेटी छीन ना ले। ऐसे में दिव्या घी में आग डालने का काम कर रही है, इसीलिए तो सभी के सामने पीहू से ये बुलवाती है कि उसे माँ कहने के लिए रीत ने ही कहा है। बस फिर क्या, ये सुनकर रीत समझाने की कोशिश करती है। भाई दिव्या ने ऐसा पासा फेंका कि पूनम के दिल में अब रीत के लिए धीरे धीरे नफरत पैदा होने लग गई है, इसीलिए तो आज पूनम ने रीत को आगाह भी कर दिया। हालांकि रीत ने पूनम को समझाने की कोशिश की लेकिन पूनम अब रीत की सुनने से रही, और वीरेन भी पूनम का साथ दे रहा है और राघव को दे रहा है अल्टीमेटम कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। इस पर राघव भी अपने भाई से नाराज होता है लेकिन दिव्या जो चाहती थी वही हो रहा है। और तो और दिव्या ने आज रीत को ताना भी कस दिया।
2: कैसे हो तुम? तुमसे अपना बच्चा तो संभाल ली, अब तुम किसी और का बच्चा छीने चली हो?
0: भाभी बस
4: पूनम ने तो अल्टीमेटम दिया ही, वीरेन ने भी राघव को हिदायत दे दी कि वो और उसकी बीवी रीत उनकी बेटी पीहू से दूर रहे।
0: हम एक छत के नीचे रहते हैं, हम सब एक परिवार है, और आप ऐसा फैसला कैसे लेते हैं? हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, ये पीहू के लिए अच्छा नहीं। नहीं, जो तुम दोनों कर रहे हो मेरी बेटी के साथ वो उसके ऐसे नहीं है। तुम पीहू के साथ कोई रिश्ता नहीं।
4: खैर अब तो वीरेन भी राघव की सुनने को तैयार नहीं, वो तो चला जाता है। और बुआ जी वो ये नजारा देखकर खुश हो रही है क्योंकि वो तो चाहती ही यही थी, और उन्होंने पासा फेंका है कि परिवार का हर एक सदस्य धीरे धीरे रीत और राघव दोनों से दूर हो जाए। ऐसे में बेचारी रीत उसका दिल टूट गया है, और देखिए कैसे अपने आप को अकेला पाकर वो फूट फूट कर रो रही है, और वहीं दूसरी ओर राघव उसके इस दर्द को समझ रहा है।

0: अब देखना होगा कि रीत के दर्द दिल का राघव क्या इलाज ढूंढेगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: एक सैटरडे वाली पार्टी में म्यूजिक और डांस तो कर देता है कमाल, सेट कर देता है हम सबका मूड, और ये तो होता है बहुत ही रॉकिंग। लेकिन एट द सेम टाइम अगर खाना पीना हो जाए ज्यादा तो फिर ना हो पाएगा डांस और हो जाएगा आपके लिए शॉकिंग। कुछ ऐसी ही रॉकिंग, कुछ ऐसी ही शॉकिंग है हमारे पास ये सारी खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट में, जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग नजारा देख लीजिए सीरियल अनुपमा के सेट से, जहां पर रूपाली गांगुली को मौका मिल गया है अपनी छोटी सी जया के साथ ताल से ताल मिलाने का, और देखिए कैसे दोनों मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं।

देख लीजिए श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म एथा का ये टीजर, जहां पर श्रद्धा कपूर निभा रही हैं फेमस लावणी डांसर वीटा भाई नारायण गांवकर का किरदार। इस फिल्म में दिखाई गई है उनकी जर्नी। Amazon प्राइम पर कुणाल खेमू के आने वाले रियलिटी शो अलायंस में डेजी शाह के नाम के बाद आ रहा है कुशाल टंडन का नाम। हालांकि अब तक कुशाल टंडन ने इस बात का कंफर्मेशन नहीं दिया है। इसी के साथ बिपाशा बसु और उनके पति करण सिंह ग्रोवर का भी नाम आ रहा है। हो सकता है ये भी अलायंस में नजर आए। हालांकि अब तक उन्होंने इस शो की हामी नहीं भरी है। नेटफ्लिक्स पर आने वाले रियलिटी शो लॉकअप में नजर आएंगी श्रेया कालरा। इस बात का कंफर्मेशन उन्होंने दे दिया है। इसी के साथ नाम आ रहा है योगेश रावत और आकांक्षा चौधरी का भी, जो कि इससे पहले नजर आ चुके हैं स्प्लिट्स विला 16 में।

फिल्म हॉन्टेड 3D की सक्सेस के बाद चेतना पांडे पहुंच गई हैं मुंबई के सिद्धि विनायक टेम्पल लेने गणपति बप्पा का आशीर्वाद और करने उनका शुक्रिया अदा।

कॉकटेल 2 के रिलीज होते ही डायरेक्टर होमी अडाजानिया ने शेयर किया है इटली टूर का एक BTS वीडियो अपने फैंस के लिए। इसी के साथ इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकार शाहिद कपूर ने भी अपने फैंस के लिए कुछ BTS नज़ारे शेयर किए हैं।

साथी क्रिटिसेनॉन और रश्मिका मंदाना ने भी अपने फैंस के साथ शेयर किए हैं कई सारे बीटीएस वीडियो, जहां पर नजर आ रहा है कि शूटिंग के दौरान इन सभी ने कितनी मस्ती की है और कितना एंजॉय किया है।

दिलजीत दोसांझ की फिल्म मैं वापस आऊंगा से एक BTS वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर दिलजीत दोसांझ नसरुद्दीन शाह के पैर छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनसे कुछ सीखने का मौका जो मिला है।

मुंबई के फेयरफील्ड मैरियट में मनाया जा रहा है गोवा फूड फेस्टिवल, जहां पर पहुंच गए हैं कई सितारे जिनमें नाम शामिल है सचिन पिलगांवकर का। इसी के साथ नजर आए हैं सचिन श्रॉफ, मीरा देवस्थले, लेखा प्रजापति। रात खानजादी ने अपने जन्मदिन के मौके पर रखी है पार्टी और बुलावा भेजा है अपने दोस्तों का, और ऐसे में खानजादी के दोस्त खानजादी को उसके जन्मदिन की बधाइयां देने पहुंचे हैं, जिनमें नाम शामिल है मनारा चोपड़ा का। इसी के साथ ऐश्वर्या शर्मा, अर्चना गौतम, सारा खान, सोनिया बंसल, दिग्विजय और भी कई लोग पहुँचे हैं खानजादी को जन्मदिन की बधाइयां देने।

साइली और सचिन, हमने तो सेट कर दिया है पार्टी वाला मूड, अब बस हमें इंतजार है आप दोनों का कि आप दोनों पहन ले पार्टी आउटफिट्स मैचिंग वाले और हो जाए एक बॉलीवुड नंबर पर डांस। आहा, हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट, फिलहाल एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है इनकी कहानी में भी। फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको उड़ने की आशा के सेट पर।

0: स्टार प्लस के सीरियल उड़ने की आशा में साइली और सचिन की मेहनत रंग लाई आकाश और रिया को एक करने में। जरा देखिए कैसे आज उन्होंने आकाश की मदद करते हुए रिया को सरप्राइज दिया है, उसे उसकी बीती यादें याद दिला दी, जिसे देखकर रिया इमोशनल तो हो रही है, लेकिन तभी आकाश ने आकर सभी के सामने रिया से अपने प्यार का इजहार किया। ये देख रिया हैरान है। इतना ही नहीं, आकाश तो उसकी कसम खाते हुए ये भी बता रहा है कि उसने आज तक रिया के अलावा किसी को पसंद ही नहीं किया। बस फिर क्या, ये सुनकर रिया खुश हो गई है और आकाश फिर से उसे प्रपोज कर रहा है।
1: And I promise you, baby, मैं हमेशा तुम्हारा पार्टनर बन के रहूंगा, चाहे वो हमारा प्यार हो या हमारा रेस्टोरेंट, चाहे तुम्हारा वो प्यारा सा गुस्सा हो या फिर तुम्हारा फेवरेट कपकेक। Surya Deshmukh, will you be mine all over again?

0: डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस डेली मेडिसिन और प्रॉपर केयर की जरूरत है। और हाँ, इसमें माँ बनने की भी संभावना 100% है। माँ बनने में कोई इशू नहीं है, बस नॉर्मल लेडी से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है।
1: मैडम आप जैसा बोलेंगे हम लोग वैसा करेंगे, खाना पानी का भी ध्यान रखेंगे, तुम बस बताओ क्या करने गए।
2: जैसे जैसे डॉक्टर कह रही है, सचिन ने वैसे वैसे अपनी लिस्ट तैयार कर ली है और अब वो अपनी साइली का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा है, क्योंकि वो चाहता है कि साइली हमेशा खुश रहे।
0: ये सब की क्या जरूरत है?
1: मैं तो रात भर बैठ के वीडियो देखा है, मालूम है क्या खाना मांगता है, क्या नहीं खाना मांगता है, कितना वक्त देना मांगता है, कितना नहीं वक्त देना मांगता है, सब लिख के रखा है। नहीं उसके हिसाब से अपने को बाहर वॉक पे जाने गए। तू जल्दी से नाश्ता पानी कर। और मैंने ठान लिया है साली, ये जो PMOS नाम का कीड़ा है ना, इसको मेरे को तेरी जिंदगी से निकाल के मारने का ही चाहिए।
0: सचिन तुम सच में बेस्ट पति हो।
3: तो कैसा रहा हमारा ये वीकेंड स्पेशल? हमने आपको घर बैठे बैठे करवा दिया ना एंटरटेनमेंट की दुनिया का सफर। लेकिन क्या करें, अब तो ये घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल, जहां आप और हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जो फिट है वो हिट है, योग करें, योग को अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं। चलिए फिर, सी यू टुमारो, नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250. The Great American State Fair, July 4th.
1: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
2: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
1: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
3: They score!
1: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: जो बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें

0: अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
8: जम्मू के नगरोटा बेस कैंप से 200 बसों में 9000 श्रद्धालुओं का जत्था माधा खीर भवानी मेले के लिए रवाना। आज शाम कश्मीर घाटी पहुंचेंगे भक्त, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देवभूमि उत्तराखंड में बड़े उत्साह के साथ जारी है चार धाम यात्रा। केदारनाथ धाम पहुंचे 13 लाख से अधिक श्रद्धालु, 12 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बद्री विशाल के दर्शन। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज। श्रीनगर से लेकर प्रयागराज तक युवाओं ने किया जल योग, कल पीएम मोदी कोलकाता में देंगे योग संदेश।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
8: जम्मू में माता खीर भवानी यात्रा के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी। नगरोटा से 9000 श्रद्धालुओं का जत्था हुआ रवाना। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए 200 बसों की मुफ्त व्यवस्था की। यात्रियों को कराई जा रही है सुरक्षित और आरामदायक यात्रा। सभी यात्रियों के ठहरने और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। श्रद्धालु आज शाम तक कश्मीर घाटी पहुंच जाएंगे। राहत और पुनर्वास विभाग के कमिश्नर डॉक्टर अरविंद करवानी ने जत्थे को दिखाई हरी झंडी। माता खीर भवानी यात्रा को लेकर श्रद्धालु में भारी उत्साह। हर साल हजारों कश्मीरी पंडित माता खीर भवानी मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। वो अपने पुनर्वास और घर वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के 88वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे शिरडी में साईं बाबा के दरबार। हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ साईं बाबा के किए दर्शन, खुशहाली की मांगी दुआ। साईं बाबा मंदिर प्रशासन की ओर से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का किया गया सम्मान। शॉल उड़ाकर और साईं बाबा की मूर्ति देकर किया गया सम्मानित। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। रामबन के डिविजनल कमिश्नर ने बनिहाल में यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर बढ़ाई सुरक्षा। चप्पे चप्पे की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे जवान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भगवान महाकाल के किए दर्शन पूजन, महाकाल की शयन आरती में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के रामबन में सालाना गलाधर मेले का आयोजन। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मेले में शामिल हुए और भगवान का आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं ने पहाड़ की चोटी पर स्थित मां चामुंडा मंदिर में किए दर्शन पूजन। पूजा में स्थानीय विधायक भी शामिल हुए और अमन चयन और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। महाराष्ट्र के अमरावती में संत गजानन महाराज के विजय ग्रंथ महापरायण और पादुका दर्शन का आयोजन पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी किया पाठ। आयोजन में सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल। पूरी पवित्रता से एक या सात दिन में पढ़ने होते हैं ग्रंथ के सभी 21 अध्याय। पाठ के बाद श्रद्धालुओं को बांटा गया महाप्रसाद।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: Tune in radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
0: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर है इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, The Great American State Fair, July 4th.
2: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
3: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
12: जम्मू के नगरोटा बेस कैंप से 200 बसों में 9000 श्रद्धालु का जत्था माता खीर भवानी मेले के लिए रवाना। आज शाम कश्मीर घाटी पहुंचेंगे भक्त, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देवभूमि उत्तराखंड में बड़े उत्साह के साथ जारी है चार धाम यात्रा। केदारनाथ धाम पहुंचे 13 लाख से अधिक श्रद्धालु, 12 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बद्री विशाल के दर्शन। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, श्रीनगर से लेकर प्रयागराज तक युवाओं ने किया जल योग। कल पीएम मोदी कोलकाता में देंगे योग संदेश।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
12: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। योग ध्यान साधना, ये वो कर्म है जिनके जरिए आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। योग और ध्यान में लीन हो जाना साधना है। देखिए, माना जाता है कि योग एक प्राचीन पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। जानकार बताते हैं कि ये केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, बल्कि श्वास, ध्यान और जीवन शैली का एक समग्र विज्ञान है। आज हम आपको योग से जुड़ी कुछ ऐसी ही खास बातें बताने जा रहे हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि योग, ध्यान और साधना के नियम आखिर क्या हैं।

0: योग जो तन और मन को निर्मल करता है। यह हमारी चेतना और आत्मशुद्धि का आधार है। योग जो वैदिक काल से निरंतर चली आ रही साधना है, जो न केवल हमारे मन को एकाग्र करती है बल्कि इससे हमारी मुक्ति का मार्ग भी खुल सकता है। योग की अनुभूति कर चुके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि योग हमारे जीवन में संतुलन लेकर आता है और ये संभव होता है किसी से एकाकार होकर उससे जुड़कर, क्योंकि योग का अर्थ भी जोड़ होता है। माना जाता है कि योग की सहायता से हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है तनाव। हर कोई तनाव से ग्रस्त है। माना जाता है कि योग का अभ्यास करने से हमारा तन ही नहीं बल्कि मन भी निर्मल हो जाता है। योग को आत्मा से परमात्मा के मिलन का अद्भुत प्रयोग माना जाता है। योग की साधना आज पूरा विश्व कर रहा है। माना जाता है कि योग की आत्मा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में है। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो भूखे प्यासे योगी को निरंतर साधना का बल देती है? यह और कुछ नहीं, योगाभ्यास ही है जो आपकी ज्ञान इंद्रियों को अपने में वशीभूत कर लेता है। आखिर योग क्या है? क्यों पूरा विश्व योग को आत्मसात करना चाहता है? योग की परिभाषा क्या है? योग का परमात्मा से क्या संबंध है? जरूर ये सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा, तो क्यों ना पहले इसी सवाल का जवाब आपको बता देते हैं। योग की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन इसमें महर्षि पतंजलि की परिभाषा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्तियों के नियंत्रण को योग कहा है। उन्होंने योग के 8 अंग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों को संपूर्ण रूप से योग कहा जाता है। आसन या योगासन मात्र योग का एक अंश है, आसन संपूर्ण योग नहीं है।
1: यदि हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग हमें दिया, तो अष्टांग योग में यम नियम की उन्होंने बात करी है। योग के बिना सब अधूरा है। तो जब योग साधना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे प्रारंभ में जो हमारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, अवरोध होते हैं, वो धीरे धीरे धीरे धीरे हमारा जो मनोबल बढ़ता है उससे वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं।
0: आसन और योगासन ये योग का हिस्सा है। माना जाता है कि ईश्वर के प्रति आपका समर्पण, आपकी आस्था और ध्यान की मुद्रा से योग की शुरुआत होती है। योग को समझने, योग को पहचानने और योग करने के लिए महर्षि पतंजलि का नाम सबसे पहले लिया जाता है। महर्षि पतंजलि के योग को ही अष्टांग योग या राजयोग कहा जाता है। माना जाता है कि योग के सभी 8 अंगों में ही सभी तरह की योग का समावेश है। जानकार ये दावा करते हैं कि जिसने भी अष्टांग योग को सिद्ध कर लिया वो साधना के चरम बिंदु को छू लेता है।
1: कोई ना कोई आयाम को पकड़ के इसकी ओर चलना होगा। और यदि मुख्य रूप से केवल स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए तो हमें, जो हम अष्टांग योग करते हैं तो अष्टांग योग हमारे लिए सर्वोपरि है। उससे हमारा तन भी स्वस्थ रहता है, हमारा मन शांत रहता है, हमारी इंद्रियों पे हमारा पूर्ण संयम होता है। तो उन्होंने अष्टांग योग उसको कहा। अष्टांग योग क्यों कहा? 8 अंग उसमें बताए गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
0: योगाचार्य बताते हैं कि भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग भी योग के 8 अंगों का ही हिस्सा है। हालांकि योग सूत्र के मुताबिक अष्टांग योग बुद्ध के बाद की रचना है। इसी योग का सर्वाधिक प्रचलन और महत्व है, इसी योग को अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। अष्टांग योग अर्थात योग के 8 अंग। पतंजलि ने योग की समस्त विद्याओं को 8 अंकों में बांट दिया है। महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया। पतंजलि ने ही योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का पिता कहा जाता है।
1: अब यदि हम आसनों की बात करें तो यम नियम का जब हम पालन करते हैं तो हम आसन स्वतः बेहतर करने शुरू कर देते हैं। कारण क्या है? आसन से हमारे शरीर यानी कि हमारी मांसपेशियां, हमारे जोड़, ये सब हमारे व्यवस्थित होंगे, ये खुलेंगे। प्राणायाम के अभ्यास से जो कहीं नहीं मिलता वो प्राणायाम से मिलता है। क्या हम अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते हैं? गुप्तेंद्री जितनी भी हैं उन सबको संयमित करने का जो कार्य है वो प्राणायाम के द्वारा हम कर सकते हैं।
0: वर्तमान में योग के तीन ही अंग प्रचलन में है, आसन, प्राणायाम और ध्यान। लेकिन योग के 8 अंगों के अपने अपने उप अंग भी हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बस तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: योग एक अद्भुत प्रयोग है। ये परमात्मा से मिलन का योग है और इस प्रयोग से आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार संभव है। योग को सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के जरिए समझाया। योग सूत्र में योगाभ्यास के दौरान प्राप्त होने वाली सिद्धियों का जिक्र किया गया है। पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में भी बताया। तो आइए महर्षि पतंजलि के अद्भुत योग सूत्र को जानते हैं।

0: योग ये आस्था की पावन गंगा से निकली वो निर्मल धारा है जो युगों युगों से बिना रुके आध्यात्म के झरनों से बहती आ रही है। माना जाता है कि योग और ध्यान इंसान को अद्भुत यात्रा पर ले जाते हैं, एक ऐसी अनुभूति जो आपका जीवन बदल सकती है। माना जाता है कि यह सफर इंसान को ज्ञान और सुख की सीमा तक ले जाता है। और यही यात्रा इंसान को भगवान के नजदीक तक ले जाने का मार्ग भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए अनुशासन का होना परम आवश्यक है।
1: अथ योग अनुशासनम, यानी कि अनुशासन जीवन में जरूरी है, और जो व्यक्ति अनुशासित है वही योग अभ्यास कर सकता है। अगर अनुशासन जीवन में नहीं है, क्योंकि योग हमें अनुशासन सिखाता है और अनुशासन के द्वारा ही योग अभ्यास किया जा सकता है, तो इसीलिए हमें अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना अति आवश्यक है।
0: माना जाता है कि योग आपको आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर ले जाता है और फिर उसी शिखर पर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। माना जाता है कि योग को समझने के लिए योग सूत्र को जानना बेहद अहम है। महर्षि पतंजलि ने योग को समझाने के लिए 200 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की थी। योग दर्शन का प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। योग सूत्र में योग दर्शन को चार भागों में बांटा गया है, जिन्हें पाद कहते हैं। ये पाद हैं समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। प्रथम पाद का मुख्य विषय चित्त की अलग अलग वृत्तियों के नियमन से समाधि द्वारा आत्म साक्षात्कार करना है। द्वितीय पाद में 5 बहिरंग साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का विवेचन है। तृतीय पाद में धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन है। चतुर्थ यानी कैवल्य पाद मुक्ति की परमोच्च अवस्था है। यह एक योग साधक का अपने मूल स्रोत से एकाकार हो जाता है।
1: ध्यान के लिए हम हमेशा कहते हैं, और वास्तविकता में यही है, ध्यान लगाने का विषय नहीं है, ध्यान लगने का विषय। यदि हम इससे पहले के 6 जो महर्षि पतंजलि के दिए गए जो आयाम हैं उनका अभ्यास कर लेते हैं तो आपका ध्यान स्वतः लग जाएगा, आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
0: योग सूत्र में योगाभ्यास के दौरान प्राप्त होने वाली सिद्धियों का भी उल्लेख है, लेकिन ऋषि पतंजलि के अनुसार वे समाधि के मार्ग की बाधाएं ही हैं। महर्षि पतंजलि ने द्वितीय और तृतीय पाद में जिस अष्टांग योग साधन का उपदेश दिया है उसका परिचय जान लेना भी जरूरी है। कायिक, वाचिक और मानसिक संयम के लिए अहिंसा, सत्य, आस्ते, चोरी ना करना और ब्रह्मचर्य जैसे अपरिग्रह 5 आचार विहित हैं। इनका पालन न करने से जीवन और समाज दोनों ही दुष्प्रभावित होते हैं। कर्तव्य परायण बनाने और जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए नियमों का विधान किया गया है। इनके अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान का समावेश है। शौच में बाह्य और आंतरिक दोनों ही प्रकार की शुद्धि समाविष्ट है। पतंजलि ने स्थिर और सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। बाद में विचारकों ने अनेक आसनों की कल्पना की है। वास्तव में आसन हठ योग का एक मुख्य विषय ही है। इनसे संबंधित हठ योग प्रतिपिका घरिंड संहिता और योगा शिखोपनिषद में विस्तार से वर्णन मिलता है। योग की यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी साधन और उनके जागरण के लिए किए जाने वाला श्वास और प्रश्वास का नियमन प्राणायाम है। प्राणायाम मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने में बहुत सहायक है।
1: प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार महर्षि पतंजलि ने दिया। प्रत्याहार यानी कि अपनी इंद्रियों को उनको ग्रह भोजन देना, जो उनको एक्चुअल भोजन चाहिए, बाहर वाला नहीं, अंतःकरण का भोजन। फिर हमारी प्रत्याहार धारणा, ध्यान को धारणा को बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जिस भी प्रभु की आप आराधना करना चाहते हैं उसकी धारणा बनाइए, किसी विषय की, किसी वस्तु की, यानी कि जो भौतिक रूप में जुड़ी हुई ना हो, जब आप अपने आप को मोक्ष की ओर ले जाना चाहते हैं।
0: इंद्रियों को विषयों से हटाने का नाम ही प्रत्याहार है। इंद्रियां मनुष्य को बाह्य विमुख क्या करती हैं। प्रत्याहार के इस अभ्यास से साधक योग के लिए परम आवश्यक अंतर्मूर्खिता की स्थिति प्राप्त करता है। चित्त को एक स्थान विशेष पर केंद्रित करना ही धारणा है। जब ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त तद्रूप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान या उसकी स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होती। यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है। समाधि की भी दो श्रेणियां हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता नुगत होती है। असंप्रज्ञात में सात्विक, राजस और तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है।
2: तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
4: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science and space to premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
5: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
6: जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है।
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे।

0: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
1: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
2: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
1: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
3: Williams keeps it. First down. Touchdown.
1: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना

0: हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
8: अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चाक चौबंद सुरक्षा, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेले की तैयारियां तेज, जम्मू से 200 बसों में 9000 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, केदार धाम पहुंचे 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, 12 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बद्री विशाल के दर्शन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी शक्ति उत्सव की। एक उत्सव जिसका शुभारंभ कश्मीर के गांदरबल में होने जा रहा है, तो वहीं दूसरे का श्री गणेश होगा असम के गुवाहाटी में। एक उत्सव वो जिसने सदियों से कश्मीर के मन में मां भवानी की आस्था की अलग जगह रखी है, और एक उत्सव वो जिसे संसार के सृजन का आधार माना जाता है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है कश्मीर के गांदरबल की, जहां 22 जून से मां खीर भवानी का मेला लगने जा रहा है। इस मौके पर गांदरबल के तुलमुला इलाके में खीर भवानी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, घाटी में अमरनाथ धाम के बाद खीर भवानी मंदिर की सबसे ज्यादा मान्यता है। मां खीर भवानी का ये धाम खास तौर पर कश्मीरी पंडितों की अगाध आस्था का केंद्र है। खीर भवानी धाम में हर साल होने वाला ये धार्मिक उत्सव कश्मीरी पंडितों के लिए बेहद खास है। तो वहीं दूसरी तस्वीर है 51 शक्तिपीठों में से एक गुवाहाटी में मौजूद कामाख्या धाम की, जहां 22 जून से ही अंबुबाची पर्व की शुरुआत होगी। इस पर्व की तैयारी से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू, जहां से कश्मीर के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होने वाला है।

0: कश्मीर के गांदरबल में सज गया है माँ खीर भवानी का दरबार। माँ खीर भवानी के दरबार में भक्तों का मेला लगने वाला है। घाटी की हरी भरी वादियों में चिनार के पेड़ों से घिरा माँ खीर भवानी का धाम। कश्मीर के गांदरबल में मौजूद ये शक्ति स्थल सदा से घाटी में हिंदुओं की अगाध श्रद्धा का केंद्र रहा है। साल भर माँ खीर भवानी के दरबार में श्रद्धा और भक्ति की भागीरथी बहती रहती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आयोजित होने वाले वार्षिक मेले में माँ के दरबार की छटा कुछ अलग ही होती है। इस बार खीर भवानी मेला 22 जून को लगेगा। इस खास मौके पर माँ खीर भवानी के प्रांगण में देश के कोने कोने से श्रद्धालु जुटने वाले हैं। मंदिर में मेले की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। तुलमुला में तैयारियां जोरों पर हैं, तो इधर जम्मू में नगरोटा के बेस कैंप से श्रद्धालुओं का पहला जत्था कुछ ही घंटों में रवाना होने वाला है। 20 जून की सुबह लगभग 200 बसों के जरिए 9000 श्रद्धालुओं का पहला जत्था माँ खीर भवानी के धाम की ओर रवाना होगा।
1: इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के नगरोटा इलाके में, और ये जो आप मैदान देख रहे हैं, इसी मैदान से कल श्रद्धालुओं के जत्थे को जम्मू से रवाना किया जाएगा। जो जानकारी हमें राहत और पुनर्वास विभाग के आयुक्त से मिली है, उसके अनुसार 9000 के करीब श्रद्धालु जो हैं यहाँ जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होंगे कल सुबह यानी शनिवार को, और तकरीबन 200 बसें हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ जाएंगे। ये जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये यात्रा जो है इसका पूरा देखरेख किया जाएगा, और प्रतिवर्ष की तरह यहाँ से बसें जाएंगी जम्मू से, और ये निशुल्क सुविधा होगी श्रद्धालुओं के लिए, और तकरीबन 9000 के करीब श्रद्धालु जो हैं 200 बसों में सवार होकर कश्मीर घाटी जाएंगे। श्रद्धालुओं के जत्थे को कल सुबह तड़के यहीं से रवाना किया जाएगा। यहाँ जम्मू संभाग के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से या पुलिस विभाग से, सभी विभागों के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और जो श्रद्धालु है फिर उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं वो खासतौर पर जो हैं कश्मीर घाटी जा रहे हैं। साथ ही में अगर हम देखें तो जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों से जो विस्थापित कश्मीरी पंडित जो यहाँ रह रहे हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ जाएंगे।
0: बताया जा रहा है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में फिलहाल बसों को तैनात कर दिया गया है, जहां से श्रद्धालुओं को लेकर सारी बसें नगरोटा बेस कैंप पर पहुंचेंगी, जहां से शनिवार की सुबह 7 बजे के आसपास सारी बसें एक साथ गांदरबल के लिए रवाना होंगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
2: यात्रा जो है यहाँ षष्ठी के दिन यहाँ से चलेगी, मीन्स 20 तारीख को, 20 जून को यहाँ से यात्रा 6:30 बजे फ्लैग ऑफ होगी यात्रा, और यात्रा जो है 5 मेन लोकेशंस पर जाती है, जिसमें मेन जो फेस्टिवल है माता खीर भवानी तुलमुला में है, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 7000 यात्री जो है जम्मू से यहाँ पर बसेज में हम रवाना करेंगे। उसके अलावा यात्रा जो है टिकर कुपवारा जाती है, मंजगाम और देवसर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 2 लोकेशंस और हैं जहाँ माता की स्थापन है, और लोगरीपोरा पहलगाम से पहले रूट में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो इन 5 जगह के लिए कल लगभग 9000 यात्री, जिन्होंने हम डिटेल हमारे पास नोट कराई है, यहाँ से उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट, और रास्ते में यात्रा जो है रामबन में थोड़ा देर हॉल्ट करेगी,
1: जहाँ पर
2: उनका भोजन होगा, फ्रेश होंगे यात्री, और उसके बाद अपनी अपनी लोकेशन पर जाएंगे। जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन पिछले 1 महीने से हम इस पर कॉन्स्टेंटली फॉलो अप कर रहे हैं।
0: शनिवार की सुबह कश्मीर के लिए रवाना होने वाला यात्रियों का पहला जत्था देर शाम तक खीर भवानी धाम पहुंचेगा। इसके लिए यात्रियों के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। यात्रियों के लिए अच्छी खबर ये है कि ये तमाम व्यवस्थाएं निशुल्क होंगी।
2: हमारी 200 प्लस बसेस जो है
1: ये निशुल्क रहेगी सेवा,
2: ये निशुल्क है, ये हम रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के थ्रू बसेस प्रोवाइड करते हैं, निशुल्क है, और वहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था भी है वो लंगर फैसिलिटी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे लंगर वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं उनके साथ भी पूरे तालमेल के साथ, यात्रियों की ट्रांसपोर्टेशन, उनके रहने का अरेंजमेंट, उनके खाने पीने की व्यवस्था सब निःशुल्क है।
0: इससे पहले 18 जून को सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला तुलमुला में खीर भवानी धाम पहुंचे थे। सीएम ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया और लोगों को आश्वस्त किया कि मेले की शुरुआत से पहले तमाम बकाया इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे।
3: मैं यहाँ बज़ाते जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की सूरत में, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ के एमएलए की हैसियत से देखने आया हूँ कि इंतज़ाम कैसे हैं, क्या तैयारी की जा रही है और क्या करना बाकी है। यहाँ जो पुजारी हैं और बाकी हैं उनसे बात करके दो तीन चीज़ों के हवाले से इन्होंने बात की और कोशिश की जाएगी कि 22 तारीख मेला लगने से पहले इन चीज़ों को हम मुकम्मल करें।
0: आपको बता दें, गांदरबल के तुरमुला गांव में मौजूद खीर भवानी मंदिर हिंदू देवी रागन्या को समर्पित है, जिन्हें श्यामा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। एक कहानी इन्हें रामायण काल से भी जोड़ती है। मान्यता है कि माता श्यामा कभी रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर कश्मीर से श्रीलंका चली गयी थी, लेकिन कभी जिस रावण के तप से खुश होकर माँ खीर भवानी धाम ने श्रीलंका का रुख किया था। आखिरकार उसी रावण के दुराचार से रुष्ट होकर माँ खीर भवानी ने कश्मीर वापस लौटने का फैसला किया था, जिसके बाद पवन पुत्र हनुमान उन्हें लंका से कश्मीर लेकर आए थे। खीर भवानी धाम में बजरंगबली का मंदिर भी मौजूद है।
1: प्रजापति पुलस्त के पौत्र रावण ने माँ रागिना की यानी कि माता खीर भवानी की आराधना की, तपस्या की। माता रागिना और माता खीर भवानी जो है ये एक ही है और माता रागिना को ही माता खीर भवानी के नाम से जाना जाता है और इनका मूल नाम जो है माँ श्यामा है। रावण ने इनकी तपस्या की और माता जो है रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर फिर माता ने लंका में ही अपना वास बनाया। लेकिन रावण ने जब माँ सीता का हरण किया उसके बाद माता जो है उनसे क्रोधित हुई और माता जो है काफ़ी दुखी हुई और रावण की जो आसुरी कृत्य हैं उससे माता जो है काफ़ी रुष्ट हुई। उसके बाद माँ श्यामा की जो आराधना है उस समय जो मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी की थी और तब फिर माता खीर भवानी ने ये इच्छा जताई थी कि वो अपने मूल स्थान यानी कि कश्मीर घाटी दोबारा वापस जाना चाहती है, क्योंकि लंका में वो रावण की आसुरी कृत्यों से काफी क्रोधित थी, काफी दुखी थी। और उसके बाद वीर बजरंगी हनुमान जो है माँ खीर भवानी को कश्मीर घाटी लेकर आते हैं। उस समय जो मान्यता है कि माता खीर भवानी ने कहा था कि अहम रज्जा में मद देसे सती सरा काश्मीरा, यानी कि माता खीर भवानी ने कहा था कि मैं अपने मूल स्थान सतीसर यानी कि कश्मीर घाटी वापस जाना चाहती हूं। तो वीर हनुमान जो है, महाबली हनुमान जो है, बजरंगी हनुमान जो है, हनुमान जी फिर माता खीर भवानी को यहां कश्मीर घाटी लाए थे।
0: कहानी बताती है कि माँ श्यामा रावण की करतूतों से रुष्ट होकर अपने देश लौट तो आईं, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकी कि उन्हें कश्मीर के कौन से इलाके में बसना चाहिए। दरअसल देवी के साथ उनके 360 नाग भी आए थे। ऐसे में माँ को अपना निवास बनाने के लिए ऐसी भूमि की तलाश थी जहाँ उनके नाग भी रह सके। और तब बेहद सोच विचार के बाद माँ श्यामा ने तुलमुला गाँव में अपना निवास स्थान बनाया था।
1: जो मान्यता है कि हनुमान जी ही माता खीर भवानी को यहाँ तुलमुल में लेकर आए थे। देखिए, इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी का भी एक मंदिर है। और साथ ही मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूं। जब माता खीर भवानी को हनुमान जी यहाँ लाए थे तो माता खीर भवानी अलग अलग स्थानों पर गई थी, लेकिन उनको लगा कि वो भूमि उनके रहने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके साथ 360 नाग भी थे, तो उस तरह की उपयुक्त भूमि ढूंढना चाहती थी। लेकिन जहां जहां माता गई और थोड़ी देर के लिए रुकी, वहां भी आज माता खीर भवानी का मंदिर है। चाहे वो टिक्कर है उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में, या दक्षिण कश्मीर में भी देवसर में है, मंजगाम में है, लखडीपुरा में है, कई स्थानों पर माता खीर भवानी का मंदिर है यहाँ कश्मीर घाटी में। लेकिन जो मुख्य मंदिर है जहां पर माता खीर भवानी ने जिस स्थान को चुना वो ये है, तुलमुल गांव, जो कि कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के तुलमुल गांव में स्थित है। यहीं पर माता खीर भवानी का जो है मुख्य मंदिर है।
0: पिछली कई सदियों से इस खास दिन ये मेला यहाँ इसी तरह धूमधाम से लगता आ रहा है। इस बार खीर भवानी मेला 22 जून को लगेगा। इस मौके पर माँ भवानी के प्रांगण में देश के कोने कोने से श्रद्धालु जुटने वाले हैं। माता खीर भवानी मेले का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। ये मेला माता खीर भवानी के प्रादुर्भाव दिवस के मौके पर लगता है। दुनिया भर से भक्त, खास तौर पर कश्मीरी पंडित इस मौके पर माँ खीर भवानी के धाम पहुँचते हैं। कश्मीर में अमन और चैन बने रहने की, घर वापसी की प्रार्थना करते हैं। इस बार भी भक्त इसी फरियाद के साथ माँ खीर भवानी के धाम अभी से पहुँचने लगे हैं।
1: तो मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो?
4: बहुत प्रसन्नता, बहुत शांति मन को मिली है, बहुत शांति मन को मिली है। जैसे माता हमारे सामने प्रकट हुई है।
1: मैं देख रहा हूँ कि आप काफी भावुक भी हो रही हैं।
4: हाँ जी, बहुत भावुक हो रहे हैं कि मन में शांति आ रही है कि माता का दर्शन अच्छी तरह से हुआ है।
0: माँ के दर पर पहुंचकर अक्सर भावनाओं का ज्वार उमड़ता है। आंखों में आंसू लिए ये वो लोग हैं जो 4 दशक पहले अपनी माटी से भी बिछड़े थे और माँ से भी। बरसों बाद इस मेले में आकर विस्थापित कश्मीरी पंडितों को अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने का अवसर मिलता है। अपनी आराध्य देवी के दर पर सिर झुकाने का मौका मिलता है। तभी तो कश्मीर से पलायन कर चुके पंडित खीर भवानी मेले को मिलन का मेला भी कहते हैं।
1: में जब कश्मीरी पंडित समुदाय का निष्कासन हुआ घाटी से, आप लोग अपने मंदिरों को काफी कमी खलती होगी, अपने देवी देवताओं के जो मंदिर है, आस्था के केंद्र,
4: वो सब हमारे खत्म किए हैं। जो कश्मीर में हमारे सारे मंदिर थे जहां हम पूजा करते थे, कुछ भी नहीं है। हमारे घर की वो मिट्टी भी हमें बहुत कुछ भी नहीं है। मकान, नए मकान में हम गए भी नहीं थे, वो सारा जलाया गया वहाँ पर। जलाया गया, क्या पता क्या हुआ कि जब हम एक बार गए वहाँ पर, फिर हम दोबारा नहीं गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि हमारा मकान कहाँ पर है, कहाँ पर था।
1: मैं देख सकता हूँ कि आप काफी भावुक हो रही हैं। आज अपने माता से क्या मांगा या?
4: बस
1: प्रार्थना,
4: मास वापसी हो जाए अच्छी तरह, अपने मकान में, अपने जन्मभूमि पर जाए।
1: देख सकते हैं आप काफी भावुक हो रहे हैं, आंखों में आपके आंसू हैं। आप देखिए, पीड़ा है ये कश्मीरी पंडित समुदाय की कि इनका गौरवमय इतिहास है, हजारों वर्षों का इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, लेकिन दुर्भाग्य से 1990 में आतंकवादियों ने बंदूक की नोक पर इनको घाटी से निष्कासित कर दिया। तब से समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय जो है देश के अलग अलग भागों में निर्वासन में जी रहा है, निष्कासन में जी रहा है। और आज भी अगर हम देखें तो प्रार्थना यही हो रही थी कि घर वापसी हो, सम्मान घर वापसी हो।
0: हर साल खीर भवानी मेले के मौके पर इसी तरह माँ के धाम में हजारों भक्त पहुँचते हैं। माता के गीतों को गाते गुनगुनाते श्रद्धालुओं की भीड़ माँ के दरबार में श्रद्धा के इस उत्सव का हिस्सा बनती है। विश्वास और पंथ को बांटती लकीरों से परे, जम्मू से लेकर गांदरबल तक हर धर्म को मानने वालों का सिर माँ के दर पर झुकता है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अब आपको लिए चलते हैं असम और दिखाते हैं शक्ति का वो धाम जहां माता सृष्टि स्वरूप में विराजमान है। शक्ति के इस धाम को सृष्टि का मूल आधार कहा गया है, जिस स्थल पर आकर ऋषि मुनियों तपस्वियों को मोक्ष का मार्ग मिला, संसार को सार मिला, जगत को आधार मिला और इसी आधार से जुड़ा सबसे बड़ा त्योहार है अम्बुबाची पर्व। आखिर क्या महत्व है इस पर्व का और क्यों धाम से जुड़े सबसे बड़े उत्सव के समय गर्भगृह के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, देखिए।

0: शक्ति संसार का आधार है और उनकी शक्तिपीठ रहस्यों का भंडार। असम का कामाख्या मंदिर देवी का एक ऐसा ही अनुपम और अनन्य शक्तिपीठ है। नीलांचल की गोद में बसे इस शक्तिपीठ में इन दिनों नारी शक्ति के उस उत्सव की तैयारी चल रही है जिसे सृष्टि के सृजन का आधार माना जाता है। इस जून से कामाख्या धाम में अम्बुवाची पर्व का शुभारंभ हो रहा है। चार दिनों तक चलने वाले इस शक्ति उत्सव के अनुष्ठानों का समय निर्धारित हो गया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार 22 जून को रात 9:08:42 पर प्रवृति अनुष्ठान के साथ मेले की शुरुआत होगी। इसी के साथ मां कामाख्या के वार्षिक रजस्वला काल की शुरुआत मानी जाएगी। अनुष्ठान शुरू होने के बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 26 जून की सुबह नियमित पूजा पूरी होने के बाद मंदिर के कपाट फिर से खोले जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालु दर्शन और पूजन कर सकेंगे।
1: जून में रात में आपको 9:08:42 इसमें आरंभ होगा और जो निवृत्ति होगा उसका कोई टाइम नहीं है, वो आपको सुबह स्नान और पूजा होने के बाद हम मंदिर भक्त के लिए खोल लेंगे 26 को। तो ये 3 दिन और 3 रात होता है, प्रवृत्ति से लेकर निवृत्ति तक 3 दिन 3 रात लगातार माँ का जो अम्बुवासी महायोग होता है उसमें, जैसे मृगशिरा नक्षत्र का चतुर्थ शरण जाने के बाद जो आद्र नक्षत्र का पहला शरण में जब पृथ्वी पांव देते हैं तो वो शरण को महायोग बोलता है, अम्बुवासी महायोग। और उसमें सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है, इसलिए ये जागतिक समय है, ये दुर्लभ समय है।
0: हर साल अम्बुवाची पर्व के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु कामाख्या धाम पहुँचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि असम के नीलगिरी पर्वत पर मौजूद ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में सबसे जागृत माना जाता है। गुवाहाटी में मौजूद इस धाम को देवी के 51 शक्तिपीठों का मूल माना गया है। पुराणों में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था। पौराणिक मान्यता है कि माँ कामाख्या के इस धाम से ही ब्रह्मांड की गति जुड़ी है। जीव के जन्म का मर्म यहीं छिपा है, इसलिए इसे सृष्टि का गर्भद्वार भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान यहाँ देवी रजस्वला होती है। इस दौरान गर्भगृह से 3 दिनों तक लगातार लाल रंग का जल प्रवाहित होता रहता है। कहते हैं कि इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र का पानी भी हल्का लाल हो जाता है।
2: मेला तो माता का साल भर में से सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस टाइम पे माता जी स्वयं यहाँ पे शक्ति के स्वरूप में आके प्रकट हो जाती है, और जब सृष्टि का साल भर का जो कुछ होता है तो ऐसे उत्पलन होता है, लेकिन सृष्टि का नया शुरुआत यही से होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी कोई भगत आएगा, कोई तांत्रिक आएगा, तो कोई सिद्धि करेगा, कुछ माता जी की कुछ कामना होगी वो पूर्ण करेगी। माता जी तो स्वयं साक्षात यही पे है। अगर जो भगत सही अच्छे मन से आएगा, माता जी से जो भी कुछ मांगेगा तो माता जी उसको सब प्राप्त कर देगी।
0: अम्बुवाची मेले में 3 दिनों के इस विशेष काल को देवी के रजस्वला काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक माना जाता है। दावा किया जाता है कि इन 3 दिनों में माँ को चढ़ाया सफेद कपड़ा लाल हो जाता है, तो वही लाल वस्त्र अम्बुवाची या अंगोदक वस्त्र कहलाता है। अम्बुवाची पर्व के 4th दिन निवृत्ति अनुष्ठान के बाद देवी के मंदिर के पट दोबारा खुलने पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुँचते हैं, तब वही अंगोदक वस्त्र भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस वस्त्र को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घर में इस कपड़े को रखने से सुख समृद्धि, आरोग्य और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। इस मंदिर में माँ की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि माँ अपने निराकार स्वरूप में यहाँ विराजती हैं। कहा जाता है मंदिर का सबसे अहम हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में बना हुआ है। गर्भगृह में अंधेरा रहता है, पूजा भी गोपनीय तरीके से की जाती है। गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, इसकी जगह एक समतल चट्टान को ही देवी का अंग स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इस चट्टान को भगवती की महामुद्रा स्थिति माना जाता है। महामुद्रा यानी शक्ति स्वरूप माँ भगवती का योनि कुंड। मान्यता है कि पत्थर के इसी कुंड में माँ कामाख्या साक्षात वास करती है। माँ आदिशक्ति का विधान देखिए कि एक ओर जहाँ समाज में महिलाओं के रजस्वला होने से जुड़ी कई वर्जनाएं हैं, पूजा पाठ और मंदिर में प्रवेश करने की मनाही है, वहीं शक्ति की प्रतीक माँ कामाख्या देवी को रजस्वला होने पर ही पवित्र मानकर पूजा जाता है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि माँ के इस मंदिर में देवी कामाख्या अपने कुमारी स्वरूप में विराजमान है। यही कारण है कि कामाख्या धाम में कुमारी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यहाँ रहकर कई दिनों तक साधना करने के बाद साधक देवी स्वरूपा बच्चियों का पूजन कर अपने अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। कामाख्या धाम क्षेत्र को कामरूप भी कहा जाता है। दरअसल मान्यता है कि यहीं पर भगवान शंकर को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर महादेव ने उन्हें भस्म कर दिया था। मान्यता है कि भगवती ने नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को जीवन दान दिया था, इसलिए ये क्षेत्र कामरूप के नाम से जाना जाने लगा। साथ ही इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि एक प्राकृतिक शैल दीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध शक्तिपीठ है। यही वजह है कि ये धाम तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। स्थान पर तांत्रिक कामाख्या देवी को तंत्र की देवी के रूप में पूजते हैं और दुनिया भर से तंत्र साधना के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि एक तांत्रिक अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करता है। लेकिन तंत्र मंत्र के संसार और साधकों से परे अम्बुवाची पर्व के दौरान देश के कोने कोने से हर उम्र के श्रद्धालु माँ कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। सृष्टि की रचना का विधान करने वाली जगत जननी से आशीर्वाद पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Out here, if you're doing nothing, you're doing everything right. Though on a cruise with Norwegian, even if you're doing nothing, you're still basking in the warm sun, enjoying the peaceful ocean waves, you're breathing. Don't forget about breathing. Definitely need to be breathing. So you get to do nothing or everything, but you still need to be breathing. It's like really important.
1: Experience the difference with cruises to Alaska, the Caribbean, and Europe. Norwegian Cruise Line. It's different out here. Visit NCL.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Norwegian Cruise Line ships registry with Bahamas and USA.
2: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
3: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
4: देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है
8: गुड न्यूज़ टुडे
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है
8: गुड न्यूज़ टुडे

0: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: को समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
3: गुड न्यूज टुडे
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
3: गुड न्यूज टुडे
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चाक चौबंद सुरक्षा, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेले की तैयारियां तेज, जम्मू से 200 बसों से 9000 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, केदार धाम पहुंचे 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, 12 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बद्री विशाल के दर्शन। महाराष्ट्र के अमरावती में अनोखी योग साधना, हेड कांस्टेबल प्रवीण ने पानी में किए 50 योगासन, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। राजस्थान में पहली बार बैरियर फ्री टोल सिस्टम शुरू, जयपुर दिल्ली हाईवे पर दौलतपुरा में एडवांस सिस्टम से कटरा टोल, सफर हुआ आसान।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: जम्मू में माता खीर भवानी यात्रा के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी, नगरोटा से 9000 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए 200 बसों की मुफ्त व्यवस्था की, यात्रियों को कराई जा रही है सुरक्षित और आरामदायक यात्रा। सभी यात्रियों के ठहरने और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए, श्रद्धालु आज शाम तक कश्मीर घाटी पहुंच जाएंगे। राहत और पुनर्वास विभाग के कमिश्नर डॉक्टर अरविंद करवानी ने जत्थे को दिखाई हरी झंडी, माता खीर भवानी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। हर साल हजारों कश्मीरी पंडित माता खीर भवानी मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, अपने पुनर्वास और घर वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 88वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे शिरडी में साईं बाबा के दरबार, हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ साईं बाबा के दर्शन किए, खुशहाली की मांगी दुआ। साईं बाबा मंदिर प्रशासन की ओर से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का किया गया सम्मान, शॉल उड़ाकर और साईं बाबा की मूर्ति देकर किया गया सम्मान। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा, रामबन में डिविजनल कमिश्नर ने बने हाल में यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर बढ़ाई सुरक्षा, चप्पे चप्पे की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हैं जवान। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भगवान महाकाल के दर्शन किए, महाकाल की शयन आरती में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के रामबन में सालाना गलाधर मेले का आयोजन, हजारों की संख्या में श्रद्धालु मेले में शामिल हुए और आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं ने पहाड़ी की चोटी पर स्थित मां चामुंडा मंदिर में दर्शन किए, पूजा में स्थानीय विधायक भी शामिल हुए और अमन चैन और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। महाराष्ट्र के अमरावती में संत गजानन महाराज के विजय ग्रंथ महापारायण और पादुका दर्शन का आयोजन, पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी पाठ किया। आयोजन में सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल, पूरी पवित्रता से 1 या 7 दिन में पढ़ने होते हैं ग्रंथ के सभी 21 अध्याय, पाठ के बाद श्रद्धालुओं को बांटा गया महाप्रसाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भारत में रूसी दूतावास ने अपने परिसर में योग सत्र का आयोजन किया। इस दौरान दूतावास के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग अभ्यास कर फिटनेस का संदेश दिया। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योगा और जुम्बा सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुंबई में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से एमडी अली रोड स्थित मीनारा मस्जिद में योग सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर योगाभ्यास किया। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए 24 घंटे के भव्य काउंटडाउन कार्यक्रम के साथ तैयारियां हुई तेज। शहर में योग को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह पर किए गए आयोजन। प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले यमुना नदी में तैराकों ने जल योग का प्रदर्शन किया। इस अनोखे अभ्यास ने लोगों का ध्यान खींचा। श्रीनगर की पोखरीबल झील में खिलाड़ियों ने फ्लोटिंग योगा का अभ्यास किया। यह तैयारी इंटरनेशनल योगा डे के लिए की गई। फ्लोटिंग योगा जैसी नई एक्टिविटी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ये शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। पानी की सतह पर संतुलन बनाते हुए योगासन प्रकृति के बीच शारीरिक और मानसिक संतुलन को बढ़ाना है मकसद। देशभर में योग दिवस को लेकर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। फ्लोटिंग योगा लोगों को हेल्दी और शांत जीवन की ओर प्रेरित करती है। युवाओं में फिटनेस और योगा को लेकर बढ़ रही है जागरूकता। लोग रोजाना योगा और वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। 21 जून को कोलकाता में डूनागिरी संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये जहाज समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूत करेंगे। तीनों स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारत की समुद्री ताकत और तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। इनके शामिल होने से नौसेना की संचालन क्षमता और निगरानी शक्ति बढ़ेगी। पीएम मोदी 21 जून को कोलकाता में इस ऐतिहासिक समारोह में हिस्सा लेंगे। ये भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का बड़ा प्रतीक। दिल्ली में नीट री एग्जाम से पहले मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। परीक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने के लिए तैयारियों की समीक्षा। पटना के मिलर हाई स्कूल में नीट री एग्जाम से पहले देशव्यापी मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। पटनी टॉप में गर्मियों की छुट्टियों के कारण पर्यटकों की बढ़ी भीड़। होटल और रिजॉर्ट लगभग पूरी तरह से बुक। भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग पहुंच रहे हैं पटनी टॉप। बच्चे उठा रहे हैं छुट्टियों का लुत्फ। पर्यटन के बढ़ने से स्थानीय कारोबार में आई और तेजी। छोटे दुकानदार और टैक्सी चालकों को हो रहा है बंपर फायदा। हिल रिजॉर्ट में सुरक्षा और सुविधाओं को बढ़ाया गया। प्रशासन भीड़ को संभालने के लिए सतर्क। वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़ी। प्राकृतिक नजारे लोगों को कर रहे हैं खूब आकर्षित। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों के लिए जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तमिलनाडु के मदुरई में हुई भारी बारिश। बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में बारिश के बीच दिल्ली में 39 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया तापमान। वीकेंड पर आंधी और बारिश का अनुमान। पिछले कुछ समय से दुनिया का सबसे गर्म स्थान बना यूपी का बांदा। बांदा में तापमान बढ़ने की वजहों की जांच के लिए जमीन पर उतरी विशेषज्ञों की टीम। असम और अरुणाचल में भारी बारिश से बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारों तक पहुंचा पानी। सूरत के बुजुर्ग दिनेश मशरूवाला के पास दुनिया की दुर्लभ साइकिल्स का बड़ा कलेक्शन। 40 लाख रुपए की 30 से ज्यादा विदेशी साइकिल्स। 74 साल के दिनेश मशरूवाला आज भी रोज साइकिल चलाते हैं। फिटनेस और हेल्दी लाइफ को मानते हैं अपनी सबसे बड़ी ताकत। 17 साल की उम्र से शुरू हुआ साइकिल का शौक आज भी जारी। जापान, कोरिया, नीदरलैंड समेत कई देशों की साइकिल्स उनके पास हैं। विदेश यात्रा के दौरान दिनेश मशरूवाला सेकेंड हैंड और खास साइकिल्स भी खरीदते हैं। विदेश से कई बार बहुत सारी साइकिल्स लेकर आते हैं। दिनेश मशरूवाला का मानना, साइकिल चलाना सेहत और देश दोनों के लिए फायदेमंद। पेट्रोल बचाओ देश बचाओ है उनका संदेश। संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल नियुक्त किए गए। एफएटीएफ के वाइस प्रेसिडेंट, पहली बार एफएटीएफ का उप अध्यक्ष बनेगा भारत। तेज गेंदबाजों की तलाश में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने शुरू किया टैलेंट हंट। प्रयागराज के केपी कॉलेज ग्राउंड में शुरू हुआ दो दिवसीय ट्रायल। पेसर टैलेंट हंट में किस्मत आजमाने के लिए पहुंचे प्रयागराज और वाराणसी मंडल के करीब 1300 युवक। प्रतिभा दिखाने के लिए पहुंचे युवाओं में लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सामने आया प्रेम का अनोखा मामला। 60 साल के एक पुरुष और 60 साल की महिला ने शादी की। मंदिर में परिक्रमा के दौरान हुई थी मुलाकात। पहले कोर्ट मैरिज की, फिर रीति रिवाजों से लिए सात फेरे। जीवन साथी के दुनिया से विदा होने के बाद अकेले थे। पंजाब के एक छोटे से गांव के युवक की बड़ी सफलता देखने को मिली। देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक सीए की परीक्षा में देश में हासिल किया 10वां स्थान। संगरूर जिले के बिम्बर्ड गांव के युद्धवीर सिंह की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल। दोस्त रिश्तेदार और गांव वाले दे रहे हैं बधाई। युद्धवीर की सफलता के लिए पूरे इलाके में चर्चा। गुजरात में केसर आम का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए शानदार रहा यह साल। 61 दिन के सीजन में मार्केट में पहुंचे रिकॉर्ड 9,84,000 पीटी केसर आम। किसानों के मुताबिक अनुकूल मौसम की वजह से आम के उत्पादन ने तोड़े पिछले साल रिकॉर्ड। अच्छी पैदावार और बेहतर गुणवत्ता के कारण किसानों को हुई अच्छी कमाई। देश के लोगों के साथ साथ दूसरे देशों के लोगों ने भी चखा गुजरात केसर आम का स्वाद। ब्रिटेन, दुबई, कनाडा समेत कई देशों में निर्यात किए गए करीब 90 टन आम। सेना के जवानों ने लद्दाख के द्रास में किया टूलिंग एक्सपीडिशन। वहीं तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए 0 डिग्री से कम तापमान में दुर्गम परिस्थितियों में अभ्यास। योगा दिवस से पहले सेना ने लद्दाख के ताकसे में गांव वालों के लिए योग सत्र का आयोजन किया। कार्यक्रम में 200 से ज्यादा ग्रामीण उत्साह के साथ हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति का अनावरण किया। आदिवासी समुदाय के विकास के लिए योजनाओं का ऐलान। चेन्नई के जीईएम अस्पताल में ऑपरेशन इन्फिनिटी की शुरुआत। देश के पहले ड्यूअल सिटी रोबोटिक सर्जरी नेटवर्क वाला अस्पताल बना। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए। देहरादून में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। अमेरिकी वायुसेना ने जारी की बोइंग 747-8i बिजनेस जेट के अपग्रेडेड वर्जन VC-25B की पहली तस्वीर। राष्ट्रपति के बेड़े में शामिल होने एंड्रयूज बेस पहुंचा विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देखा दुनिया के सबसे लग्जूरियस विमान का अपग्रेडेड वर्जन। पिछले साल कतर से डोनाल्ड ट्रंप को तोहफे में मिला था यह विमान। एयरफोर्स वन में शामिल होने के लिए अपग्रेड किया गया है ये विमान। इस जंबो विमान को कंपनी L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज ने किया है अपग्रेड। अपग्रेड होने के बाद की जा चुकी है विमान की टेस्टिंग। डोनाल्ड ट्रंप की पसंदीदा लाल, सफेद, गहरे नीले और सुनहरे रंगों से रंगा गया है विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेड़े में शामिल होने वाले इस विमान में राष्ट्रपति, उनके सहयोगी, सुरक्षा टीम और मीडिया के लोग करेंगे यात्रा। थाईलैंड के एक चिड़ियाघर में जानवर बने फुटबॉल एक्सपर्ट। बाघ, हिप्पो और बेबी पिग्मी हिप्पो ने खाने के जरिए वर्ल्ड कप मैचेस के नतीजे की भविष्यवाणी की। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड और मोरक्को के मैचेस को लेकर की गई भविष्यवाणी। जानवरों ने अलग अलग टीमों के नाम वाले खाने में अपनी पसंद चुनी। जानवरों की भविष्यवाणी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दर्शकों ने मोबाइल फोन से फोटो और वीडियोज भी रिकॉर्ड किए। चिड़ियाघर प्रशासन हर वर्ल्ड कप के दौरान कराता है ये खास आयोजन। अधिकारियों का कहना है कि ये एक्टिविटी आगंतुकों के बीच काफी लोकप्रिय है। फुटबॉल मैचेस की भविष्यवाणी करने वाले जानवरों की है परंपरा पुरानी। 2010 वर्ल्ड कप में ऑक्टोपस पॉल ने जर्मनी के कई मैचेस के नतीजे सही बताए थे। जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच होने वाले मैच पर ओरांगुटान वॉल्टर ने जर्मनी की जीत की भविष्यवाणी की। डॉर्टमुंड चिड़ियाघर का ये भविष्यवक्ता पहले मैचों में भी हुआ है सही साबित। वॉल्टर ने दो बैग में से जर्मनी वाले बैग को चुना। उसने 20 में से ज्यादा साल से फुटबॉल मैचों की भविष्यवाणी की है। फैंस का भी मानना है कि जर्मनी का पलड़ा भारी है। आइवरी कोस्ट को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता जर्मनी। जर्मनी ने अपने पहले मैच में कुराकाओ को 7-1 से हराया। बेहद मजबूत दिख रही है जर्मनी की टीम। आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया था। वो ग्रुप में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर अनोखा आयोजन। चाइना के हुनान प्रांत के फीनिक्स एंशिएंट टाउन से बतख पकड़ने की पारंपरिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। 500 जिंदा बतखों के लिए नदी में कूदे लोग। स्थानीय निवासियों और विदेशी पर्यटकों के बीच बतख पकड़ने की होड़। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के मौके पर स्टिल्ट हाउसेस से छोड़ी गई बतखें। परंपरा और रोमांच का अनोखा संगम। सालों से मनाई जा रही है बतख पकड़ प्रतियोगिता। स्थानीय कृषि परंपराओं का है प्रतीक। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रम अब इस क्षेत्र की बन चुका है पहचान। चाइना के सिचुआन प्रांत में ड्रैगन बोट उत्सव के दौरान इंसानों के साथ ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने भी चलाई नाव। रोबोट्स और इंसानों के बीच जबरदस्त तालमेल दिखा। रोबोट्स को 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद मानव खिलाड़ियों के साथ मिलकर ड्रैगन बोट रेस में शामिल। परीक्षण के दौरान इंसानी नाविकों ने चप्पू चलाना बंद कर दिया। तब रोबोट्स ने अकेले ही नाव को धीरे धीरे लेकिन आगे तक बढ़ाया। रोबोट्स ने पारंपरिक चीनी चावल का केक और चीनी डिश जोंगजी बनाने का अभ्यास किया। उनकी संतुलन क्षमता और पानी में काम करने की तकनीक बेहतर हुई। 2026 वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 22 से 26 अगस्त तक बीजिंग में होंगे। प्रतियोगिता में 30 से ज्यादा खेलों के जरिए रोबोट तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। जर्मनी में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो वहीं डॉर्टमुंड चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खास इंतजाम। ओरंगुटान ठंडा पानी पीकर ले रहे हैं राहत, जबकि गेंडों के लिए कीचड़ भरे तालाब तैयार किए गए। कुछ पक्षियों ने गर्मी का लिया आनंद, धूप में लेटकर शरीर की सिकाई की। म्यूनिख में लोग और बच्चे नदी में नहाकर गर्मी से पा रहे हैं राहत। कई लोग अपने पालतू डॉग्स को भी पानी में ठंडक दिलाने ले गए। जर्मनी में बढ़ती गर्मी के बीच आइसक्रीम की बिक्री बढ़ने की उम्मीद। दुकानदार ने वर्ल्ड कप स्पेगेटी आइसक्रीम किया लॉन्च। पेरिस में भीषण गर्मी का असर देखने को मिला। लोग गर्मी से बचने के लिए छांव और फव्वारों का ले रहे हैं सहारा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार तक पेरिस का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क करने की सलाह दी। पेरिस

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Ooh, yeah. TuneIn has got you covered. With 90s hits, jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: बचपन में इकट्ठा की अखबार की कतरन, मासूम आंखों ने सजोए छपने के ख्वाब, टाइम मैगजीन ने बनाया दमदार आइकन, सपने से सितारे तक स्मृति, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here. On TuneIn.
3: Today बनाता है।
4: Good news today.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर।

0: किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: क्या रुद्राक्ष पहनने से रोजगार में सफलता मिलती है? क्या रुद्राक्ष धारण करने से शनि की 7.5 का प्रभाव कम हो जाता है? क्या रुद्राक्ष पहनने से जीवन का संघर्ष घट जाता है? रुद्राक्ष के प्रयोग से कैसे दूर करें शनि की समस्या, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
7: कल होने वाले नीट री एग्जाम को लेकर देश भर में हुई मॉक ड्रिल, दिल्ली से सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन, DTC बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। राजस्थान में पहली बार बैरियर फ्री टोल सिस्टम शुरू, जयपुर दिल्ली हाईवे पर दौलतपुरा में एडवांस सिस्टम से कट रहा टोल, सफर हुआ आसान। महाराष्ट्र के अमरावती में अनोखी योग साधना, हेड कांस्टेबल प्रवीण ने पानी में किए 50 योगासन, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेले की तैयारियां तेज, जम्मू से 200 बसों में 9000 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर दिन नए नए कीर्तिमान रच रहा है। स्वदेशी क्षमता से ऐसे ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जिन पर चंद देशों का दबदबा रहा है। आज रण क्षेत्र में बात उन तीन ताकत की करेंगे जो सबलान से लेकर डिफेंस और अटैक तक करने में महारत रखते हैं। नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। 25 जून को बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबोन सिस्टम में नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की घोषणा की जाएगी।
1: फाइनल क्लियरेंस का सीधे तौर पर मतलब यही होता है कि सिस्टम अब पूरी तरह से रणक्षेत्र में उतरने के लिए तैयार है। अब चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर उस सिस्टम की जरूरत हो। नेत्र सिस्टम को फिलहाल डीआरडीओ द्वारा विकसित कर लिया गया है, फाइनल क्लियरेंस मिल चुकी है और इसे एम्ब्रियर विमान में फिट किया गया है।
0: युद्ध में जीत अक्सर उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले, और ये काम नेत्र बाखूबी करता है। तभी तो एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को आसमान में आंख कहा जाता है। नेत्र सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है। नेत्र में स्वदेशी AESA रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगा रडार करीब 240 डिग्री इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये विशाल हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी कर सकता है। डिटेक्शन रेंज की बात की जाए तो नेत्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के खतरों को भांप सकता है। नेत्र सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता बल्कि उसे तुरंत लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है। इससे पूरी वायुसेना एक नेटवर्क के रूप में काम करती है।
2: देखिए, जो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है ये एक एरियल प्लेटफॉर्म पे इसको माउंट किया गया है जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाती है और जब इसका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है तो इसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है। और इसका जो जो एरिया देखता है इनिशियली जो मार्क वन है उसका 240 डिग्री कवरेज था, लेकिन इसका एक इम्प्रूव वर्जन आ रहा है मार्क टू जिसमें कि वो एयरबस A321 पे माउंट होगा और उसका जो कवरेज होगा 360 डिग्री होगा, यानी कि वो चारों दिशाओं में एक्यूरेसी के साथ उस चीजों को निगरानी कर सकेगा। ये तमाम जो ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म है जो डाइविंग एयरक्राफ्ट हैं या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, क्रूज मिसाइल हैं, इन सारों को डिटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा।
0: हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण नेत्र लंबे समय तक मिशन पर बना रह सकता है जिससे सीमा क्षेत्रों की लगातार निगरानी संभव है। दरअसल भारत को एक साथ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती है। ऐसे में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जमीनी रडारों की सीमाओं को दूर करते हैं और सीमा के पार तक निगरानी करने में मदद करते हैं।
1: एबॉक्स प्लेटफॉर्म दरअसल शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाके काम करता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ता है जिस वजह से ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी भी मिसाइल, विमान या फिर जमीन पर ही जिससे रडार इंटरसेप्ट नहीं कर सकता उसकी जानकारी जुटाने में काफी मददगार साबित होता है।
0: एवॉक्स एक बड़े इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एक कम्बाइंड एयर डिफेंस बना सकता है। साथ ही ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर भी नजर रख सकता है।
2: देखिए, सबसे पहली बात है अगर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है, एवॉक्स है, तो वो आज की डेट में एरियल प्लेटफॉर्म है, वो हवा में जाता है, उसका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, उसका एरिया कवरेज बढ़ जाता है, और साथ में वो दूर तक एट द अर्ली स्टेज किसी भी मिसाइल रॉकेट या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेता है। ग्राउंड बेस स्टेशन भी यही चीजें करते हैं, लेकिन उसमें बहुत तरीके की क्लटरिंग होती है। अगर ग्राउंड बेस स्टेशन है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उसका जो क्लटर है उसको डिक्लटर करने की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों से एवॉक्स जो है वो उसमें इसका कम असर होता है।
0: एवॉक्स सिस्टम लंबी दूरी के रडार से लैस होता है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक की जानकारी जुटा लेता है, और ये दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में ताजा जानकारी मुहैया कराता है। अगर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की तलवार है तो नेत्र उसकी आंख है। बिना नेत्र के रण क्षेत्र में उतरना बहुत मुश्किल है और युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर अगर हम आधुनिक युद्ध की बात करें, जिसके लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है, और उसमें नेत्र की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि न सिर्फ ये आंख बल्कि दिमाग से भी रण क्षेत्र में उतरता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फाल्कन एवॉक्स और 2 एम्ब्रर नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। इनमें से ज्यादातर एवॉक्स का संचालन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ही किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि। दरअसल भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली LRLACM का सफल परीक्षण किया है, और इसमें सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जमीन पर अटैक करने वाली एक बेहद लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। वो सबसोनिक रफ्तार से उड़ती है। ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में जाकर नीचे नहीं गिरती, बल्कि ये टेरन हगिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी ये जमीन से बिल्कुल सटकर और पहाड़ों की ओट में छिप कर रहती है। सीधे रास्ते पर जाने की बजाय टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाने की वजह से दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि मिसाइल का अंतिम टारगेट क्या है।
2: ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ये अभी रिसेंटली इसका टेस्ट फायर किया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में, और इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। इसने रेंज अचीव किया, इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम था, इसका जो गाइडेंस सिस्टम था, जो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी, और जो रेंज अचीव करना था, वो सारा मकसद अचीव हुआ। ये एक ऐसा क्रूज मिसाइल है जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये अर्थ के जो कंटूर है उसके हिसाब से फ्लाई करता है। एक लो हाइट पे हाई स्पीड के साथ जाके टारगेट को एंगेज करता है। जब कोई मिसाइल लो हाइट पे फ्लाई करता है तो उसको डिटेक्शन इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि रडार उसमें इनकेपेबल हो जाते हैं। तो लिहाजा अपने आप में ये एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के तहत हमने इसको इंडिजिनसली डेवलप किया है।
0: LACM को भारत की अपनी टॉमहॉक मिसाइल कहा जा रहा है। ये हवा में ही अपना रास्ता बदलने, दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करने की अद्भुत क्षमता रखती है। LRLACM मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, और ये अपने साथ करीब 400 से 450 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसे मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर, नौसेना की युद्धपोतों में लगे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल से दागा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध और हालिया ईरान संघर्ष ने दुनिया को दिखा दिया कि स्टैंड ऑफ हथियार यानी दूर से सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें किसी भी युद्ध के रुख को बदल सकती हैं। अगर इस मिसाइल को भारत अपनी सीमाओं और फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात करता है तो चीन और पाकिस्तान के कई रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र सीधे तौर पर इसकी जद में आ जाएंगे।

0: देखिए, जितने भी हमारे स्टैंड ऑफ वेपन हैं, जिसमें कि तमाम क्रूज मिसाइल्स हैं, वो शामिल होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं जहां तक स्टैंड ऑफ वेपन का सवाल है। एक तो होता है पावर्ड फेस, जिसमें तमाम तरीके की क्रूज मिसाइल आती हैं, जिसमें अभी आपने जिसका जिक्र किया, और दूसरे मिसाइल होती है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वेपन को रिलीज किया जाता है, वो ग्लाइड करके टारगेट पे जाता है, वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर लेता है जब वो जहां पे वो रिलीज किया जाता है। तो इसके एक पावर्ड फेज होता है, एक ग्लाइड फेज होता है। तो जितने पावर्ड फेज है उसमें तमाम तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम का करते हैं, गाइडेंस सिस्टम काम करते हैं, और एक दूरी से, यानी कि जो दुश्मन की रेंज के बाहर से, जो उसके मीडियम रेंज मिसाइल उसके बाहर से अगर आप फायर करते हैं, तो एक आपको लॉन्च साइट की सुरक्षा मिलती है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की एक और ताकत है इसकी अचूक मारक क्षमता, और इसके पीछे भारत की सबसे आधुनिक नेविगेशन और स्वदेशी रडार सीकर तकनीक का हाथ है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करती है, इसीलिए इसे रास्ते में भटकने से बचाने और अंत में बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए मल्टीलेयर्ड गाइडेड सिस्टम से लैस किया गया है। टर्मिनल फेज के लिए इसमें अपग्रेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब यानी कि आखिरी कुछ किलोमीटर में होती है तो उसे टर्मिनल फेज कहा जाता है, और तभी इसका आरएफ सीकर एक्टिव होता है। लक्ष्य के पास पहुंचते ही सीकर रडार तरंगे छोड़ता है और दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और युद्धपोत की सटीक लाइव तस्वीरें बनाकर मिसाइल के कंप्यूटर को देता है। इसके बाद मिसाइल बिना 1 इंच भटके सीधे लक्ष्य के बीचों बीच टकरा जाती है। शुरुआती लॉन्च से लेकर टारगेट के करीब पहुंचने तक, यानी कि सफर के 90% हिस्से में मिसाइल रडार की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ती है। इसके लिए इसमें 3 स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण किया गया है। पहला है INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये मिसाइल का अपना आंतरिक दिमाग होता है जिसे बाहर से जैम नहीं किया जा सकता। मिसाइल हवा में अपने रास्ते को और सटीक करने के लिए भारत के अपने नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन सैटेलाइट नेटवर्क से सिग्नल लेती है। टेरकॉम ये सबसे अहम तकनीक है। इस सिस्टम में दुश्मन के इलाके का 3D डिजिटल मैप मिसाइल के कंप्यूटर में पहले से ही लोड कर दिया जाता है। उड़ान के दौरान मिसाइल का रडार एल्टीमीटर नीचे की जमीन को स्कैन करता है और पहले से लोड मैप से उसका मिलान करता हुआ आगे बढ़ता है, और इसी वजह से ये पहाड़ों की ओट में छिपकर उड़ जाती है। युद्ध के समय दुश्मन बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का इस्तेमाल करता है, इसीलिए स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के सीकर और नेविगेशन सिस्टम को ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से सुरक्षित किया गया है। अगर दुश्मन NAVAIC या GPS के सिग्नल को ब्लॉक भी कर दे तो भी मिसाइल का स्वदेशी RF सीकर और INS सिस्टम बिना किसी बाहरी मदद के पूरी सटीकता से हमला करने में सक्षम है।
0: देखिए, जब आप मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है उसमें मोर देन वन नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें GPS है, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है, इंफ्रारेड है, थर्मल है। तो अगर इन चारों के कॉम्बिनेशन में आप ऑपरेट करते हैं तो कोई भी एक नेविगेशन सिस्टम को अगर दुश्मन जाम करता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है। लिहाजा इसलिए ये जो हमारा जो मिसाइल सिस्टम है ये पूरी तरीके से जैम प्रूफ है। एनमी इसमें इसके फ्लाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर इंटरफेयर कर सकता है तो आप ग्राउंड के से उसको कमांड देके दूसरे टारगेट पे भेज सकते हैं, लेकिन इसके जैमिंग की संभावनाएं कम है, इसीलिए इसका मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम रखा गया है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल में स्वदेशी मैनिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टर्बोफैन इंजन बनाना बेहद जटिल तकनीक है और भारत ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जिससे लंबी दूरी की उड़ान में ईंधन की भारी बचत होती है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दरअसल भारत के पुराने निर्भया मिसाइल का ही एक हिस्सा है। साल 2013 में भारत ने निर्भया मिसाइल पर काम शुरू किया। इसके परीक्षण को लेकर कई राउंड्स भी हुए, लेकिन उसके बाद DRDO ने इसमें स्वदेशी मणिक सिस्टम को अटैच किया और साथ ही साथ इसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया के रूप में विकसित किया। मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन कैसे LR LACM को पावरफुल बनाता है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। मानिक एक ट्विन स्पूल इंजन है जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं होता। इसे सिंगल यूज या एक्सपेंडेबल इंजन के रूप में डिजाइन किया गया है। थ्रस्ट और शक्ति क्षमता की बात की जाए तो ये 4.25 से 4.5 किलो न्यूटन की ताकत जनरेट करता है, जिसकी मदद से ये एक टन भारी मिसाइल को 1000 किलोमीटर तक लगातार हवा में उड़ाए रखता है। मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और रडार को चालू रखने के लिए इसमें 3 KV का इनबिल्ट अल्टरनेटर लगाया गया है। हवा में एक निश्चित ऊंचाई और रफ्तार जो कि आवाज की गति के करीब है, उस स्तर पर पहुंचने के बाद मिसाइल का बूस्टर अलग हो जाता है और हवा में ही मानक टर्बोफैन इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मिसाइल अपने पंख और इंजन के दम पर 0.7 से 0.8 मैक की रफ्तार से आगे बढ़ती है।
0: इंजन है, सबसे पहले ये एक प्रोपल्शन सिस्टम है, ये एक डिजिटल प्रोपल्शन सिस्टम है। जब हम डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम की बात करते हैं तो वो उतनी ही हीट जनरेट करता है जितना दूर आप इस मिसाइल को डायरेक्ट करते हैं। तो एक ये एक कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड प्रोपल्शन सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल टर्बो फैन इंजन। तो यानी कि ये जो इसका जो पहली तो इसमें एक कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, पूरा कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो प्रोपल करने के लिए उसकी एनर्जी का इस्तेमाल होता, और जब जिस एनर्जी जो ये जनरेट करता है वो 4.5 KN के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि ये गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इस इंजन को डेवलप किया है।
1: भारत इससे पहले क्रूज मिसाइलों जैसे कि निर्भय के इंजन के लिए रूस के एनपीओ सैटन 36NT पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन माणिक इंजन के आ जाने से भारत की ताकत में और इजाफा हुआ है और ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी है। यानी आने वाले समय में भारत इस इंजन के लिए किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसे सुनकर हर देशवासी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल कर ली है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, ये ऐसा भरोसा है जो भारत को हिफाजत रखने की 100% गारंटी देता है। दुश्मन चाहे कितनी भी ताकतवर मिसाइलें चला ले, कितना भी जोर आजमाइश कर ले, भारत के हवाई सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकता। ऐसा इसलिए कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को खाक में मिलाने वाला महाअस्त्र तैयार किया है। यानी एक ऐसा अभेद सुरक्षा चक्र तैयार है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मल्टी लेयर डिफेंस और समंदर में मध्यम दूरी की एंटी शिप मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। 10 और 11 जून को किए गए लगातार 3 परीक्षणों में भारत की मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया, और इसी के साथ भारत अब उन खास देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, यानी कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही मार गिराना है। ये मिसाइल 2000 से 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने, ट्रैक करने और हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है।
0: मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम एयर डिफेंस अम्ब्रेला ही अपने टैक्टिकल बैटलफील्ड में लगाया करते थे। लेकिन अब हिंदुस्तान प्रगति की राह पे हमने हर एक VA एंड VP इसको वल्नरेबल एरिया वल्नरेबल पॉइंट को मल्टी टीयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यानी कि कोई एक सिस्टम अगर किसी मिसाइल या रॉकेट या एरियल ऑब्जेक्ट को मिस करता है तो दूसरा सिस्टम उसको पिकअप करता है। तो इस तरीके की जब हम संरचना करते हैं तो जो एरिया को हम पूरा एयर डिफेंस कवर देते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। उसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, S-400 आपके तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम जो हिंदुस्तान की आर्मी के पास है उसको डिप्लॉय किया जाता है। ये होता है मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम।
1: बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक उन्नत रक्षा नेटवर्क होता है। ये सिस्टम कई तरह की टेक्नोलॉजी के एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के जरिए काम करता है। सबसे पहले काम होता है दुश्मन की मिसाइल का पता लगाना और ट्रैक करना। इस प्रक्रिया की शुरुआत लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार से होती है जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च का पता लगाते हैं। इस सिस्टम का दूसरा चरण होता है कमांड एंड कंट्रोल। इसमें अलग अलग जगहों पर मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर और लॉन्च कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार से मिले डेटा का विश्लेषण करने और जवाबी कार्रवाई में तालमेल बिठाने के लिए ये सेंटर एक सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा होता है। अगला चरण होता है एंगेजमेंट, यानी कि मुकाबला करना। खतरे की पुष्टि होने के बाद सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइलों को एक्टिव करता है। ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन की आने वाली मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देती हैं। बीएमडी सिस्टम दो मुख्य स्तरों पर टारगेट को रोकता है, अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर।
0: देखिए, सबसे पहले जब भी कोई एरियल ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है, दुश्मन ने अगर मिसाइल फायर किया तो सबसे पहले उसको हमें डिटेक्ट करना है कहां से लॉन्च किया गया। जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे उतना ज्यादा आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा। जैसे आप उसको डिटेक्ट करते हैं उसके लिए आपके पास तमाम रडार हैं, एयर डिफेंस के सिस्टम हैं, फिर आप उसको ट्रैक करते हैं कि अगर आपने लॉन्च किया फ्लाइट उसने बदला दूसरे इलाके में गया तो आप किस तरीके से उसको ट्रैक करते हैं। जब उसका फ्लाइट पाथ डिटरमिन हो जाता है या अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, आप उसको लॉक करते हैं। फिर आप अपना जो आपका जो मिसाइल सिस्टम है जिससे आप उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो उस मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ये एक्सप्लोसिव बेस्ड भी हो सकता है, एक काइनेटिक भी हो सकता है। काइनेटिक का मतलब यह कि वो स्पीड से जाके इस एरियल ऑब्जेक्ट से टकराएगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा।
1: अगर पहली इंटरसेप्टर मिसाइल लक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाती तो दूसरी परत एक्टिव हो जाती है, यानी एक डिफेंस लेयर फेल हो जाए तब भी दूसरी लेयर मौजूद रहती है। मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दरअसल अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग इंटरसेप्शन के हिसाब से काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये दूर से आ रही मिसाइल को परख लेता है और अगर कहीं एक निशाना चूक जाता है तो ये कई और मौके भी देता है। रक्षा जानकार यही मानते हैं कि हर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सटीक नहीं होता, 100% उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं दुश्मन को पहले ही रोक सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक रणनीतिक सुरक्षा कवच है जिसका मकसद बड़े शहरों और परमाणु ठिकानों को लंबी दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों से बचाना है। इसके रडार बेहद ताकतवर होते हैं जो 1500 से 2500 किलोमीटर दूर से ही खतरों की पहचान कर लेते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं। भारत का बीएमडी एक दो स्तरीय सिस्टम है जिसमें एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 100 किलोमीटर तक और इंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 80 किलोमीटर तक होता है। वहीं पारंपरिक सिस्टम कम ऊंचाई पर काम करते हैं। S-400 सिस्टम 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट को रोकता है जबकि आकाश 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-400 या आकाश जैसे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के बीच मुख्य अंतर उनके टारगेट स्पेशलाइजेशन, इंटरसेप्शन की ऊंचाई और रणनीतिक उद्देश्यों में होता है। बीएमडी सिस्टम खासतौर पर उन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन है जो बेहद तेज रफ्तार जैसे कि Mach 5 या उससे ज्यादा और फिक्स ट्रेजेक्टरी पर चलती है। वहीं क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन से निपटने के लिए भारत का संपूर्ण एयर डिफेंस ग्रिड कई दूसरी परतों को भी एकीकृत करता है। भारत के पास लंबी दूरी यानी कि Tier 1 के लिए रूस से हासिल S-400 ट्राइम्फ सिस्टम है। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर है। ये दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइल को टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट कर लेता है। मध्यम दूरी यानी कि Tier 2 के लिए भारत और इसराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित Barak 8 मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। वहीं कम दूरी यानी कि Tier 3 के लिए स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है जो री एंट्री या नजदीकी हवाई खतरों को नाकाम कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इन सिस्टम को दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को रोकने के लिए और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 2028 तक अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए इस्तेमाल होंगी LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें। फिलहाल भारत के पास रूस से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ देश में ही बनी पृथ्वी और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो किसी भी हवाई खतरे को आसानी से राख में मिला सकते हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
4: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
5: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
4: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
6: You're listening to MSNBC.
4: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
1: आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भारत अब LRSAM सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसका सीधे तौर पर मकसद ये है कि किसी भी तरह के हवाई खतरे या हवाई हमले से पूरी तरह से निपटना। दरअसल DRDO प्रोजेक्ट कुश के तहत इसका निर्माण कर रहा है और उम्मीद यही की जा रही कि साल 2028 या 29 तक इसे बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाएगा।
1: स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी पर ही दुश्मन मिसाइल की पहचान कर उसको रोकने और मार गिराने में सक्षम होगा। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 3 लेयर्स में काम करेगी, यानी अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम होगी। LRSAM सिस्टम में लगी इंटरसेप्ट मिसाइल 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर पर दुश्मन के फ्लाइट प्लेन से लेकर मिसाइल तक को आसानी से तबाह करने में सक्षम होगी। LRSAM में एयरक्राफ्ट और एयरबोन वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा, जो मिड एयर में वॉर करने वाली मिसाइलों और 350 किलोमीटर की दूरी पर ही रोक देंगे और खतरनाक से खतरनाक मिसाइल भी भारत पर हमला नहीं कर पाएगी।
2: ये S-400 जिसका रेंज 400 किलोमीटर है और ये जो हमारी अभी वाली मिसाइल है जिसका रेंज 70 किलोमीटर है, इन दोनों के अंदर गैप जो है उसको कवर करने के लिए काम आएगा। तो ये जो है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एक बहुत बढ़िया वेपन सिस्टम है इंडियन नेवी के पास और वो इसको दुश्मन के खिलाफ बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: LRSAM पर कम से कम 1.5 दशक से काम चल रहा है और इसके लिए इसराइल की IAI यानी इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO मिलकर काम कर रहे हैं।
0: इसराइल में सिस्टम के लिए बराक शब्द का इस्तेमाल होता है और बराक नाम से वहां एक पूरी मिसाइल फैमिली मौजूद है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में से LRSAM कहा जाता है। दरअसल साल 2015 में INS कोलकाता से LRSAM का परीक्षण हुआ, जिसके बाद साल 2017 में इसे पूरी तरह से इस युद्धपोत में कमीशन कर दिया।
1: अब भारतीय वायुसेना के 5 स्क्वाड्रन के लिए नए LRSAM सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है। इनकी कुल कीमत 21,700 करोड़ रुपए होगी। LRSAM से ऐसा रक्षा कवच तैयार होगा जिसे दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल भी भेद नहीं सकती। आज भारत के पास ऐसी मिसाइलों का पूरा जखीरा है जो आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक सुरक्षा की गारंटी देती हैं। ये मिसाइलें दुश्मन के हमले को जमीन से कई किलोमीटर ऊपर हवा में तबाह कर सकती हैं। भारत के पास एयर डिफेंस के लिए 2 सिस्टम है। इनमें 2 हिस्से हैं, ADGS यानी एयर डिफेंस ग्राउंड एनवायरनमेंट सिस्टम और दूसरा है BADZ यानी बेस एयर डिफेंस ज़ोन्स। ADGS में रडार कवरेज, डिटेक्शन और इंटरसेप्शन होता है। BADZ में रडारों के साथ मिसाइलों का कनेक्शन, नेविगेशन, हमला और एक्टिव रिस्पांस जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। सर्विलांस रडार, कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर की मदद से हवाई सुरक्षा पुख्ता हो जाती है। टारगेट डिटेक्ट होते ही दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और फिर दुश्मन चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, उसे तबाह करने में देरी नहीं लगती।
3: जब आप किसी भी मॉन्यूमेंट को आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो वो इसलिए देना चाहते हैं, ये आपकी धरोहर है पिछले टाइम की, और इस धरोहर को डिस्ट्रॉय करने से एक एनिमी को प्रोपोगंडा वैल्यू मिलती है, आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, आपकी सिविल जो आस्था है उसके ऊपर अटैक माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि लोकल प्रोटेक्शन ग्राउंड पर जो दी जा रही है वो पुलिस द्वारा, सिविल डिफेंस द्वारा, वो इसलिए दी जाती है कि कहीं कोई लोकली उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एयर डिफेंस प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आप दिल्ली आगरा की बात कर रहे हैं तो ये पूरे के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम के लूप में है, एक ग्रिड सिस्टम में है, जहाँ पर के अगर आगरा की तरफ कोई अगर जहाज, मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर अगर कोई भी अटैकिंग मोड में आता है तो वो ना केवल डिटेक्ट होगा बट आप पाएंगे कि एयर डिफेंस सिस्टम जो टीयर्ड है उसमें अपने आप ट्रैप होगा और उसको किल करने की 100% प्रोबेबिलिटी रखी जाएगी, क्योंकि ये वो टारगेट्स हैं जिनकी ज़रूरत आपको एक साइकोलॉजिकली नहीं, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। क्योंकि इसी तरह अगर आप दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक की इम्पोर्टेंस है, बट दैट डजंट मीन कि वहाँ पर आप प्रोटेक्शन लगाएंगे। आपको पूरी दिल्ली का ग्रिड में लेना है, आगरा को ग्रिड में लेना है कि किस तरीके से आप कोई भी थ्रेट अगर आ रही है तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे कि वो आगरा की तरफ आ रही है या दिल्ली की तरफ आ रही है या दोनों तरफ आ रही है।
1: मौजूदा वक्त में भारत ने अपने रक्षा जरूरतों के हिसाब से ही सरहद पर लॉन्ग शॉट और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रखी है। भारत के पास खुद के एयर डिफेंस सिस्टम के तहत दुश्मन पर हमला करने और बचाव करने के लिए दो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पहला है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और दूसरा है क्रूज मिसाइल डिफेंस। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में दो इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है, पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस ज्यादा ऊंचाई पर मार करने के लिए है, जबकि एडवांस एयर डिफेंस कम ऊंचाई पर हमला करने के लिए है। टू लेयर की हवाई रक्षा कवच होने से फायदा ये होता है कि दुश्मन देश की तरफ से आ रही 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को भी हवा में ही ध्वस्त किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल से अलग क्रूज मिसाइल डिफेंस कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। भारत ने AAD मिशन के तहत इंटरसेप्टिंग क्रूज मिसाइल सिस्टम भी बनाया है, जो परमाणु हथियार लेकर हमला करने आ रही मिसाइलों को मार गिराता है। आज चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, फाइटर जेट्स और विस्फोटकों से लैस ड्रोन का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी से निपटने के लिए भारत ने भी अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अभेद सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रखने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। अब तो भारत के पास S-400 की ताकत भी आ चुकी है। भारत को लॉन्ग रेंज मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, इसे जानने के लिए हमें 1970 के दौर में जाना होगा।
0: 1971 की जंग में पाकिस्तान की तरफ से हमारे उत्तर और उत्तर पश्चिम इलाके में सबसे ज्यादा तबाही मचाई गई। अमृतसर, आगरा और श्रीनगर एयरबेस पर लगातार हमले किए गए। 8 दिसंबर को भुज एयरफोर्स स्टेशन पर भी हमले हुए, जिसमें 92 बम और 22 रॉकेट्स दागे गए। इन सब से बचने के लिए भारत के पास मिसाइल तो थी, लेकिन कोई सही सिस्टम नहीं था।
1: 1971 के युद्ध के बाद से ही भारत को ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। भारत ने दो लेवल पर काम शुरू किया, पहला बाहर से एयर डिफेंस सिस्टम की नई तकनीक को मंगवाना और दूसरा अपनी तकनीक को विकसित करना।
0: DRDO ने 1980 में इंटीग्रेशन के तहत आकाश मिसाइल सिस्टम का काम शुरू किया, जिसके बाद 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक के शुरू में पहली प्रणाली और फील्ड टेस्ट और टारगेट न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट हुए। 2009 तक आकाश मिसाइल आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल हो गई।
1: आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, इसे भारत का पैट्रियट भी कहा जाता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को सेकंड्स में नाकाम कर सकता है। आकाश डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है, एक लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, यानी 64 लक्ष्यों पर हर समय इसकी नजर रहती है। आकाश से एक साथ 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये मैक 2.5 की सुपरसोनिक स्पीड से हमला करता है। 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने की ताकत है इसके पास। यही नहीं, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन को राख में मिलाने की ताकत भी है आकाश के पास। आकाश को स्वदेशी राजेंद्र रडार से लैस किया जाता है, जो 120 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले विमानों को पहचान लेती है और स्टेशन तक कमान पहुंचाती है।
2: आकाश मीडियम सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये करी गई थी 2012 में ये इसको हैंड ओवर किया गया था इंडियन एयरफोर्स यूनिट्स को और कुछ आर्मी की एडी रेजिमेंट्स को। इसकी शुरुआत 1983 में हुई जबकि इंडिया ने एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम उस टाइम साइंटिफिक एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर को और उस टाइम ये मिसाइल जो है ये होंद में आई और कई मिसाइल डेवलप की गई जैसे अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग, कई मिसाइलें उस टाइम डेवलप करी गई थी। नाउ इसको क्यों पैट्रियट के साथ तुलना करी जाती है? पैट्रियट वो मिसाइल थी जिसने गल्फ वार में 1990 में जब गल्फ वार हुई तो इराक की स्कड मिसाइल जो था उनके अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव और बहुत बढ़िया काम किया। इसलिए समझा जाता है कि चाहे ये मीडियम रेंज है, समझा जाता है कि ये एक बहुत बढ़िया विकल्प है हमारे पास मीडियम रेंज के टारगेट जो है उनको एंगेज करने के लिए और इसको इसलिए पैट्रियट के साथ इसका मुकाबला भी किया जाता है।
1: आकाश को मोबाइल प्लेटफॉर्म से तैनात किया जा सकता है, यानी आकाश मिसाइल को T-72, BMP चेसिस या फिर हैवी मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम से दागा जा सकता है और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। आकाश को ताकतवर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी ECCM फीचर से भी लैस किया गया है, जिसकी मदद से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक साथ सिंगल या मल्टी टारगेट्स पर निशाना लगा सकती है।
0: आकाश मिसाइल जो कि पिछले एक दशक से सशस्त्र बलों के साथ आसमान की रक्षा कर रही है, यानी किसी भी हवाई अटैक से भारत को सुरक्षित रख रही है, लेकिन अब इसे अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अपग्रेडेड वर्जन पर लगातार काम किया जा रहा है जिसके बाद इसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी।
1: भारत सरकार लगातार स्वदेशी हथियारों के निर्माण और उनके विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में अब स्वदेशी मिसाइल आकाश को अपग्रेड किया जा रहा है।
0: भारत का BMD सिस्टम दरअसल टू टियर शील्ड सिस्टम से पूरी तरह से लैस है, जो कि 5000 किलोमीटर से आ रही किसी भी मिसाइल या फिर लड़ाकू विमान को पूरी तरह से इंटरसेप्ट कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के इलाके में सबसे एडवांस रूप टू टियर डिफेंस शील्ड को माना जाता है, जो मिसाइल गिरने की गुंजाइश पर भी पूर्ण विराम लगा देता है।
1: भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के दो वेरियंट्स हैं, पहला AD-1 और दूसरा AD-2। AD-1 लैंड वर्जन है, वहीं AD-2 नेवल वर्जन है। 21 अप्रैल 2023 को इसका सफल परीक्षण किया गया। दोनों ही मिसाइलें दुश्मन की IRBM मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती हैं।
0: बैलिस्टिक मिसाइल दरअसल एक लंबी दूरी की मिसाइल होती है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम होती है। ये हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है, यानी कि किसी भी देश में कहीं भी बैठकर इसको ऑपरेट किया जाता है। ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को एक मजबूत ताकत प्रदान करती है।
1: DRDO के बनाए BMD सिस्टम की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट्स को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है।
0: बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम दरअसल टू टियर एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करता है, जिसमें शील्ड की पहली परत पृथ्वी एयर डिफेंस है, जो कि आसानी से 50 से 180 किलोमीटर की बाहरी वायुमंडल की ऊंचाई पर मिसाइलों को रोक भी सकती है और इसे वहीं तुरंत तबाह भी कर सकती है, जिससे दुश्मन का पूरी तरह से काम तमाम और हमारी सरहद सुरक्षित।
1: पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम के पास 6,174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3,000 किलोमीटर दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता है, जो इसे मजबूत डिफेंस सिस्टम का एक विभिन्न हिस्सा बना देता है। वहीं दूसरी परत को एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल के जरिए सुरक्षा मिलती है। एडवांस एयर डिफेंस एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर एंडो एटमॉस्फेयर में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी एयर डिफेंस के नाकाम होने की स्थिति में एडवांस एयर डिफेंस किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को भारत की जमीन तक पहुंचने नहीं देगा।
0: रणनीतिक क्षेत्र में। मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
5: क्या रुद्राक्ष पहनने से रोजगार में सफलता मिलती है? क्या रुद्राक्ष धारण करने से शनि की 7.5 का प्रभाव कम हो जाता है? क्या रुद्राक्ष पहनने से जीवन का संघर्ष घट जाता है? रुद्राक्ष के प्रयोग से कैसे दूर करें शनि की समस्या, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
7: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
6: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
0: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250. The Great American State Fair, July 4th.
1: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
2: भी में पक रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
6: गुड न्यूज टुडे
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
3: असंभव

0: बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
2: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
3: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
2: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
4: You're listening to MSNBC.
2: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
5: मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: क्या रुद्राक्ष पहनने से रोजगार में सफलता मिलती है? क्या रुद्राक्ष धारण करने से शनि की 7.5 का प्रभाव कम हो जाता है? क्या रुद्राक्ष पहनने से जीवन का संघर्ष घट जाता है? रुद्राक्ष के प्रयोग से कैसे दूर करें शनि की समस्या, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
8: चौहत्तर साल बाद पहली बार बंगाल मना रहा पश्चिम बंग दिवस, हुगली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। मंच पर शानदार सांस्कृतिक समारोह, किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले नेवी का अंडर वाटर योग, 40 नौसैनिकों ने एक साथ योगा किया, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश दिया। कल होने वाले नीट रे एग्जाम को लेकर देश भर में हुई मॉक ड्रिल, दिल्ली से सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन, डीटीसी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। राजस्थान में पहली बार बैरियर फ्री टोल सिस्टम शुरू, जयपुर दिल्ली हाईवे पर दौलतपुरा में एडवांस सिस्टम से कट रहा टोल, सफर हुआ आसान। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चाक चौबंद सुरक्षा, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों

सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो जब एक छोटी बच्ची थी तो लोकल अखबार के किसी पन्ने पर अपना नाम छपने का ख्वाब संजोती थी। वही नन्नी बच्ची आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शान के साथ अपना नाम दर्ज करा चुकी है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट की शान स्मृति मंधाना है। जी हाँ, स्मृति, वही स्मृति मंधाना जो बचपन में अपने क्रिकेटर भाई के परफॉर्मेंस को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उन कतरनों को दिन में कई कई बार पढ़ती थी। तब नन्ही स्मृति के मन में एक ही ख्वाब होता था कि मेरे भी उपलब्धियों की चर्चा अखबार में हो। वक्त का मिजाज देखिए कि लोकल अखबार में छपने की हसरत रखने वाली स्मृति आज अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रही है।

0: वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली एक धुंधली तस्वीर की तासीर बड़ी ही अजीब है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। महाराष्ट्र के सांगली में गालिबन 6-7 साल की एक मासूम बच्ची अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती है और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती है। तब उस निश्चल बच्ची के मन में एक ही तसव्वुर होता है, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। वक्त का अनोखा खेल देखिए कि आज 29 साल की हो चुकी उस बच्ची को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया है। अखबार की कतरन सहेजने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की शानदार और जानदार बल्लेबाज स्मृति मंधाना है। ख्वाब के सागर में गोते लगाने का शौक भला किसे नहीं होता, पर अपने ही ख्वाब के लिए जरूरी मेहनत की कसौटी पर कोई विरला ही खरा उतरता है। कमाल यह है कि स्मृति मंधाना अपनी मेहनत, लगन और चट्टानी इच्छा शक्ति के दम पर आज अपने ही ख्वाब के दायरे को चीर कर काफी आगे निकल चुकी हैं। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत आज टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन चुकी है। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही है। टाइम मैगजीन के एडिटर एट लार्ज चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल करने के कारणों को गिनाते हुए जो बातें लिखी हैं, उसमें स्मृति मंधाना की दमदार शख्सियत की मुख्तसर सी झलक दिख जाती है। चार्ली कैंपबेल ने लिखा है, स्मृति मंधाना लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। मुंबई में जन्मी बाएं हाथ की ओपनिंग बल्लेबाज घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। साथ ही क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। इतना ही नहीं, 17 शतकों के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल महिला क्रिकेट शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से उनके नाम है। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना के रिकॉर्ड्स की जो हल्की सी झांकी प्रस्तुत की है, उसकी पूरी और विराट तस्वीर हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले बताते हैं स्मृति के क्रिकेटर बनने की रोचक और मर्मस्पर्शी दास्तान। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मे स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधवनगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो बढ़ नहीं पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल के स्मृति का मन बल्ला पकड़ने के लिए मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को जब भी मौका मिलता तो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी, तो पप्पा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा कर देते। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में ना जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का जुनून पैदा हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार की उसी स्मृति का नाम आज अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स, स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज, आयरलैंड के गोल्फर रोरी मैक्लोरॉय और फ्रांस के बास्केटबॉल प्लेयर विक्टर वेम्बान्यामा जैसे स्पोर्ट्स दिग्गजों के साथ टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और चिवट की महिला है। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का इंटीरियर क्रिसुलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और जून 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को यह पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी, तब मैं इंजर्ड हुई थी एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द NCS स्टाफ BCCI स्टाफ वर रियली हेल्पफुल एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो वील ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये है कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड स्क्रीन बन गई। वीमन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद में शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया है। स्मृति अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं। स्मृति और ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग के नाम पर 17-17 शतक दर्ज है। स्मृति मंधाना विमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा 15 शतक लगाने का कीर्तिमान भी स्मृति मंधाना के नाम ही दर्ज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में विमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के ICC महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है। साफ है कि दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस टाइम मैगजीन ने स्मृति को 100 सबसे प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शुमार किया है, तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती। इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती है। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। विमेंस प्रीमियर लीग में अपनी कप्तानी में स्मृति मंधाना 2 बार RCB को चैंपियन बना चुकी है। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवद गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवद गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवद गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई, तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया, तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवद गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवद गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग, मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज़ देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
4: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier, I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to... put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood Sangli se Smriti ka bahut gehra lagao hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
1: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli mein Smriti ka pura bachpan bitai, yahan tak ki Sangli ke Chintaman Rao College of Commerce se hi unhone apna BCom complete kiya. Kamal ye hai ki Sangli mein rehte hue mahaj 9 saal ki umr mein Smriti ka selection महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: Fifty states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
6: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
2: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
1: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
3: मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: चौहत्तर साल बाद पहली बार बंगाल मना रहा पश्चिम बंग दिवस, हुगली में आयोजित समारोह में पीएम मोदी ने शिरकत की, मंच पर शानदार सांस्कृतिक समारोह, किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी।
11: रेलवे ब्रिज उनका।
10: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले नेवी का अंडर वाटर योगा, 40 नौ सैनिकों ने एक साथ योग किया, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश दिया। कल होने वाले नीट री एग्जाम को लेकर देश भर में हुई मॉक ड्रिल, दिल्ली से सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन, DTC बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। राजस्थान में पहली बार बैरियर फ्री टोल सिस्टम शुरू, जयपुर दिल्ली हाईवे पर दौलतपुरा में एडवांस सिस्टम से कट रहा टोल, सफर हुआ आसान। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
10: जम्मू में माता खीर भवानी यात्रा के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी। नगरोटा में 9,000 श्रद्धालुओं का जत्था हुआ रवाना। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए 200 बसों की मुफ्त व्यवस्था की। यात्रियों को कराई जा रही है सुरक्षित और आरामदायक यात्रा। सभी यात्रियों के ठहरने और सुरक्षा के पूरे इंतजाम। श्रद्धालु आज शाम तक कश्मीर घाटी पहुंच जाएंगे। राहत और पुनर्वास विभाग के कमिश्नर डॉक्टर अरविंद करवानी ने जत्थे को दिखाई हरी झंडी। माता खीर भवानी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। हर साल हजारों कश्मीरी पंडित माता खीर भवानी मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, अपने पुनर्वास और घर वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भगवान महाकाल के दर्शन पूजन किए। महाकाल की शयन आरती में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के रामबन में सालाना गलाधर मेले का आयोजन। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मेले में शामिल हुए और आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं ने पहाड़ी की चोटी पर स्थित मां चामुंडा मंदिर में दर्शन पूजन किए। पूजा में स्थानीय विधायक भी शामिल हुए और अमन और चैन और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। महाराष्ट्र के अमरावती में संत गजानन महाराज के विजय ग्रंथ महापारायण और पादुका दर्शन का आयोजन। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने पाठ किया। आयोजन में सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल। पूरी पवित्रता से 1 या 7 दिन में पढ़ने होते हैं ग्रंथ के सभी 21 अध्याय। पाठ के बाद श्रद्धालुओं को बांटा गया महाप्रसाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी मयूरभंज के पहाड़पुर गांव पहुंचे। राष्ट्रपति के स्वागत में ढोल नगाड़ों और आदिवासी नृत्य की गूंज। संथाल समुदाय के पवित्र स्थल पर दोनों ने पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ससुराल गांव पहाड़पुर को मिलेगा सोलर विलेज का दर्जा। पहाड़पुर स्थित स्किल ट्रेनिंग हब का दौरा किया। आदिवासी गौरव और विकास का अद्भुत संगम। छात्र छात्राओं से मिले राष्ट्रपति और पीएम। ओडिशा को 47,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। ऊर्जा, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को मिली मजबूती। 600 मेगावाट अपर इंद्रावती प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। झारसुगुड़ा में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट का शिलान्यास। भुवनेश्वर में बायोगैस प्लांट और नदी पुल का उद्घाटन। रेलवे के 2 बड़े मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित। कोल्हापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माता अंबाबाई मंदिर में पूजा अर्चना की। आस्था और भक्ति में दिखे सराबोर। अमित शाह ने कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। नए प्रशिक्षण मार्ग का शिलान्यास। अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। स्वर्ण मंदिर में टेका मथा। सिर पर पगड़ी सजाकर नितिन नवीन ने आशीर्वाद लिया। स्वर्ण मंदिर में निभाई सेवा की परंपरा। बर्तन साफ कर गुरु घर में सेवा की। ललितपुर में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट्स की प्रगति की मांगी रिपोर्ट। अमरावती के पुलिस कांस्टेबल ने पानी के भीतर रचा इतिहास। 11 फीट गहरे पानी में 1 घंटे तक स्थिर रहे प्रवीण आखरे। योगा दिवस पर पुलिसकर्मी की अनोखी साधना ने जीता दिल। पानी पर तैरते हुए 50 योगासन किए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी माना प्रवीण आखरे का जल योग रिकॉर्ड। पानी के भीतर योगा कर बढ़ाया देश प्रदेश का मान। योगी भी लाइफ सेवियर भी। पुलिसकर्मी प्रवीण आखरे की प्रेरक कहानी। तिरंगे के साथ पानी के भीतर दिया देशभक्ति का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चमका अमरावती पुलिस का सितारा कर्तव्य और योग का अनोखा संगम। प्रवीण आखरे बने मिसाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भारत में रूसी दूतावास ने अपने परिसर में योग सत्र का आयोजन किया। इस दौरान दूतावास के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगा अभ्यास कर फिटनेस का संदेश दिया। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने पहले रन फॉर योगा और जुम्बा सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुंबई में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से एमडी अली रोड में स्थित मीनारा मस्जिद में योग सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर योगाभ्यास किया। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए 24 घंटे के भव्य काउंटडाउन कार्यक्रम के साथ तैयारियां हुई थी। शहर में योगा को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह किए गए आयोजन। प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले यमुना नदी में तैराकों ने जल योग का प्रदर्शन किया। खास अनोखे अभ्यास ने लोगों का ध्यान खींचा। श्रीनगर की पोखरी बल झील में खिलाड़ियों ने फ्लोटिंग योगा का अभ्यास किया। यह तैयारी इंटरनेशनल योगा डे के लिए की गई। फ्लोटिंग योगा जैसी नई एक्टिविटी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। पानी की सतह पर संतुलन बनाते हुए योगासन, प्रकृति के बीच शारीरिक और मानसिक संतुलन को बढ़ाना है मकसद। देशभर में योग दिवस को लेकर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। फ्लोटिंग योगा लोगों को हेल्दी और शांत जीवन की ओर प्रेरित करता है। युवाओं में फिटनेस और योगा को लेकर बढ़ रही है जागरूकता। लोग रोजाना योगा और वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। 21 जून को कोलकाता में डूनागिरी संशोधक और अग्रे को नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये जहाज समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूत करेंगे। तीनों स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारत की समुद्री ताकत और तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। इनके शामिल होने से नौसेना की संचालन क्षमता और निगरानी शक्ति बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को कोलकाता में इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल। ये भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। दिल्ली में नीट री एग्जाम से पहले मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। परीक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई। पटना के मिलर हाई स्कूल में नीट री एग्जाम से पहले देशव्यापी मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। नीट री एग्जाम से पहले देश भर के परीक्षा केंद्रों पर एनटीए की मॉक ड्रिल देखने को मिली। एग्जाम डे से पहले व्यवस्थाओं की परखी गई क्षमता। नीट री एग्जाम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। देश भर के परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और तकनीकी इंतजामों की गई जांच। नीट री एग्जाम से पहले दिल्ली में स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा। एनटीए ऑफिस के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई। दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 के स्कूलों में नीट री एग्जाम की तैयारियां पूरी। कल होने वाली परीक्षा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था पुख्त। नीट री एग्जाम को लेकर अलर्ट मोड पर राजधानी दिल्ली। विकासपुरी के एग्जाम सेंटर में परीक्षा संचालन की तैयारी पूरी। नोएडा में नीट री एग्जाम को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। नोएडा के परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का सख्त पहरा। नीट री एग्जाम से पहले हरिद्वार में हाई अलर्ट। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हरिद्वार को 5 जोन और 12 सेक्टर्स में बांटा गया।

0: नीट री एग्जाम को लेकर गोरखपुर में ट्रेनों की स्पेशल सर्विस शुरू, परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे की खास व्यवस्था। त्रिपुरा में नीट री एग्जाम को लेकर हुई मॉक ड्रिल, अगरतला में मॉक ड्रिल के जरिए परीक्षा सिस्टम की हुई टेस्टिंग। अंबाला में एनटीए ने परीक्षा केंद्रों पर टाइमिंग कंट्रोल सिस्टम किया एक्टिव, नीट री एग्जाम को लेकर विशेष व्यवस्था। बिहार में नीट परीक्षार्थियों को रेलवे की बड़ी सौगात, 21 जून को 9 स्पेशल ट्रेन चलवाएगा रेलवे। लखनऊ में नीट री एग्जाम को लेकर 75 केंद्र तैयार, कल लखनऊ में 35,000 से ज्यादा परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। रायपुर में नीट री एग्जाम से पहले परीक्षा केंद्र पर हुई मॉक ड्रिल, परीक्षा केंद्रों पर एनटीए ने व्यवस्थाओं की रिहर्सल की। श्रीनगर में नीट री एग्जाम से पहले सिक्योरिटी ड्रिल, जम्मू कश्मीर पुलिस ने परीक्षा केंद्र पर किया सुरक्षा अभ्यास। धार में नीट री एग्जाम की तैयारियों का प्रशासन ने जायजा लिया, कल धार में करीब 1600 छात्र देंगे एग्जाम। पटनी टॉप में गर्मियों की छुट्टियों के कारण पर्यटकों की बढ़ी भीड़, होटल और रिजॉर्ट लगभग पूरी तरह से बुक। भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग पहुंच रहे हैं पटनी टॉप, बच्चे उठा रहे हैं छुट्टियों का लुत्फ। पर्यटन के बढ़ने से स्थानीय कारोबार में आई तेजी, छोटे दुकानदार और टैक्सी चालकों को हो रहा है बंपर फायदा। हिल रिजॉर्ट में सुरक्षा और सुविधाओं को बढ़ाया गया, प्रशासन भीड़ को संभालने के लिए सतर्क। वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़ी, प्राकृतिक नजारे लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। सूरत के बुजुर्ग दिनेश मशरूवाला के पास दुनिया की दुर्लभ साइकिल्स का बड़ा कलेक्शन, 40 लाख रुपए की 30 से ज्यादा विदेशी साइकिल्स। 14 साल के दिनेश मशरूवाला आज भी रोज साइकिल चलाते हैं, फिटनेस और हेल्दी लाइफ को मानते हैं अपनी सबसे बड़ी ताकत। 17 साल की उम्र से शुरू हुआ साइकिल का शौक आज भी जारी, जापान, कोरिया, नीदरलैंड समेत कई देशों की साइकिल्स उनके पास। विदेश यात्रा के दौरान दिनेश मशरूवाला सेकेंड हैंड और खास साइकिल्स भी खरीदते हैं, विदेश से कई बार बहुत सारी साइकिल्स लेकर आते हैं। दिनेश मशरूवाला का मानना, साइकिल चलाना सेहत और देश दोनों के लिए फायदेमंद, पेट्रोल बचाओ देश बचाओ है उनका संदेश। थाईलैंड के एक चिड़ियाघर में जानवर बने फुटबॉल एक्सपर्ट, बाघ हिप्पो और बेबी पिग्मी हिप्पो ने खाने के जरिए वर्ल्ड कप मैचों के नतीजों की भविष्यवाणी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड मोरक्को मैचों को लेकर की गई भविष्यवाणी, जानवरों ने अलग अलग टीमों के नाम वाले खाने में से अपने पसंदीदा चुने। जानवरों की भविष्यवाणी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, दर्शकों ने मोबाइल फोन से फोटो और वीडियोस भी रिकॉर्ड किए। चिड़ियाघर प्रशासन हर वर्ल्ड कप के दौरान कराता है एक खास आयोजन, अधिकारियों का कहना है कि एक्टिविटी आगंतुकों के बीच काफी लोकप्रिय है। फुटबॉल मैचों से भविष्यवाणी करने वाले जानवरों की यह परंपरा पुरानी, 2010 वर्ल्ड कप में ऑक्टोपस पॉल ने जर्मनी के कई मैचों के नतीजे सही बताए थे। जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच होने वाले मैच पर ओरांग टाउन वॉल्टर ने जर्मनी की जीत की भविष्यवाणी की, डॉर्टमुंड चिड़ियाघर का यह भविष्यवक्ता पिछले मैचों में भी हुआ है सही साबित। वॉल्टर ने दो बैग में से जर्मनी वाले बैग को चुना, उसने 20 से ज्यादा साल से फुटबॉल मैचों की भविष्यवाणी की है। फैंस का भी मानना है कि जर्मनी का पलड़ा भारी है, आइवरी कोस्ट को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता जर्मनी। जर्मनी ने अपने पहले मैच में कोराकाओ को 7-1 से हराया, बेहद मजबूत दिख रही है जर्मनी की टीम। आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया था, वो ग्रुप में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर अनोखा आयोजन किया गया, चाइना के हुनान प्रांत में फीनिक्स एशियंट टाउन से बतख पकड़ने की पारंपरिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। 500 जिंदा बतखों के लिए नदी में कूदे लोग, स्थानीय निवासियों और विदेशी पर्यटकों के बीच बतख पकड़ने की होड़। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के मौके पर स्टिल्ट हाउसेस से छोड़ी गई बतखें, परंपरा और रोमांच का अनोखा संगम। सालों से मनाई जा रही है बतख पकड़ प्रतियोगिता, स्थानीय कृषि परंपराओं का है प्रतीक। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम अब इस क्षेत्र की बन चुका है पहचान। चाइना के सिचुआन प्रांत में ड्रैगन बोट उत्सव के दौरान इंसानों के साथ ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने भी चलाई नाव, रोबोट्स और इंसानों के बीच दिखा जबरदस्त तालमेल। रोबोट्स को दो हफ्तों से ज्यादा समय तक विशेष प्रशिक्षण दिया गया, इसके बाद मानव खिलाड़ियों के साथ मिलकर ड्रैगन बोट रेस में शामिल हुए। परीक्षण के दौरान इंसानी नाविकों ने चप्पू चलाना बंद कर दिया, तब रोबोट्स ने अकेले ही नाव धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ाई। रोबोट्स ने पारंपरिक चीनी चावल का फेक और केक और चीनी डिश जोंगजी बनाने में भी अभ्यास किया, संतुलन क्षमता और पानी से काम करने की तकनीक बेहतर हुई। 2026 वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 22 से 26 अगस्त तक बीजिंग में होंगे। इस प्रतियोगिता में 30 से ज्यादा खेलों के जरिए रोबोट तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। जर्मनी में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, डॉर्टमुंड चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खास इंतजाम। औरंगुटान ठंडा पानी पीकर ले रहे हैं राहत, जबकि गेंडों के लिए कीचड़ भरे तालाब तैयार किए गए। कुछ पक्षियों ने गर्मी का लिया आनंद, धूप में लेट करके शरीर की सिकाई। म्यूनिख में लोग और बच्चे नदी में नहाकर गर्मी से पा रहे हैं राहत, कई लोग अपने पालतू डॉग्स को भी पानी में ठंडक दिलाने के लिए ले गए। जर्मनी में बढ़ती गर्मी के बीच आइसक्रीम की बिक्री बढ़ने की उम्मीद, दुकानदार ने वर्ल्ड कप स्पेगेटी आइसक्रीम की लॉन्च।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: क्या रुद्राक्ष पहनने से रोजगार में सफलता मिलती है? क्या रुद्राक्ष धारण करने से शनि की 7.5 का प्रभाव कम हो जाता है? क्या रुद्राक्ष पहनने से जीवन का संघर्ष घट जाता है? रुद्राक्ष के प्रयोग से कैसे दूर करें शनि की समस्या, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Saving on your education should be a right, not a competition. At University of Phoenix, you'll get the best scholarship or savings you qualify for. Simple as that. Explore scholarship options at University of Phoenix.
4: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
6: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

0: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
1: After multiple assassination attempts, they can't even get...
2: They're reliable.
3: Always when I need them.
0: To live sports action.
4: One hand jam by LeBron on the break.
5: That's another three, Steph Curry.
0: And your favorite music.
6: Well, the dawn begins to crack.
0: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
7: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें।

0: गुड न्यूज टुडे
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन
3: टीआईटी भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स
4: पहली बार बंगाल मना रहा पश्चिम बंग दिवस हुगली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की मंच पर शानदार सांस्कृतिक समारोह किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी मेघालय के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिलांग में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया लैथकोर पीक का पर तैनात जवानों से मुलाकात कल बढ़ेगी नौसेना की शक्ति एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस दूनागिरी आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे की होगी कमिशनिंग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले नेवी का अंडर वाटर योग 40 नौसैनिकों ने एक साथ किया योगा योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया संदेश कल होने वाले नीट रे एग्जाम को लेकर देश भर में हुई मॉक ड्रिल दिल्ली से सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन डीटीसी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा
5: पावर्ड बाय गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मशहूर शायर निदा फाजली ने कभी कहा था कि अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, देखो मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। अमराई से गुजरकर धूप के मीठी हो जाने की ये कल्पना, ये अपने आप में मुकम्मल बयान है जो ये बताता है कि आम कितना खास है हमारे लिए। आम का ओहदा सिर्फ जुबान का जायका बदलने वाले एक फल भर का नहीं है, बल्कि ये जुड़ा है हमारे इतिहास के साथ, हमारी परंपरा के साथ, हमारे साहित्य के साथ, हमारे बचपन की यादों से, गर्मी की छुट्टियों से। गर्मियों के मौसम का सबसे प्यारा तोहफा है आम, ऐसा तोहफा जो भारत की सरजमीं से निकला और नाम बदलकर सारी दुनिया घूम आया। आज सुनाएंगे कहानी उसी आम की, और वही आम जिसकी राजधानी कहलाता है हमारा हिंदुस्तान।

0: जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, रेशों में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस। आते हैं नजर आम तो जाते हैं बदन कस, लंगड़े भी चले जाते हैं खाने को बनारस। बकौल सागर खयामी, ये आम का ही जादू है कि उसे खाने लंगड़े भी बनारस की ओर चल पड़ते हैं। वैसे लंगड़ा खुद भी एक किस्म का आम है और खाने वाले बताते हैं कि इसका स्वाद बहुत खास है। और लंगड़ा ही क्यों, चाहे जो किस्म हो, यूं समझिए कि इस फल के बस नाम में आम है। वाराणसी का लंगड़ा हो या फिर मलिहाबाद का दशहरी, कोंकण तट पर उगा अल्फांसो हो या बिहार का चौसा, आंध्र प्रदेश की धरती से आया सफेदा हो या पश्चिम बंगाल का हिमसागर, नाम में मुगलई नफासत लिए मध्य प्रदेश का नूरजहां या फिर जापान से आया और अब भारत में उगाया जाने वाला मियाज़ाकी, इसकी हर किस्म में वो जायका वो महक है कि हर लुकमे पर वाह वाह कहने को जी चाहता है। कहने को तो आम की सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन भारत में आम की लगभग 1500 प्रजातियां पनपती हैं, जिनमें से करीब 1000 किस्में आम तौर से खाई और बाजार में बेची जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले हर आम का अपना एक अलग मिजाज, अपना रंग और अपनी एक खास मिठास होती है। इन्हीं किस्मों, इनके स्वाद और रंगों बू पर फिदा होकर कभी जलील मानिकपुरी ने लिखा था, नायाब आम लुत्फ हुए रंग रंग के, कोई है जर्द कोई हरा कुछ है लाल लाल। कोई 4000 साल पहले हिमालय की तलहटी के इलाके में भारतीय उपमहाद्वीप में पनपा ये आम पुर्तगालियों की उंगली थाम कर सारी दुनिया घुमाया। हुआ कुछ यूं कि साल 1498 में जब पुर्तगाली व्यापारी वास्को डे गामा केरल के तटीय इलाकों में पहुंचे, तो लौटते लौटते वहां से मसालों के साथ साथ आम भी लेते गए। चूंकि केरल में आम को मान कहा जाता था, सो पुर्तगालियों ने आम को मान से मिलता जुलता नाम मानोव दे दिया। कुछ ऐसा चढ़ा पुर्तगालियों की जुबान पर आम का जादू कि पुर्तगाली व्यापारी जहाँ जहाँ गए वे अपने साथ आम लेते गए। इस तरह आम अमेरिका से लेकर यूरोप तक फैल गया। चूंकि अंग्रेजों को पुर्तगाली उच्चारण में थोड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए उन्होंने इसे मैंगो कहना शुरू कर दिया। इस तरह दुनिया घूमकर भारत का मान मैंगो बनकर वापस लौट आया। आज सुनाएंगे कहानी अपने उसी मान की, जिसका जायका मैंगो बनकर देश की सीमाओं और महासागरों की दहलीजों के परे दुनिया भर की जुबान पर चढ़ा है। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: इस समय अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो गली मोहल्लों की मार्केट से लेकर शहरों की मंडियों तक आपको आम ही आम नजर आएंगे। और हो भी क्यों ना, फलों के राजा इतनी किस्में और इतने रंगों, स्वाद और खुशबुओं में मिलता है हमारे देश में कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। अपने देश के हर हिस्से में आम होता है और आम की हर किस्म की अपना स्वाद होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत में आम की लगभग 1000 किस्में हैं। चलिए आपको कुछ आमों के बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन इनमें आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा वो आम जिसका दाम सोने से भी ज्यादा है।

गर्मियाँ यूँ तो बेहद सितम करती हैं, पर अपने पिटारे में रख के लाती हैं जो आम, बड़ा करम करती हैं। और गर्मियों के हिस्से आए इसी आम के फसाने की शुरुआत करते हैं एक किस्से से। एक बार उर्दू अदब के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने अपने दोस्त मुंशी निसार हुसैन के नाम एक खत लिखा और खत में आम के सीजन में आम भेजने की दरख्वास्त कुछ इस तरह की, नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए, मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए, ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। आम भेजने से पहले 100% दाम ही मांग लेते अकबर इलाहाबादी के दोस्त अगर उन्होंने मियां ज़ाकी आम की फरमाइश की होती, क्योंकि जरा हट के नाम वाले मियां ज़ाकी आम का दाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस आम की कीमत है 3 लाख रुपए प्रति किलो। ये दुनिया का सबसे महंगा आम है। उपज की तादाद, डिमांड और क्वालिटी पर निर्भर करते हुए मियां ज़ाकी आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2,80,000 रुपए से लेकर 3,30,000 रुपए प्रति किलो तक जाती है।

0: अपनी खूबसूरत लाल बैंगनी रंगत, दुर्लभता और ऊंची कीमत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। है ना कमाल? अच्छी बात तो ये है कि जापानी नस्ल का सोने से महंगा मियाज़ाकी आम अब भारत में भी उगाया जा रहा है। यूपी के सहारनपुर में फलता फूलता दिख रहा ये मियाज़ाकी आम है। सहारनपुर के एक किसान ने आय बढ़ाने के इरादे से साल 2021 में इस नए प्रयोग की शुरुआत की थी। किसान संदीप चौधरी ने अपने ऑर्गेनिक बाग में केवल 2 पौधे लगाकर शुरुआत की थी, लेकिन आज उनके बाग में करीब 40 मियाज़ाकी के पेड़ तैयार हो चुके हैं। अब इन पेड़ों पर फल भी आने लगे हैं। इस समय उनके 10 से 12 पेड़ों पर फल लगा हुआ है। उम्मीद है कि इस सीजन में करीब 14 से 15 किलो उत्पादन मिलेगा।
1: इस समय मियाज़ाकी जो दुनिया सबसे महंगी वैरायटी वो अपने लगाई थी, वो क्यों लगाई थी? जब आम लगाया तो हमने सर्च किया दुनिया में सबसे महंगे आम की वैरायटी कौन सी है, तो पता चला कि मियाज़ाकी है, जो जिसका भाव 2,70,000 से 3.5 लाख रुपए किलो तक आता है। ये वैरायटी के पौधे हमें पता लगा, फिर हमने पौधे यहाँ से मंगाए इसके, और सबसे पहले 2 पौधे लगाए, और 2 पौधों के बाद उसकी क्रॉपिंग करके हमने कि उनसे पौधे बनाए हमने। आज हमारे पास लगभग 40 पौधे हमारे इस बाग में लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि हमने ये देखा है कि ये बाग पूरी तरह ऑर्गेनिक होने की वजह से इसमें ग्रोथ भी अच्छी हुई है, आम का कलर भी अच्छा आ रहा है, और एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स अपने को मिला है। अब हम ये चाहेंगे देश के जो तमाम किसान हैं वो ऐसी महंगी वैरायटी लगाएं जिससे हम एक्सपोर्ट करने का एक हब बन सके।
0: वैसे अगर आप आम के मुरीद हैं और मियाज़ाकी का स्वाद चखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मियाज़ाकी आम आजकल बिहार के भागलपुर में भी उगाया जा रहा है। भले ही सोने सा भाव हो, लेकिन आम के दीवाने दाम कहाँ देखते हैं। खैर, आमों की दुनिया का ये दूसरा अजूबा पनपता है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में, और नाम है नूरजहां। नूरजहां को दुनिया का सबसे बड़ा आम माना जाता है। एक नूरजहां आम का वजन 4 किलो तक हो सकता है, और भारत में आम प्रेमियों के बीच ये जितना लोकप्रिय है उतना ही दुर्लभ भी है। मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर का कट्ठीवाड़ा अपने झरनों, बारिश और नूरजहां आम के लिए भी जाना जाता है। मौसम और मिट्टी ने इस फल के पनपने के लिए यहां एकदम सही हालात दिए हैं। नूरजहां के बाद बात भागलपुर के जरदालू आम की। भागलपुर के जरदालू आम की कई विशेषताएं हैं। ये सुपाच्य है, स्वादिष्ट तो है ही, और कुछ हद तक शुगर फ्री भी कहला ही लेता है। दरअसल जरदालू आम में दूसरे आमों के मुकाबले प्राकृतिक शुगर की मात्रा कम होती है, और भागलपुर के जरदालू आम को GI टैग भी मिला हुआ है। हर साल भागलपुर में पैदा होने वाला ये आम राजधानी दिल्ली में देश के गणमान्य लोगों को भेजा जाता है। गर्मियों के मौसम में फलने वाले आम की ये वो किस्में हैं जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है। लेकिन इन्हीं के बीच यूपी के सहारनपुर में आम का एक ऐसा पेड़ आपको दिखाते हैं जो सिर्फ गर्मियों में नहीं बल्कि 12 महीने फल देता है। इस आम की वैरायटी का नाम है सदाबहार। सदाबहार आम का पेड़ आकार में आम के दूसरे पेड़ों की तुलना में काफी छोटा होता है, लेकिन इसकी उत्पादकता बेहद खास है। इस पेड़ पर एक ही समय में बोर, छोटे फल और पकने के लिए तैयार आम एक साथ दिखाई देते हैं। ये वो अनोखा पेड़ है जो आम के जायके और खुशबू को गर्मियों की मुट्ठी से निकालकर हर मौसम की हथेली पर रख देता है। सहारनपुर से राहुल कुमार और भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आम का रिश्ता सिर्फ हमारी जुबान से नहीं है बल्कि ये हमारे इतिहास और परंपरा से जुड़ा हुआ है। उपनिषद और पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। गालिब हों या फिर गुलजार, शायर हों या कवि, सभी ने इसकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। चलिए आपको वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक की आम कहानी के बारे में बताते हैं इस रिपोर्ट में।

0: मीठा, रसीला और दिलों पर राज करने वाला आम। गर्मियों में लोग भले ही चिलचिलाती धूप और पसीने से परेशान रहते हैं, लेकिन इस मौसम में मिलने वाला आम किसी तोहफे से कम नहीं होता। बच्चे हो या बुजुर्ग, गरीब हो या अमीर, आम हर किसी को खास एहसास कराता है। आम सदियों से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और आज भी इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सबसे पहले आम आम्रफल कहा जाता था। पुराने वैदिक ग्रंथों में इसे रसाला और सहकार नाम से भी जाना जाता था। इन नामों का जिक्र प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे बृहदारण्यक, उपनिषद और पुराणों में भी मिलता है। यानी आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में आम की पैदावार हुई थी, जहां से ये दक्षिण भारत पहुंचा और तमिल में इसे आम काय कहा गया, जो बोलचाल की भाषा में बदलकर धीरे धीरे मामकाय बन गया। मलयाली लोगों ने इसे आगे चलकर मांगा के नाम में बदल दिया। 16वीं सदी में पुर्तगाली कारोबारियों ने आम को अफ्रीका और ब्राजील तक पहुंचाया और धीरे धीरे ये आम फल खास बन गया और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इतिहास के हर दौर में इसकी मिठास ने लोगों के दिलों को जोड़ा है। शायद यही वजह है कि आज भी आम का इंतजार हर गर्मी में उतनी ही बेसब्री से किया जाता है। इतिहास में आम की खास अहमियत रही है। सम्राट अशोक से लेकर मुगल काल तक आम की दीवानगी देखी गई है। कविता और साहित्य में भी इसकी मिठास घुली है। मिर्जा गालिब की दीवानगी हो या लोकगीतों की मिठास, आम सदियों से कवियों और लेखकों की कलम को रसीला बनाता रहा है। आम के बारे में कवि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा था कि आम में बस दो खूबियां होनी चाहिए, एक मीठा हो और दूसरा बहुत सारे हो। सिर्फ गालिब ही नहीं बल्कि गुलजार से लेकर अपने जमाने के मशहूर शायरों में शुमार सागर खयामी ने तो इस पर पूरी उर्दू कविता लिखी है। फल कोई जमाने में नहीं, आम से बेहतर करता है सना आम की गालिब सा सुखनवर। क्या बात है, आमों की हो देसी या विदेशी, सुर्खे हो सरौली हो कि तुखमे हो कि कलमे, चौसे हो सफेदे हो कि खजरी हो कि फजरी, एक तरफा कयामत है मगर आम दशहरी। हिंदी साहित्य में भी खासकर काव्य में आम लोगों को लेकर खूब लिखा रचा गया है। आम को लेकर आम का बाग नाम की कविता बेहद चर्चित है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। यहाँ अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसर और तोतापुरी जैसी सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं, जो हर राज्य की अपनी खास पहचान बन चुकी है। कुल मिलाकर आम सिर्फ स्वाद नहीं, एक हसीन एहसास है। एक ऐसा फल जो बचपन की यादें भी है और हर गर्मी की सबसे बड़ी खुशी भी। शायद इसीलिए हर साल जब आम आता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, माहौल बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, you're killing me.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: कभी कभी कोई गीत सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है, उसके शब्द कानों से ज्यादा दिल तक पहुंचते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक लोकगीत सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के दिलों को छू रहा है। इंस्टाग्राम की रील्स हों, यूट्यूब के शॉर्ट्स हों या फिर फेसबुक की फीड, हर जगह कोक स्टूडियो भारत के नए गीत कचौड़ी गली की धूम है। यूट्यूब पर लाखों व्यूज बटोर चुका कचौड़ी गली आज लोक संगीत की ताकत बनकर उभरा है। एक ऐसा गीत जो गांव की चौपाल से निकलकर डिजिटल दुनिया में करोड़ों दिलों तक पहुंच गया है। सिंगर उत्पल उदित की मिट्टी से जुड़ी गायकी ने इस गीत को ऐसा रंग दिया है कि ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक एहसास बन गया है।
2: सेजिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बलम, सेजिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बलम, सुन कैला बलम, सुन कैला बलम, सुन कैला बलम, सुन कैला बलम, मिर्जापुर कैला गुलजार।

बाहा दैत गोरवन के खून हो कचौड़ी गली सुन कैला बल से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बल।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
2: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop, effortlessly.
3: धीमे धीमे पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: 74 साल बाद पहली बार बंगाल मना रहा पश्चिम बंग दिवस। हुगली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। मंच पर शानदार सांस्कृतिक समारोह किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी। मेघालय के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिलांग में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया। लैदकोर पीक पर तैनात जवानों से मुलाकात। कल बढ़ेगी नौसेना की शक्ति। एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय की होगी कमिशनिंग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले नेवी का अंडर वाटर योग। 40 नौसैनिकों ने एक साथ किया योगा। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश दिया। कल होने वाले नीट री एग्जाम को लेकर देश भर में हुई मॉक ड्रिल। दिल्ली से सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन, DTC बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। कल यानी रविवार को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों में योग दिवस का उत्साह नजर आ रहा है। माना जाता है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया ही योग है। कहते हैं कि योग से इंसान ध्यान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपको बताएंगे कि धर्म ग्रंथों, पुराणों, वेदों और उपनिषद में किस तरह से योग की व्याख्या की गई है। योग के ज्ञान, इसके सूत्र और विज्ञान के बारे में क्या क्या बताया गया है, क्योंकि योग हमारी गौरवशाली भारतीय ज्ञान परंपरा का अहम हिस्सा है। लेकिन इससे पहले हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि लोगों में योग दिवस को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिला है। देखिए रिपोर्ट।

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के कोने कोने से योगाभ्यास की धूम है। जमीन से लेकर जल तक, पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक, योगासन की तस्वीरें लोगों में योग की गौरवशाली प्राचीन भारतीय परंपरा के प्रति असीम उत्साह की झलक दिखला रही है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों के नागरिकों में भी योग की उत्सुकता साफ साफ नजर आ रही है। हर कोई 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार है, क्योंकि योग के महत्व और इसके फायदों को अब दुनिया समझने लगी है। यही कारण है कि जगह जगह जोर शोर से योग दिवस मनाने की शानदार तैयारियां नजर आई। ये तो सभी जानते हैं कि योग तन की अच्छी सेहत और मानसिक शांति का आधार है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिर योग का आधार क्या है, योग साधना का विकास कैसे हुआ और आखिर किस प्रकार इसका विस्तार हुआ है। इसके बारे में जानकारी भारतीय ज्ञान परंपरा में मिलती है। हमारे वेद, पुराणों, उपनिषदों और प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। भारतीय सनातन परंपरा में परम आराध्य महादेव से लेकर योगेश्वर श्री कृष्ण तक के जीवन और कर्मों से योग का संदेश मिलता है। हम आपको आज योग की महिमा बताएंगे और इसके दर्शन के बारे में समझाएंगे। मानवीय चेतना के उत्थान और लक्ष्यों की प्राप्ति में योग किस तरह मददगार है ये भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। योर रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पूरी दुनिया आज योग का गुणगान कर रही है। भारतीय धर्म ग्रंथों में योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का साधन माना गया है, जो जीवन जीने की एक सर्वोच्च पद्धति भी है। वेदों, उपनिषदों और श्रीमद् भागवत गीता में योग की विस्तृत और गहरी व्याख्या की गई है, जो मनुष्य को मानसिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धर्म ग्रंथों में योग की क्या व्याख्या की गई है। क्या वाकई योग का प्रवाह वेद, उपनिषद, पुराण और श्रीमद् भागवत गीता में है? देखिए,

0: संसार के सबसे बड़े योगी हैं महादेव, क्योंकि शिव के तांडव में योग है। सबसे बड़े कर्म योगी हैं श्री कृष्ण। क्योंकि श्री कृष्ण के गीता ज्ञान में कर्म भक्ति और ज्ञान योग का सार है। भारत की सनातनी परंपरा में ऋषि मुनियों की तपस्या को ध्यान और साधना की पराकाष्ठा माना गया है।
1: योग वास्तव में हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा प्रदत्त एक ऐसा वरदान है हमारे लिए, जो हमें हमेशा स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे मन की शांति को प्रदान करता है। और सनातन धर्म में योग की महत्ता को दर्शाया गया है, पुराणों की महत्ता को दर्शाया गया है, तो पुराणों में से ही हमें योग की एक उपलब्धि जो है प्राप्त होती है।
0: आप कह सकते हैं कि मानव को ईश्वर का दिया वरदान है योग, जिसे आज पूरी दुनिया तन और मन को आत्म केंद्रित करने के लिए अपना चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना देने वाले योग का प्रवाह वेद, पुराण, उपनिषद और धर्म ग्रंथों में है।
1: वेदों में हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से हम पूजा पद्धति है हमारी हमारी जो संध्या हमें बताई गई है उसमें हमने प्राणायाम का भी प्रयोग हम करते हैं, तो अन्य प्रकार से कुछ आसन भी उसमें आ जाते हैं, तो वो सारा का सारा जो मिश्रण है उसमें निश्चित रूप से इन चीजों को हमारे योग को दर्शाया गया है, क्योंकि बिना योग के तो सब कुछ अधूरा, कि मिलना जोड़ ही योग है, तो इसीलिए बिना उसके सब कुछ अधूरा सा है।
0: वेद को सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, वहीं योग उस ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रायोगिक माध्यम भी है। दोनों का मूल उद्देश्य मनुष्य को अपनी वास्तविक चेतना से परिचित कराकर परमात्मा से मिलन कराना है, जहां योग के माध्यम से मोक्ष मिल सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि वेदों में योग का क्या स्थान है। योग के प्रमाण सीधे वैदिक संहितियों में मिलते हैं। ऋग्वेद में ध्यान, समाधि और प्राण शक्ति का उल्लेख है, जहां ऋषि पूर्ण एकाग्रता से परमात्मा में लीन होने की बात करते हैं। अथर्ववेद में मानव शरीर को 9 द्वारों और चक्रों वाला बताया गया है, जो कुंडलिनी और सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा का स्पष्ट संकेत देता है। वेद के अलावा उपनिषद भी भारतीय दर्शन और आध्यात्म के मूल स्तंभ हैं। उपनिषदों में जहां परम सत्य यानी ब्रह्म से आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, वहीं इसमें समाया योग उस ज्ञान को जीवन में उतारने और अनुभव करने का मार्ग है। इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, मोक्ष या आत्मकल्याण। उपनिषदों में योग को तन मन के संतुलन का कारक माना गया है, अंतर्मन और शरीर को जोड़ने का एक साधन माना गया है। 108 प्रमुख उपनिषदों में 20 उपनिषद योग उपनिषद कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से कृष्ण यजुर्वेद और सामवेद से जुड़े हैं। ज्ञान और योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों के बिना मोक्ष प्राप्ति असंभव है। तपस्वी और साधक ईश्वर के साथ एकाकार होने के लिए लय योग, हठ योग और राजयोग भी किए जाते हैं। आज संसार के 150 से भी ज्यादा देशों में लोग अलग अलग आसनों, व्यायाम के तरीकों का प्रयोग करते हैं, जिससे सांसों पर उनका नियंत्रण हो सके। स्नायुओं को पुष्ट करने वाले प्रयोग, पेट को फुलाने पिचकाने वाले आसन दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुके हैं। सदियों से योग हमारी जीवन पद्धति का अभिन्न अंग रहा है। योग विश्व को भारत की ही देन है।
1: कि जब हम साधना करते हैं तो निश्चित रूप से योग अपने आप में हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है और हमारे मन की शांति को प्रदान करता है। तो जो हमारे पुराण हैं उनमें विभिन्न विभिन्न तरीकों से इसकी व्याख्याएं प्रदान की गई हैं। जो हम अभ्यास करते हैं तो विभिन्न प्रकार के हमें अनुभव प्राप्त होते हैं जो हमें तन के साथ साथ जो निरंतर हम कहते हैं मन की शांति भी प्रदान करते हैं।
0: धर्मग्रंथ कहते हैं कि वेदों के अतिरिक्त पुराणों में भी योग का ज्ञान भरा हुआ है। मार्कंडेय पुराण में ईश्वर प्राप्ति के लिए योग की महत्ता बताई गई है। मार्कंडेय ऋषि ने ओंकार की साधना पर बल दिया और उन्होंने योग साधना और अष्ट सिद्धियों का वर्णन किया है। संयम द्वारा इंद्रियों को वश में करने की अनिवार्यता बताई गई है। अग्नि पुराण में मन की गति को ब्रह्म में लीन होना ही योग बना गया है। शिव पुराण में ओम के जप को मुक्ति का आधार बताया गया है। शिव पुराण की 8 संहितियों में से एक है वायु संहिता। वायु संहिता में योग की महत्ता बताई गई है। भविष्य पुराण में सूर्य नमस्कार के महत्व को बताया गया है। धर्मग्रंथ मानते हैं कि देवाधिदेव महादेव सबसे बड़े योगी हैं, जिनका न आदि है और ना ही अंत। तो आप भी सुनिए शिव की साधना पर क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य।
1: भगवान शिव योग के जनक हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो तांडव है भगवान शंकर करते थे और तांडव में संपूर्ण योग को दर्शाया गया है, संपूर्ण योग आ जाता है। जब भगवान शिव इसके जनक हैं और यदि उनको योग करने से उन्होंने स्वयं योग किया है और यदि हम भी योग करते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होगी और प्रभु शिव की कृपा हमारे ऊपर निश्चित होगी।
0: योग आसनों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये सहज और सर्वसुलभ है। इस व्यायाम में ना तो कुछ विशिष्ट व्यय होता है और ना ही किसी विशिष्ट साधन सामग्री की आवश्यकता होती है। ये प्रमाणिक भी हो चुका है कि योगासनों से शरीर की थकान मिट जाती है, मन तरोताजा हो जाता है और आप एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग की कैसी व्याख्या की है।
2: गीता के अध्यायों में योग की महत्ता बताई गई है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से मानव को जीवन जीने की सीख दी गई है और इसलिए गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन को गति और दिशा देने का कार्य करती है। गीता के कई अध्याय योग शब्द से भरे पड़े हैं। चलिए आपको बताते हैं कि योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का योग संदेश क्या है।

0: ध्यान और समाधि की उच्चतम अवस्था है योग। जीवात्मा से परमात्मा के मिलन की चरम सीमा है योग। माना जाता है कि योग से तन मन की शुद्धि होती है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है कुरुक्षेत्र में, जहां श्री कृष्ण के मुख से निकली वाणी गीता ने अर्जुन को कर्मयोग समझाया था। मैं वासुदेव कृष्ण स्वयं योगेश्वर हूं। मेरे कुछ भक्त मुझे योगीराज भी कहते हैं। मैं ही योग माया का स्वामी हूं। मनुष्य जो कुछ भी क्रिया करता है, ये सब श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म ही है। चाहे वे कर्म कायिका हो, वाचिका हो अथवा मानसिक हो, और तो और जीना मरना भी कर्म ही है।
1: गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं, तो उनमें बड़ा अच्छा कहा गया है कि योग कर्मशु कौशलम। गीता के अनुसार तो कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। केवल आसन करना योग नहीं है, केवल प्राणायाम करना योग नहीं है, केवल ध्यान करना योग नहीं है। एक व्यक्ति है, बाहर कार्य करता है, तो वो अपना कर्म योग कर रहा है। तो जो भी हम कर्म करते हैं, उसे हमें कुशलता पूर्वक यानी कि 100% डिवोशन के साथ में करना ही योग है।
0: द्रोणाचार्य को अजेय देखकर मैंने अर्जुन से कहा था, एको ही योगेस्य भवेत्वाधाय, अर्थात द्रोणाचार्य को जीतने का एक ही योग है। वहां योग युक्ति या उपाय के रूप में था। महाभारत और गीता में योग योगी शब्द कई बार प्रयुक्त हुए हैं। गीता में सृष्टि निर्माण को योग कहा गया है। इसी अर्थ में मैं योगेश्वर हूं। मेरे लिए योग का मुख्य अर्थ है कर्म योग। मैंने अर्जुन से कहा था, योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कर्म करने की कुशलता, युक्ति अथवा शैली को योग कहते हैं। गीता के शंकर भाष्य में भी कर्मसु कौशलम का यही अर्थ लिया गया है। कर्म में स्वभाव सिद्ध रहने वाले बंधन को तोड़ने की युक्ति महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं। धर्म की स्थापना के कई मार्ग हैं। मैं अपना सुदर्शन चक्र चलाता तो एक क्षण में सारे अधर्मियों का नाश कर देता। मैंने अर्जुन को प्रेरित किया, मैंने अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया। तो देखा आपने कि कैसे हमारी संस्कृति और शास्त्रों से जुड़ा है, सार्वभौम बन चुका ये योग। धर्म ग्रंथों के जानकार बताते हैं कि श्वास का नियमन योग का एक अंग मात्र है, वो संपूर्ण योग नहीं है। योग को समझने के लिए हमें पुराणों की शरण में जाना होगा। माना जाता है कि ध्यान की एक और विधा ओम का जाप करने से आप ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से स्वतः ही जुड़ जाते हैं। माना जाता है कि जब आप ओम का जाप करते हैं, तब आप एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति अपने अंदर करते हैं।
1: ओम एक ऐसा ब्रह्मांड का ऐसा शब्द है, जिस जब हम यहां बैठ करके ओंकार का जाप करते हैं, तो वो पूरी तरीके से पूरे ब्रह्मांड को समाहित हो जाता है। क्योंकि आवाज जो है, शब्द जो है, एक आकाश तत्व है, तो आकाश तत्व से हम जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए इसकी महत्ता भरपूर मात्रा में हमारे योग में दर्शाई गई है।
0: माना जाता है कि आसनों के द्वारा श्वास पर नियंत्रण पाया जा सकता है। प्राणायाम की सहायता से प्राण वायु का नियमन मनुष्य को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। प्राणायाम के माध्यम से समाधि या ध्यान के नए सोपान पाए जा सकते हैं।
1: यदि हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग हमें दिया, तो अष्टांग योग में यम नियम की उन्होंने बात करी है। योग के बिना सब अधूरा है, तो जब योग साधना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे प्रारंभ में जो हमारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, अवरोध होते हैं, वो धीरे धीरे धीरे धीरे हमारा जो मनोबल बढ़ता है उससे वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं।
0: योग भारतीय जीवन दर्शन का ही अंग है। इसमें वेदों का ज्ञान और पुराणों का विज्ञान मिला है। विज्ञान भी मानता है कि योगासनों से शरीर की भीतरी ग्रंथियां अपना काम अच्छी तरह कर पाती हैं, जो आपको लंबे समय तक युवा बनाए रखने का काम करता है। माना जाता है कि इससे पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, मांसपेशियों को शक्ति मिलती है, मोटापा घटता है और दुबला पतला व्यक्ति भी तंदुरुस्त रहता है।
2: और इसी के साथ इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए

0: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
1: कुछ दिल को छू जाती ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Hey, it's Billy Bush. Tune in to my show Hot Mics Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
2: तस्वीर, खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे

0: पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
7: पश्चिम बंगाल पहली बार मना रहा पश्चिम बंग दिवस, शानदार रोशनी से जगमगाया ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज, हुगली में भी शानदार सांस्कृतिक समारोह। मेघालय के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिलांग में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया, लैटकोर पीक पर तैनात जवानों से मुलाकात की। कल बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे की होगी कमिश्निंग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले नेवी का अंडर वाटर योग, 40 नौसैनिकों ने एक साथ योगा किया, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश दिया। कल होने वाले नीट री एग्जाम को लेकर देश भर में हुई मॉक ड्रिल, दिल्ली से सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन, DTC बसों में मुफ्त सफर की सुविधा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
7: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात चार धाम यात्रा की, जो इस बार नए रिकॉर्ड बनाने जा रही है। उत्तराखंड की पावन वादियों में बसी सनातन संस्कृति की आत्मा यानी चार धाम यात्रा में इस बार भक्तों का उत्साह देखने लायक है। बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के दर पर आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन इस भारी भीड़ के बीच देवभूमि को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए एक महाअभियान भी चल रहा है। देखिए,

0: उत्तराखंड की वादियों के बीच बसे चार धाम जिन्हें मोक्ष का द्वार माना गया है। हिमालय की गोद में बसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि इन धामों में दर्शन मात्र से जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं और आत्मा को परम शांति मिलती है। यही महिमा और यही आकर्षण हर साल लाखों भक्तों को इस दुर्गम राह पर खींच लाता है। लेकिन इस साल तो जैसे भक्तों की आस्था नया इतिहास रचने जा रही है। भगवान बद्री विशाल के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आंकड़ों की बात करें तो 19 जुलाई तक 12 लाख से ज्यादा भक्त भगवान बद्री के इस भव्य और दिव्य धाम के दर्शन कर चुके हैं। ये आंकड़ा अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि इससे पहले इतिहास में कभी भी जून में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ नहीं पहुंचे थे।
1: बद्रीनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। जहां 19 जून तक की यात्रा शाम 5 बजे तक यात्रा पूरी हो चुकी है, वहीं इसके आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। इस बार 19 जून तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं पहाड़ों में इस बार मौसम पूरी तरह से सुहाना बना हुआ है। अभी भी पहाड़ों में ठंडक देखने को मिल रही है। श्रद्धालु बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित नीति माड़ा जो बॉर्डर रोड है वहां तक जा रहे हैं। 2 महीने का समय पूरा होने को है, ऐसे में 12 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। तो 1 लाख से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में सिखों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है, जो 19 किलोमीटर की एकदम पैदल चढ़ाई है, वहां पे यात्रा कर चुके हैं। लगातार श्रद्धालुओं की आस्था का जो केंद्र है वो बना हुआ है।
0: सिर्फ बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि बाबा केदार की नगरी में भी भक्तों की तादाद हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। हर हर महादेव और जय केदार के उद्घोष से पूरी केदार घाटी गूंज उठी है। जहां एक तरफ आस्था का महासैलाब है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पवित्र धाम की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। केदारनाथ धाम और वहां तक पहुंचने के यात्रा मार्ग पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन भी लगातार यात्रियों से अपील कर रहा है कि वे आस्था के साथ साथ जिम्मेदारी भी निभाएं।
2: स्पष्ट निर्देश है कि केदारनाथ धाम ट्रैक रूट और पूरे जनपद की सफाई व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। इसी के क्रम में एक हीलिंग हिमालयास एनजीओ है, उनके द्वारा यह इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया और इसमें जिला प्रशासन, नगर पंचायत केदारनाथ सभी लोग इसमें जुड़ करके इस मुहिम को सफल बना रहे हैं। इसमें 1500 से भी ज्यादा जो हमारे तीर्थयात्री हैं उन्होंने वॉलंटियर के रूप में योगदान दिया है। लगभग 2.5 टन कूड़ा इसमें अभी तक नीचे लाया जा चुका है।
0: चार धाम में उमड़ा ये जन सैलाब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि महादेव और भगवान बद्री विशाल के प्रति भक्तों का अटूट विश्वास है। जाहिर है कि बाबा के प्रति भक्तों की ये दीवानगी और ये श्रद्धा रुकने वाली नहीं। आने वाले दिनों में भक्ति का ये रंग और भी गहरा होने वाला है, यानी इस साल भक्तों का आंकड़ा नए रिकॉर्ड गढ़ने वाला है। कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरे उत्साह और उमंग के साथ जारी है। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले और यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है। अटूट श्रद्धा के प्रतीक माता खीर भवानी यात्रा 2026 का औपचारिक आगाज हो गया है। ज्येष्ठ अष्टमी के पावन अवसर पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था कश्मीर के लिए रवाना हो चुका है। नगरोटा टोल पोस्ट से 214 बसों के काफिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें लगभग 8,500 श्रद्धालु सवार हैं। इस साल माता खीर भवानी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह है और यही वजह है कि इस बार रजिस्ट्रेशन में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
4: सोमवार को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी है। इस दिन को समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय माता खीर भवानी के प्रादुर्भाव दिवस के रूप में मनाता है, एक महापर्व के रूप में मनाता है। आज यहां जम्मू से श्रद्धालु जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के नगरोटा इलाके में और मेरे पीछे आप जो ये बसें देख रहे हैं, दरअसल इन्हीं बसों में बैठकर जो है श्रद्धालु कश्मीर घाटी की तरफ जाएंगे, माता खीर भवानी के मंदिर की तरफ, माता खीर भवानी के धाम। सोमवार को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी है। ये दिन जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए खासा महत्व रखता है। इस दिन को समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय माता खीर भवानी के प्रादुर्भाव दिवस के रूप में मनाता है, एक महापर्व के रूप में मनाता है। और जो जानकारी हमें राहत और पुनर्वास जो विभाग है जम्मू कश्मीर सरकार का, उनकी तरफ से ये आ रही है कि तकरीबन 8,000 से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हैं, तो खासा उत्साह देखा जा रहा है। खासतौर पर जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं वो कश्मीर घाटी के लिए निकलने वाले हैं। 8,000 के करीब जो है श्रद्धालु यहाँ जम्मू से रवाना होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बसें जो हैं वो लगना शुरू हो चुकी हैं। सोमवार को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी है, इस दिन को समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय माता खीर भवानी के प्रादुर्भाव दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन को एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। हजारों की संख्या में जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं वो जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों से कश्मीर घाटी पहुंचते हैं प्रतिवर्ष। यहाँ पर आप देखिए कि जो श्रद्धालु हैं इनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। माता की स्तुतियां गाई जा रही हैं, भजन गाए जा रहे हैं। हम यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं से बात करेंगे। जी आप बताइए आपका नाम।
5: नाना जी पंडिता मुठी से, और हम कुपवारा के रहने वाले हैं। असली मूल वटरखनी तो कुपवारा के रहने वाले हैं। हम लगभग हर साल जाते रहते हैं खीर भवानी तुलमुला के मेले पर, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना, माता से प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा के लिए अपने घरों को वापस जाए। ऐसा वातावरण बनना चाहिए जैसे हम वापस जाएंगे, नब्बे से पहले जो हालात जम्मू कश्मीर में थे तो वैसे ही हालात फिर से हो जाए, ताकि हम अपने घरों में
4: वापसी की प्रार्थना करें।
5: बिल्कुल, हम घर वापसी की प्रार्थना करते हैं। हम यहाँ
6: मेरा नाम है किरणी कुमारी पंडिता।
4: कहाँ के रहने वाले आप?
6: मैं कुपवाड़ा के रहने वाली हूँ।
4: अच्छा।
6: मेरा ससुराल है वटरखनी।
4: अच्छा, तो 1990 में आप भी पलायन करके आ गए?
6: हाँ जी, 1990 में वापस यहाँ पर आए।
4: आज आप माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तुलमुल जा रहे हैं, तो मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है?
6: बहुत ही प्रसन्नता है, बहुत ही खुश है हम।
4: तो माता के धाम जब आप पहुंचेंगे, माता के मंदिर, क्या मांगेंगे माता से? हालांकि ये व्यक्तिगत बात है, लेकिन क्या मांगेंगे माता?
6: माता को यही मांगते हैं कि हम अपने घरों में हमको वहाँ पर ले जाए, हालात ठीक होने चाहिए, कि हमको अपने घरों में बैठने चाहिए, बस वही विनती करते हूँ।
4: जय घोष लगा दीजिए माता जी का।
6: जय माता जी की, जय खीर भवानी की,
7: जय खीर भवानी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
4: जी आप बताइए आपका नाम।
8: धीरज रैना
4: जी। कहाँ के रहने वाले आप? बोलता
8: हम कैदल जी सर,
4: श्रीनगर
8: जी सर।
4: अभी आप तुलमुल जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए, कितनी प्रसन्नता है मन में?
8: बहुत खुशी है सर, मैं तो पहली बार जा रही हूँ।
4: तो क्या मांगेंगे माता से?
8: माता से यही बोलेंगे कि वो वापस बुलाए, उधर सेटल हो जाए हम, बस यही खुशी है माता
4: जी। आप बताइए आपका नाम। आप बताइए।
9: मेरा नाम सुशील भट्ट है।
4: मैं के रहने वाले
9: का रहने वाले
4: मूलता कुपवाड़ा
9: जी। मैं भी, हम भी पहली बार ही जा रहे हैं।
4: अच्छा, 1990 के बाद पहली बार
9: जा रहे हैं।
4: अच्छा, तो ये तो काफी भावनात्मक जो है, आप ये
9: देखेंगे वहाँ का कैसा फीलिंग रहेगा। हम तो पहली बार जा रहे हैं, जा तो रहे हैं कि अच्छा अच्छा ही हो सब, और आगे भी अच्छा ही हो जी। अब
4: तो माता जी से क्या मांगेंगे जब माता के मंदिर पहुंचे?
9: मांगना यही है कि सब ठीक रहे, सब स्वस्थ रहे।
4: हम यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। जी आप बताइए आपका नाम।
10: मेरा नाम रीता चोपड़ा है।
4: आप जम्मू के रहने वाले?
10: हम श्रीनगर के रहने वाले।
4: श्रीनगर?
10: हाँ जी, हम सिटी में रहते थे, चिंकराल मेला।
4: तो माता से क्या मांगेंगे?
10: हम माता से मांगेंगे कि हम अपने घर जाएं। मेरे बच्चों को पता ही नहीं है कि श्रीनगर क्या है, कश्मीर क्या है।
4: अच्छा,
10: वो गए ही नहीं है कभी।
4: तो मन में कितनी प्रसन्नता है कि माता के दर्शन करने जा रहे हैं?
10: खुशी है कि हम अपने घर जाए और माता रानी हमें फिर ले जाए अपने घर।
4: ठीक है, हम यहाँ पर कुछ और श्रद्धालुओं से बात करेंगे। जी आप बताइए आपका नाम।
11: नंसी।
4: कहाँ के रहने वाले आप? बोलता
11: कुपवाड़ा में।
4: कुपवाड़ा के ही। तो अब आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं कश्मीर, मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है?
11: अच्छी है।
4: तो क्या मांगेंगे माता?
11: घर जाना, वापस
4: वापस घर जाना। देखिए यहाँ पर जो अधिकतर श्रद्धालु है इनका कहना है कि ये जब माता के दर्शन करेंगे तो माता से यही प्रार्थना करेंगे कि जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं इनकी घर वापसी हो, सम्मान घर वापसी हो। कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग कश्मीर से दूर है, अपनी जन्मभूमि से दूर है, लेकिन भावनात्मक तौर पर ये वही है। इनका शरीर तो देश के किसी भी भाग में हो सकता है, लेकिन इनकी आत्मा जो है वो कश्मीर में ही बसती है, इनकी जन्मभूमि में ही बसती है। तो काफी भावनात्मक ये अगर हम देखें तो ये इनका रिश्ता है अपनी जन्मभूमि से। हर किसी का होता है अपनी जन्मभूमि के साथ भावनात्मक रिश्ता। तो यहाँ अगर हम देखें तो बसें जा रही हैं कश्मीर घाटी की तरफ, 200 बसें जा रही हैं, 8,000 से अधिक श्रद्धालु कश्मीर घाटी जा रहे हैं माता खीर भवानी के दर्शनों के लिए। सोमवार को जो है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी है, लेकिन श्रद्धालु आज ही वहां पहुंचेंगे, कुछ समय बिताएंगे, माता के दर्शन करेंगे और अपने कश्मीर को एक बार फिर से महसूस करेंगे, अपनी जन्मभूमि को, अपनी माटी को, अपनी हवा को, वहां की हवा को, कश्मीर को एक बार फिर से महसूस करेंगे। तो फिलहाल श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, कश्मीर घाटी की तरफ ही निकल पड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ में सुनील भट्ट, जम्मू।
3: एक तरफ भक्तों का उत्साह चरम पर है तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के गांधरबल जिले के तुलमुला गांव में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां माता रागन्या देवी मंदिर में तीर्थ यात्रियों का भव्य स्वागत करने की तैयारी है। भक्तों के साथ ही स्थानीय लोग भी इस भव्य आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित हैं।
12: पहले सबको हमारी तरफ से जय माता की। यहाँ काफी भव्य तैयारियां हुई हैं। इस टाइम 22 जून को मेला है माता रानी का, जो काफी धूमधाम से मनाया जाता है। माता कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है। देश भर के या विश्व भर से कश्मीरी पंडित आ रहे हैं, काफी भव्य तरीके से पूजा कर रहे हैं और अति उत्साह का माहौल है। और हमारी यही कृपा है कि माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे।
13: वेलकम करते हैं जो हमारे पंडित भाई बहन हैं, उनका वेलकम करते हैं यहाँ माता खीर भवानी का जो मेला आने वाला है 22 जून को। हम उनको दिल के अमीक गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। यहाँ की सिविल सोसाइटी या यहाँ के लोग, यहाँ के सभी जो अफराद हैं, वो इनका खैर मकदम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं।
14: बड़े जोश में जज्बे के साथ जितने भी गांधरबल के लोकल पब्लिक है, सिविल सोसाइटी है, गांधरबल पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरे जोश में जो अरेंजमेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बड़े डिसिप्लिन के साथ हर साल यहाँ पे डिवोटीज का वेलकम।
3: और अब खबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी हुई, जो रविवार को 21 जून को मनाया जाना है, लेकिन तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस खास मौके पर जहां देश भर में उत्साह है तो वहीं ईशा फाउंडेशन ने भी इस मौके पर बेहद विशाल और सराहनीय कदम उठाया है। आपको बता दें, सुद्रु के मार्गदर्शन में ईशा फाउंडेशन इस साल पूरे भारत में 1000 से ज्यादा मौके पर जहां देश भर में उत्साह है तो वहीं ईशा फाउंडेशन ने भी इस मौके पर बेहद विशाल और सराहनीय कदम उठाया है। आपको बता दें, सुद्रु के मार्गदर्शन में ईशा फाउंडेशन इस साल पूरे भारत में 1000 से ज्यादा मुफ्त योग सत्रों का आयोजन करने जा रहा है। इस महाअभियान का मकसद योग को समाज के हर वर्ग तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंचाना है। शिक्षा, मेडिकल, सरकारी विभागों और डिफेंस सेक्टर से जुड़े 50,000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर इन योग सत्रों का हिस्सा बनेंगे और साथ ही एनसीसी कैडेट्स और बीएसएफ के जवान भी योग की साधना में लीन होंगे।
15: Whatever your religion, race, caste, creed, gender, doesn't matter who you are. If you're a human being, these technologies apply. If you want to just make use of it, if you want to understand in a deeper way, the entire science is there, which is a lifetime of exploration. These technologies render you to optimal existence, to peak performance in your life. In body, mind, emotion, intelligence and energies, and above all, it'll unlock the potential of the genius that is there in every human being.
3: कहते हैं कि हुनर किसी बंदिश का मोहताज नहीं होता और हौसले के आगे हर चुनौती घुटने टेक देती है। कुछ ऐसे ही नजारा अब दिल्ली हाट में देखने को मिला है, जहां पर स्पेशली चैलेंज्ड बच्चों के लिए एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। द अक्षयत फाउंडेशन की ओर से आयोजित हुए इस खास कार्यक्रम में स्पेशली चैलेंज्ड बच्चों का हुनर देखकर हर कोई हैरान रह गया।
0: कहते हैं कि अगर हौसला पक्का हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कुछ ऐसी ही दिल्ली हाट पर आयोजित हुए एक खास कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां इन बच्चों की प्यारी सी मुस्कान ने हर किसी के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी

इन स्पेशली चैलेंज्ड बच्चों ने ऐसा समा बांधा कि पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। दक्षत फाउंडेशन की ओर से आयोजित किए गए इस शानदार कार्यक्रम का मकसद लोगों को ये समझाना था कि ऑटिज्म जैसी दिक्कतों से जूझ रहे बच्चों को हमारे साथ और प्यार की कितनी जरूरत है। कार्यक्रम में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों ने अपनी कला का जादू तो बिखेरा ही, साथ में फिल्मी गानों पर ऐसा डांस किया कि हर कोई देखता रह गया।

0: दक्षत फाउंडेशन की ये छोटी सी पहल समाज को एक बड़ा संदेश दे गई। इन बच्चों की परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि अगर उन्हें थोड़ा मौका और सही माहौल मिले तो ये अपनी जिंदगी के रंगों से पूरे समाज को रोशन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मौसम गर्मियों का है और इस मौसम में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद की जाती है तो वो है आम। एक ऐसा फल जिसे तमाम फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन बात अगर गुजरात के केसर की हो तो बात ही अलग है। इसका रसीला स्वाद और बेमिसाल खुशबू लोगों को बेहद पसंद है। यही वजह है कि गिर सोमनाथ में इस साल केसर आम ने नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं।

0: बेमिसाल स्वाद, लाजवाब खुशबू और रंग ऐसा कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और आमों में भी सबसे खास गिर का केसर, जिसकी अनोखी खुशबू और शाही स्वाद के आगे दुनिया का हर जायका फीका नजर आता है। लेकिन इस साल गुजरात में केसर आम की मिठास और खुशबू कुछ अलग है, क्योंकि इस साल केसर आम के स्वाद की दीवानगी ने गुजरात में वो कर दिखाया है जो आज तक नहीं हुआ। इस बार केसर आम का सीजन किसानों और आम कारोबारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। गिर सोमनाथ के तलाला आम मार्केट की अगर बात करें, तो यहाँ 61 दिनों तक चले सीजन में कुल लगभग 10 लाख पेटियाँ आईं। ये आंकड़ा मामूली नहीं है, क्योंकि इसने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। दरअसल इस साल मौसम ने किसानों का भरपूर साथ दिया। अनुकूल मौसम की वजह से न सिर्फ पैदावार बंपर हुई, बल्कि केसर आम की क्वालिटी पर भी इसका बेहद शानदार असर हुआ, जिस वजह से बाजार में अब तक केसर आम की डिमांड बनी हुई है। हालांकि केसर आम की इस मिठास का जादू सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सात समंदर पार भी गिर के केसर ने धूम मचाई। इस सीजन में रिकॉर्ड 90 टन केसर आम का एक्सपोर्ट किया गया। यूनाइटेड किंगडम, दुबई और कनाडा जैसे देशों में बैठे आम के शौकीनों ने इस बार गिर के शाही स्वाद का जमकर लुत्फ उठाया। कहते हैं कि आम सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि एक जज्बात है। बात जब गिर के केसर आम की हो, तो ये दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है। एक बार फिर गिर के केसर आम की जादुई स्वाद और इसकी खुशबू ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि लोग इस कदर इसके स्वाद के दीवाने क्यों हैं। दिलीप भाई मोड़ी, गिर सोमनाथ, गुड न्यूज़ टुडे।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब नए विमान में उड़ान भरने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के बेड़े में शामिल होने के लिए नया विमान तैयार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैरीलैंड में खुद इसका मुआयना किया। आपको दिखाते हैं इस विमान में क्या खास है और आखिर क्यों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको पाकर बेहद खुश हैं।

0: चकाचक, ब्रांड न्यू, बेहद शानदार, आलिशान, ये वो विमान है जिस पर आने वाले दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप उड़ान भरेंगे। ये अमेरिका का नया एयरफोर्स वन है जो अब अमेरिकी राष्ट्रपति के स्पेशल प्लेन VC-25A की जगह लेने जा रहा है। इस नए विमान को VC-25B नाम दिया गया है। अमेरिका में मेरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर राष्ट्रपति ट्रंप के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार इस नए विमान का मुआयना किया और इसे शानदार करार दिया।
1: As you probably have learned, these planes are much bigger. The other plane was about 35 years old, and it was time. And President of the United States, numerous of them, would land, and they'd be standing next to one of the new 747s. And the biggest difference is the difference in size. It's like virtually double the size, and it actually on a runway it looks even.
0: इस बोइंग 747 बिजनेस जेट को कतर के अमीर ने पिछले साल अमेरिका को उपहार में दिया था। इसकी कीमत करीब $400 मिलियन यानी लगभग 37 अरब रुपए बताई जा रही है, जबकि इसे नए सिरे से किए गए बदलावों में भी $1 अरब से ज्यादा रकम खर्च की गई है। अमेरिका को सौंपे जाने के बाद विमान के लुक में खास बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की पसंद के आधार पर नए विमान में पुराने एयरफोर्स वन की हल्के नीले रंग वाली पारंपरिक डिजाइन को हटाकर नया लुक दिया गया है। इसके नीचे के हिस्से को नेवी ब्लू रंग में रंगा गया है। ऊपरी हिस्से का रंग चमकदार सफेद है, जबकि बीच वाले हिस्से में लाल पट्टी लगाई गई है और सुनहरे रंग के डिजाइन वाला इंटीरियर बनाया गया है। विमान के बाएं हिस्से पर राष्ट्रपति का प्रतीक चिन्ह लगाया गया है। वहीं पीछे के हिस्से पर बड़ा अमेरिकी ध्वज दिखेगा। इसमें शानदार प्रेसिडेंशियल सुइट है, लेदर सीटें और मुलायम कालीन लगाई गई है, साथ ही लकड़ी की भव्य पैनलिंग की गई है। अमेरिका को सौंपे जाने के बाद डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज ने इसकी फ्लाइट टेस्टिंग की और राष्ट्रपति के सुरक्षा मानकों के लिहाज से इसमें खास बदलाव किए गए हैं। विमान में हाई लेवल के सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाए गए हैं। इसे सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क से लैस किया गया है, साथ ही इसमें जरूरी सैन्य उपकरण भी लगाए गए हैं। इस विमान के विंग्स में मिरर बॉल डिफेंस सिस्टम है जो इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम को चकमा दे सकता है। दुश्मन के रडार को जाम करने के लिए इसमें ECM डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। ये विमान 1050 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर विमान का जायजा लेने के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके मैकेनिकल डोर पर दस्तखत भी किए। उन्होंने विमान की तारीफ करते हुए इसके लिए कतर के अमीर के प्रति आभार भी व्यक्त किया।
1: There'll never be one like this. This is very unique. This is considered the world's most luxurious plane. When it was built at a level that will probably never be seen again. And the workmanship of this plane is, when you see it, you won't believe it, actually. The quality of woods, the quality of the materials, the quality of the engines. These engines are the finest, they're the best in the world. Nothing like it. So, it's really an honor, and I want to thank the Emir of Qatar. He's a fantastic guy. He went through a lot over the last few months. He's very brave.
0: बताया जा रहा है कि कतर से मिला यह विमान राष्ट्रपति के लिए अस्थायी रूप से उपयोग में लाया जाएगा। बोइंग कंपनी की ओर से राष्ट्रपति की फ्लीट के लिए 2028 तक दो नए विमान सौंपे जाने की संभावना है, जिनके लिए ऑर्डर 2018 में ही दिया गया था। डिलीवरी में देरी को देखते हुए कतर से गिफ्ट में मिले इस विमान को राष्ट्रपति के बेड़े में शामिल करने का फैसला किया गया। अब राष्ट्रपति ट्रंप अपनी विदेश यात्राओं के लिए इस नए विमान का इस्तेमाल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप अगले महीने अंकारा में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में इसी नए विमान से जाएंगे। वहीं 4 जुलाई को अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में ये विमान फ्लाई पास्ट का हिस्सा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और इसी के साथ इस खास शो में फिलहाल इतना ही। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
5: continue to face political pressure to reach a peace deal,
4: or hear your favorite teams with live sports, Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
5: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि रुद्राक्ष का प्रयोग करके आप शनि की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 जून 2026 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 3:20 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः 9:31 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 3:40 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 21 जून 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, शुक्र और बृहस्पति कर्क राशि में, चंद्रमा और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं कि रुद्राक्ष का प्रयोग करके आप शनि की बाधाओं से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रुद्राक्ष की महिमा क्या है। देखिए, रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र यानी शिव जी का अक्ष नेत्र। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रुओं से आंसुओं से हुई है। इसको प्राचीन काल से आभूषण के रूप में मंत्र जप करने के लिए और ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं। रुद्राक्ष का प्रयोग करके आप ग्रहों की पीड़ा को दूर कर सकते हैं, खास तौर से शनि की पीड़ा को दूर कर सकते हैं और शनि की कृपा पा सकते हैं। अगर आप रुद्राक्ष पहन करके शनि की पीड़ा को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रुद्राक्ष धारण करने के नियमों का पालन करना होगा। रुद्राक्ष पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ,
मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने के नियम क्या हैं। आप रुद्राक्ष अपनी कलाई में, अपने कंठ में और गले में एक माला भी पहन सकते हैं। शनि के लिए जब आप रुद्राक्ष पहनेंगे तो इसकी माला या धागे में डाल करके रुद्राक्ष गले में धारण करेंगे, और जब शनि के लिए रुद्राक्ष पहनेंगे तो इसको शनिवार को धारण करेंगे। लेकिन धारण करने के पहले भगवान शिव को अर्पित करें, शिवलिंग से स्पर्श करा लें। जब भी रुद्राक्ष धारण करिएगा अपने आचरण में और अपने व्यवहार में सात्विकता रखिएगा। एक तरफ आप रुद्राक्ष पहने और दूसरी तरफ मांस मदिरा का सेवन करें, अपशब्द बोलें, तो रुद्राक्ष पहनने का कोई लाभ नहीं होगा। रुद्राक्ष पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, पारिवारिक चिंता समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आपके जीवन में शनि से संबंधित समस्या है तो किस रुद्राक्ष का प्रयोग करेंगे? अगर आपके रोजगार में समस्या है, नौकरी में, व्यापार में, कारोबार में अगर दिक्कत है तो क्या करेंगे? इसके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करिएगा। रोजगार के लिए 1 दाना भी आप पहन सकते हैं या 3 दाने पहन सकते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में डालकर गले में शनिवार को पहनिएगा। 1 साथ 3 दाने 10 मुखी रुद्राक्ष के हों तो उनको धारण करना विशेष लाभकारी रहेगा। अगर आपको शनि की वजह से स्वास्थ्य की समस्या है या शनि की वजह से आयु की समस्या है तो क्या करेंगे? स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, आयु को लंबा करने के लिए शनिवार को गले में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करिएगा या केवल 1 दाना 8 मुखी रुद्राक्ष का पहने या 8 मुखी रुद्राक्ष के 54 दाने 54 दाने गले में पहनिएगा। आपके स्वास्थ्य की समस्या, आपकी आयु की बाधा दूर होगी। अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही हो, जैसे इस समय कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, सिंह राशि और धनु राशि पर अगर शनि की 5.5 चल रही है, जो कि चल रही है, तो क्या उपाय करेंगे? इसके लिए गले में रुद्राक्ष की माला धारण करिएगा और ये माला अगर 5 मुखी रुद्राक्ष की हो, 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में पहने तो बहुत अच्छा होगा। धारण करने के पहले माला पर शिव जी का मंत्र नमः शिवाय 108 बार पढ़ लें और उसी माला पर 108 बार शनि का मंत्र पढ़ लें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करके 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में पहने तो 7.5 और 5.5 का प्रभाव कम हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि का कोई अशुभ योग हो, शनि चंद्र का विष योग हो, शनि राहु का शाप दोष हो, अगर कोई ऐसा योग है तो क्या करेंगे? 1 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष 1 साथ धारण करिएगा। इसमें 1 दाना 1 मुखी रुद्राक्ष का हो
और दो दाने 11 मुखी रुद्राक्ष के रखिएगा। इसको एक साथ लाल धागे में डालकर अपने गले में शनिवार को पहनिएगा। इसको पहनने से शनि का अगर कोई अशुभ योग कुंडली में है तो वो योग भंग हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। पारिवारिक समस्या हो सकती है। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। आर्थिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की रुद्राक्ष के प्रयोग से शनि की बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो हर शनिवार को हनुमान जी को तुलसी के दल यानी दो पत्ते तुलसी के अर्पित करें और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। नौकरी में आपका परिवर्तन हो जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 21 जून 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। आपका परिवर्तन हो जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 21 जून 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद 27 बार ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
1: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay,
2: and that'll be me.
1: Nora Jones,
3: with a diamond implied, you don't let her
1: and Daniel Caesar.
4: Have a baby with me.
1: Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. Good news today. अच्छी खबर सच्ची खबर.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे. अच्छी खबर सच्ची खबर.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे.

0: बचपन में इकट्ठा की अखबार की कतरन। मासूम आंखों ने सजोए छपने के ख्वाब। टाइम मैगजीन ने बनाया दमदार आइकन। सपने से सितारे तक स्मृति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
5: पश्चिम बंगाल पहली बार मना रहा पश्चिम बंग दिवस, शानदार रोशनी से जगमगाया ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज, हुगली में भी शानदार सांस्कृतिक समारोह। मेघालय के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिलोंग में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, लैपकोर पीक पर तैनात जवानों से मुलाकात की। कल बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे की होगी कमिशनिंग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले नेवी का अंडरवाटर योग, 40 नौ सैनिकों ने एक साथ किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया संदेश। कल होने वाले नीट री एग्जाम को लेकर देश भर में हुई मॉक ड्रिल, दिल्ली से सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन, DTC बसों में मुफ्त सफर की सुविधा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर दिन नए नए कीर्तिमान रच रहा है। स्वदेशी क्षमता से ऐसे ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जिन पर चंद देशों का दबदबा रहा है। आज रण क्षेत्र में बात उन तीन ताकत की करेंगे जो सबलान से लेकर डिफेंस और अटैक तक करने में महारत रखते हैं। नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। 25 जून को बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबोन सिस्टम में नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की घोषणा की जाएगी।
1: फाइनल क्लियरेंस का सीधे तौर पर मतलब यही होता है कि सिस्टम अब पूरी तरह से रणक्षेत्र में उतरने के लिए तैयार है। अब चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर उस सिस्टम की जरूरत हो। नेत्र सिस्टम को फिलहाल डीआरडीओ द्वारा विकसित कर लिया गया है, फाइनल क्लियरेंस मिल चुकी है और इसे एम्ब्रियर विमान में फिट किया गया है।
0: युद्ध में जीत अक्सर उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले, और ये काम नेत्र बाखूबी करता है। तभी तो एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को आसमान में आंख कहा जाता है। नेत्र सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है। नेत्र में स्वदेशी AESA रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगा रडार करीब 240 डिग्री इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये विशाल हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी कर सकता है। डिटेक्शन रेंज की बात की जाए तो नेत्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के खतरों को भांप सकता है। नेत्र सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता बल्कि उसे तुरंत लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है। इससे पूरी वायुसेना एक नेटवर्क के रूप में काम करती है।
2: देखिए, जो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है ये एक एरियल प्लेटफॉर्म पे इसको माउंट किया गया है जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाती है और जब इसका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है तो इसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है। और इसका जो जो एरिया देखता है इनिशियली जो मार्क वन है उसका 240 डिग्री कवरेज था, लेकिन इसका एक इम्प्रूव वर्जन आ रहा है मार्क टू जिसमें कि वो एयरबस A321 पे माउंट होगा और उसका जो कवरेज होगा 360 डिग्री होगा, यानी कि वो चारों दिशाओं में एक्यूरेसी के साथ उस चीजों को निगरानी कर सकेगा। ये तमाम जो ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म है जो डाइविंग एयरक्राफ्ट हैं या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, इन सारों को डिटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा।
0: हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण नेत्र लंबे समय तक मिशन पर बना रह सकता है जिससे सीमा क्षेत्रों की लगातार निगरानी संभव है। दरअसल भारत को एक साथ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती है। ऐसे में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जमीनी रडारों की सीमाओं को दूर करते हैं और सीमा के पार तक निगरानी करने में मदद करते हैं।
1: एवॉक्स प्लेटफॉर्म दरअसल शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाके काम करता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ता है जिस वजह से ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी भी मिसाइल, विमान या फिर जमीन पर ही जिससे रडार इंटरसेप्ट नहीं कर सकता उसकी जानकारी जुटाने में काफी मददगार साबित होता है।
0: एवॉक्स एक बड़े इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एक कम्बाइंड एयर डिफेंस बना सकता है। साथ ही ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर भी नजर रख सकता है।
2: देखिए, सबसे पहली बात है अगर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है, एवॉक्स है, तो वो आज की डेट में एरियल प्लेटफॉर्म है, वो हवा में जाता है, उसका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, उसका एरिया कवरेज बढ़ जाता है, और साथ में वो दूर तक एट द अर्ली स्टेज किसी भी मिसाइल, रॉकेट या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेता है। ग्राउंड बेस स्टेशन भी यही चीजें करते हैं, लेकिन उसमें बहुत तरीके की क्लटरिंग होती है। अगर ग्राउंड बेस स्टेशन है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उसका जो क्लटर है उसको डिक्लटर करने की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों से एवॉक्स जो है वो उसमें इसका कम असर होता है।
0: एवॉक्स सिस्टम लंबी दूरी के रडार से लैस होता है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक की जानकारी जुटा लेता है, और ये दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में ताजा जानकारी मुहैया कराता है। अगर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की तलवार है तो नेत्र उसकी आंख है। बिना नेत्र के रण क्षेत्र में उतरना बहुत मुश्किल है और युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर अगर हम आधुनिक युद्ध की बात करें, जिसके लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है, और उसमें नेत्र की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि न सिर्फ ये आंख बल्कि दिमाग से भी रण क्षेत्र में उतरता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फाल्कन एवॉक्स और 2 एम्ब्रर नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। इनमें से ज्यादातर एवॉक्स का संचालन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ही किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, दरअसल भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली LRLACM का सफल परीक्षण किया है, और इसमें सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जमीन पर अटैक करने वाली एक बेहद लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। वो सबसोनिक रफ्तार से उड़ती है। ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में जाकर नीचे नहीं गिरती, बल्कि ये टेरन हगिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी ये जमीन से बिल्कुल सटकर और पहाड़ों की ओट में छिप कर रहती है। सीधे रास्ते पर जाने की बजाय टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाने की वजह से दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि मिसाइल का अंतिम टारगेट क्या है।
2: ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ये अभी रिसेंटली इसका टेस्ट फायर किया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में, और इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। इसने रेंज अचीव किया, इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम था, इसका जो गाइडेंस सिस्टम था, जो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी, और जो रेंज अचीव करना था, वो सारा मकसद अचीव हुआ। ये एक ऐसा क्रूज मिसाइल है जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये अर्थ के जो कंटूर है उसके हिसाब से फ्लाई करता है, एक लो हाइट पे हाई स्पीड के साथ जाके टारगेट को एंगेज करता है। जब कोई मिसाइल लो हाइट पे फ्लाई करता है तो उसको डिटेक्शन इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि रडार उसमें इनकेपेबल हो जाते हैं। तो लिहाजा अपने आप में ये एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के तहत हमने इसको इंडिजिनसली डेवलप किया है।
0: LRLACM को भारत की अपनी टॉमहॉक मिसाइल कहा जा रहा है। ये हवा में ही अपना रास्ता बदलने, दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करने की अद्भुत क्षमता रखती है। LRLACM मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, और ये अपने साथ करीब 400 से 450 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसे मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर, नौसेना की युद्धपोतों में लगे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल से दागा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध और हालिया ईरान संघर्ष ने दुनिया को दिखा दिया कि स्टैंड ऑफ हथियार, यानी दूर से सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें किसी भी युद्ध के रुख को बदल सकती हैं। अगर इस मिसाइल को भारत अपनी सीमाओं और फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात करता है तो चीन और पाकिस्तान के कई रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र सीधे तौर पर इसकी जद में आ जाएंगे।

0: देखिए, जितने भी हमारे स्टैंड ऑफ वेपन हैं, जिसमें कि तमाम क्रूज मिसाइल्स हैं, वो शामिल होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं जहां तक स्टैंड ऑफ वेपन का सवाल है। एक तो होता है पावर्ड फेस, जिसमें तमाम तरीके की क्रूज मिसाइल आती हैं, जिसमें अभी आपने जिसका जिक्र किया, और दूसरे मिसाइल होती है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वेपन को रिलीज किया जाता है, वो ग्लाइड करके टारगेट पे जाता है, वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर लेता है जब वो जहां पे वो रिलीज किया जाता है। तो इसके एक पावर्ड फेज होता है, एक ग्लाइड फेज होता है। तो जितने पावर्ड फेज है उसमें तमाम तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम का करते हैं, गाइडेंस सिस्टम काम करते हैं, और एक दूरी से यानी कि जो दुश्मन की रेंज के बाहर से, जो उसके मीडियम रेंज मिसाइल उसके बाहर से अगर आप फायर करते हैं, तो एक आपको लॉन्च साइट की सुरक्षा मिलती है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की एक और ताकत है इसकी अचूक मारक क्षमता, और इसके पीछे भारत की सबसे आधुनिक नेविगेशन और स्वदेशी रडार सीकर तकनीक का हाथ है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करती है, इसीलिए इसे रास्ते में भटकने से बचाने और अंत में बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए मल्टीलेयर्ड गाइडेड सिस्टम से लैस किया गया है। टर्मिनल फेज के लिए इसमें अपग्रेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब यानी कि आखिरी कुछ किलोमीटर में होती है तो उसे टर्मिनल फेज कहा जाता है, और तभी इसका आरएफ सीकर एक्टिव होता है। लक्ष्य के पास पहुंचते ही सीकर रडार तरंगे छोड़ता है और दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और युद्धपोत की सटीक लाइव तस्वीरें बनाकर मिसाइल के कंप्यूटर को देता है। इसके बाद मिसाइल बिना 1 इंच भटके सीधे लक्ष्य के बीचों बीच टकरा जाती है। शुरुआती लॉन्च से लेकर टारगेट के करीब पहुंचने तक यानी कि सफर के 90% हिस्से में मिसाइल रडार की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ती है। इसके लिए इसमें 3 स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण किया गया है। पहला है INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये मिसाइल का अपना आंतरिक दिमाग होता है जिसे बाहर से जैम नहीं किया जा सकता। मिसाइल हवा में अपने रास्ते को और सटीक करने के लिए भारत के अपने नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन सैटेलाइट नेटवर्क से सिग्नल लेती है। टेरकॉम ये सबसे अहम तकनीक है। इस सिस्टम में दुश्मन के इलाके का 3D डिजिटल मैप मिसाइल के कंप्यूटर में पहले से ही लोड कर दिया जाता है। उड़ान के दौरान मिसाइल का रडार एल्टीमीटर नीचे की जमीन को स्कैन करता है और पहले से लोड मैप से उसका मिलान करता हुआ आगे बढ़ता है, और इसी वजह से ये पहाड़ों की ओट में छिपकर उड़ जाती है। युद्ध के समय दुश्मन बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का इस्तेमाल करता है, इसीलिए स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के सीकर और नेविगेशन सिस्टम को ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से सुरक्षित किया गया है। अगर दुश्मन NAVICE या GPS के सिग्नल को ब्लॉक भी कर दे तो भी मिसाइल का स्वदेशी RF सीकर और INS सिस्टम बिना किसी बाहरी मदद के पूरी सटीकता से हमला करने में सक्षम है।
0: देखिए, जब आप मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है उसमें मोर देन वन नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें GPS है, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है, इंफ्रारेड है, थर्मल है। तो अगर इन चारों के कॉम्बिनेशन में आप ऑपरेट करते हैं तो कोई भी एक नेविगेशन सिस्टम को अगर दुश्मन जाम करता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है। लिहाजा इसलिए ये जो हमारा जो मिसाइल सिस्टम है ये पूरी तरीके से जैम प्रूफ है। एनमी इसमें इसके फ्लाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर इंटरफेयर कर सकता है तो आप ग्राउंड के से उसको कमांड देके दूसरे टारगेट पे भेज सकते हैं, लेकिन इसके जैमिंग की संभावनाएं कम है, इसीलिए इसका मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम रखा गया है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल में स्वदेशी मैनिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टर्बोफैन इंजन बनाना बेहद जटिल तकनीक है और भारत ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जिससे लंबी दूरी की उड़ान में ईंधन की भारी बचत होती है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दरअसल भारत के पुराने निर्भया मिसाइल का ही एक हिस्सा है। साल 2013 में भारत ने निर्भया मिसाइल पर काम शुरू किया। इसके परीक्षण को लेकर कई राउंड्स भी हुए, लेकिन उसके बाद DRDO ने इसमें स्वदेशी मणिक सिस्टम को अटैच किया और साथ ही साथ इसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया के रूप में विकसित किया। मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन कैसे LR LACM को पावरफुल बनाता है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। मानिक एक ट्विन स्पूल इंजन है जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं होता। इसे सिंगल यूज या एक्सपेंडेबल इंजन के रूप में डिजाइन किया गया है। थ्रस्ट और शक्ति क्षमता की बात की जाए तो ये 4.25 से 4.5 किलो न्यूटन की ताकत जनरेट करता है, जिसकी मदद से ये एक टन भारी मिसाइल को 1000 किलोमीटर तक लगातार हवा में उड़ाए रखता है। मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और रडार को चालू रखने के लिए इसमें 3 KV का इनबिल्ट अल्टरनेटर लगाया गया है। हवा में एक निश्चित ऊंचाई और रफ्तार जो कि आवाज की गति के करीब है, उस स्तर पर पहुंचने के बाद मिसाइल का बूस्टर अलग हो जाता है और हवा में ही मानक टर्बोफैन इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मिसाइल अपने पंख और इंजन के दम पर 0.7 से 0.8 मैक की रफ्तार से आगे बढ़ती है।
0: इंजन है, सबसे पहले ये एक प्रोपल्शन सिस्टम है, ये एक डिजिटल प्रोपल्शन सिस्टम है। जब हम डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम की बात करते हैं तो वो उतनी ही हीट जनरेट करता है जितना दूर आप इस मिसाइल को डायरेक्ट करते हैं। तो एक ये एक कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड प्रोपल्शन सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं स्मॉल टर्बो फैन इंजन। तो यानी कि ये जो इसका जो पहली तो इसमें एक कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, पूरा कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो प्रोपल करने के लिए उसकी एनर्जी का इस्तेमाल होता, और जब जिस एनर्जी जो ये जनरेट करता है वो 4.5 KN के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि ये गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इस इंजन को डेवलप किया है।
1: भारत इससे पहले क्रूज मिसाइलों जैसे कि निर्भय के इंजन के लिए रूस के एनपीओ सैटन 36NT पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन मणिक इंजन के आ जाने से भारत की ताकत में और इजाफा हुआ है और ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी है। यानी आने वाले समय में भारत इस इंजन के लिए किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसे सुनकर हर देशवासी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने मल्टीलेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल कर ली है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, ये ऐसा भरोसा है जो भारत को हिफाजत रखने की 100% गारंटी देता है। दुश्मन चाहे कितनी भी ताकतवर मिसाइलें चला ले, कितना भी जोर आजमाइश कर ले, भारत की हवाई सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकता। ऐसा इसलिए कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को खाक में मिलाने वाला महाअस्त्र तैयार किया है। यानी एक ऐसा अभेद सुरक्षा चक्र तैयार है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मल्टी लेयर डिफेंस और समंदर में मध्यम दूरी के एंटी शिप मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। 10 और 11 जून को किए गए लगातार 3 परीक्षणों में भारत की मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया, और इसी के साथ भारत अब उन खास देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, यानी कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही मार गिराना है। ये मिसाइल 2000 से 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने, ट्रैक करने और हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है।
0: मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम एयर डिफेंस अम्ब्रेला ही अपने टैक्टिकल बैटलफील्ड में लगाया करते थे। लेकिन अब हिंदुस्तान प्रगति की राह पे हमने हर एक VA एंड VP को, वल्नरेबल एरिया वल्नरेबल पॉइंट को, मल्टी टीयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यानी कि कोई एक सिस्टम अगर किसी मिसाइल या रॉकेट या एरियल ऑब्जेक्ट को मिस करता है तो दूसरा सिस्टम उसको पिकअप करता है। तो इस तरीके की जब हम संरचना करते हैं तो जो एरिया को हम पूरा एयर डिफेंस कवर देते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। उसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, S-400 आपके तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम जो हिंदुस्तान की आर्मी के पास है उसको डिप्लॉय किया जाता है। ये होता है मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम।
1: बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक उन्नत रक्षा नेटवर्क होता है। ये सिस्टम कई तरह की टेक्नोलॉजी के एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के जरिए काम करता है। सबसे पहले काम होता है दुश्मन की मिसाइल का पता लगाना और ट्रैक करना। इस प्रक्रिया की शुरुआत लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार से होती है जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च का पता लगाते हैं। इस सिस्टम का दूसरा चरण होता है कमांड एंड कंट्रोल। इसमें अलग अलग जगहों पर मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर और लॉन्च कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार से मिले डेटा का विश्लेषण करने और जवाबी कार्रवाई में तालमेल बिठाने के लिए ये सेंटर एक सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा होता है। अगला चरण होता है एंगेजमेंट, यानी कि मुकाबला करना। खतरे की पुष्टि होने के बाद सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइलों को एक्टिव करता है। ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन की आने वाली मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देती हैं। BMD सिस्टम दो मुख्य स्तरों पर टारगेट को रोकता है, अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर।
0: देखिए, सबसे पहले जब भी कोई एरियल ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है, दुश्मन ने अगर मिसाइल फायर किया तो सबसे पहले उसको हमें डिटेक्ट करना है कहाँ से लॉन्च किया गया। जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे उतना ज्यादा आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा। जैसे आप उसको डिटेक्ट करते हैं उसके लिए आपके पास तमाम रडार हैं, एयर डिफेंस के सिस्टम है, फिर आप उसको ट्रैक करते हैं कि अगर आपने लॉन्च किया फ्लाइट उसने बदला दूसरे इलाके में गया तो आप किस तरीके से उसको ट्रैक करते हैं। जब उसका फ्लाइट पाथ डिटरमिन हो जाता है या अर्ली डिटेक्शन हो जाता है आप उसको लॉक करते हैं। फिर आप अपना जो आपका जो मिसाइल सिस्टम है जिससे आप उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो उस मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ये एक्सप्लोसिव बेस्ड भी हो सकता है, एक काइनेटिक भी हो सकता है। काइनेटिक का मतलब यह कि वो स्पीड से जाके इस एरियल ऑब्जेक्ट से टकराएगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा।
1: अगर पहली इंटरसेप्टर मिसाइल लक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाती तो दूसरी परत एक्टिव हो जाती है, यानी एक डिफेंस लेयर फेल हो जाए तब भी दूसरी लेयर मौजूद रहती है। मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दरअसल अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग इंटरसेप्शन के हिसाब से काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये दूर से आ रही मिसाइल को परख लेता है और अगर कहीं एक निशाना चूक जाता है तो ये कई और मौके भी देता है। रक्षा जानकार यही मानते हैं कि हर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सटीक नहीं होता, 100% उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं दुश्मन को पहले ही रोक सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक रणनीतिक सुरक्षा कवच है जिसका मकसद बड़े शहरों और परमाणु ठिकानों को लंबी दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों से बचाना है। इसके रडार बेहद ताकतवर होते हैं जो 1500 से 2500 किलोमीटर दूर से ही खतरों की पहचान कर लेते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं। भारत का BMD एक दो स्तरीय सिस्टम है जिसमें एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 100 किलोमीटर तक और इंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 80 किलोमीटर तक होता है। वहीं पारंपरिक सिस्टम कम ऊंचाई पर काम करते हैं। S-400 सिस्टम 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट को रोकता है जबकि आकाश 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-400 या आकाश जैसे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के बीच मुख्य अंतर उनके टारगेट स्पेशलाइजेशन, इंटरसेप्शन की ऊंचाई और रणनीतिक उद्देश्यों में होता है। BMD सिस्टम खासतौर पर उन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन है जो बेहद तेज रफ्तार जैसे कि Mach 5 या उससे ज्यादा और फिक्स ट्रेजेक्टरी पर चलती है। वहीं क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन से निपटने के लिए भारत का संपूर्ण एयर डिफेंस ग्रिड कई दूसरी परतों को भी एकीकृत करता है। भारत के पास लंबी दूरी यानी कि Tier 1 के लिए रूस से हासिल S-400 ट्रायम्फ सिस्टम है। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर है। ये दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइल को टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट कर लेता है। मध्यम दूरी यानी कि Tier 2 के लिए भारत और इसराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित Barak 8 मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। वहीं कम दूरी यानी कि Tier 3 के लिए स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है जो री एंट्री या नजदीकी हवाई खतरों को नाकाम कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इन सिस्टम को दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को रोकने के लिए और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 2028 तक अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए इस्तेमाल होंगी LRSM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें। फिलहाल भारत के पास रूस से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ देश में ही बनी पृथ्वी और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो किसी भी हवाई खतरे को आसानी से राख में मिला सकते हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
4: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे Good News Today पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भारत अब LRSAM सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसका सीधे तौर पर मकसद ये है कि किसी भी तरह के हवाई खतरे या हवाई हमले से पूरी तरह से निपटना। दरअसल DRDO प्रोजेक्ट कुश के तहत इसका निर्माण कर रहा है और उम्मीद यही की जा रही कि साल 2028 या 29 तक इसे बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाएगा।
1: स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी पर ही दुश्मन मिसाइल की पहचान कर उसको रोकने और मार गिराने में सक्षम होगा। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 3 लेयर्स में काम करेगी, यानी अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम होगी। LRSAM सिस्टम में लगी इंटरसेप्ट मिसाइल 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर पर दुश्मन के फ्लाइट प्लेन से लेकर मिसाइल तक को आसानी से तबाह करने में सक्षम होगी। LRSAM में एयरक्राफ्ट और एयरबोन वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा, जो मिड एयर में वॉर करने वाली मिसाइलों और 350 किलोमीटर की दूरी पर ही रोक देंगे और खतरनाक से खतरनाक मिसाइल भी भारत पर हमला नहीं कर पाएगी।
2: ये S-400 जिसका रेंज 400 किलोमीटर है और ये जो हमारी अभी वाली मिसाइल है जिसका रेंज 70 किलोमीटर है, इन दोनों के अंदर गैप जो है उसको कवर करने के लिए काम आएगा। तो ये जो है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एक बहुत बढ़िया वेपन सिस्टम है इंडियन नेवी के पास और वो इसको दुश्मन के खिलाफ बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: LRSAM पर कम से कम 1.5 दशक से काम चल रहा है और इसके लिए इजराइल की IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO मिलकर काम कर रहे हैं।
0: इसराइल में सिस्टम के लिए बराक शब्द का इस्तेमाल होता है और बराक नाम से वहाँ एक पूरी मिसाइल फैमिली मौजूद है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में से LRSAM कहा जाता है। दरअसल साल 2015 में INS कोलकाता से LRSAM का परीक्षण हुआ, जिसके बाद साल 2017 में इसे पूरी तरह से इस युद्धपोत में कमीशन कर दिया।
1: अब भारतीय वायुसेना के 5 स्क्वाड्रन के लिए नए LRSAM सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है। इनकी कुल कीमत 21,700 करोड़ रुपए होगी। LRSAM से ऐसा रक्षा कवच तैयार होगा जिसे दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल भी भेद नहीं सकती। आज भारत के पास ऐसी मिसाइलों का पूरा जखीरा है जो आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक सुरक्षा की गारंटी देती हैं। ये मिसाइलें दुश्मन के हमले को जमीन से कई किलोमीटर ऊपर हवा में तबाह कर सकती हैं। भारत के पास एयर डिफेंस के लिए 2 सिस्टम है। इनमें 2 हिस्से हैं, ADGS यानी एयर डिफेंस ग्राउंड एनवायरमेंट सिस्टम और दूसरा है BADZ यानी बेस एयर डिफेंस ज़ोन्स। ADGS में रडार कवरेज, डिटेक्शन और इंटरसेप्शन होता है। BADZ में रडारों के साथ मिसाइलों का कनेक्शन, नेविगेशन, हमला और एक्टिव रिस्पांस जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। सविलांस रडार, कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर की मदद से हवाई सुरक्षा पुख्ता हो जाती है। टारगेट डिटेक्ट होते ही दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और फिर दुश्मन चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, उसे तबाह करने में देरी नहीं लगती।
3: जब आप किसी भी मॉन्यूमेंट को आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो वो इसलिए देना चाहते हैं, ये आपकी धरोहर है पिछले टाइम की, और इस धरोहर को डिस्ट्रॉय करने से एक एनिमी को प्रोपोगंडा वैल्यू मिलती है, आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, आपकी सिविल जो आस्था है उसके ऊपर अटैक माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि लोकल प्रोटेक्शन ग्राउंड पर जो दी जा रही है वो पुलिस द्वारा, सिविल डिफेंस द्वारा, वो इसलिए दी जाती है कि कहीं कोई लोकली उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एयर डिफेंस प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आप दिल्ली आगरा की बात कर रहे हैं तो ये पूरे के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम के लूप में है, एक ग्रिड सिस्टम में है, जहाँ पर के अगर आगरा की तरफ कोई अगर जहाज, मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर अगर कोई भी अटैकिंग मोड में आता है तो वो ना केवल डिटेक्ट होगा बट आप पाएंगे कि एयर डिफेंस सिस्टम जो टीयर्ड है उसमें अपने आप ट्रैप होगा और उसको किल करने की 100% प्रोबेबिलिटी रखी जाएगी, क्योंकि ये वो टारगेट्स हैं जिनके जिनकी ज़रूरत आपको एक साइकोलॉजिकली नहीं, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। क्योंकि इसी तरह अगर आप दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक की इम्पोर्टेंस है, बट दैट डजंट मीन कि वहाँ पर आप प्रोटेक्शन लगाएंगे। आपको पूरी दिल्ली का ग्रिड में लेना है, आगरा को ग्रिड में लेना है कि किस तरीके से आप कोई भी थ्रेट अगर आ रही है तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे कि वो आगरा की तरफ आ रही है या दिल्ली की तरफ आ रही है या दोनों तरफ आ रही है।
1: मौजूदा वक्त में भारत ने अपने रक्षा जरूरतों के हिसाब से ही सरहद पर लॉन्ग शॉट और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रखी है। भारत के पास खुद के एयर डिफेंस सिस्टम के तहत दुश्मन पर हमला करने और बचाव करने के लिए दो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पहला है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और दूसरा है क्रूज मिसाइल डिफेंस। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में दो इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम हैं। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस ज्यादा ऊंचाई पर मार करने के लिए है, जबकि एडवांस एयर डिफेंस कम ऊंचाई पर हमला करने के लिए है। टू लेयर की हवाई रक्षा कवच होने से फायदा ये होता है कि दुश्मन देश की तरफ से आ रही 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को भी हवा में ही ध्वस्त किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल से अलग क्रूज मिसाइल डिफेंस कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। भारत ने AAD मिशन के तहत इंटरसेप्टिंग क्रूज मिसाइल सिस्टम भी बनाया है, जो परमाणु हथियार लेकर हमला करने आ रही मिसाइलों को मार गिराता है। आज चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, फाइटर जेट्स और विस्फोटकों से लैस ड्रोन का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी से निपटने के लिए भारत ने भी अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अभेद सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रखने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। अब तो भारत के पास S-400 की ताकत भी आ चुकी है। भारत को लॉन्ग रेंज मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, इसे जानने के लिए हमें 1970 के दौर में जाना होगा।
0: 1971 की जंग में पाकिस्तान की तरफ से हमारे उत्तर और उत्तर पश्चिम इलाके में सबसे ज्यादा तबाही मचाई गई। अमृतसर, आगरा और श्रीनगर एयरबेस पर लगातार हमले किए गए। 8 दिसंबर को भुज एयरफोर्स स्टेशन पर भी हमले हुए, जिसमें 92 बम और 22 रॉकेट्स दागे गए। इन सब से बचने के लिए भारत के पास मिसाइल तो थी, लेकिन कोई सही सिस्टम नहीं था।
1: 1971 के युद्ध के बाद से ही भारत को ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। भारत ने दो लेवल पर काम शुरू किया। पहला, बाहर से एयर डिफेंस सिस्टम की नई तकनीक को मंगवाना और दूसरा, अपनी तकनीक को विकसित करना।
0: DRDO ने 1980 में इंटीग्रेशन के तहत आकाश मिसाइल सिस्टम का काम शुरू किया, जिसके बाद 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक के शुरू में पहली प्रणाली और फील्ड टेस्ट और टारगेट न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट हुए। 2009 तक आकाश मिसाइल आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए।
1: आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत का पैट्रियट भी कहा जाता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को सेकंड्स में नाकाम कर सकता है। आकाश डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है, एक लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी 64 लक्ष्यों पर हर समय इसकी नजर रहती है। आकाश से एक साथ 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये Mach 2.5 की सुपरसोनिक स्पीड से हमला करता है। 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने की ताकत है इसके पास। यही नहीं, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन को राख में मिलाने की ताकत भी है आकाश के पास। आकाश को स्वदेशी राजेंद्र रडार से लैस किया जाता है, जो 120 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले विमानों को पहचान लेती है और स्टेशन तक कमान पहुंचाती है।
2: आकाश मीडियम सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये करी गई थी 2012 में ये इसको हैंड ओवर किया गया था इंडियन एयरफोर्स यूनिट्स को और कुछ आर्मी की एडी रेजिमेंट्स को। इसकी शुरुआत 1983 में हुई जबकि इंडिया ने एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम उस टाइम साइंटिफिक एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर को और उस टाइम ये मिसाइल जो है ये होंद में आई और कई मिसाइल डेवलप की गई जैसे अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग, कई मिसाइलें उस टाइम डेवलप करी गई थी। नाउ इसको क्यों पैट्रियट के साथ तुलना करी जाती है? पैट्रियट वो मिसाइल थी जिसने गल्फ वार में 1990 में जब गल्फ वार हुई तो इराक की स्कड मिसाइल जो था उनके अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव और बहुत बढ़िया काम किया। इसलिए समझा जाता है कि चाहे ये मीडियम रेंज है, समझा जाता है कि ये एक बहुत बढ़िया विकल्प है हमारे पास मीडियम रेंज के टारगेट जो है उनको एंगेज करने के लिए और इसको इसलिए पैट्रियट के साथ इसका मुकाबला भी किया जाता है।
1: आकाश को मोबाइल प्लेटफॉर्म से तैनात किया जा सकता है, यानी आकाश मिसाइल को T-72, BMP चेसिस या फिर हैवी मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम से दागा जा सकता है और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। आकाश को ताकतवर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी ECCM फीचर से भी लैस किया गया है, जिसकी मदद से आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ सिंगल या मल्टी टारगेट्स पर निशाना लगा सकती है।
0: आकाश मिसाइल जो कि पिछले एक दशक से सशस्त्र बलों के साथ आसमान की रक्षा कर रही है, यानी किसी भी हवाई अटैक से भारत को सुरक्षित रख रही है, लेकिन अब इसे अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अपग्रेडेड वर्जन पर लगातार काम किया जा रहा है जिसके बाद इसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी।
1: भारत सरकार लगातार स्वदेशी हथियारों के निर्माण और उनके विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में अब स्वदेशी मिसाइल आकाश को अपग्रेड किया जा रहा है।
0: भारत का BMD सिस्टम दरअसल टू टियर शील्ड सिस्टम से पूरी तरह से लैस है जो कि 5000 किलोमीटर से आ रही किसी भी मिसाइल या फिर लड़ाकू विमान को पूरी तरह से इंटरसेप्ट कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के इलाके में सबसे एडवांस रूप टू टियर डिफेंस शील्ड को माना जाता है जो मिसाइल गिरने की गुंजाइश पर भी पूर्ण विराम लगा देता है।
1: भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के दो वेरियंट्स हैं, पहला AD-1 और दूसरा AD-2। AD-1 लैंड वर्जन है, वहीं AD-2 नेवल वर्जन है। 21 अप्रैल 2023 को इसका सफल परीक्षण किया गया। दोनों ही मिसाइलें दुश्मन की IRBM मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती हैं।
0: बैलिस्टिक मिसाइल दरअसल एक लंबी दूरी की मिसाइल होती है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम होती है। ये हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है, यानी कि किसी भी देश में कहीं भी बैठकर इसको ऑपरेट किया जाता है। ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को एक मजबूत ताकत प्रदान करती है।
1: DRDO के बनाए BMD सिस्टम की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट्स को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है।
0: बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम दरअसल टू टियर एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करता है जिसमें शील्ड की पहली परत पृथ्वी एयर डिफेंस है जो कि आसानी से 50 से 180 किलोमीटर की बाहरी वायुमंडल की ऊंचाई पर मिसाइलों को रोक भी सकती है और इसे वहीं तुरंत तबाह भी कर सकती है, जिससे दुश्मन का पूरी तरह से काम तमाम और हमारी सरहद सुरक्षित।
1: पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम के पास 6,174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3,000 किलोमीटर दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता है जो इसे मजबूत डिफेंस सिस्टम का एक विभिन्न हिस्सा बना देता है। वहीं दूसरी परत को एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल के जरिए सुरक्षा मिलती है। एडवांस एयर डिफेंस एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर एंडो एटमॉस्फेयर में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी एयर डिफेंस के नाकाम होने की स्थिति में एडवांस एयर डिफेंस किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को भारत की जमीन तक पहुंचने नहीं देगा।
0: निर्माण क्षेत्र में। मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
5: जाए। The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
6: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
7: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: कहते हैं कि हुनर किसी बंदिश का मोहताज नहीं होता और हौसले के आगे हर चुनौती घुटने टेक देती है। कुछ ऐसा ही नजारा दलिहाट में देखने को मिला, जहां पर स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। द अक्षयत फाउंडेशन की ओर से आयोजित हुए इस खास कार्यक्रम में स्पेशली एबल्ड बच्चों का हुनर देख हर कोई हैरान रह गया।
14: कहते हैं कि अगर हौसला पक्का हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही दिल्ली हाट पर आयोजित एक खास कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां इन बच्चों की प्यारी सी मुस्कुराहट ने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। इन स्पेशली एबल्ड बच्चों ने ऐसा समा बांधा कि पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। द अक्षयत फाउंडेशन की ओर से आयोजित किए गए इस शानदार कार्यक्रम का मकसद लोगों को ये समझाना था कि ऑटिज्म जैसी दिक्कतों से जूझ रहे बच्चों को हमारे प्यार और साथ की कितनी जरूरत है। कार्यक्रम में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों ने अपनी कला का जादू तो बिखेरा ही, साथ में फिल्मी गानों पर ऐसा डांस किया कि हर कोई देखता रह गया।

0: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
1: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
8: गुड न्यूज टुडे.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे. अच्छी खबर, सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: Sage University, transforming your passion into profession.
2: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: पश्चिम बंगाल पहली बार मना रहा पश्चिम बंग दिवस. शानदार रोशनी से जगमगाया ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज. हुगली में भी शानदार सांस्कृतिक समारोह. मेघालय के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह. शिलोंग में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा. लैथकोर पीक पर तैनात जवानों से मुलाकात की. कल बढ़ेगी नौसेना की शक्ति. एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत. INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे की होगी कमिशनिंग. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले नेवी का अंडर वाटर योग. 40 नौ सैनिकों ने एक साथ किया योग. योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया संदेश. कल होने वाले नीट री एग्जाम को लेकर देश भर में हुई मॉक ड्रिल. दिल्ली से सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन. DTC बसों में मुफ्त सफर की सुविधा.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो जब एक छोटी बच्ची थी तो लोकल अखबार के किसी पन्ने पर अपना नाम छपने का ख्वाब संजोती थी। वही नन्नी बच्ची आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शान के साथ अपना नाम दर्ज करा चुकी है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट की शान स्मृति मंधाना है। जी हाँ, स्मृति, वही स्मृति मंधाना जो बचपन में अपने क्रिकेटर भाई के परफॉर्मेंस को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उन कतरनों को दिन में कई कई बार पढ़ती थी। तब नन्ही स्मृति के मन में एक ही ख्वाब होता था कि मेरे भी उपलब्धियों की चर्चा अखबार में हो। वक्त का मिजाज देखिए कि लोकल अखबार में छपने की हसरत रखने वाली स्मृति आज अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रही है।

0: वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली एक धुंधली तस्वीर की तासीर बड़ी ही अजीब है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। महाराष्ट्र के सांगली में गालिबन 6-7 साल की एक मासूम बच्ची अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती है और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती है। तब उस निश्चल बच्ची के मन में एक ही तस्वीर होता है, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। वक्त का अनोखा खेल देखिए कि आज 29 साल की हो चुकी उस बच्ची को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया है। अखबार की कतरन सहेजने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की शानदार और जानदार बल्लेबाज स्मृति मंधाना है। ख्वाब के सागर में गोते लगाने का शौक भला किसे नहीं होता, पर अपने ही ख्वाब के लिए जरूरी मेहनत की कसौटी पर कोई विरला ही खरा उतरता है। कमाल यह है कि स्मृति मंधाना अपनी मेहनत, लगन और चट्टानी इच्छा शक्ति के दम पर आज अपने ही ख्वाब के दायरे को छीर कर काफी आगे निकल चुकी हैं। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत आज टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन चुकी है। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही है। टाइम मैगजीन के एडिटर एट लार्ज चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल करने के कारणों को गिनाते हुए जो बातें लिखी हैं, उसमें स्मृति मंधाना की दमदार शख्सियत की मुख्तसर सी झलक दिख जाती है। चार्ली कैंपबेल ने लिखा है, स्मृति मंधाना लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। मुंबई में जन्मी बाएं हाथ की ओपनिंग बल्लेबाज घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। साथ ही क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। इतना ही नहीं, 17 शतकों के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल महिला क्रिकेट शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से उनके नाम है। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना के रिकॉर्ड्स की जो हल्की सी झांकी प्रस्तुत की है, उसकी पूरी और विराट तस्वीर हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले बताते हैं स्मृति के क्रिकेटर बनने की रोचक और मर्मस्पर्शी दास्तान। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मे स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधवनगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो बढ़ नहीं पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल के स्मृति का मन बल्ला पकड़ने के लिए मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को जब भी मौका मिलता तो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी, तो पापा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा कर देते। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन्स फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में ना जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का जुनून पैदा हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार की उसी स्मृति का नाम आज अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स, स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज, आयरलैंड के गोल्फर रोरी मैक्लोरॉय और फ्रांस के बास्केटबॉल प्लेयर विक्टर वेम्बान्यामा जैसे स्पोर्ट्स दिग्गजों के साथ टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और चिवट की महिला है। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का इंटीरियर क्रिसुलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और जून 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को यह पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी, तब मैं इंजर्ड हुई थी एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ्स से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द NCS स्टाफ BCCI स्टाफ वर रियली हेल्पफुल एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो वील ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये है कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड स्क्रीन बन गई। विमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद में शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया है। स्मृति अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं। स्मृति और ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग के नाम पर 17-17 शतक दर्ज है। स्मृति मंधाना विमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा 15 शतक लगाने का कीर्तिमान भी स्मृति मंधाना के नाम ही दर्ज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में विमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के ICC महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है। साफ है कि दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस टाइम मैगजीन ने स्मृति को 100 सबसे प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शुमार किया है, तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती। इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती है। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। विमेंस प्रीमियर लीग में अपनी कप्तानी में स्मृति मंधाना 2 बार RCB को चैंपियन बना चुकी है। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवद गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवद गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवद गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गई। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई, तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया, तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देखकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवद गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवद गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: पहले सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग, मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज़ देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
4: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to... put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood Sangli se Smriti ka bahut gehra lagao hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
1: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli mein Smriti ka pura bachpan bitai, yahan tak ki Sangli ke Chintaman Rao College of Commerce se hi unhone apna BCom complete kiya. Kamal ye hai ki Sangli mein rehte hue mahaj 9 saal ki umr mein Smriti ka selection महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
6: मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।

0: You hear it once and remember everything.
1: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
0: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stayed forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
2: इसके साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड समारोह, नीरज चोपड़ा को मिला बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का खिताब, पीटी उषा और अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पश्चिम बंगाल पहली बार मना रहा पश्चिम बंग दिवस शानदार रोशनी से, जगमगाया ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज, हुगली में भी शानदार सांस्कृतिक समारोह।

0: मेघालय के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिलोंग में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, लैबकोर पीक पर तैनात जवानों से मुलाकात की। कल बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे की होगी कमिशनिंग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले नेवी का अंडर वाटर योग, 40 नौ सैनिकों ने एक साथ किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया संदेश।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: INS सतवाहन में अंडर वाटर योग का अनोखा प्रदर्शन, भारतीय नौसेना का पानी के अंदर योग, दिखी अद्भुत फिटनेस। ईस्टर्न नेवल कमांड में अंडर वाटर योग का खास सेशन, पानी के नीचे 40 नौसैनिकों ने किया योग अभ्यास। अंडर वाटर योग से नौसेना ने दिखाया अनुशासन और ताकत, अंडर वाटर योग से ऑपरेशनल फिटनेस पर जोर। भारतीय नौसेना ने दिखाया माइंडफुलनेस और स्टैमिना का प्रदर्शन, योग और धैर्य का पानी के अंदर अनोखा अभ्यास। वन अर्थ वन हेल्थ के संदेश के साथ अंडर वाटर योग, पानी के अंदर योग से बढ़ाई मानसिक और शारीरिक क्षमता। अमरावती के पुलिस कांस्टेबल ने पानी के भीतर रचा इतिहास, 11 फीट गहरे पानी में 1 घंटे तक स्थिर रहे प्रवीण आखरे। योग दिवस पर पुलिसकर्मी की अनोखी साधना ने जीता दिल, पानी पर तैरते हुए 50 योगासन, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी माना प्रवीण आखरे का जल योग रिकॉर्ड, पानी के भीतर योग कर बढ़ाया देश प्रदेश का मान। योगी भी लाइफ सेवियर भी, पुलिसकर्मी प्रवीण आखरे की प्रेरक कहानी, तिरंगे के साथ पानी के भीतर दिया देशभक्ति का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चमका अमरावती पुलिस का सितारा कर्तव्य और योग का अनोखा संगम, प्रवीण आखरे बने मिसाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भारत में रूसी दूतावास ने अपने परिसर में योग सत्र का किया आयोजन, इस दौरान दूतावास के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास कर फिटनेस का संदेश दिया। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योगा और जुम्बा सत्र का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुंबई में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से एमडी अली रोड स्थित मीनारा मस्जिद में योग सत्र का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर योगाभ्यास किया। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए 24 घंटे के भव्य काउंटडाउन कार्यक्रम के साथ तैयारियां तेज, शहर में योग को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह पर किए गए आयोजन। प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले यमुना नदी में तैराकों ने जल योग का प्रदर्शन किया, इस अनोखे अभ्यास ने लोगों का खींचा ध्यान। श्रीनगर की पोखरीबल झील में खिलाड़ियों ने फ्लोटिंग योगा का अभ्यास किया, ये तैयारी इंटरनेशनल योगा डे के लिए की गई। फ्लोटिंग योगा जैसी नई एक्टिविटी तेजी से लोकप्रिय हो रही है, ये शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। पानी की सतह पर संतुलन बनाते हुए योगासन, प्रकृति के बीच शारीरिक और मानसिक संतुलन को बढ़ाना है मकसद। देशभर में योग दिवस को लेकर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, फ्लोटिंग योगा लोगों को हेल्दी और शांत जीवन की ओर प्रेरित करता है। युवाओं में फिटनेस और योगा को लेकर बढ़ रही है जागरूकता, लोग रोजाना योगा और वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ा देने वाली शानदार खबर, कोलकाता में कल भारतीय नौसेना को मिलेंगे 3 नए स्वदेशी युद्धपोत, INS दूनागिरी, INS अग्रे और INS संशोधक होंगे नौसेना में शामिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 3 युद्धपोतों का कमिश्निंग। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम, INS दूनागिरी बनेगी नेवी की नई स्टेल्थ ताकत, INS अग्रे से पनडुब्बी रोधी क्षमता होगी मजबूत। INS संशोधक करेगी समुद्री सर्वेक्षण और मैपिंग, भारत की समुद्री सुरक्षा को नई ऊंचाई देंगे तीनों युद्धपोत। हिंद महासागर में भारत की पकड़ होगी और मजबूत, GRSE ने INS दूनागिरी, INS अग्रे और INS संशोधक का किया निर्माण। जम्मू कश्मीर की गांधरबल में माता खीर भवानी यात्रा की रिकॉर्ड भागीदारी के साथ भव्य शुरुआत, दिखा आस्था और भक्ति का सैलाब। 8,500 तीर्थयात्रियों के साथ 214 बसें हुई रवाना, माता रागन्या देवी के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धा का सागर। खीर भवानी यात्रा बनी हाल के वर्षों की सबसे बड़ी यात्रा, टिक्कर देवसर और अनंतनाग में भी हुई माता खीर भवानी की पूजा अर्चना। भक्ति और आस्था के साथ आगे बढ़ी खीर भवानी यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। श्रद्धालुओं के कदमों से जगमग हुई घाटी की पवित्र राहें, ज्येष्ठ अष्टमी पर 22 जून को संपन्न होगी माता खीर भवानी यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी मयूरभंज के पहाड़पुर गांव पहुंचे, राष्ट्रपति के स्वागत में ढोल नगाड़ों और आदिवासी नृत्य की गूंज। संथाल समुदाय के पवित्र स्थल पर दोनों ने पूजा अर्चना की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ससुराल गांव पहाड़पुर को मिलेगा सोलर विलेज का दर्जा। पहाड़पुर स्थित स्किल ट्रेनिंग हब का किया दौरा, आदिवासी गौरव और विकास का अद्भुत संगम, छात्र छात्राओं से मिले राष्ट्रपति और पीएम। ओडिशा को 47,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, ऊर्जा सड़क स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को मिली मजबूती, 600 मेगावाट अपर इंद्रावती प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। झारसुगुड़ा में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट का शिलान्यास, भुवनेश्वर में बायोगैस प्लांट और नदी पुल का उद्घाटन, रेलवे के दो बड़े मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित। कोल्हापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माता अंबाबाई मंदिर में पूजा अर्चना की, आस्था और भक्ति में दिखे सराबोर। अमित शाह ने कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विकास कार्यों का किया उद्घाटन, नए प्रदक्षिणा मार्ग का शिलान्यास। अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, स्वर्ण मंदिर में टेका मथा, अरदास में हुए शामिल। सिर पर पगड़ी सजाकर नितिन नवीन ने लिया आशीर्वाद, स्वर्ण मंदिर में निभाई सेवा की परंपरा, बर्तन साफ कर गुरु घर में सेवा की। ललितपुर में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों की समीक्षा, मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट्स की प्रगति मांगी रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले हावड़ा ब्रिज तिरंगे की भव्य रोशनी से जगमगाया, देशभक्ति का दिखा अद्भुत नजारा। हुगली के तारकेश्वर में पीएम मोदी ने पश्चिम बंग दिवस समारोह में हिस्सा लिया, पश्चिम बंग दिवस पर दी विकास कार्यों का तोहफा। किसानों के लिए बड़ी आर्थिक राहत, पीएम ने जारी की पीएम किसान की 23वीं किस्त, 9,44,00,000 किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर। शिलोंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात की, राजनाथ सिंह ने वायु सैनिकों के साथ स्नैक्स खाए।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की भारतीय वायुसेना की ताकत, क्षमता और पेशेवर कौशल की सराहना। कहा, वायुसेना हर चुनौती का सामना करने में सक्षम। जम्मू में 581 बेटियां बनी बिहार पुलिस की सिपाही पासिंग आउट। परेड में दिखा बिहार की नवनियुक्त महिला पुलिस के जवानों का जोश। माँ के चरणों में झुककर बेटियों ने आशीर्वाद दिया। पिता के सिर पर टोपी सजाकर जताया सम्मान। सफलता पर परिवारों की आंखें हुई नम। झांसी में सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। सड़क और आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष फोकस। झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया जोर। मुंबई में सांसद सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में जुटे खास मेहमान। रेवती सुले के विवाह समारोह में दिखी शानदार रौनक। नीट री एग्जाम से पहले देश भर के परीक्षा केंद्रों पर एनटीए की मॉक ड्रिल। एग्जाम डे से पहले व्यवस्थाओं की परखी गई क्षमता। नीट री एग्जाम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। देश भर के परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और तकनीकी इंतजामों की हुई जांच। नीट री एग्जाम से पहले दिल्ली में स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा। एनटीए ऑफिस के बाहर पुलिस बल की तैनाती। जिले के अशोक विहार फेज टू के स्कूलों में नीट री एग्जाम की तैयारियां पूरी। कल होने वाली परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। नीट री एग्जाम को लेकर अलर्ट मोड पर राजधानी दिल्ली। विकासपुरी के एग्जाम सेंटर में परीक्षा संचालन की तैयारी पूरी। नोएडा में नीट री एग्जाम को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम। नोएडा के परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का सख्त पहरा। नीट री एग्जाम से पहले हरिद्वार में हाई अलर्ट सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हरिद्वार को 5 जोन और 12 सेक्टर्स में बांटा गया। नीट री एग्जाम को लेकर गोरखपुर में ट्रेनों की स्पेशल सर्विस शुरू। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे की खास व्यवस्था। त्रिपुरा में नीट री एग्जाम को लेकर हुई मॉक ड्रिल। अगरतला में मॉक ड्रिल के जरिए परीक्षा सिस्टम की हुई टेस्टिंग। अंबाला में एनटीए ने परीक्षा केंद्रों पर टाइमिंग कंट्रोल सिस्टम किया एक्टिव। नीट री एग्जाम को लेकर विशेष व्यवस्था। बिहार में नीट परीक्षार्थियों को रेलवे की बड़ी सौगात। 21 जून को 9 स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। लखनऊ में नीट री एग्जाम को लेकर 75 केंद्र तैयार। कल लखनऊ के 35,000 से ज्यादा परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। रायपुर में नीट री एग्जाम से पहले परीक्षा केंद्रों पर हुई मॉक ड्रिल। परीक्षा केंद्रों पर एनटीए ने व्यवस्थाओं की रिहर्सल की। श्रीनगर में नीट री एग्जाम से पहले सिक्योरिटी ड्रिल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने परीक्षा केंद्रों पर किया सुरक्षा अभ्यास। धार में नीट री एग्जाम की तैयारियों का प्रशासनिक जायजा। कल धार में करीब 1600 छात्र देंगे परीक्षा। पटनी टॉप में गर्मियों की छुट्टियों के कारण पर्यटकों की बढ़ी भीड़। होटल और रिजॉर्ट लगभग पूरी तरह से बुक। भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग पहुंच रहे हैं पटनी टॉप। बच्चे उठा रहे हैं छुट्टियों का लुत्फ। पर्यटन के बढ़ने से स्थानीय कारोबार में आई तेजी। छोटे दुकानदार और टैक्सी चालकों को हो रहा है बंपर फायदा। हिल रिजॉर्ट में सुरक्षा और सुविधाओं को बढ़ाया गया। प्रशासन भीड़ को संभालने के लिए सतर्क। वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़ी। प्राकृतिक नजारे लोगों को कर रहे हैं खूब आकर्षित। सूरत के बुजुर्ग दिनेश मशरूवाला के पास दुनिया की दुर्लभ साइकिल्स का बड़ा कलेक्शन। 40 लाख रुपए की 30 से ज्यादा विदेशी साइकिल्स। 74 साल के दिनेश मशरूवाला आज भी रोज साइकिल चलाते हैं। फिटनेस और हेल्दी लाइफ को मानते हैं अपनी सबसे बड़ी ताकत। 17 साल की उम्र से शुरू हुआ साइकिल का शौक आज भी जारी। जापान, कोरिया, नीदरलैंड समेत कई देशों की साइकिल्स उनके पास। विदेश यात्रा के दौरान दिनेश मशरूवाला सेकेंड हैंड और खास साइकिल्स भी खरीदते हैं। विदेश से कई बार बहुत सारी साइकिल्स लेकर आते हैं। दिनेश मशरूवाला का मानना, साइकिल चलाना सेहत और देश दोनों के लिए फायदेमंद है। पेट्रोल बचाओ, देश बचाओ है उनका संदेश। थाईलैंड के एक चिड़ियाघर में जानवर बने फुटबॉल एक्सपर्ट। बाघ हिप्पो और बेबी पिग्मी हिप्पो ने खाने के जरिए वर्ल्ड कप मैचेस के नतीजों की भविष्यवाणी की। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड मोरक्को मैचेस को लेकर की गई भविष्यवाणी। जानवरों ने अलग अलग टीमों के नाम वाले खाने में से अपनी पसंद चुनी। जानवरों की भविष्यवाणी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दर्शकों ने मोबाइल फोन से फोटो और वीडियोज भी रिकॉर्ड किए। चिड़ियाघर प्रशासन हर वर्ल्ड कप के दौरान कराता है ये खास आयोजन। अधिकारियों का कहना है एक्टिविटी आगंतुकों के बीच काफी लोकप्रिय है। फुटबॉल मैचों की भविष्यवाणी करने वाले जानवरों की परंपरा पुरानी। 2010 वर्ल्ड कप में ऑक्टोपस पॉल ने जर्मनी के कई मैचों के नतीजे सही बताए थे। जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच होने वाले मैच पर ओरांगुटान वॉल्टर ने जर्मनी की जीत की भविष्यवाणी की। डॉर्टमुंड चिड़ियाघर का ये भविष्यवक्ता पिछले मैचों से भी हुआ है सही साबित। वॉल्टर ने दो बैग्स में से जर्मनी वाले बैग को चुना। उसने 20 से भी ज्यादा साल से फुटबॉल मैचों की भविष्यवाणी की है। फैंस का भी मानना है कि जर्मनी का पलड़ा भारी है। आइवरी कोस्ट को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता जर्मनी। जर्मनी ने अपने पहले मैच में कुराकाओ को 7-1 से हराया। बेहद मजबूत दिख रही है जर्मनी की टीम। आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया था। ग्रुप में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर अनोखा आयोजन। चाइना के हुनान प्रांत के फीनिक्स एंशिएंट टाउन में बतख पकड़ने की पारंपरिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। 500 जिंदा बतखों के लिए नदी में कूदे लोग। स्थानीय निवासियों और विदेशी पर्यटकों के बीच बतख पकड़ने की होड़। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के मौके पर स्टिल्ट हाउसेस से छोड़ी गई बतखें। परंपरा और रोमांच का अनोखा संगम। सालों से मनाई जा रही बतख पकड़ प्रतियोगिता स्थानीय कृषि परंपराओं का है प्रतीक। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रम अब इस क्षेत्र की बन चुका है पहचान। चाइना के सिचुआन प्रांत में ड्रैगन बोट उत्सव के दौरान इंसानों के साथ ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने भी चलाई नाव। रोबोट्स और इंसानों के बीच दिखा जबरदस्त तालमेल। रोबोट्स को 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद मानव खिलाड़ियों के साथ मिलकर ड्रैगन बोट रेस में शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान इंसानी नाविकों ने चप्पू चलाना बंद कर दिया। तब रोबोट्स ने अकेले ही नाव को धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ाया। रोबोट्स ने पारंपरिक चीनी चावल का केक और चीनी डिश जोंगजी बनाने का अभ्यास किया। इससे उसकी संतुलन क्षमता और पानी में काम करने की तकनीक बेहतर हुई। 2026 वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 22 से 26 अगस्त तक बीजिंग में होंगे। प्रतियोगिता में 30 से ज्यादा खेलों के जरिए रोबोट तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तर मैसेडोनिया के कलाकार ने फेंकी हुई चीजों को नई कलाकृतियों में बदला। बेकार समझी जाने वाली वस्तुओं को नया और उपयोगी रूप दिया। उनकी नई कलाकृतियां स्कोब्जे में प्रदर्शित की गईं। पुराने ट्रक के तिरपाल को देखकर अचानक आया आइडिया। कलाकार ने फेंके जाने वाले ट्रक तिरपाल का दोबारा इस्तेमाल करने का फैसला किया। ऐसी चीजों को नया जीवन देकर कचरा कम किया जा सकता है। पीले रंग के पुराने तिरपालों पर बादलों की पेंटिंग बनाई गई है। तिरपालों को बैग और अन्य फैशन एक्सेसरीज में बदला गया है। अमार काचार की कला का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: बचपन में इकट्ठा की अखबार की कतरन। मासूम आंखों ने सजोए छपने के ख्वाब। टाइम मैगजीन ने बनाया दमदार आइकन। सपने से सितारे तक स्मृति। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
5: पश्चिम

कल बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे की होगी कमिशनिंग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले नेवी का अंडरवाटर योग, 40 नौ सैनिकों ने एक साथ किया योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया संदेश। कल होने वाले नीट री एग्जाम को लेकर देश भर में हुई मॉक ड्रिल, दिल्ली से सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन, DTC बसों में मुफ्त सफर की सुविधा।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो सूर्य है वो पिता का कारक होता है, तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है और साथ ही में पिता के आशीर्वाद से आपकी कुंडली का सूर्य कैसे मजबूत होगा, इसके बारे में आज के कार्यक्रम में बात होगी। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आपको सपने में आपके पूर्वज कुछ देते हुए दिखाई देते हैं तो ये एक बहुत शुभ संकेत है। इससे आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाएगी। किसी के माता पिता, दादा दादी या घर में किसी का देहांत तो हो गया है और वो स्वप्न में दिख रहे हैं कि आपको कुछ दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या हल होगी।
0: तो चलिए, बातचीत का इस सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं 21 जून 2026 यानी के दिन रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 21 जून 2026 दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 3:20 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः 9:31 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 3:40 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि पंडित जी, आखिरकार सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है। अगर चंद्रमा का संबंध माँ से है तो सूर्य का पिता से है, लेकिन आखिरकार ये संबंध कैसे आप इसे समझ सकते हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है ये?
1: जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि सूर्य और पिता का आपसी संबंध क्या है, सूर्य से पिता और पिता से सूर्य कैसे जुड़े हुए हैं, क्या संबंध है। देखिए, सूर्य इस जगत के प्राण और पालन पोषण का महत्वपूर्ण मुख्य ग्रह है। अगर सूर्य का अस्तित्व ना हो तो हमारी पृथ्वी पर जीवन होगा ही नहीं। सूर्य से ही इस जगत के अंदर जीवन और प्राण का संचार होता है। हमारे पिता भी हमारे प्राण और जीवन के केंद्र हैं। संतान को

0: आत्मा से जन्म लेने वाला, तो पिता मतलब आपकी आत्मा, आपका प्राण, सूर्य का भी वही मतलब है। इस आधार पर पिता का संबंध सूर्य से माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य की स्थिति को देख करके आप अपने पिता की स्थिति को समझ सकते हैं। इसी तरह से आपके पिता को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर सूर्य को भी समझा जा सकता है। यानी अगर हम ये जानना चाहें कि आपके पिता के हालात क्या हैं, उनका जीवन क्या है, तो हमें कुंडली के सूर्य और सूर्य से नवम भाव को देख लेना है। और अगर हम ये जानना चाहें कि हमारा सूर्य कैसा है, तो हमें पिता को देख लेना है। तो पिता से सूर्य को और सूर्य से पिता को समझा जा सकता है।
1: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है।
0: मेष राशि, तनाव आपका कम होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा के योग बने हुए हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो देखिए, कुंडली में सूर्य जो है वो पिता का कारक होता है, ऐसे में पिता का सम्मान ना करने से, उनके साथ संबंध ठीक ना रखने से क्या कमजोर हो सकता है आपकी कुंडली का सूर्य, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, वैसे तो ज्यादातर लोग अपने माता पिता का सम्मान करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पिता का सम्मान नहीं करते, उनके साथ संबंध बेहतर नहीं रखते। तो अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते, उनके साथ संबंध ठीक नहीं रखते, तो क्या होगा? पिता का मतलब है सूर्य। तो अगर पिता के साथ संबंध ठीक नहीं है, तो जीवन में सूर्य की शुभ शक्तियां घटती शुरू हो जाएंगी, सूर्य की शुभ शक्तियां कम हो जाएंगी। और सूर्य की शुभता घटेगी अगर, तो जीवन में मान सम्मान और यश आपका घटेगा, अपयश की स्थिति जीवन में बनेगी। अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो शरीर में सूर्य के तत्व कमजोर होंगे, फलस्वरूप आपको हड्डियों की समस्या होगी और हृदय रोग की संभावना भी बन सकती है। पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे तो ऑफिस में उच्चाधिकारियों के साथ, बॉसेस के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे और बार बार आपके रोजगार में, बार बार आपके करियर में समस्याएं पैदा होंगी। यानी अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते, उनके साथ संबंध ठीक नहीं रखते, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो शुभता है, वो आपके जीवन से धीरे धीरे कम हो जाएगी।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है।
0: कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता दिख रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में फिलहाल समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न विशाल जी ने हमें हरियाणा से लिखा है। 5 जून 2002 का जन्म है, 8 बजे रात को, कुरुक्षेत्र हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। विशाल जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और मीन राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा सूर्य की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से साल 2027 में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, टैक्सेशन में, रेवेन्यू में या कोई क्लैरिकल नौकरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जहां तक देखिए स्वास्थ्य का प्रश्न है, इस कुंडली में आपको बेवजह की चिंताओं से और तनाव से बचना होगा। कोई बहुत बड़ी समस्या या कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं बन रही है। एक मूंगा बनवा के पहन लें, 8 से 10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप हमारे कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे पसंद करते हैं और पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने सवाल लिख करके भेज सकते हैं, साथ में अपनी बर्थ डिटेल जरूर लिखिएगा। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न दिलीप प्रजापति जी ने वाराणसी से लिखा है, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 16 दिसंबर 2005, 9:52 सवेरे, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी को स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार लगी रहती हैं, कुछ न कुछ दिक्कतें बनी रहती हैं, तो स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और बेटी का करियर कैसा रहेगा। दिलीप जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मकर लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, आपकी बेटी की कुंडली में बुध की गड़बड़ी की वजह से कान नाक गले की एलर्जी की, साइनस की दिक्कतें परेशान कर रही हैं, कोल्ड कफ और सेंसरी ऑर्गन की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। कुछ समय के बाद, लगभग फरवरी 2027 के बाद, इनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जहां तक करियर का प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र में, बैंक में या फाइनेंस के क्षेत्र में इनको नौकरी मिलेगी और उस क्षेत्र में ये बेहतर करियर बना पाएंगी। एक तो इनसे कहिए कि एक पन्ना बनवा के पहन लें, 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करेंगी, ओम शं शनैश्चराय नमः। ये दो काम नियमित रूप से करें, स्वास्थ्य और जीवन बेहतर होगा।
1: तो देखिए, पिता का सम्मान करने से, उनके साथ संबंध ठीक रखने से क्या होगा, क्या आपकी कुंडली में इससे सूर्य मजबूत हो सकता है, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, पिता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप पिता का सम्मान करते हैं, उनके साथ संबंध ठीक रखते हैं, तो क्या होगा जीवन में। कुंडली में सूर्य कितना भी खराब हो, कितना भी गड़बड़ हो, अगर पिता का सम्मान करेंगे, पिता के साथ संबंध ठीक रखेंगे, तो कुंडली में खराब सूर्य मजबूत होगा। जीवन में बिना प्रयास किए हुए मान सम्मान मिलेगा, नाम और यश की कमी जीवन में नहीं रहेगी। अगर पिता का सम्मान करेंगे तो सूर्य की ऊर्जा मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, कोई गंभीर बीमारी आपको नहीं होगी। और पिता का सम्मान करने से सूर्य की ताकत मिलेगी, प्रशासन के मामले में और राजनीति के मामले में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो आपका सूर्य कितना भी खराब हो, कितने भी निगेटिव कंडीशन में बैठा हो, अगर आप पिता का सम्मान करेंगे तो आपके अंदर सूर्य की शुभता बढ़नी शुरू हो जाएगी।
1: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल।
0: तुला राशि, काफी दौड़ भाग आपके लिए दिखाई दे रही है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, पारिवारिक चिंता आपकी समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो अगर आपको अपने कुंडली में मौजूद सूर्य को मजबूत करना है, उसके लिए पिता के साथ आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके का संबंध रखना चाहिए, आइए जानते हैं।
0: देखिए, आपकी कुंडली में सूर्य कितना भी गड़बड़ हो, सूर्य कितना भी निगेटिव हो, अगर पिता का आशीर्वाद आपको मिले तो आपका सूर्य बेहतर परिणाम देगा। तो पिता के साथ कैसे रहें, कैसे व्यवहार करें कि सूर्य मजबूत हो, रोज सुबह और शाम अपने पिता के चरण स्पर्श करिएगा। अगर साथ में नहीं रहते या पिता का देहांत हो गया है तो उनके चित्र के सामने सर झुकाकर सुबह शाम प्रणाम करिए। पिता अगर जीवित हैं तो उनके अन्न वस्त्र और चिकित्सा में कोई कमी ना आने दें। संभव हो अगर तो पिता के साथ रहने का प्रयास करें और अपने कमरे के साथ ही, अपने कक्ष के साथ ही पिता का कमरा रखना अच्छा होगा। किसी भी रविवार को अपने पिताजी के हाथ से तांबे या सोने की वस्तु ले लें और इसको अपने पास हमेशा रखें, इसका हमेशा प्रयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पिता जीवन में प्रधान हो जाएंगे, लीड करेंगे, और अगर जीवन में पिता की प्रधानता होगी तो आपकी कुंडली का सूर्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा।
1: तो पिता के साथ संबंध ठीक रखने के लिए किस प्रकार सूर्य की उपासना करें और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, आइए जानते हैं।
0: अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पिता स्वस्थ रहें, आपका रिश्ता पिता के साथ अच्छा रहे, पिता का आशीर्वाद मिलता रहे, लेकिन उसमें रुकावट है, अड़चन है, तो किस प्रकार सूर्य की पूजा करें कि पिता के साथ संबंध बेहतर हो जाएं? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद सूर्य देव के सामने बैठकर या अपने पूजा स्थान पर बैठकर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। पिता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, पिता की लंबी आयु के लिए रविवार को गुड़ का दान करिएगा या गाय को गुड़ खिलाइएगा। रविवार को नमक, अदरक और सरसों के तेल का सेवन मत करिएगा। तो ज्यादा नहीं, अगर आप रोज सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य देव के मंत्र का जप करें तो केवल इतना करने से आपके जीवन में पिता की स्थिति मजबूत होगी, रिश्ते बेहतर होंगे और पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, हालांकि दोपहर बाद आपकी स्थितियों में सुधार होगा। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, पारिवारिक समस्या हो सकती है। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, आर्थिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आज के तीसरे सवाल का। तो पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं कि आज का अगला सवाल आप किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न अपूर्व दवे जी ने हमें लिखा है, गांधीनगर गुजरात से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 24 जनवरी 1996, 6:17 प्रातः, उमरेठ आनंद गुजरात। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा अभी कनाडा में रहता है, वहां नौकरी करता है, उसका भविष्य कैसा रहेगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अपूर्व जी आपके पुत्र की कुंडली बनती है धनु लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा बुध की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। देखिए पहली बात यह है कि आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से उनके कनाडा में ही परमानेंट बस जाने के योग बनते हैं। करियर को लेके, धन को लेकर के कोई बहुत मुश्किल कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। इस कुंडली के हिसाब से वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है और आने वाले साल में वैवाहिक जीवन में सेपरेशन हो सकता है। आगे आपके पुत्र का जीवन बेहतर हो, दूसरा विवाह हो सके, करियर में सेटल हो सकें, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहनाइए। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती धारण कराएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह शाम 108 बार अगर ये नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हमारे ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको पंडित जी जरूर देंगे। तो चलिए अब पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी

0: प्रश्न प्रियंका सिंह ने हमें मध्य प्रदेश से लिखा है। 16 नवंबर 1992 का जन्म है, 11:35 प्रातः, रीवा मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि 4 साल से मेरा तलाक के मुकदमे चल रहे हैं, तलाक का केस चल रहा है, उससे मुक्ति कब तक मिलेगी और आगे मेरा दूसरा विवाह कब तक होगा। प्रियंका, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और कर्क राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। अगले 8 महीने में अप्रैल 2027 के पहले आपका डिवोर्स होगा और आपको अपने पहले विवाह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आपका दूसरा विवाह साल 2027 के अंत में या 2028 के आरंभ में होगा, आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ। तो आपका आने वाला समय अच्छा है, भविष्य बेहतर है, बहुत चिंता करने की, बहुत तनाव पालने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 12-13 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करें। अगर ये काम आप करें, आप केस से जल्दी छुटकारा पाएंगी और आगे आपका दूसरा विवाह भी समय पर हो पाएगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, हैप्पी बर्थडे। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 21 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, धन और संपत्ति की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, करियर की स्थिति मध्यम रहेगी, अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर शिव जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि आखिर आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि 28 साल की उम्र हो जाने के बाद मंगल दोष कुंडली में से समाप्त हो जाता है। क्या ऐसा होता है? देखिए, कुंडली में कोई भी शुभ योग हो या अशुभ योग हो या कोई दोष हो, वो कभी समाप्त नहीं होता। दशाओं के अनुसार उसका प्रभाव कम या ज्यादा हो सकता है। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो इसका प्रभाव जीवन भर बना रहेगा और इसके प्रभाव से आप प्रभावित होते रहेंगे।
1: तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर शुभ पहर का समय क्या है और उसका उपाय क्या है।
0: दिनांक 21 जून 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें। ऐसा करने से आपका नाम और यश बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, शाम के समय 6 बजे से 7:30 तक का समय शुभ पहर का समय रहेगा।
1: और अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा एजुकेशन कैसी रहती है। आज की गुड लक राशि है मीन। ये लोग शिक्षा और ज्ञान के मामले में आगे रहते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि युवा अवस्था में, यंग एज में, एक बार इनकी पढ़ाई में थोड़ी रुकावट आ जाती है।
1: तो चलिए इसी के साथ अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी अगर आपके घर में सारे सदस्य, ज्यादातर सदस्य बीमार रहते हैं तो क्या करेंगे, किसी भी मंगलवार को एक तांबे का छल्ला और लाल धागा ले लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ते जाइए और इस छल्ले को लाल धागे में डालकर अपने मेन डोर पर दरवाजे की हैंडल से लटका दीजिए। ऐसा करने से घर की निगेटिव एनर्जी बाहर निकलने लगेगी और आपके घर में बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: आज देश और दुनिया मना रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विशाखापट्टनम में 44 नौसैनिकों ने एक साथ किया अंडर वाटर योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया संदेश। आज देश भर में होगा नीट का ये एग्जाम। दिल्ली में सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन, डीटीसी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। आज बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे की होगी कमिश्निंग। पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया गया पश्चिम बंग दिवस, शानदार रोशनी से जगमगाया ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज, हुगली में भी शानदार सांस्कृतिक समारोह। मेघालय के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिलोंग में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, लैथकोर पीक पर तैनात जवानों से भी मुलाकात की।

सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो जब एक छोटी बच्ची थी तो लोकल अखबार के किसी पन्ने पर अपना नाम छपने का ख्वाब संजोती थी। वही नन्नी बच्ची आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शान के साथ अपना नाम दर्ज करा चुकी है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट की शान स्मृति मंधाना है। जी हाँ, स्मृति, वही स्मृति मंधाना जो बचपन में अपने क्रिकेटर भाई के परफॉर्मेंस को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उन कतरनों को दिन में कई कई बार पढ़ती थी। तब नन्ही स्मृति के मन में एक ही ख्वाब होता था कि मेरे भी उपलब्धियों की चर्चा अखबार में हो। वक्त का मिजाज देखिए कि लोकल अखबार में छपने की हसरत रखने वाली स्मृति आज अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रही है।

0: वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली एक धुंधली तस्वीर की तासीर बड़ी ही अजीब है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। महाराष्ट्र के सांगली में गालिबन 6-7 साल की एक मासूम बच्ची अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती है और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती है। तब उस निश्चल बच्ची के मन में एक ही तस्वीर होता है, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। वक्त का अनोखा खेल देखिए कि आज 29 साल की हो चुकी उस बच्ची को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया है। अखबार की कतरन सहेजने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की शानदार और जानदार बल्लेबाज स्मृति मंधाना है। ख्वाब के सागर में गोते लगाने का शौक भला किसे नहीं होता, पर अपने ही ख्वाब के लिए जरूरी मेहनत की कसौटी पर कोई विरला ही खरा उतरता है। कमाल यह है कि स्मृति मंधाना अपनी मेहनत, लगन और चट्टानी इच्छा शक्ति के दम पर आज अपने ही ख्वाब के दायरे को चीर कर काफी आगे निकल चुकी हैं। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत आज टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन चुकी है। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही है। टाइम मैगजीन के एडिटर एट लार्ज चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल करने के कारणों को गिनाते हुए जो बातें लिखी हैं, उसमें स्मृति मंधाना की दमदार शख्सियत की मुख्तसर सी झलक दिख जाती है। चार्ली कैंपबेल ने लिखा है, स्मृति मंधाना लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। मुंबई में जन्मी बाएं हाथ की ओपनिंग बल्लेबाज घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। साथ ही क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। इतना ही नहीं, 17 शतकों के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल महिला क्रिकेट शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से उनके नाम है। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना के रिकॉर्ड्स की जो हल्की सी झांकी प्रस्तुत की है, उसकी पूरी और विराट तस्वीर हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले बताते हैं स्मृति के क्रिकेटर बनने की रोचक और मर्मस्पर्शी दास्तान। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मे स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधवनगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो बढ़ नहीं पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल की स्मृति का मन बल्ला पकड़ने के लिए मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को जब भी मौका मिलता तो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी तो पापा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा करते थे। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन्स फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में ना जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का जुनून पैदा हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार की उसी स्मृति का नाम आज अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स, स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज, आयरलैंड के गोल्फर रोरी मैक्लोरॉय और फ्रांस के बास्केटबॉल प्लेयर विक्टर वेम्बान्यामा जैसे स्पोर्ट्स दिग्गजों के साथ टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और चीवट की महिला है। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का इंटीरियर क्रिसुलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और जून 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को यह पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी, तब मैं इंजर्ड हुई थी एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून। And all the doctors had told that 6 months se pehle to you won't be able to play. But all the NCS staff, BCCI staff were really helpful. And unhone sabne bola ki, no, we'll try and make it that aap World Cup khel pao. So I remember wo 5 months, I was just thinking about 22nd June. And, you know, I want to go out and perform. So for that 5 months, I've just dreamed of that day. And, you know, jab wo score kiya and women of the match jab main lene gayi thi, tab it was like, ये ड्रीम मैंने 5 months से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वाज रियली वाचिंग दैट ड्रीम, सो इट वाज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये है कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड स्क्रीन बन गई। विमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद में शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया है। स्मृति अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी है। स्मृति और ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग के नाम पर 17-17 शतक दर्ज है। स्मृति मंधाना विमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा 15 शतक लगाने का कीर्तिमान भी स्मृति मंधाना के नाम ही दर्ज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में विमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के ICC महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है। साफ है कि दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस टाइम मैगजीन ने स्मृति को 100 सबसे प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शुमार किया है, तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती। इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती है। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। विमेंस प्रीमियर लीग में अपनी कप्तानी में स्मृति मंधाना 2 बार RCB को चैंपियन बना चुकी है। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवद गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवद गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवद गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से पल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई, तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया, तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देखकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवद गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवद गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवद गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवद गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवद गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही है। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: वेल, सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग, मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
4: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier, I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood, Sangli se Smriti ka bahut gehra lagao hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
4: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli mein Smriti ka pura bachpan bitai, yahan tak ki Sangli ke Chintaman Rao College of Commerce se hi unhone apna BCom complete kiya. Kamal ye hai ki Sangli mein rehte hue mahaj 9 saal ki umr mein Smriti ka selection महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। रात 9 बजे
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: जून में पड़ रही तेज गर्मी से बचने के लिए मैदानी इलाकों से लोग इन दिनों पहाड़ों की वादियों का रुख कर रहे हैं, और इसी कड़ी में इन दिनों जम्मू कश्मीर का मशहूर हिल स्टेशन पटनी टॉप भी सैलानियों का शानदार ठिकाना बना हुआ है। वहां की खूबसूरत आबोहवा और मनमोहक माहौल लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
7: धूप खिली है लेकिन मौसम सुहावना है, तो सैर सपाटे के लिए बड़ी तादाद में लोगों का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के मशहूर हिल रिजॉर्ट पत्नी टॉप की है। यहाँ पर कई लोग हरी भरी धूप पर बैठकर सुस्ताते हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो कहीं तरह तरह के खेलों में हिस्सा लेकर अपना समय गुजार रहे हैं। खास तौर से बच्चों के लिए यहाँ पर तरह तरह के खेलों और एक्टिविटीज का इंतजाम है, लिहाजा गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए माहौल बेहद माकूल है। इसीलिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, ताकि छुट्टियाँ मजे में गुजार सके।
8: मैं पूरी अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और हमें समर वेकेशंस पड़ी हैं। हम यहाँ पत्नीटॉप में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए, बहुत ज़्यादा गेम्स खेले जैसे कि हमने हॉर्स राइडिंग की, फुटबॉल खेला यहाँ पे, हमने बैडमिंटन खेला और यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है। जैसे हम कश्मीर में आते हैं हमें इतना अच्छा लगता है, वैसे हमें लगा यहाँ पे ग्रीन पेड़ है, इतना हवा चल रही है ठंडी, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया।
9: मेरा नाम आरुही संभ्याल है और मैं सांबा से आई हूँ और मेरी समर वेकेशन चल रही है, इसीलिए मैं इधर पत्नीटॉप आई थी। मैंने जॉर्बिंग बॉल में राइड की, ट्रैम्पलिन पे जंप किया, हॉर्स राइडिंग की, वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, सीनरी बहुत अच्छी है।
10: उधमपुर से आए हैं, समर वेकेशन के स्कूल में छुट्टियाँ पड़ी है तो हम यहाँ पत्नीटॉप में आए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत बहुत ही ठंडा मौसम है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हमने बहुत मजे किए यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग की, बहुत खुशी है, बहुत मजा आया।
11: यहाँ पे बहुत अच्छा कूल वेदर है, हमने हॉर्स राइडिंग की, बोटिंग की, जंपिंग की, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे मतलब की व्यूज हैं, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज खींच सकते हैं, बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ पे, बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटी भी है।
7: पटनी टॉप का इलाका इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है तो यहाँ टूरिज्म के कारोबारों से जुड़े लोगों को भी काफी फायदा हो रहा है। लोगों की आवाजाही बढ़ने से कामकाज काफी अच्छा चल रहा है तो इनके चेहरे भी खिले हैं।
12: मैं यहाँ पे पटनी टॉप में एडवेंचर का काम करता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो शूटिंग है, हमारे पास आर्चर है, इवन की गॉगल्स भी ले सकते हो आप। और आज यहाँ पे बहुत चहल पहल है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी है, वीकेंड पे आ रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल सर, जरूर काम थोड़ा बहुत हिला है बड़ी देर के बाद, थोड़ा सा हम भी खुश हैं क्योंकि हमारा रोजगार भी थोड़ा सा बढ़ रहा है आगे की ओर, और पर्यटकों के आने से हमें भी खुशी हो रही है और सिस्टम सही चल रहा है।
7: पटनी टॉप में इन दिनों बर्फबारी नहीं हो रही, लिहाजा ना बहुत ज्यादा ठंड है और ना ही गर्मी की तपिश का एहसास हो रहा है, लिहाजा आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से लेकर दूर दूर तक से सैलानी यहाँ मनमोहक माहौल का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ की वादियों में हरियाली की रौनक खास तौर से लोगों को लुभा रही है, बहुत से लोग यहाँ अपनी शानदार तस्वीरें खिंचवाकर अपने ट्रिप को यादगार बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: मौसम गर्मियों का है और इस मौसम में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद की जाती है तो वो है आम, एक ऐसा फल जिसे तमाम फलों का राजा कहा जाता है। लेकिन बात अगर गुजरात के केसर की हो तो बात ही अलग है, इसका रसीला स्वाद और बेमिसाल खुशबू लोगों को बेहद पसंद है। यही वजह है कि गिर सोमनाथ में इस साल केसर आम ने नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं।

0: बेमिसाल स्वाद, लाजवाब खुशबू और रंग ऐसा कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और आमों में भी सबसे खास गिर का केसर, जिसकी अनोखी खुशबू और शाही स्वाद के आगे दुनिया का हर जायका फीका नजर आता है। लेकिन इस साल गुजरात में केसर आम की मिठास और खुशबू कुछ अलग है, क्योंकि इस साल केसर आम के स्वाद की दीवानगी ने गुजरात में वो कर दिखाया है जो आज तक नहीं हुआ। इस बार केसर आम का सीजन किसानों और आम कारोबारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। गिर सोमनाथ के तलाला आम मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ 61 दिनों तक चले सीजन में कुल लगभग 10 लाख पेटियाँ आईं। ये आंकड़ा मामूली नहीं है, क्योंकि इसने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। दरअसल इस साल मौसम ने किसानों का भरपूर साथ दिया। अनुकूल मौसम की वजह से न सिर्फ पैदावार बंपर हुई, बल्कि केसर आम की क्वालिटी पर भी इसका बेहद शानदार असर हुआ, जिस वजह से बाजार में अब तक केसर आम की डिमांड बनी हुई है। हालांकि केसर आम की इस मिठास का जादू सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सात समंदर पार भी गिर के केसर ने धूम मचाई। इस सीजन में रिकॉर्ड 90 टन केसर आम का एक्सपोर्ट किया गया। यूनाइटेड किंगडम, दुबई और कनाडा जैसे देशों में बैठे आम के शौकीनों ने इस बार गिर के शाही स्वाद का जमकर लुत्फ उठाया। कहते हैं कि आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक जज्बात है। बात जब गिर के केसर आम की हो तो ये दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है। एक बार फिर गिर के केसर आम की जादुई स्वाद और इसकी खुशबू ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि लोग इस कदर इसके स्वाद के दीवाने क्यों हैं। दिलीप भाई मोड़ी, गिर सोमनाथ, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
2: आज देश और दुनिया मना रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विशाखापट्टनम में 40 नौसैनिकों ने एक साथ किया अंडर वाटर योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया संदेश। आज देश भर में होगा नीट का ये एग्जाम। दिल्ली में सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन, डीटीसी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। आज बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे की होगी कमिश्निंग। पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया गया पश्चिम बंग दिवस, शानदार रोशनी से जगमगाया ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज, हुगली में भी शानदार सांस्कृतिक समारोह। मेघालय के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिलोंग में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, लैथकोर पीक पर तैनात जवानों से भी मुलाकात की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर दिन नए नए कीर्तिमान रच रहा है। स्वदेशी क्षमता से ऐसे ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जिन पर चंद देशों का दबदबा रहा है। आज रण क्षेत्र में बात उन तीन ताकत की करेंगे जो सबलान से लेकर डिफेंस और अटैक तक करने में महारत रखते हैं। नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। 25 जून को बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबोन सिस्टम में नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की घोषणा की जाएगी।
1: फाइनल क्लियरेंस का सीधे तौर पर मतलब यही होता है कि सिस्टम अब पूरी तरह से रणक्षेत्र में उतरने के लिए तैयार है। अब चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर उस सिस्टम की जरूरत हो। नेत्र सिस्टम को फिलहाल डीआरडीओ द्वारा विकसित कर लिया गया है, फाइनल क्लियरेंस मिल चुकी है और इसे एम्ब्रॉयडर विमान में फिट किया गया है।
0: युद्ध में जीत अक्सर उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले, और ये काम नेत्र बाखूबी करता है। तभी तो एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को आसमान में आंख कहा जाता है। नेत्र सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है। नेत्र में स्वदेशी AESA रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगा रडार करीब 240 डिग्री इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये विशाल हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी कर सकता है। डिटेक्शन रेंज की बात की जाए तो नेत्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के खतरों को भांप सकता है। नेत्र सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता बल्कि उसे तुरंत लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है। इससे पूरी वायुसेना एक नेटवर्क के रूप में काम करती है।
2: देखिए, जो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है ये एक एरियल प्लेटफॉर्म पे इसको माउंट किया गया है जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाती है और जब इसका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है तो इसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है और इसका जो एरिया देखता है इनिशियली जो मार्क वन है उसका 240 डिग्री कवरेज था, लेकिन इसका भी एक इम्प्रूव वर्जन आ रहा है मार्क टू जिसमें कि वो एयरबस A321 पे माउंट होगा और उसका जो कवरेज होगा 360 डिग्री होगा, यानी कि वो चारों दिशाओं में एक्यूरेसी के साथ उस चीजों को निगरानी कर सकेगा। और ये तमाम जो ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म है, जो डाइविंग एयरक्राफ्ट हैं या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, क्रूज मिसाइल हैं, इन सारों को डिटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा।
0: हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण नेत्र लंबे समय तक मिशन पर बना रह सकता है जिससे सीमा क्षेत्रों की लगातार निगरानी संभव है। दरअसल भारत को एक साथ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती है। ऐसे में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जमीनी रडारों की सीमाओं को दूर करते हैं और सीमा के पार तक निगरानी करने में मदद करते हैं।
1: एबॉक्स प्लेटफॉर्म दरअसल शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाके काम करता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ता है जिस वजह से ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी भी मिसाइल, विमान या फिर जमीन पर ही जिससे रडार इंटरसेप्ट नहीं कर सकता उसकी जानकारी जुटाने में काफी मददगार साबित होता है।
0: एवॉक्स एक बड़े इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एक कंबाइंड एयर डिफेंस बना सकता है। साथ ही ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर भी नजर रख सकता है।
2: देखिए, सबसे पहली बात है, अगर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है, एवॉक्स है, तो वो आपकी डेट में एरियल प्लेटफॉर्म है, वो हवा में जाता है, उसका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, उसका एरिया कवरेज बढ़ जाता है, और साथ में वो दूर तक एट द अर्ली स्टेज किसी भी मिसाइल, रॉकेट या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेता है। ग्राउंड बेस्ड स्टेशन भी यही चीजें करते हैं, लेकिन उसमें बहुत तरीके की क्लटरिंग होती है। अगर ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी और उसका जो क्लटर है उसको डी क्लटर करने की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों से एवॉक्स जो है वो उसमें इसका कम असर होता है।
0: एवॉक्स सिस्टम लंबी दूरी के रडार से लैस होता है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक की जानकारी जुटा लेता है, और ये दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में ताजा जानकारी मुहैया कराता है। अगर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की तलवार है तो नेत्र उसकी आंख है। बिना नेत्र के रण क्षेत्र में उतरना बहुत मुश्किल है और युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर अगर हम आधुनिक युद्ध की बात करें, जिसके लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है, और उसमें नेत्र की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि न सिर्फ ये आंख बल्कि दिमाग से भी रण क्षेत्र में उतरता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फाल्कन एबॉक्स और 2 एम्ब्रर नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। इनमें से ज्यादातर एबॉक्स का संचालन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ही किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि। दरअसल भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली LRLACM का सफल परीक्षण किया है, और इसमें सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जमीन पर अटैक करने वाली एक बेहद लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। वो सबसोनिक रफ्तार से उड़ती है। ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में जाकर नीचे नहीं गिरती, बल्कि ये टेरन हगिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी ये जमीन से बिल्कुल सट कर और पहाड़ों की ओट में छिप कर रहती है। सीधे रास्ते पर जाने की बजाय टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाने की वजह से दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि मिसाइल का अंतिम टारगेट क्या है।
2: ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ये अभी रिसेंटली इसका टेस्ट फायर किया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में, और इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। इसने रेंज अचीव किया, इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम था, इसका जो गाइडेंस सिस्टम था, जो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी, और जो रेंज अचीव करना था वो सारा मकसद अचीव हुआ। ये एक ऐसा क्रूज मिसाइल है जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये अर्थ के जो कंटूर है उसके हिसाब से फ्लाई करता है, एक लो हाइट पे हाई स्पीड के साथ जाके टारगेट को एंगेज करता है। जब कोई मिसाइल लो हाइट पे फ्लाई करता है तो उसको डिटेक्शन इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि रडार उसमें इनकेपेबल हो जाते हैं। तो लिहाजा अपने आप में ये एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के तहत हमने इसको इंडिजिनसली डेवलप किया है।
0: LACM को भारत की अपनी टॉमहॉक मिसाइल कहा जा रहा है। ये हवा में ही अपना रास्ता बदलने, दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करने की अद्भुत क्षमता रखती है। LRLACM मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, और ये अपने साथ करीब 400 से 450 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसे मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर, नौसेना की युद्धपोतों में लगे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल से दागा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध और हालिया ईरान संघर्ष ने दुनिया को दिखा दिया कि स्टैंड ऑफ हथियार यानी दूर से सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें किसी भी युद्ध के रुख को बदल सकती हैं। अगर इस मिसाइल को भारत अपनी सीमाओं और फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात करता है तो चीन और पाकिस्तान के कई रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र सीधे तौर पर इसकी जद में आ जाएंगे।

0: देखिए, जितने भी हमारे स्टैंड ऑफ वेपन हैं, जिसमें कि तमाम क्रूज मिसाइल्स हैं, वो शामिल होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, जहां तक स्टैंड ऑफ वेपन का सवाल है। एक तो होता पावर्ड फेस, जिसमें तमाम तरीके की क्रूज मिसाइल आती हैं, जिसमें अभी आपने जिसका जिक्र किया, और दूसरे मिसाइल होती है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वेपन को रिलीज किया जाता है, वो ग्लाइड करके टारगेट पे जाता है, वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर लेता है, जब वो जहां पे वो रिलीज किया जाता है। तो इसके एक पावर्ड फेज होता है, एक ग्लाइड फेज होता है। तो जितने पावर्ड फेज है उसमें तमाम तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम का करते हैं, गाइडेंस सिस्टम काम करते हैं, और एक दूरी से, यानी कि जो दुश्मन की रेंज के बाहर से, जो उसके मीडियम रेंज मिसाइल उसके बाहर से अगर आप फायर करते हैं, तो एक आपको लॉन्च साइट की सुरक्षा मिलती है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की एक और ताकत है इसकी अचूक मारक क्षमता, और इसके पीछे भारत की सबसे आधुनिक नेविगेशन और स्वदेशी रडार सीकर तकनीक का हाथ है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करती है, इसीलिए इसे रास्ते में भटकने से बचाने और अंत में बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए मल्टीलेयर्ड गाइडेड सिस्टम से लैस किया गया है। टर्मिनल फेज के लिए इसमें अपग्रेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब यानी कि आखिरी कुछ किलोमीटर में होती है तो उसे टर्मिनल फेज कहा जाता है, और तभी इसका आरएफ सीकर एक्टिव होता है। लक्ष्य के पास पहुंचते ही सीकर रडार तरंगे छोड़ता है और दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और युद्धपोत की सटीक लाइव तस्वीरें बनाकर मिसाइल के कंप्यूटर को देता है। इसके बाद मिसाइल बिना 1 इंच भटके सीधे लक्ष्य के बीचों बीच टकरा जाती है। शुरुआती लॉन्च से लेकर टारगेट के करीब पहुंचने तक यानी कि सफर के 90% हिस्से में मिसाइल रडार की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ती है। इसके लिए इसमें 3 स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण किया गया है। पहला है INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये मिसाइल का अपना आंतरिक दिमाग होता है जिसे बाहर से जैम नहीं किया जा सकता। मिसाइल हवा में अपने रास्ते को और सटीक करने के लिए भारत के अपने नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन सैटेलाइट नेटवर्क से सिग्नल लेती है। टेरकॉम ये सबसे अहम तकनीक है। इस सिस्टम में दुश्मन के इलाके का 3D डिजिटल मैप मिसाइल के कंप्यूटर में पहले से ही लोड कर दिया जाता है। उड़ान के दौरान मिसाइल का रडार एल्टीमीटर नीचे की जमीन को स्कैन करता है और पहले से लोड मैप से उसका मिलान करता हुआ आगे बढ़ता है, और इसी वजह से ये पहाड़ों की ओट में छिपकर उड़ जाती है। युद्ध के समय दुश्मन बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का इस्तेमाल करता है, इसीलिए स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के सीकर और नेविगेशन सिस्टम को ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से सुरक्षित किया गया है। अगर दुश्मन NAVICE या GPS के सिग्नल को ब्लॉक भी कर दे तो भी मिसाइल का स्वदेशी RF सीकर और INS सिस्टम बिना किसी बाहरी मदद के पूरी सटीकता से हमला करने में सक्षम है।
0: देखिए, जब आप मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है उसमें मोर देन वन नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें GPS है, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है, इंफ्रारेड है, थर्मल है। तो अगर इन चारों के कॉम्बिनेशन में आप ऑपरेट करते हैं तो कोई भी एक नेविगेशन सिस्टम को अगर दुश्मन जाम करता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है। लिहाजा इसलिए ये जो हमारा जो मिसाइल सिस्टम है ये पूरी तरीके से जैम प्रूफ है। एनमी इसमें इसके फ्लाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर इंटरफेयर कर सकता है तो आप ग्राउंड के से उसको कमांड देके दूसरे टारगेट पे भेज सकते हैं, लेकिन इसके जैमिंग की संभावनाएं कम है, इसीलिए इसका मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम रखा गया है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल में स्वदेशी मैनिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टर्बोफैन इंजन बनाना बेहद जटिल तकनीक है और भारत ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जिससे लंबी दूरी की उड़ान में ईंधन की भारी बचत होती है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दरअसल भारत के पुराने निर्भया मिसाइल का ही एक हिस्सा है। साल 2013 में भारत ने निर्भया मिसाइल पर काम शुरू किया। इसके परीक्षण को लेकर कई राउंड्स भी हुए, लेकिन उसके बाद DRDO ने इसमें स्वदेशी मणिक सिस्टम को अटैच किया और साथ ही साथ इसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया के रूप में विकसित किया। मणिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन कैसे LR LACM को पावरफुल बनाता है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। मणिक एक ट्विन स्पूल इंजन है जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं होता। इसे सिंगल यूज या एक्सपेंडेबल इंजन के रूप में डिजाइन किया गया है। थ्रस्ट और शक्ति क्षमता की बात की जाए तो ये 4.25 से 4.5 किलो न्यूटन की ताकत जनरेट करता है, जिसकी मदद से ये एक टन भारी मिसाइल को 1000 किलोमीटर तक लगातार हवा में उड़ाए रखता है। मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और रडार को चालू रखने के लिए इसमें 3 KV का इनबिल्ट अल्टरनेटर लगाया गया है। हवा में एक निश्चित ऊंचाई और रफ्तार जो कि आवाज की गति के करीब है, उस स्तर पर पहुंचने के बाद मिसाइल का बूस्टर अलग हो जाता है और हवा में ही मानक टर्बोफैन इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मिसाइल अपने पंख और इंजन के दम पर 0.7 से 0.8 मैक की रफ्तार से आगे बढ़ती है।
0: इंजन है, सबसे पहले ये एक प्रोपल्शन सिस्टम है, ये एक डिजिटल प्रोपल्शन सिस्टम है। जब हम डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम की बात करते हैं तो वो उतनी ही हीट जनरेट करता है जितना दूर आप इस मिसाइल को डायरेक्ट करते हैं। तो एक ये एक कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड प्रोपल्शन सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल टर्बो फैन इंजन। तो यानी कि ये जो इसका जो पहली तो इसमें एक कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, पूरा कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो प्रोपल करने के लिए उसके एनर्जी का इस्तेमाल होता, और जब जिस एनर्जी जो ये जनरेट करता है वो 4.5 KN के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि ये गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इस इंजन को डेवलप किया है।
1: भारत इससे पहले क्रूज मिसाइलों जैसे कि निर्भया के इंजन के लिए रूस के एनपीओ सैटन 36NT पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन मणिक इंजन के आ जाने से भारत की ताकत में और इजाफा हुआ है और ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी है। यानी आने वाले समय में भारत इस इंजन के लिए किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसे सुनकर हर देशवासी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल कर ली है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, ये ऐसा भरोसा है जो भारत को हिफाजत रखने की 100% गारंटी देता है। दुश्मन चाहे कितनी भी ताकतवर मिसाइलें चला ले, कितना भी जोर आजमाइश कर ले, भारत की हवाई सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकता। ऐसा इसलिए कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को खाक में मिलाने वाला महाअस्त्र तैयार किया है। यानी एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मल्टी लेयर डिफेंस और समंदर में मध्यम दूरी की एंटी शिप मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। 10 और 11 जून को किए गए लगातार 3 परीक्षणों में भारत की मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया, और इसी के साथ भारत अब उन खास देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, यानी कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही मार गिराना है। यह मिसाइल 2000 से 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने, ट्रैक करने और हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है।
0: मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम एयर डिफेंस अम्ब्रेला ही अपने टैक्टिकल बैटलफील्ड में लगाया करते थे। लेकिन अब हिंदुस्तान प्रगति की राह पे हमने हर एक VA एंड VP को, वल्नरेबल एरिया वल्नरेबल पॉइंट को, मल्टी टीयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यानी कि कोई एक सिस्टम अगर किसी मिसाइल या रॉकेट या एरियल ऑब्जेक्ट को मिस करता है तो दूसरा सिस्टम उसको पिकअप करता है। तो इस तरीके की जब हम संरचना करते हैं तो जो एरिया को हम पूरा एयर डिफेंस कवर देते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। उसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, S-400 आपके तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम जो हिंदुस्तान की आर्मी के पास है उसको डिप्लॉय किया जाता है। ये होता है मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम।
1: बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक उन्नत रक्षा नेटवर्क होता है। ये सिस्टम कई तरह की टेक्नोलॉजी के एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के जरिए काम करता है। सबसे पहले काम होता है दुश्मन की मिसाइल का पता लगाना और ट्रैक करना। इस प्रक्रिया की शुरुआत लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार से होती है जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च का पता लगाते हैं। इस सिस्टम का दूसरा चरण होता है कमांड एंड कंट्रोल। इसमें अलग अलग जगहों पर मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर और लॉन्च कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार से मिले डेटा का विश्लेषण करने और जवाबी कार्रवाई में तालमेल बिठाने के लिए ये सेंटर एक सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा होता है। अगला चरण होता है एंगेजमेंट, यानी कि मुकाबला करना। खतरे की पुष्टि होने के बाद सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइलों को एक्टिव करता है। ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन की आने वाली मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देती हैं। बीएमडी सिस्टम दो मुख्य स्तरों पर टारगेट को रोकता है, अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर।
0: देखिए, सबसे पहले जब भी कोई एरियल ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है, दुश्मन ने अगर मिसाइल फायर किया तो सबसे पहले उसको हमें डिटेक्ट करना है कहां से लॉन्च किया गया। जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे उतना ज्यादा आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा। जैसे आप उसको डिटेक्ट करते हैं उसके लिए आपके पास तमाम रडार हैं, एयर डिफेंस के सिस्टम हैं, फिर आप उसको ट्रैक करते हैं कि अगर आपने लॉन्च किया फ्लाइट उसने बदला दूसरे इलाके में गया तो आप किस तरीके से उसको ट्रैक करते हैं। जब उसका फ्लाइट पाथ डिटरमिन हो जाता है या अर्ली डिटेक्शन हो जाता है आप उसको लॉक करते हैं। फिर आप अपना जो आपका जो मिसाइल सिस्टम है जिससे आप उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो उस मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ये एक्सप्लोसिव बेस्ड भी हो सकता है, एक काइनेटिक भी हो सकता है। काइनेटिक का मतलब यह कि वो स्पीड से जाके इस एरियल ऑब्जेक्ट से टकराएगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा।
1: अगर पहली इंटरसेप्टर मिसाइल लक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाती तो दूसरी परत एक्टिव हो जाती है, यानी एक डिफेंस लेयर फेल हो जाए तब भी दूसरी लेयर मौजूद रहती है। मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दरअसल अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग इंटरसेप्शन के हिसाब से काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये दूर से आ रही मिसाइल को परख लेता है और अगर कहीं एक निशाना चूक जाता है तो ये कई और मौके भी देता है। रक्षा जानकार यही मानते हैं कि हर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सटीक नहीं होता, 100% उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं दुश्मन को पहले ही रोक सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक रणनीतिक सुरक्षा कवच है जिसका मकसद बड़े शहरों और परमाणु ठिकानों को लंबी दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों से बचाना है। इसके रडार बेहद ताकतवर होते हैं जो 1500 से 2500 किलोमीटर दूर से ही खतरों की पहचान कर लेते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं। भारत का बीएमडी एक दो स्तरीय सिस्टम है जिसमें एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 100 किलोमीटर तक और एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 80 किलोमीटर तक होता है। वहीं पारंपरिक सिस्टम कम ऊंचाई पर काम करते हैं। S-400 सिस्टम 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट को रोकता है जबकि आकाश 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-400 या आकाश जैसे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के बीच मुख्य अंतर उनके टारगेट स्पेशलाइजेशन, इंटरसेप्शन की ऊंचाई और रणनीतिक उद्देश्यों में होता है। बीएमडी सिस्टम खासतौर पर उन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन है जो बेहद तेज रफ्तार जैसे कि Mach 5 या उससे ज्यादा और फिक्स ट्रेजेक्टरी पर चलती है। वहीं क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन से निपटने के लिए भारत का संपूर्ण एयर डिफेंस ग्रिड कई दूसरी परतों को भी एकीकृत करता है। भारत के पास लंबी दूरी यानी कि Tier 1 के लिए रूस से हासिल S-400 ट्रायम्फ सिस्टम है। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर है। ये दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइल को टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट कर लेता है। मध्यम दूरी यानी कि Tier 2 के लिए भारत और इसराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित Barak 8 मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। वहीं कम दूरी यानी कि Tier 3 के लिए स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है जो री एंट्री या नजदीकी हवाई खतरों को नाकाम कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इन सिस्टम को दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को रोकने के लिए और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 2028 तक अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए इस्तेमाल होंगी LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें। फिलहाल भारत के पास रूस से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ देश में ही बनी पृथ्वी और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो किसी भी हवाई खतरे को आसानी से राख में मिला सकते हैं। रणक्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
3: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: 1999 का करगिल युद्ध और देश के वीर जाबाजों की वो जाबाजी जिसने तोलोलिंग की पहाड़ियों पर तिरंगा फहराकर युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल दिया था। करगिल विजय की इसी ऐतिहासिक शौर्य गाथा और देश के अमर शहीदों को नमन करने के लिए भारतीय सेना ने एक बेहद खास और जज्बे से भरे ट्रेकिंग अभियान की शुरुआत की है। सेना की फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन ने करगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐतिहासिक तोलोलिंग पीक के लिए एक स्मारक अभियान का आयोजन किया, जिसे 19 जून को द्रास में मौजूद करगिल वॉर मेमोरियल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अभियान की सबसे खास और भावुक कर देने वाली बात यह है कि इस ट्रैकिंग टीम में उन्हीं सैन्य टुकड़ियों के जवान शामिल हैं जिन्होंने 1999 की बैटल ऑफ तोलोलिंग में दुश्मन को मात देते हुए इस चोटी को दोबारा अपने कब्जे में लिया था। चोटी पर पहुंचकर जाबाजों ने एक बार फिर से पूरी शान से भारत का तिरंगा लहराया और अपने शहीद साथियों की वीरता को नमन किया। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप कर वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया है। मैच के हीरो रहे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 110 रन बनाए। यशस्वी ने अपने वनडे करियर का ये दूसरा शतक लगाया तो रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में शानदार 79 रन जोड़े और इसके अलावा मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने करियर का पहला फाइफर यानी 5 विकेट छटके। और चेपॉक में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से मात दी। भारत को जीत के लिए 219 रनों का टारगेट मिला था जिसे उसने 28.4 ओवर्स में ही हासिल कर लिया।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250,

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
3: आज देश और दुनिया मना रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विशाखापट्टनम में 44 नौसैनिकों ने एक साथ किया अंडर वाटर योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया संदेश। आज देश भर में होगा नीट का एग्जाम। दिल्ली में सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन, डीटीसी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। आज बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे की होगी कमिश्निंग। पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया गया पश्चिम बंग दिवस, शानदार रोशनी से जगमगाया ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज, हुगली में भी शानदार सांस्कृतिक समारोह। मेघालय के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिलोंग में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, लैथकोर पीक पर तैनात जवानों से भी मुलाकात की।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो जब एक छोटी बच्ची थी तो लोकल अखबार के किसी पन्ने पर अपना नाम छपने का ख्वाब संजोती थी। वही नन्नी बच्ची आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शान के साथ अपना नाम दर्ज करा चुकी है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट की शान स्मृति मंधाना है। जी हाँ, स्मृति, वही स्मृति मंधाना जो बचपन में अपने क्रिकेटर भाई के परफॉर्मेंस को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उन कतरनों को दिन में कई कई बार पढ़ती थी। तब नन्ही स्मृति के मन में एक ही ख्वाब होता था कि मेरे भी उपलब्धियों की चर्चा अखबार में हो। वक्त का मिजाज देखिए कि लोकल अखबार में छपने की हसरत रखने वाली स्मृति आज अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रही है।

वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली एक धुंधली तस्वीर की तासीर बड़ी ही अजीब है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। महाराष्ट्र के सांगली में गालिबन 6-7 साल की एक मासूम बच्ची अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती है और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती है। तब उस निश्चल बच्ची के मन में एक ही तसव्वुर होता है, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। वक्त का अनोखा खेल देखिए कि आज 29 साल की हो चुकी उस बच्ची को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली

0: प्रतिभाशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया है। अखबार की कतरन सहेजने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की शानदार और जानदार बल्लेबाज स्मृति मंधाना है। ख्वाब के सागर में गोते लगाने का शौक भला किसे नहीं होता, पर अपने ही ख्वाब के लिए जरूरी मेहनत की कसौटी पर कोई विरला ही खरा उतरता है। कमाल यह है कि स्मृति मंधाना अपनी मेहनत, लगन और चट्टानी इच्छा शक्ति के दम पर आज अपने ही ख्वाब के दायरे को छीनकर काफी आगे निकल चुकी हैं। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत आज टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन चुकी है। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही है। टाइम मैगजीन के एडिटर एट लार्ज चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल करने के कारणों को गिनाते हुए जो बातें लिखी हैं, उसमें स्मृति मंधाना की दमदार शख्सियत की मुख्तसर सी झलक दिख जाती है। चार्ली कैंपबेल ने लिखा है, स्मृति मंधाना लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। मुंबई में जन्मी बाएं हाथ की ओपनिंग बल्लेबाज घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। साथ ही क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। इतना ही नहीं, 17 शतकों के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल महिला क्रिकेट शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से उनके नाम है। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना के रिकॉर्ड्स की जो हल्की सी झांकी प्रस्तुत की है, उसकी पूरी और विराट तस्वीर हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले बताते हैं स्मृति के क्रिकेटर बनने की रोचक और मर्मस्पर्शी दास्तान। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मे स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधवनगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो बढ़ नहीं पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल के स्मृति का मन बल्ला पकड़ने के लिए मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को जब भी मौका मिलता तो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी, तो पापा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा कर देते। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में ना जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का जुनून पैदा हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार की उसी स्मृति का नाम आज अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स, स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज, आयरलैंड के गोल्फर रोरी मैक्लोरॉय और फ्रांस के बास्केटबॉल प्लेयर विक्टर वेम्बान्यामा जैसे स्पोर्ट्स दिग्गजों के साथ टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और चीवट की महिला हैं। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का इंटीरियर क्रिसुलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और जून 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को ये पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी, तब मैं इंजर्ड हुई थी एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ्स से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द NCS स्टाफ BCCI स्टाफ वर रियली हेल्पफुल एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो विल ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये है कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड स्क्रीन बन गई। विमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद में शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया है। स्मृति अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं। स्मृति और ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग के नाम पर 17-17 शतक दर्ज है। स्मृति मंधाना विमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा 15 शतक लगाने का कीर्तिमान भी स्मृति मंधाना के नाम ही दर्ज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में विमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के ICC महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है। साफ है कि दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस टाइम मैगजीन ने स्मृति को 100 सबसे प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शुमार किया है, तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती। इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती है। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। विमेंस प्रीमियर लीग में अपनी कप्तानी में स्मृति मंधाना 2 बार RCB को चैंपियन बना चुकी है। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवत गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवत गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवत गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देखकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवत गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवत गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
4: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier, I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood, Sangli se Smriti ka bahut gehra lagao hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda. Aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
4: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli mein Smriti ka pura bachpan bitai, yahan tak ki Sangli ke Chintaman Rao College of Commerce se hi unhone apna BCom complete kiya. Kamal ye hai ki Sangli mein rehte hue mahaj 9 saal ki umr mein Smriti ka selection महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
6: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
5: More top sports.
7: And he's gonna go! There's the tying goal!
5: And everything in between.
8: The game is over!
5: Upgrade now for the premium listening experience.
9: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
10: जून में पड़ रही तेज गर्मी से बचने के लिए मैदानी इलाकों से लोग इन दिनों पहाड़ों की वादियों का रुख कर रहे हैं, और इसी कड़ी में इन दिनों जम्मू कश्मीर का मशहूर हिल स्टेशन पटनी टॉप भी सैलानियों का शानदार ठिकाना बना हुआ है। वहां की खूबसूरत आबोहवा और मनमोहक माहौल लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
11: धूप खिली है लेकिन मौसम सुहावना है, तो सैर सपाटे के लिए बड़ी तादाद में लोगों का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के मशहूर हिल रिजॉर्ट पत्नी टॉप की है। यहाँ पर कई लोग हरी भरी धूप पर बैठकर सुस्ताते हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो कहीं तरह तरह के खेलों में हिस्सा लेकर अपना समय गुजार रहे हैं। खास तौर से बच्चों के लिए यहाँ पर तरह तरह के खेलों और एक्टिविटीज का इंतजाम है, लिहाजा गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए माहौल बेहद माकूल है। इसीलिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि छुट्टियाँ मजे में गुजार सके।
12: मैं पूरी अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और हमें समर वेकेशन पड़ी हैं। हम यहाँ पत्नी टॉप में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने फोटोज क्लिक किए, बहुत ज़्यादा गेम्स खेले, जैसे कि हमने हॉर्स राइडिंग की, फुटबॉल खेला यहाँ पे, हमने बैडमिंटन खेला, और यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है। जैसे हम कश्मीर में आते हैं, हमें इतना अच्छा लगता है, वैसे हमें लगा यहाँ पे ग्रीन ग्रीन पेड़ है, इतना हवा चल रही है ठंडी, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया।
13: मेरा नाम आरुही संभ्याल है और मैं सांबा से आई हूँ, और मेरी समर वेकेशन शुरू चल रही है, इसीलिए मैं इधर पटनी टॉप आई थी। मैंने जॉर्बिंग बॉल में राइड की, ट्रैम्पलिन पे जंप किया, हॉर्स राइडिंग की। वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, सीनरी बहुत अच्छी है।
14: उधमपुर से आए हैं, समर वेकेशन के स्कूल में छुट्टियाँ पड़ी है तो हम यहाँ पटनी टॉप में आए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत बहुत ही ठंडा मौसम है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमने बहुत मजे किए यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग की, बहुत खुशी है, बहुत मजा आया।
15: यहाँ पर बहुत अच्छा कूल वेदर है, हमने हॉर्स राइडिंग की, बोटिंग की, जंपिंग की, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छे अच्छे मतलब की व्यूज हैं, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज खींच सकते हैं, बहुत मजा आ रहा है हमें। यहाँ पर बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटी भी है।
11: पटनी टॉप का इलाका इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है, तो यहाँ टूरिज्म के कारोबारों से जुड़े लोगों को भी काफी फायदा हो रहा है। लोगों की आवाजाही बढ़ने से कामकाज काफी अच्छा चल रहा है, तो इनके चेहरे भी खिले हैं।
16: मैं यहाँ पे पटनी टॉप में एडवेंचर का काम करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, शूटिंग है हमारे पास, आर्चर है, इवन की गॉगल्स भी ले सकते हो आप। और आज यहाँ पे बहुत चहल पहल है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी है, वीकेंड पे आ रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल सर, जरूर काम थोड़ा बहुत हिला है बड़ी देर के बाद, थोड़ा सा हम भी खुश हैं क्योंकि हमारा रोजगार भी थोड़ा सा बढ़ रहा है आगे की ओर, और पर्यटकों के आने से हमें भी खुशी हो रही है और सिस्टम सही चल रहा है।
11: पटनी टॉप में इन दिनों बर्फबारी नहीं हो रही, लिहाजा ना बहुत ज्यादा ठंड है और ना ही गर्मी की तपिश का एहसास हो रहा है। लिहाजा आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से लेकर दूर दूर तक से सैलानी यहाँ मनमोहक माहौल का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ की वादियों में हरियाली की रौनक खास तौर से लोगों को लुभा रही है। बहुत से लोग यहाँ अपनी शानदार तस्वीरें खिंचवाकर अपने ट्रिप को यादगार बना रहे हैं। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
10: मौसम गर्मियों का है और इस मौसम में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद की जाती है तो वो है आम, एक ऐसा फल जिसे तमाम फलों का राजा कहा जाता है। लेकिन बात अगर गुजरात के केसर की हो तो बात ही अलग है। इसका रसीला स्वाद और बेमिसाल खुशबू लोगों को बेहद पसंद है। यही वजह है कि गिर सोमनाथ में इस साल केसर आम ने नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं।

0: बेमिसाल स्वाद, लाजवाब खुशबू और रंग ऐसा कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और आमों में भी सबसे खास गिर का केसर, जिसकी अनोखी खुशबू और शाही स्वाद के आगे दुनिया का हर जायका फीका नजर आता है। लेकिन इस साल गुजरात में केसर आम की मिठास और खुशबू कुछ अलग है, क्योंकि इस साल केसर आम के स्वाद की दीवानगी ने गुजरात में वो कर दिखाया है जो आज तक नहीं हुआ। इस बार केसर आम का सीजन किसानों और आम कारोबारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। गिर सोमनाथ के तलाला आम मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ 61 दिनों तक चले सीजन में कुल लगभग 10 लाख पेटियाँ आई। ये आंकड़ा मामूली नहीं है, क्योंकि इसने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। दरअसल इस साल मौसम ने किसानों का भरपूर साथ दिया। अनुकूल मौसम की वजह से न सिर्फ पैदावार बंपर हुई, बल्कि केसर आम की क्वालिटी पर भी इसका बेहद शानदार असर हुआ, जिस वजह से बाजार में अब तक केसर आम की डिमांड बनी हुई है। हालांकि केसर आम की इस मिठास का जादू सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सात समंदर पार भी गिर के केसर ने धूम मचाई। इस सीजन में रिकॉर्ड 90 टन केसर आम का एक्सपोर्ट किया गया। यूनाइटेड किंगडम, दुबई और कनाडा जैसे देशों में बैठे आम के शौकीनों ने इस बार गिर के शाही स्वाद का जमकर लुत्फ उठाया। कहते हैं कि आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक जज्बात है। बात जब गिर के केसर आम की हो तो ये दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है। एक बार फिर गिर के केसर आम की जादुई स्वाद और इसकी खुशबू ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि लोग इस कदर इसके स्वाद के दीवाने क्यों हैं। दिलीप भाई मोड़ी, गिर सोमनाथ, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
3: What you got for me, Jack?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: आज देश और दुनिया मना रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विशाखापट्टनम में 40 नौसैनिकों ने एक साथ किया अंडर वाटर योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया संदेश। आज देश भर में होगा नीट का एग्जाम। दिल्ली में सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन, डीटीसी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। आज बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे की होगी कमिश्निंग। पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया गया पश्चिम बंग दिवस, शानदार रोशनी से जगमगाया ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज, हुगली में भी शानदार सांस्कृतिक समारोह। मेघालय के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिलोंग में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, लैथकोर पीक पर तैनात जवानों से भी मुलाकात की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर दिन नए नए कीर्तिमान रच रहा है। स्वदेशी क्षमता से ऐसे ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जिन पर चंद देशों का दबदबा रहा है। आज रण क्षेत्र में बात उन तीन ताकत की करेंगे जो सबलान से लेकर डिफेंस और अटैक तक करने में महारत रखते हैं। नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। 25 जून को बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबोन सिस्टम में नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की घोषणा की जाएगी।
1: फाइनल क्लियरेंस का सीधे तौर पर मतलब यही होता है कि सिस्टम अब पूरी तरह से रण क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार है। अब चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर उस सिस्टम की जरूरत हो। नेत्र सिस्टम को फिलहाल डीआरडीओ द्वारा विकसित कर लिया गया है, फाइनल क्लियरेंस मिल चुकी है और इसे एम्ब्रियर विमान में फिट किया गया है।
0: युद्ध में जीत अक्सर उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले, और ये काम नेत्र बाखूबी करता है। तभी तो एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को आसमान में आंख कहा जाता है। नेत्र सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है। नेत्र में स्वदेशी AESA रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगा रडार करीब 240 डिग्री इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये विशाल हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी कर सकता है। डिटेक्शन रेंज की बात की जाए तो नेत्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के खतरों को भांप सकता है। नेत्र सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता बल्कि उसे तुरंत लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है। इससे पूरी वायुसेना एक नेटवर्क के रूप में काम करती है।
2: देखिए, जो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है ये एक एरियल प्लेटफॉर्म पे इसको माउंट किया गया है जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाती है और जब इसका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है तो इसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है। और इसका जो एरिया देखता है इनिशियली जो मार्क वन है उसका 240 डिग्री कवरेज था, लेकिन इसका अब एक इम्प्रूव वर्जन आ रहा है मार्क टू जिसमें कि वो एयरबस A321 पे माउंट होगा और उसका जो कवरेज होगा 360 डिग्री होगा, यानी कि वो चारों दिशाओं में एक्यूरेसी के साथ उस चीजों को निगरानी कर सकेगा। ये तमाम जो ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म है जो डाइविंग एयरक्राफ्ट हैं या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, इन सारों को डिटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा।
0: हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण नेत्र लंबे समय तक मिशन पर बना रह सकता है जिससे सीमा क्षेत्रों की लगातार निगरानी संभव है। दरअसल भारत को एक साथ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती है। ऐसे में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जमीनी रडारों की सीमाओं को दूर करते हैं और सीमा के पार तक निगरानी करने में मदद करते हैं।
1: एबॉक्स प्लेटफॉर्म दरअसल शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाके काम करता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ता है जिस वजह से ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी भी मिसाइल, विमान या फिर जमीन पर ही जिससे रडार इंटरसेप्ट नहीं कर सकता उसकी जानकारी जुटाने में काफी मददगार साबित होता है।
0: एवॉक्स एक बड़े इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एक कम्बाइंड एयर डिफेंस बना सकता है। साथ ही ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर भी नजर रख सकता है।
2: देखिए, सबसे पहली बात है अगर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है एवॉक्स है तो वो आज की डेट में एरियल प्लेटफॉर्म है, वो हवा में जाता है, उसका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, उसका एरिया कवरेज बढ़ जाता है, और साथ में वो दूर तक एट द अर्ली स्टेज किसी भी मिसाइल, रॉकेट या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेता है। ग्राउंड बेस्ड स्टेशन भी यही चीजें करते हैं, लेकिन उसमें बहुत तरीके की क्लटरिंग होती है। अगर ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उसका जो क्लटर है उसको डी क्लटर करने की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों से एवॉक्स जो है वो उसमें इसका कम असर होता है।
0: एवॉक सिस्टम लंबी दूरी के रडार से लैस होता है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक की जानकारी जुटा लेता है, और ये दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में ताजा जानकारी मुहैया कराता है।
1: अगर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की तलवार है तो नेत्र उसकी आंख है। बिना नेत्र के रण क्षेत्र में उतरना बहुत मुश्किल है और युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर अगर हम आधुनिक युद्ध की बात करें, जिसके लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है, और उसमें नेत्र की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि न सिर्फ ये आंख बल्कि दिमाग से भी रण क्षेत्र में उतरता है।
0: फिलहाल भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फाल्कन एबॉक्स और 2 एम्ब्रर नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। इनमें से ज्यादातर एबॉक्स का संचालन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ही किया जाता है।
1: रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि। दरअसल भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली LRLACM का सफल परीक्षण किया है, और इसमें सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है।
0: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जमीन पर अटैक करने वाली एक बेहद लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। वो सबसोनिक रफ्तार से उड़ती है। ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में जाकर नीचे नहीं गिरती, बल्कि ये टेरन हगिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी ये जमीन से बिल्कुल सटकर और पहाड़ों की ओट में छिप कर रहती है। सीधे रास्ते पर जाने की बजाय टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाने की वजह से दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि मिसाइल का अंतिम टारगेट क्या है।
2: ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ये अभी रिसेंटली इसका टेस्ट फायर किया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में, और इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। इसने रेंज अचीव किया, इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम था, इसका जो गाइडेंस सिस्टम था, जो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी, और जो रेंज अचीव करना था, वो सारा मकसद अचीव हुआ। ये एक ऐसा क्रूज मिसाइल है जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये अर्थ के जो कंटूर है उसके हिसाब से फ्लाई करता है, एक लो हाइट पे हाई स्पीड के साथ जाके टारगेट को एंगेज करता है। जब कोई मिसाइल लो हाइट पे फ्लाई करता है तो उसको डिटेक्शन इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि रडार उसमें इनकेपेबल हो जाते हैं। तो लिहाजा अपने आप में ये एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के तहत हमने इसको इंडिजिनसली डेवलप किया है।
0: LRLACM को भारत की अपनी टॉमहॉक मिसाइल कहा जा रहा है। ये हवा में ही अपना रास्ता बदलने, दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करने की अद्भुत क्षमता रखती है। LRLACM मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, और ये अपने साथ करीब 400 से 450 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसे मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर, नौसेना की युद्धपोतों में लगे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल से दागा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध और हालिया ईरान संघर्ष ने दुनिया को दिखा दिया कि स्टैंड ऑफ हथियार, यानी दूर से सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें किसी भी युद्ध के रुख को बदल सकती हैं। अगर इस मिसाइल को भारत अपनी सीमाओं और फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात करता है तो चीन और पाकिस्तान के कई रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र सीधे तौर पर इसकी जद में आ जाएंगे।

0: देखिए, जितने भी हमारे स्टैंड ऑफ वेपन हैं, जिसमें कि तमाम क्रूज मिसाइल्स हैं, वो शामिल होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं जहां तक स्टैंड ऑफ वेपन का सवाल है। एक तो होता है पावर्ड फेस, जिसमें तमाम तरीके की क्रूज मिसाइल आती हैं, जिसमें अभी आपने जिसका जिक्र किया, और दूसरे मिसाइल होती है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वेपन को रिलीज किया जाता है, वो ग्लाइड करके टारगेट पे जाता है, वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर लेता है जब वो जहां पे वो रिलीज किया जाता है। तो इसके एक पावर्ड फेज होता है, एक एक ग्लाइड फेज होता है। तो जितने पावर्ड फेज है उसमें तमाम तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम का करते हैं, गाइडेंस सिस्टम काम करते हैं, और एक दूरी से, यानी कि जो दुश्मन की रेंज के बाहर से, जो उसके मीडियम रेंज मिसाइल उसके बाहर से अगर आप फायर करते हैं, तो एक आपको लॉन्च साइट की सुरक्षा मिलती है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की एक और ताकत है इसकी अचूक मारक क्षमता, और इसके पीछे भारत की सबसे आधुनिक नेविगेशन और स्वदेशी रडार सीकर तकनीक का हाथ है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करती है, इसीलिए इसे रास्ते में भटकने से बचाने और अंत में बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए मल्टीलेयर्ड गाइडेड सिस्टम से लैस किया गया है। टर्मिनल फेज के लिए इसमें अपग्रेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब यानी कि आखिरी कुछ किलोमीटर में होती है तो उसे टर्मिनल फेज कहा जाता है, और तभी इसका आरएफ सीकर एक्टिव होता है। लक्ष्य के पास पहुंचते ही सीकर रडार तरंगे छोड़ता है और दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और युद्धपोत की सटीक लाइव तस्वीरें बनाकर मिसाइल के कंप्यूटर को देता है। इसके बाद मिसाइल बिना 1 इंच भटके सीधे लक्ष्य के बीचों बीच टकरा जाती है। शुरुआती लॉन्च से लेकर टारगेट के करीब पहुंचने तक, यानी कि सफर के 90% हिस्से में मिसाइल रडार की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ती है। इसके लिए इसमें 3 स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण किया गया है। पहला है INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये मिसाइल का अपना आंतरिक दिमाग होता है जिसे बाहर से जैम नहीं किया जा सकता। मिसाइल हवा में अपने रास्ते को और सटीक करने के लिए भारत के अपने नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन सैटेलाइट नेटवर्क से सिग्नल लेती है। टेरकॉम ये सबसे अहम तकनीक है। इस सिस्टम में दुश्मन के इलाके का 3D डिजिटल मैप मिसाइल के कंप्यूटर में पहले से ही लोड कर दिया जाता है। उड़ान के दौरान मिसाइल का रडार एल्टीमीटर नीचे की जमीन को स्कैन करता है और पहले से लोड मैप से उसका मिलान करता हुआ आगे बढ़ता है, और इसी वजह से ये पहाड़ों की ओट में छिपकर उड़ जाती है। युद्ध के समय दुश्मन बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का इस्तेमाल करता है, इसीलिए स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के सीकर और नेविगेशन सिस्टम को ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से सुरक्षित किया गया है। अगर दुश्मन NAVICE या GPS के सिग्नल को ब्लॉक भी कर दे तो भी मिसाइल का स्वदेशी RF सीकर और INS सिस्टम बिना किसी बाहरी मदद के पूरी सटीकता से हमला करने में सक्षम है।
0: देखिए, जब आप मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है उसमें मोर देन वन नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें GPS है, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है, इंफ्रारेड है, थर्मल है। तो अगर इन चारों के कॉम्बिनेशन में आप ऑपरेट करते हैं तो कोई भी एक नेविगेशन सिस्टम को अगर दुश्मन जाम करता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है। लिहाजा इसलिए ये जो हमारा जो मिसाइल सिस्टम है ये पूरी तरीके से जैम प्रूफ है। एनमी इसमें इसके फ्लाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर इंटरफेयर कर सकता है तो आप ग्राउंड के से उसको कमांड देके दूसरे टारगेट पे भेज सकते हैं, लेकिन इसके जैमिंग की संभावनाएं कम है, इसीलिए इसका मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम रखा गया है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल में स्वदेशी माणिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टर्बोफैन इंजन बनाना बेहद जटिल तकनीक है और भारत ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जिससे लंबी दूरी की उड़ान में ईंधन की भारी बचत होती है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दरअसल भारत के पुराने निर्भया मिसाइल का ही एक हिस्सा है। साल 2013 में भारत ने निर्भया मिसाइल पर काम शुरू किया। इसके परीक्षण को लेकर कई राउंड्स भी हुए, लेकिन उसके बाद DRDO ने इसमें स्वदेशी माणिक सिस्टम को अटैच किया और साथ ही साथ इसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया के रूप में विकसित किया। माणिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन कैसे LR LACM को पावरफुल बनाता है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। माणिक एक ट्विन स्पूल इंजन है जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं होता। इसे सिंगल यूज या एक्सपेंडेबल इंजन के रूप में डिजाइन किया गया है। थ्रस्ट और शक्ति क्षमता की बात की जाए तो ये 4.25 से 4.5 किलो न्यूटन की ताकत जनरेट करता है, जिसकी मदद से ये 1 टन भारी मिसाइल को 1000 किलोमीटर तक लगातार हवा में उड़ाए रखता है। मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और रडार को चालू रखने के लिए इसमें 3 केवी का इनबिल्ट अल्टरनेटर लगाया गया है। हवा में एक निश्चित ऊंचाई और रफ्तार जो कि आवाज की गति के करीब है, उस स्तर पर पहुंचने के बाद मिसाइल का बूस्टर अलग हो जाता है और हवा में ही मानक टर्बोफैन इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मिसाइल अपने पंख और इंजन के दम पर 0.7 से 0.8 मैक की रफ्तार से आगे बढ़ती है।
0: इंजन है, सबसे पहले ये एक प्रोपल्शन सिस्टम है, ये एक डिजिटल प्रोपल्शन सिस्टम है। जब हम डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम की बात करते हैं तो वो उतनी ही हीट जनरेट करता है जितना दूर आप इस मिसाइल को डायरेक्ट करते हैं। तो एक ये कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड प्रोपल्शन सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल टर्बो फैन इंजन। तो यानी कि ये जो इसका जो पहली तो इसमें एक कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, पूरा कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो प्रोपल करने के लिए उसकी एनर्जी का इस्तेमाल होता, और जब जिस एनर्जी जो ये जनरेट करता है वो 4.5 kN के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि ये गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इस इंजन को डेवलप किया है।
1: भारत इससे पहले क्रूज मिसाइलों जैसे कि निर्भय के इंजन के लिए रूस के एनपीओ सैटन 36NT पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन मणिक इंजन के आ जाने से भारत की ताकत में और इजाफा हुआ है और ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी है। यानी आने वाले समय में भारत इस इंजन के लिए किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसे सुनकर हर देशवासी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल कर ली है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, ये ऐसा भरोसा है जो भारत को हिफाजत रखने की 100% गारंटी देता है। दुश्मन चाहे कितनी भी ताकतवर मिसाइलें चला ले, कितना भी जोर आजमाइश कर ले, भारत के हवाई सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकता। ऐसा इसलिए कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को खाक में मिलाने वाला महाअस्त्र तैयार किया है, यानी एक ऐसा अभेद सुरक्षा चक्र तैयार है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मल्टी लेयर डिफेंस और समंदर में मध्यम दूरी के एंटी शिप मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। 10 और 11 जून को किए गए लगातार 3 परीक्षणों में भारत की मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया, और इसी के साथ भारत अब उन खास देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, यानी कि मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही मार गिराना है। ये मिसाइल 2000 से 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने, ट्रैक करने और हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है।
0: मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम एयर डिफेंस अम्ब्रेला ही अपने टैक्टिकल बैटलफील्ड में लगाया करते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान प्रगति की राह पे हमने हर एक VA एंड VP को, वल्नरेबल एरिया वल्नरेबल पॉइंट को, मल्टी टीयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यानी कि कोई एक सिस्टम अगर किसी मिसाइल या रॉकेट या एरियल ऑब्जेक्ट को मिस करता है तो दूसरा सिस्टम उसको पिकअप करता है। तो इस तरीके की जब हम संरचना करते हैं तो जो एरिया को हम पूरा एयर डिफेंस कवर देते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। उसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, S-400 आपके तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम जो हिंदुस्तान की आर्मी के पास है उसको डिप्लॉय किया जाता है। ये होता है मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम।
1: बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक उन्नत रक्षा नेटवर्क होता है। ये सिस्टम कई तरह की टेक्नोलॉजी के एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के जरिए काम करता है। सबसे पहले काम होता है दुश्मन की मिसाइल का पता लगाना और ट्रैक करना। इस प्रक्रिया की शुरुआत लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार से होती है जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च का पता लगाते हैं। इस सिस्टम का दूसरा चरण होता है कमांड एंड कंट्रोल। इसमें अलग अलग जगहों पर मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर और लॉन्च कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार से मिले डेटा का विश्लेषण करने और जवाबी कार्रवाई में तालमेल बिठाने के लिए ये सेंटर एक सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा होता है। अगला चरण होता है एंगेजमेंट, यानी कि मुकाबला करना। खतरे की पुष्टि होने के बाद सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइलों को एक्टिव करता है। ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन की आने वाली मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देती हैं। बीएमडी सिस्टम दो मुख्य स्तरों पर टारगेट को रोकता है, अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर।
0: देखिए, सबसे पहले जब भी कोई एरियल ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है, दुश्मन ने अगर मिसाइल फायर किया तो सबसे पहले उसको हमें डिटेक्ट करना है कहाँ से लॉन्च किया गया। जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे उतना ज्यादा आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा। जैसे आप उसको डिटेक्ट करते हैं उसके लिए आपके पास तमाम रडार हैं, एयर डिफेंस के सिस्टम है, फिर आप उसको ट्रैक करते हैं कि अगर आपने लॉन्च किया फ्लाइट उसने बदला दूसरे इलाके में गया तो आप किस तरीके से उसको ट्रैक करते हैं। जब उसका फ्लाइट पाथ डिटरमिन हो जाता है या अर्ली डिटेक्शन हो जाता है आप उसको लॉक करते हैं। फिर आप अपना जो आपका जो मिसाइल सिस्टम है जिससे आप उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो उस मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ये एक्सप्लोसिव बेस्ड भी हो सकता है, एक काइनेटिक भी हो सकता है। काइनेटिक का मतलब यह कि वो स्पीड से जाके इस एरियल ऑब्जेक्ट से टकराएगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा।
1: अगर पहली इंटरसेप्टर मिसाइल लक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाती तो दूसरी परत एक्टिव हो जाती है, यानी एक डिफेंस लेयर फेल हो जाए तब भी दूसरी लेयर मौजूद रहती है। मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दरअसल अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग इंटरसेप्शन के हिसाब से काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये दूर से आ रही मिसाइल को परख लेता है और अगर कहीं एक निशाना चूक जाता है तो ये कई और मौके भी देता है। रक्षा जानकार यही मानते हैं कि हर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सटीक नहीं होता, 100% उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं दुश्मन को पहले ही रोक सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक रणनीतिक सुरक्षा कवच है जिसका मकसद बड़े शहरों और परमाणु ठिकानों को लंबी दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों से बचाना है। इसके रडार बेहद ताकतवर होते हैं जो 1500 से 2500 किलोमीटर दूर से ही खतरों की पहचान कर लेते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं। भारत का बीएमडी एक दो स्तरीय सिस्टम है जिसमें एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 100 किलोमीटर तक और एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 80 किलोमीटर तक होता है। वहीं पारंपरिक सिस्टम कम ऊंचाई पर काम करते हैं। S-400 सिस्टम 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट को रोकता है जबकि आकाश 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-400 या आकाश जैसे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के बीच मुख्य अंतर उनके टारगेट स्पेशलाइजेशन, इंटरसेप्शन की ऊंचाई और रणनीतिक उद्देश्यों में होता है। बीएमडी सिस्टम खासतौर पर उन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन है जो बेहद तेज रफ्तार जैसे कि Mach 5 या उससे ज्यादा और फिक्स ट्रेजेक्टरी पर चलती है। वहीं क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन से निपटने के लिए भारत का संपूर्ण एयर डिफेंस ग्रिड कई दूसरी परतों को भी एकीकृत करता है। भारत के पास लंबी दूरी यानी कि Tier 1 के लिए रूस से हासिल S-400 ट्राइम्फ सिस्टम है। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर है। ये दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइल को टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट कर लेता है। मध्यम दूरी यानी कि Tier 2 के लिए भारत और इसराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित Barak 8 मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। वहीं कम दूरी यानी कि Tier 3 के लिए स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है जो री एंट्री या नजदीकी हवाई खतरों को नाकाम कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इन सिस्टम को दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को रोकने के लिए और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 2028 तक अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए इस्तेमाल होंगी LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें। फिलहाल भारत के पास रूस से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ देश में ही बनी पृथ्वी और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो किसी भी हवाई खतरे को आसानी से राख में मिला सकते हैं। रणक्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: 1999 का करगिल युद्ध और देश के वीर जाबाजों की वो जाबाजी जिसने तोलोलिंग की पहाड़ियों पर तिरंगा फहराकर युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल दिया था। करगिल विजय की इसी ऐतिहासिक शौर्य गाथा और देश के अमर शहीदों को नमन करने के लिए भारतीय सेना ने एक बेहद खास और जज्बे से भरे ट्रेकिंग अभियान की शुरुआत की है। सेना की फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन ने करगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐतिहासिक तोलोलिंग पीक के लिए एक स्मारक अभियान का आयोजन किया, जिसे 19 जून को द्रास में मौजूद करगिल वॉर मेमोरियल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अभियान की सबसे खास और भावुक कर देने वाली बात यह है कि इस ट्रैकिंग टीम में उन्हीं सैन्य टुकड़ियों के जवान शामिल हैं जिन्होंने 1999 की बैटल ऑफ तोलोलिंग में दुश्मन को मात देते हुए इस चोटी को दोबारा अपने कब्जे में लिया था। चोटी पर पहुंचकर जाबाजों ने एक बार फिर से पूरी शान से भारत का तिरंगा लहराया और अपने शहीद साथियों की वीरता को नमन किया। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप कर वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया है। मैच के हीरो रहे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 110 रन बनाए। यशस्वी ने अपने वनडे करियर का ये दूसरा शतक लगाया तो रोहित इसके अलावा मैच में प्रसिद्ध विकेट छटके और चेपॉक में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से मात दी। भारत को जीत के लिए 219 रनों का टारगेट मिला था जिसे उसने 28.4 ओवर्स में ही हासिल कर लिया।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
3: We hope you're loving TuneIn.

0: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: आज देश और दुनिया मना रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विशाखापट्टनम में 40 नौसैनिकों ने एक साथ किया अंडर वाटर योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया संदेश। आज देश भर में होगा नीट का ये एग्जाम। दिल्ली में सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन, डीटीसी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। आज बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे की होगी कमिश्निंग। पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया गया पश्चिम बंग दिवस, शानदार रोशनी से जगमगाया ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज, हुगली में भी शानदार सांस्कृतिक समारोह। मेघालय के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिलोंग में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, लैथकोर पीक पर तैनात जवानों से भी मुलाकात की।

सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो जब एक छोटी बच्ची थी तो लोकल अखबार के किसी पन्ने पर अपना नाम छपने का ख्वाब संजोती थी। वही नन्नी बच्ची आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शान के साथ अपना नाम दर्ज करा चुकी है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट की शान स्मृति मंधाना है। जी हाँ, स्मृति, वही स्मृति मंधाना जो बचपन में अपने क्रिकेटर भाई के परफॉर्मेंस को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उन कतरनों को दिन में कई कई बार पढ़ती थी। तब नन्ही स्मृति के मन में एक ही ख्वाब होता था कि मेरे भी उपलब्धियों की चर्चा अखबार में हो। वक्त का मिजाज देखिए कि लोकल अखबार में छपने की हसरत रखने वाली स्मृति आज अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रही है।

वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली एक धुंधली तस्वीर की तासीर बड़ी ही अजीब है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। महाराष्ट्र के सांगली में गालिबन 6-7 साल की एक मासूम बच्ची अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती है और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती है। तब उस निश्चल बच्ची के मन में एक ही तसव्वुर होता है, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। वक्त का अनोखा खेल देखिए कि आज 29 साल की हो चुकी उस बच्ची को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली

0: प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया है। अखबार की कतरन सहेजने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की शानदार और जानदार बल्लेबाज स्मृति मंधाना है। ख्वाब के सागर में गोते लगाने का शौक भला किसे नहीं होता, पर अपने ही ख्वाब के लिए जरूरी मेहनत की कसौटी पर कोई विरला ही खरा उतरता है। कमाल यह है कि स्मृति मंधाना अपनी मेहनत, लगन और चट्टानी इच्छा शक्ति के दम पर आज अपने ही ख्वाब के दायरे को चीरकर काफी आगे निकल चुकी हैं। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत आज टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन चुकी है। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही है। टाइम मैगजीन के एडिटर एट लार्ज चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल करने के कारणों को गिनाते हुए जो बातें लिखी हैं, उसमें स्मृति मंधाना की दमदार शख्सियत की मुख्तसर सी झलक दिख जाती है। चार्ली कैंपबेल ने लिखा है, स्मृति मंधाना लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। मुंबई में जन्मी बाएं हाथ की ओपनिंग बल्लेबाज घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। साथ ही क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। इतना ही नहीं, 17 शतकों के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल महिला क्रिकेट शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से उनके नाम है। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना के रिकॉर्ड्स की जो हल्की सी झांकी प्रस्तुत की है, उसकी पूरी और विराट तस्वीर हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले बताते हैं स्मृति के क्रिकेटर बनने की रोचक और मर्मस्पर्शी दास्तान। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मे स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधवनगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो बढ़ नहीं पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल के स्मृति का मन बल्ला पकड़ने के लिए मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को जब भी मौका मिलता तो वो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी तो पापा को डर लगता था कि you know, मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा करते थे। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन्स फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में ना जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का जुनून पैदा हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार की उसी स्मृति का नाम आज अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स, स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज, आयरलैंड के गोल्फर रोरी मैक्लोरॉय और फ्रांस के बास्केटबॉल प्लेयर विक्टर वेम्बान्यामा जैसे स्पोर्ट्स दिग्गजों के साथ टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और चीवट की महिला हैं। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का इंटीरियर क्रिसुलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और जून 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को ये पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी, तब मैं इंजर्ड हुई थी एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द एनसीएस स्टाफ बीसीसीआई स्टाफ वर रियली हेल्पफुल एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो विल ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये है कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड स्पिन बन गई। विमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद में शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया है। स्मृति अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं। स्मृति और ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग के नाम पर 17-17 शतक दर्ज है। स्मृति मंधाना विमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा 15 शतक लगाने का कीर्तिमान भी स्मृति मंधाना के नाम ही दर्ज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में विमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है। साफ है कि दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस टाइम मैगजीन ने स्मृति को 100 सबसे प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शुमार किया है, तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती। इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती है। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। विमेंस प्रीमियर लीग में अपनी कप्तानी में स्मृति मंधाना 2 बार आरसीबी को चैंपियन बना चुकी है। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवत गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवत गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवत गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से पल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देखकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवत गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवत गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज़ देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
4: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier, I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you. And you just have to... put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood Sangli se Smriti ka bahut gehra lagao hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
4: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli mein Smriti ka pura bachpan bitai, yahan tak ki Sangli ke Chintaman Rao College of Commerce se hi unhone apna BCom complete kiya. Kamal ye hai ki Sangli mein rehte hue mahaj 9 saal ki umr mein Smriti ka selection महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: जून में पड़ रही तेज गर्मी से बचने के लिए मैदानी इलाकों से लोग इन दिनों पहाड़ों की वादियों का रुख कर रहे हैं, और इसी कड़ी में इन दिनों जम्मू कश्मीर का मशहूर हिल स्टेशन पटनी टॉप भी सैलानियों का शानदार ठिकाना बना हुआ है। वहां की खूबसूरत आबोहवा और मनमोहक माहौल लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
7: धूप खिली है लेकिन मौसम सुहावना है, तो सैर सपाटे के लिए बड़ी तादाद में लोगों का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के मशहूर हिल रिजॉर्ट पत्नी टॉप की है। यहाँ पर कई लोग हरी भरी धूप पर बैठकर सुस्ताते हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो कहीं तरह तरह के खेलों में हिस्सा लेकर अपना समय गुजार रहे हैं। खास तौर से बच्चों के लिए यहाँ पर तरह तरह के खेलों और एक्टिविटीज का इंतजाम है, लिहाजा गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए माहौल बेहद माकूल है। इसीलिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि छुट्टियाँ मजे में गुजार सके।
8: मैं पूरी अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और हमें समर वेकेशन पड़ी हैं। हम यहाँ पत्नी टॉप में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने फोटोज क्लिक किए, बहुत ज़्यादा गेम्स खेले, जैसे कि हमने हॉर्स राइडिंग की, फुटबॉल खेला यहाँ पे, हमने बैडमिंटन खेला, और यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है। जैसे हम कश्मीर में आते हैं, हमें इतना अच्छा लगता है, वैसे हमें लगा। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन पेड़ है, इतना हवा चल रही है ठंडी, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया।
9: मेरा नाम आरवी संभ्याल है और मैं सांबा से आई हूँ, और मेरी समर वेकेशन चल रही है, इसीलिए मैं इधर पटनी टॉप आई थी। मैंने जॉर्बिंग बॉल में राइड की, ट्रैम्पलिन पे जंप किया, हॉर्स राइडिंग की, वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, सीनरी बहुत अच्छी है।
10: उधमपुर से आया, समर वेकेशन की स्कूल में छुट्टियाँ पड़ी है तो हम यहाँ पटनी टॉप में आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत बहुत ही ठंडा मौसम है, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हमने बहुत मजे किए यहाँ पे। हॉर्स राइडिंग की, बहुत खुशी है, बहुत मजा आया।
11: यहाँ पर बहुत अच्छा कूल वेदर है, हमने हॉर्स राइडिंग की, बोटिंग की, जंपिंग की, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छे अच्छे मतलब की व्यूज हैं, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज खींच सकते हैं, बहुत मजा आ रहा है हमें। यहाँ पर बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटी भी है।
7: पटनी टॉप का इलाका इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है, तो यहाँ टूरिज्म के कारोबारों से जुड़े लोगों को भी काफी फायदा हो रहा है। लोगों की आवाजाही बढ़ने से कामकाज काफी अच्छा चल रहा है, तो इनके चेहरे भी खिले हैं।
12: मैं यहाँ पे पटनी टॉप में एडवेंचर का काम करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो शूटिंग है, हमारे पास आर्चर है, इवन की गॉगल्स भी ले सकते हो आप। और आज यहाँ पे बहुत चहल पहल है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां पड़ी है, वीकेंड पे आ रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल सर, जरूर काम थोड़ा बहुत हिला है बड़ी देर के बाद, थोड़ा सा हम भी खुश हैं क्योंकि हमारा रोजगार भी थोड़ा सा बढ़ रहा है आगे की ओर, और पर्यटकों के आने से हमें भी खुशी हो रही है और सिस्टम सही चल रहा है।
7: पटनी टॉप में इन दिनों बर्फबारी नहीं हो रही, लिहाजा ना बहुत ज्यादा ठंड है और ना ही गर्मी की तपिश का एहसास हो रहा है। लिहाजा आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से लेकर दूर दूर तक से सैलानी यहाँ मनमोहक माहौल का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ की वादियों में हरियाली की रौनक खास तौर से लोगों को लुभा रही है। बहुत से लोग यहाँ अपनी शानदार तस्वीरें खिंचवाकर अपने ट्रिप को यादगार बना रहे हैं। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: मौसम गर्मियों का है और इस मौसम में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद की जाती है तो वो है आम, एक ऐसा फल जिसे तमाम फलों का राजा कहा जाता है। लेकिन बात अगर गुजरात के केसर की हो तो बात ही अलग है। इसका रसीला स्वाद और बेमिसाल खुशबू लोगों को बेहद पसंद है। यही वजह है कि गिर सोमनाथ में इस साल केसर आम ने नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं।

0: बेमिसाल स्वाद, लाजवाब खुशबू और रंग ऐसा कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और आमों में भी सबसे खास गिर का केसर, जिसकी अनोखी खुशबू और शाही स्वाद के आगे दुनिया का हर जायका फीका नजर आता है। लेकिन इस साल गुजरात में केसर आम की मिठास और खुशबू कुछ अलग है, क्योंकि इस साल केसर आम के स्वाद की दीवानगी ने गुजरात में वो कर दिखाया है जो आज तक नहीं हुआ। इस बार केसर आम का सीजन किसानों और आम कारोबारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। गिर सोमनाथ के तलाला आम मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ 61 दिनों तक चले सीजन में कुल लगभग 10 लाख पेटियाँ आईं। ये आंकड़ा मामूली नहीं है, क्योंकि इसने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। दरअसल इस साल मौसम ने किसानों का भरपूर साथ दिया। अनुकूल मौसम दरअसल इस साल मौसम ने किसानों का भरपूर साथ दिया। अनुकूल मौसम की वजह से न सिर्फ पैदावार बंपर हुई, बल्कि केसर आम की क्वालिटी पर भी इसका बेहद शानदार असर हुआ, जिस वजह से बाजार में अब तक केसर आम की डिमांड बनी हुई है। हालांकि केसर आम की इस मिठास का जादू सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सात समंदर पार भी गिर के केसर ने धूम मचाई। इस सीजन में रिकॉर्ड 90 टन केसर आम का एक्सपोर्ट किया गया। यूनाइटेड किंगडम, दुबई और कनाडा जैसे देशों में बैठे आम के शौकीनों ने इस बार गिर के शाही स्वाद का जमकर लुत्फ उठाया। कहते हैं कि आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक जज्बात है। बात जब गिर के केसर आम की हो तो ये दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है। एक बार फिर गिर के केसर आम की जादुई स्वाद और इसकी खुशबू ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि लोग इस कदर इसके स्वाद के दीवाने क्यों हैं। दिलीप भाई मोड़ी, गिर सोमनाथ, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
3: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
4: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
5: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
4: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
6: Williams keeps it. First down. Touchdown.
4: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: आज देश और दुनिया मना रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विशाखापट्टनम में 44 नौ सैनिकों ने एक साथ किया अंडर वाटर योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया संदेश। आज देश भर में होगा नीट का ये एग्जाम। दिल्ली में सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन, डीटीसी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। आज बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे की होगी कमिश्निंग।
7: पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया गया पश्चिम बंग दिवस। शानदार रोशनी से जगमगाया ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज। हुगली में भी शानदार सांस्कृतिक समारोह। मेघालय के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शिलोंग में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा। लैथकोर पीक पर तैनात जवानों से भी मुलाकात की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर दिन नए नए कीर्तिमान रच रहा है। स्वदेशी क्षमता से ऐसे ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जिन पर चंद देशों का दबदबा रहा है। आज रण क्षेत्र में बात उन तीन ताकत की करेंगे जो सबलान से लेकर डिफेंस और अटैक तक करने में महारत रखते हैं। नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। 25 जून को बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबोन सिस्टम में नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की घोषणा की जाएगी।
1: फाइनल क्लियरेंस का सीधे तौर पर मतलब यही होता है कि सिस्टम अब पूरी तरह से रणक्षेत्र में उतरने के लिए तैयार है। अब चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर उस सिस्टम की जरूरत हो। नेत्र सिस्टम को फिलहाल डीआरडीओ द्वारा विकसित कर लिया गया है, फाइनल क्लियरेंस मिल चुकी है और इसे एम्ब्रियर विमान में फिट किया गया है।
0: युद्ध में जीत अक्सर उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले, और ये काम नेत्र बाखूबी करता है। तभी तो एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को आसमान में आंख कहा जाता है। नेत्र सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है, कहा जाता है। नेत्र सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है। नेत्र में स्वदेशी AESA रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगा रडार करीब 240 डिग्री इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये विशाल हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी कर सकता है। डिटेक्शन रेंज की बात की जाए तो नेत्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के खतरों को भांप सकता है। नेत्र सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता बल्कि उसे तुरंत लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है। इससे पूरी वायुसेना एक नेटवर्क के रूप में काम करती है।
2: देखिए, जो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है ये एक एरियल प्लेटफॉर्म पे इसको माउंट किया गया है जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाती है और जब इसका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है तो इसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है। और इसका जो एरिया देखता है इनिशियली जो मार्क वन है उसका 240 डिग्री कवरेज था, लेकिन इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन आ रहा है मार्क टू जिसमें कि वो एयरबस A321 पे माउंट होगा और उसका जो कवरेज होगा 360 डिग्री होगा, यानी कि वो चारों दिशाओं में एक्यूरेसी के साथ उस चीजों को निगरानी कर सकेगा। ये तमाम जो ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म है, जो डाइविंग एयरक्राफ्ट हैं या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, इन सारों को डिटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा।
0: हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण नेत्र लंबे समय तक मिशन पर बना रह सकता है जिससे सीमा क्षेत्रों की लगातार निगरानी संभव है। दरअसल भारत को एक साथ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती है। ऐसे में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जमीनी रडारों की सीमाओं को दूर करते हैं और सीमा के पार तक निगरानी करने में मदद करते हैं।
1: एबॉक्स प्लेटफॉर्म दरअसल शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाके काम करता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ता है जिस वजह से ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी भी मिसाइल, विमान या फिर जमीन पर ही जिससे रडार इंटरसेप्ट नहीं कर सकता उसकी जानकारी जुटाने में काफी मददगार साबित होता है।
0: एवॉक्स एक बड़े इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एक कम्बाइंड एयर डिफेंस बना सकता है। साथ ही ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर भी नजर रख सकता है।
2: देखिए, सबसे पहली बात है अगर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है, एवॉक्स है, तो वो आज की डेट में एरियल प्लेटफॉर्म है। वो हवा में जाता है, उसका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, उसका एरिया कवरेज बढ़ जाता है और साथ में वो दूर तक एट द अर्ली स्टेज किसी भी मिसाइल, रॉकेट या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेता है। ग्राउंड बेस स्टेशन भी यही चीजें करते हैं, लेकिन उसमें बहुत तरीके की क्लटरिंग होती है। अगर ग्राउंड बेस स्टेशन है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी है, उसका जो क्लटर है उसको डी क्लटर करने की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों से एवॉक्स जो है वो उसमें इसका कम असर होता है।
0: एवॉक सिस्टम लंबी दूरी के रडार से लैस होता है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक की जानकारी जुटा लेता है और ये दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में ताजा जानकारी मुहैया कराता है।
1: अगर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की तलवार है तो नेत्र उसकी आंख है। बिना नेत्र के रण क्षेत्र में उतरना बहुत मुश्किल है और युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है। खासतौर पर अगर हम आधुनिक युद्ध की बात करें, जिसके लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है, और उसमें नेत्र की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि न सिर्फ ये आंख बल्कि दिमाग से भी रण क्षेत्र में उतरता है।
0: फिलहाल भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फाल्कन एवॉक्स और 2 एम्ब्रर नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। इनमें से ज्यादातर एवॉक्स का संचालन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ही किया जाता है।
1: रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि। दरअसल भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली LRLACM का सफल परीक्षण किया है और इसमें सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है।
0: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जमीन पर अटैक करने वाली एक बेहद लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। वो सबसोनिक रफ्तार से उड़ती है। ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में जाकर नीचे नहीं गिरती, बल्कि ये टेरन हगिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी ये जमीन से बिल्कुल सट कर और पहाड़ों की ओट में छिप कर रहती है। सीधे रास्ते पर जाने की बजाय टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाने की वजह से दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि मिसाइल का अंतिम टारगेट क्या है।
2: ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ये अभी रिसेंटली इसका टेस्ट फायर किया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में, और इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। इसने रेंज अचीव किया। इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम था, इसका जो गाइडेंस सिस्टम था, जो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी और जो रेंज अचीव करना था, वो सारा मकसद अचीव हुआ। ये एक ऐसा क्रूज मिसाइल है जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये अर्थ के जो कंटूर है उसके हिसाब से फ्लाई करता है। एक लो हाइट पे हाई स्पीड के साथ जाके टारगेट को एंगेज करता है। जब कोई मिसाइल लो हाइट पे फ्लाई करता है तो उसको डिटेक्शन इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि रडार उसमें इनकेपेबल हो जाते हैं। तो लिहाजा अपने आप में ये एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के तहत हमने इसको इंडिजिनसली डेवलप किया है।
0: LRLACM को भारत की अपनी टॉमहॉक मिसाइल कहा जा रहा है। ये हवा में ही अपना रास्ता बदलने, दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करने की अद्भुत क्षमता रखती है। LRLACM मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये अपने साथ करीब 400 से 450 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसे मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर, नौसेना की युद्धपोतों में लगे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल से दागा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध और हालिया ईरान संघर्ष ने दुनिया को दिखा दिया कि स्टैंड ऑफ हथियार यानी दूर से सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें किसी भी युद्ध के रुख को बदल सकती हैं। अगर इस मिसाइल को भारत अपनी सीमाओं और फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात करता है तो चीन और पाकिस्तान के कई रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र सीधे तौर पर इसकी जद में आ जाएंगे।

0: देखिए, जितने भी हमारे स्टैंड ऑफ वेपन हैं, जिसमें कि तमाम क्रूज मिसाइल्स हैं, वो शामिल होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं जहां तक स्टैंड ऑफ वेपन का सवाल है। एक तो होता है पावर्ड फेस, जिसमें तमाम तरीके की क्रूज मिसाइल आती हैं, जिसमें अभी आपने जिसका जिक्र किया, और दूसरे मिसाइल होती है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वेपन को रिलीज किया जाता है, वो ग्लाइड करके टारगेट पे जाता है, वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर लेता है जब वो जहां पे वो रिलीज किया जाता है। तो इसके एक पावर्ड फेज होता है, एक एक ग्लाइड फेज होता है। तो जितने पावर्ड फेज है उसमें तमाम तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम का करते हैं, गाइडेंस सिस्टम काम करते हैं, और एक दूरी से, यानी कि जो दुश्मन की रेंज के बाहर से, जो उसके मीडियम रेंज मिसाइल उसके बाहर से अगर आप फायर करते हैं, तो एक आपको लॉन्च साइट की सुरक्षा मिलती है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की एक और ताकत है इसकी अचूक मारक क्षमता, और इसके पीछे भारत की सबसे आधुनिक नेविगेशन और स्वदेशी रडार सीकर तकनीक का हाथ है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करती है, इसीलिए इसे रास्ते में भटकने से बचाने और अंत में बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए मल्टीलेयर्ड गाइडेड सिस्टम से लैस किया गया है। टर्मिनल फेज के लिए इसमें अपग्रेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब यानी कि आखिरी कुछ किलोमीटर में होती है तो उसे टर्मिनल फेज कहा जाता है, और तभी इसका आरएफ सीकर एक्टिव होता है। लक्ष्य के पास पहुंचते ही सीकर रडार तरंगे छोड़ता है और दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और युद्धपोत की सटीक लाइव तस्वीरें बनाकर मिसाइल के कंप्यूटर को देता है। इसके बाद मिसाइल बिना एक इंच भटके सीधे लक्ष्य के बीचों बीच टकरा जाती है। शुरुआती लॉन्च से लेकर टारगेट के करीब पहुंचने तक, यानी कि सफर के 90% हिस्से में मिसाइल रडार की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ती है। इसके लिए इसमें 3 स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण किया गया है। पहला है INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये मिसाइल का अपना आंतरिक दिमाग होता है जिसे बाहर से जैम नहीं किया जा सकता। मिसाइल हवा में अपने रास्ते को और सटीक करने के लिए भारत के अपने नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन सैटेलाइट नेटवर्क से सिग्नल लेती है। टेरकॉम ये सबसे अहम तकनीक है। इस सिस्टम में दुश्मन के इलाके का 3D डिजिटल मैप मिसाइल के कंप्यूटर में पहले से ही लोड कर दिया जाता है। उड़ान के दौरान मिसाइल का रडार एल्टीमीटर नीचे की जमीन को स्कैन करता है और पहले से लोड मैप से उसका मिलान करता हुआ आगे बढ़ता है, और इसी वजह से ये पहाड़ों की ओट में छिपकर उड़ जाती है। युद्ध के समय दुश्मन बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का इस्तेमाल करता है, इसीलिए स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के सीकर और नेविगेशन सिस्टम को ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से सुरक्षित किया गया है। अगर दुश्मन NAVICE या GPS के सिग्नल को ब्लॉक भी कर दे तो भी मिसाइल का स्वदेशी RF सीकर और INS सिस्टम बिना किसी बाहरी मदद के पूरी सटीकता से हमला करने में सक्षम है।
0: देखिए, जब आप मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है उसमें मोर देन वन नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें GPS है, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है, इंफ्रारेड है, थर्मल है। तो अगर इन चारों के कॉम्बिनेशन में आप ऑपरेट करते हैं तो कोई भी एक नेविगेशन सिस्टम को अगर दुश्मन जाम करता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है। लिहाजा इसलिए ये जो हमारा जो मिसाइल सिस्टम है ये पूरी तरीके से जैम प्रूफ है। एनमी इसमें इसके फ्लाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर इंटरफेयर कर सकता है तो आप ग्राउंड के से उसको कमांड देके दूसरे टारगेट पे भेज सकते हैं, लेकिन इसके जैमिंग की संभावनाएं कम है, इसीलिए इसका मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम रखा गया है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल में स्वदेशी मैनिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टर्बोफैन इंजन बनाना बेहद जटिल तकनीक है और भारत ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जिससे लंबी दूरी की उड़ान में ईंधन की भारी बचत होती है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दरअसल भारत के पुराने निर्भया मिसाइल का ही एक हिस्सा है। साल 2013 में भारत ने निर्भया मिसाइल पर काम शुरू किया। इसके परीक्षण को लेकर कई राउंड्स भी हुए, लेकिन उसके बाद DRDO ने इसमें स्वदेशी मणिक सिस्टम को अटैच किया और साथ ही साथ इसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया के रूप में विकसित किया। मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन कैसे LR LACM को पावरफुल बनाता है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। मानिक एक ट्विन स्पूल इंजन है जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं होता। इसे सिंगल यूज या एक्सपेंडेबल इंजन के रूप में डिजाइन किया गया है। थ्रस्ट और शक्ति क्षमता की बात की जाए तो ये 4.25 से 4.5 किलो न्यूटन की ताकत जनरेट करता है, जिसकी मदद से ये 1 टन भारी मिसाइल को 1000 किलोमीटर तक लगातार हवा में उड़ाए रखता है। मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और रडार को चालू रखने के लिए इसमें 3 केवी का इनबिल्ट अल्टरनेटर लगाया गया है। हवा में एक निश्चित ऊंचाई और रफ्तार जो कि आवाज की गति के करीब है, उस स्तर पर पहुंचने के बाद मिसाइल का बूस्टर अलग हो जाता है और हवा में ही मानक टर्बोफैन इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मिसाइल अपने पंख और इंजन के दम पर 0.7 से 0.8 मैक की रफ्तार से आगे बढ़ती है।
0: इंजन है, सबसे पहले ये एक प्रोपल्शन सिस्टम है, ये एक डिजिटल प्रोपल्शन सिस्टम है। जब हम डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम की बात करते हैं तो वो उतनी ही हीट जनरेट करता है जितना दूर आप इस मिसाइल को डायरेक्ट करते हैं। तो एक ये एक कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड प्रोपल्शन सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल टर्बो फैन इंजन। तो यानी कि ये जो इसका जो पहली तो इसमें एक कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, पूरा कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो प्रोपल करने के लिए उसकी एनर्जी का इस्तेमाल होता, और जब जिस एनर्जी जो ये जनरेट करता है वो 4.5 kN के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि ये गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इस इंजन को डेवलप किया है।
1: भारत इससे पहले क्रूज मिसाइलों जैसे कि निर्भय के इंजन के लिए रूस के एनपीओ सैटन 36NT पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन मणिक इंजन के आ जाने से भारत की ताकत में और इजाफा हुआ है और ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी है। यानी आने वाले समय में भारत इस इंजन के लिए किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसे सुनकर हर देशवासी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल कर ली है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, ये ऐसा भरोसा है जो भारत को हिफाजत रखने की 100% गारंटी देता है। दुश्मन चाहे कितनी भी ताकतवर मिसाइलें चला ले, कितना भी जोर आजमाइश कर ले, भारत के हवाई सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकता। ऐसा इसलिए कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को खाक में मिलाने वाला महाअस्त्र तैयार किया है। यानी एक ऐसा अभेद सुरक्षा चक्र तैयार है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मल्टी लेयर डिफेंस और समंदर में मध्यम दूरी की एंटी शिप मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। 10 और 11 जून को किए गए लगातार 3 परीक्षणों में भारत की मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया, और इसी के साथ भारत अब उन खास देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, यानी कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही मार गिराना है। ये मिसाइल 2000 से 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने, ट्रैक करने और हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है।
0: मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम एयर डिफेंस अम्ब्रेला ही अपने टैक्टिकल बैटलफील्ड में लगाया करते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान प्रगति की राह पे हमने हर एक VA एंड VP को वल्नरेबल एरिया वल्नरेबल पॉइंट को मल्टी टीयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यानी कि कोई एक सिस्टम अगर किसी मिसाइल या रॉकेट या एरियल ऑब्जेक्ट को मिस करता है तो दूसरा सिस्टम उसको पिकअप करता है। तो इस तरीके की जब हम संरचना करते हैं तो जो एरिया को हम पूरा एयर डिफेंस कवर देते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। उसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, S-400 आपके तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम जो हिंदुस्तान की आर्मी के पास है उसको डिप्लॉय किया जाता है। ये होता है मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम।
1: बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक उन्नत रक्षा नेटवर्क होता है। ये सिस्टम कई तरह की टेक्नोलॉजी के एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के जरिए काम करता है। सबसे पहले काम होता है दुश्मन की मिसाइल का पता लगाना और ट्रैक करना। इस प्रक्रिया की शुरुआत लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार से होती है जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च का पता लगाते हैं। इस सिस्टम का दूसरा चरण होता है कमांड एंड कंट्रोल। इसमें अलग अलग जगहों पर मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर और लॉन्च कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार से मिले डेटा का विश्लेषण करने और जवाबी कार्रवाई में तालमेल बिठाने के लिए ये सेंटर एक सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा होता है। अगला चरण होता है एंगेजमेंट, यानी कि मुकाबला करना। खतरे की पुष्टि होने के बाद सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइलों को एक्टिव करता है। ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन की आने वाली मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देती हैं। बीएमडी सिस्टम दो मुख्य स्तरों पर टारगेट को रोकता है, अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर।
0: देखिए, सबसे पहले जब भी कोई एरियल ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है, दुश्मन ने अगर मिसाइल फायर किया तो सबसे पहले उसको हमें डिटेक्ट करना है कहां से लॉन्च किया गया। जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे उतना ज्यादा आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा। जैसे आप उसको डिटेक्ट करते हैं उसके लिए आपके पास तमाम रडार हैं, एयर डिफेंस के सिस्टम है, फिर आप उसको ट्रैक करते हैं कि अगर आपने लॉन्च किया फ्लाइट उसने बदला दूसरे इलाके में गया तो आप किस तरीके से उसको ट्रैक करते हैं। जब उसका फ्लाइट पाथ डिटरमिन हो जाता है या अर्ली डिटेक्शन हो जाता है आप उसको लॉक करते हैं। फिर आप अपना जो आपका जो मिसाइल सिस्टम है जिससे आप उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो उस मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ये एक्सप्लोसिव बेस्ड भी हो सकता है, एक काइनेटिक भी हो सकता है। काइनेटिक का मतलब यह कि वो स्पीड से जाके इस एरियल ऑब्जेक्ट से टकराएगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा।
1: अगर पहली इंटरसेप्टर मिसाइल लक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाती तो दूसरी परत एक्टिव हो जाती है, यानी एक डिफेंस लेयर फेल हो जाए तब भी दूसरी लेयर मौजूद रहती है। मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दरअसल अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग इंटरसेप्शन के हिसाब से काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये दूर से आ रही मिसाइल को परख लेता है और अगर कहीं एक निशाना चूक जाता है तो ये कई और मौके भी देता है। रक्षा जानकार यही मानते हैं कि हर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सटीक नहीं होता, 100% उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं दुश्मन को पहले ही रोक सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक रणनीतिक सुरक्षा कवच है जिसका मकसद बड़े शहरों और परमाणु ठिकानों को लंबी दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों से बचाना है। इसके रडार बेहद ताकतवर होते हैं जो 1500 से 2500 किलोमीटर दूर से ही खतरों की पहचान कर लेते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं। भारत का बीएमडी एक दो स्तरीय सिस्टम है जिसमें एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 100 किलोमीटर तक और एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 80 किलोमीटर तक होता है। वहीं पारंपरिक सिस्टम कम ऊंचाई पर काम करते हैं। S-400 सिस्टम 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट को रोकता है जबकि आकाश 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-400 या आकाश जैसे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के बीच मुख्य अंतर उनके टारगेट स्पेशलाइजेशन, इंटरसेप्शन की ऊंचाई और रणनीतिक उद्देश्यों में होता है। बीएमडी सिस्टम खासतौर पर उन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन है जो बेहद तेज रफ्तार जैसे कि Mach 5 या उससे ज्यादा और फिक्स ट्रेजेक्टरी पर चलती है। वहीं क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन से निपटने के लिए भारत का संपूर्ण एयर डिफेंस ग्रिड कई दूसरी परतों को भी एकीकृत करता है। भारत के पास लंबी दूरी यानी कि Tier 1 के लिए रूस से हासिल S-400 ट्राइम्फ सिस्टम है। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर है। ये दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइल को टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट कर लेता है। मध्यम दूरी यानी कि Tier 2 के लिए भारत और इसराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित Barak 8 मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। वहीं कम दूरी यानी कि Tier 3 के लिए स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है जो री एंट्री या नजदीकी हवाई खतरों को नाकाम कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इन सिस्टम को दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को रोकने के लिए और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 2028 तक अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए इस्तेमाल होंगी LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें। फिलहाल भारत के पास रूस से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ देश में ही बनी पृथ्वी और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो किसी भी हवाई खतरे को आसानी से राख में मिला सकते हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
4: Jack, come home. It's supper time.
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
5: Could you play that one song with the words?
3: Jack FM, playing what we want.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: 1999 का करगिल युद्ध और देश के वीर जाबाजों की वो जाबाजी जिसने तोलोलिंग की पहाड़ियों पर तिरंगा फहराकर युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल दिया था। करगिल विजय की इसी ऐतिहासिक शौर्य गाथा और देश के अमर शहीदों को नमन करने के लिए भारतीय सेना ने एक बेहद खास और जज्बे से भरे ट्रेकिंग अभियान की शुरुआत की है। सेना की फॉरएवर इन ऑपरेशन डिविजन ने करगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐतिहासिक तोलोलिंग पीक के लिए एक स्मारक अभियान का आयोजन किया, जिसे 19 जून को द्रास में मौजूद करगिल वॉर मेमोरियल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अभियान की सबसे खास और भावुक कर देने वाली बात यह है कि इस ट्रैकिंग टीम में उन्हीं सैन्य टुकड़ियों के जवान शामिल हैं जिन्होंने 1999 की बैटल ऑफ तोलोलिंग में दुश्मन को मात देते हुए इस चोटी को दोबारा अपने कब्जे में लिया था। चोटी पर पहुंचकर जाबाजों ने एक बार फिर से पूरी शान से भारत का तिरंगा लहराया और अपने शहीद साथियों की वीरता को नमन किया। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप कर वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया से भारत का तिरंगा लहराया और अपने शहीद साथियों की वीरता को नमन किया। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप कर वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया है। मैच के हीरो रहे यशस्वी जायसवाल जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 110 रन बनाए। यशस्वी ने अपने वनडे करियर का ये दूसरा शतक लगाया तो रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में शानदार 79 रन जोड़े और इसके अलावा मैच में प्रसिद्ध कृष्ण

संख्या अंडर वाटर योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया संदेश। आज देश भर में होगा नीट का एग्जाम। दिल्ली में सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन, डीटीसी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। आज बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे की होगी कमिश्निंग। पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया गया पश्चिम बंग दिवस, शानदार रोशनी से जगमगाया ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज, हुगली में भी शानदार सांस्कृतिक समारोह। मेघालय के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिलोंग में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, लैथकोर पीक पर तैनात जवानों से भी मुलाकात की।

देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो जब एक छोटी बच्ची थी तो लोकल अखबार के किसी पन्ने पर अपना नाम छपने का ख्वाब संजोती थी। वही नन्नी बच्ची आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शान के साथ अपना नाम दर्ज करा चुकी है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट की शान स्मृति मंधाना है। जी हाँ, स्मृति, वही स्मृति मंधाना जो बचपन में अपने क्रिकेटर भाई के परफॉर्मेंस को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उन कतरनों को दिन में कई कई बार पढ़ती थी। तब नन्ही स्मृति के मन में एक ही ख्वाब होता था कि मेरे भी उपलब्धियों की चर्चा अखबार में हो। वक्त का मिजाज देखिए कि लोकल अखबार में छपने की हसरत रखने वाली स्मृति आज अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रही है।

वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली एक धुंधली तस्वीर की तासीर बड़ी ही अजीब है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। महाराष्ट्र के सांगली में गालिबन 6-7 साल की एक मासूम बच्ची अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती है और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती है। तब उस निश्चल बच्ची के मन में एक ही तसव्वुर होता है, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। वक्त का अनोखा खेल देखिए कि आज 29 साल की हो चुकी उस बच्ची को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया है। अखबार की कतरन सहेजने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की शानदार और जानदार बल्लेबाज स्मृति मंधाना है। ख्वाब के सागर में गोते लगाने का शौक भला किसे नहीं होता, पर अपने ही ख्वाब के लिए जरूरी मेहनत की कसौटी पर कोई विरला ही खरा उतरता है। कमाल यह है कि स्मृति मंधाना अपनी मेहनत, लगन

0: चट्टानी इच्छा शक्ति के दम पर आज अपने ही ख्वाब के दायरे को चीर कर काफी आगे निकल चुकी हैं। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत आज टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन चुकी है। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर एट लार्ज चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल करने के कारणों को गिनाते हुए जो बातें लिखी हैं, उसमें स्मृति मंधाना की दमदार शख्सियत की मुख्तसर सी झलक दिख जाती है। चार्ली कैंपबेल ने लिखा है, स्मृति मंधाना लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। मुंबई में जन्मी बाएं हाथ की ओपनिंग बल्लेबाज घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। साथ ही क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। इतना ही नहीं, 17 शतकों के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल महिला क्रिकेट शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से उनके नाम है। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना के रिकॉर्ड्स की जो हल्की सी झांकी प्रस्तुत की है, उसकी पूरी और विराट तस्वीर हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले बताते हैं स्मृति के क्रिकेटर बनने की रोचक और मर्मस्पर्शी दास्तान। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मे स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधवनगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो बढ़ नहीं पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल के स्मृति का मन बल्ला पकड़ने के लिए मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को जब भी मौका मिलता तो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 इयर्स की होती थी तो
0: उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को जब भी मौका मिलता तो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 इयर्स की होती थी तो पप्पा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा करते थे। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन्स फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में ना जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का जुनून पैदा हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार की उसी स्मृति का नाम आज अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स, स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज, आयरलैंड के गोल्फर रोरी मैक्लोरॉय और फ्रांस के बास्केटबॉल प्लेयर विक्टर वेम्बान्यामा जैसे स्पोर्ट्स दिग्गजों के साथ टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और चिवट की महिला हैं। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का इंटीरियर क्रिसुलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और जून 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को यह पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी, तब मैं इंजर्ड हुई थी एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द एनसीएस स्टाफ बीसीसीआई स्टाफ वर रियली हेल्पफुल एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो वील ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये है कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड क्वीन बन गई। वीमन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद में शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया है। स्मृति अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं। स्मृति और ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग के नाम पर 17-17 शतक दर्ज है। स्मृति मंधाना विमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा 15 शतक लगाने का कीर्तिमान भी स्मृति मंधाना के नाम ही दर्ज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में विमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है। साफ है कि दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस टाइम मैगजीन ने स्मृति को 100 सबसे प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शुमार किया है, तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती। इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती है। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। विमेंस प्रीमियर लीग में अपनी कप्तानी में स्मृति मंधाना 2 बार आरसीबी को चैंपियन बना चुकी है। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवत गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवत गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवत गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवत गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवत गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफकोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज़ देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
4: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier, I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood Sangli se Smriti ka bahut gehra lagao hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
4: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli mein Smriti ka pura bachpan bitai, yahan tak ki Sangli ke Chintaman Rao College of Commerce se hi unhone apna BCom complete kiya. Kamal ye hai ki Sangli mein rehte hue mahaj 9 saal ki umr mein Smriti ka selection महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Hey, never.
6: और सच्ची खबरों का वक्त रात 8।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
8: जून में पड़ रही तेज गर्मी से बचने के लिए मैदानी इलाकों से लोग इन दिनों पहाड़ों की वादियों का रुख कर रहे हैं, और इसी कड़ी में इन दिनों जम्मू कश्मीर का मशहूर हिल स्टेशन पटनी टॉप भी सैलानियों का शानदार ठिकाना बना हुआ है। वहां की खूबसूरत आबोहवा और मनमोहक माहौल लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
9: धूप खिली है लेकिन मौसम सुहावना है, तो सैर सपाटे के लिए बड़ी तादाद में लोगों का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के मशहूर हिल रिजॉर्ट पत्नी टॉप की है। यहाँ पर कई लोग हरी भरी धूप पर बैठकर सुस्ताते हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो कहीं तरह तरह के खेलों में हिस्सा लेकर अपना समय गुजार रहे हैं। खास तौर से बच्चों के लिए यहाँ पर तरह तरह के खेलों और एक्टिविटीज का इंतजाम है, लिहाजा गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए माहौल बेहद माकूल है। इसीलिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, ताकि छुट्टियाँ मजे में गुजार सके।
10: मैं पूरी अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और हमें समर वेकेशन पड़ी हैं। हम यहाँ पत्नी टॉप में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने फोटोज क्लिक किए, बहुत ज़्यादा गेम्स खेले, जैसे कि हमने हॉर्स राइडिंग की, फुटबॉल खेला यहाँ पे, हमने बैडमिंटन खेला, और यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है। जैसे हम कश्मीर में आते हैं, हमें इतना अच्छा लगता है, वैसे हमें लगा यहाँ पे ग्रीन ग्रीन पेड़ है, इतना हवा चल रही है ठंडी, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया।
11: मेरा नाम आरुही संभ्याल है और मैं सांबा से आई हूँ, और मेरी समर वेकेशन चल
10: बोल रही है, इसीलिए मैं इधर पटनीटॉप आई थी। मैंने जॉर्बिंग बॉल में राइड की, ट्रैम्पलिन पे जंप किया, हॉर्स राइडिंग की। वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, सीनरी बहुत अच्छी है।
11: उधमपुर से आया, समर वेकेशन के स्कूल में छुट्टियाँ पड़ी है तो हम यहाँ पटनीटॉप में आया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत बहुत ही ठंडा मौसम है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमने बहुत मजे किए यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग की, बहुत कुछ किया, बहुत मजा आया।
12: यहाँ पे बहुत अच्छा कूल वेदर है, हमने हॉर्स राइडिंग की, बोटिंग की, जंपिंग की, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छे अच्छे मतलब की व्यूज हैं, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज खींच सकते हैं, बहुत मजा आ रहा है हमें। यहाँ पे बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटी भी है।
9: पटनी टॉप का इलाका इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है, तो यहाँ टूरिज्म के कारोबारों से जुड़े लोगों को भी काफी फायदा हो रहा है। लोगों की आवाजाही बढ़ने से कामकाज काफी अच्छा चल रहा है, तो इनके चेहरे भी खिले हैं।
13: मैं यहाँ पे पटनी टॉप में एडवेंचर का काम करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, शूटिंग है हमारे पास, आर्चर है, इवन की गॉगल्स भी ले सकते हो आप। और आज यहाँ पे बहुत चहल पहल है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी है, वीकेंड पे आ रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल सर, जरूर काम थोड़ा बहुत हिला है बड़ी देर के बाद, थोड़ा सा हम भी खुश हैं क्योंकि हमारा रोजगार भी थोड़ा सा बढ़ रहा है आगे की ओर, और पर्यटकों के आने से हमें भी खुशी हो रही है और सिस्टम सही चल रहा है।
9: पटनी टॉप में इन दिनों बर्फबारी नहीं हो रही, लिहाजा ना बहुत ज्यादा ठंड है और ना ही गर्मी की तपिश का एहसास हो रहा है। लिहाजा आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से लेकर दूर दूर तक से सैलानी यहाँ मनमोहक माहौल का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ की वादियों में हरियाली की रौनक खास तौर से लोगों को लुभा रही है। बहुत से लोग यहाँ अपनी शानदार तस्वीरें खिंचवाकर अपने ट्रिप को यादगार बना रहे हैं। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
8: मौसम गर्मियों का है और इस मौसम में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद की जाती है तो वो है आम, एक ऐसा फल जिसे तमाम फलों का राजा कहा जाता है। लेकिन बात अगर गुजरात के केसर की हो तो बात ही अलग है। इसका रसीला स्वाद और बेमिसाल खुशबू लोगों को बेहद पसंद है। यही वजह है कि गिर सोमनाथ में इस साल केसर आम ने नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं।

0: बेमिसाल स्वाद, लाजवाब खुशबू और रंग ऐसा कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और आमों में भी सबसे खास गिर का केसर, जिसकी अनोखी खुशबू और शाही स्वाद के आगे दुनिया का हर जायका फीका नजर आता है। लेकिन इस साल गुजरात में केसर आम की मिठास और खुशबू कुछ अलग है, क्योंकि इस साल केसर आम के स्वाद की दीवानगी ने गुजरात में वो कर दिखाया है जो आज तक नहीं हुआ। इस बार केसर आम का सीजन किसानों और आम कारोबारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। गिर सोमनाथ के तलाला आम मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ 61 दिनों तक चले सीजन में कुल लगभग 10 लाख पेटियां आईं। ये आंकड़ा मामूली नहीं है, क्योंकि इसने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। दरअसल इस साल मौसम ने किसानों का भरपूर साथ दिया। अनुकूल मौसम की वजह से न सिर्फ पैदावार बंपर हुई, बल्कि केसर आम की क्वालिटी पर भी इसका बेहद शानदार असर हुआ, जिस वजह से बाजार में अब तक केसर आम की डिमांड बनी हुई है। हालांकि केसर आम की इस मिठास का जादू सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सात समंदर पार भी गिर के केसर ने धूम मचाई। इस सीजन में रिकॉर्ड 90 टन केसर आम का एक्सपोर्ट किया गया। यूनाइटेड किंगडम, दुबई और कनाडा जैसे देशों में बैठे आम के शौकीनों ने इस बार गिर के शाही स्वाद का जमकर लुत्फ उठाया। कहते हैं कि आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक जज्बात है। बात जब गिर के केसर आम की हो तो ये दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है। एक बार फिर गिर के केसर आम की जादुई स्वाद और इसकी खुशबू ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि लोग इस कदर इसके स्वाद के दीवाने क्यों हैं। दिलीप भाई मोड़ी, गिर सोमनाथ, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: आज देश और दुनिया मना रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विशाखापट्टनम में 44 नौ सैनिकों ने एक साथ किया अंडर वाटर योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया संदेश। आज देश भर में होगा नीट का ये एग्जाम। दिल्ली में सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन, डीटीसी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। आज बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे की होगी कमिश्निंग। पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया गया पश्चिम बंग दिवस, शानदार रोशनी से जगमगाया ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज, हुगली में भी शानदार सांस्कृतिक समारोह। मेघालय के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिलोंग में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, लैथकोर पीक पर तैनात जवानों से भी मुलाकात की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर दिन नए नए कीर्तिमान रच रहा है। स्वदेशी क्षमता से ऐसे ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जिन पर चंद देशों का दबदबा रहा है। आज रण क्षेत्र में बात उन तीन ताकत की करेंगे जो सबलान से लेकर डिफेंस और अटैक तक करने में महारत रखते हैं। नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। 25 जून को बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबोन सिस्टम में नेत्र एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की घोषणा की जाएगी।
1: फाइनल क्लियरेंस का सीधे तौर पर मतलब यही होता है कि सिस्टम अब पूरी तरह से रण क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार है। अब चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर उस सिस्टम की जरूरत हो। नेत्र सिस्टम को फिलहाल डीआरडीओ द्वारा विकसित कर लिया गया है, फाइनल क्लियरेंस मिल चुकी है और इसे एम्ब्रियर विमान में फिट किया गया है।
0: युद्ध में जीत अक्सर उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले, और ये काम नेत्र बाखूबी करता है। तभी तो एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को आसमान में आंख कहा जाता है। नेत्र सिस्टम का मुख्य काम भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि समुद्री सतह पर मंडराने वाले खतरों की बहुत पहले ही टोह लेना और अर्ली वार्निंग जारी करना है। नेत्र में स्वदेशी AESA रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगा रडार करीब 240 डिग्री इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये विशाल हवाई क्षेत्र की लगातार निगरानी कर सकता है। डिटेक्शन रेंज की बात की जाए तो नेत्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के खतरों को भांप सकता है। नेत्र सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता बल्कि उसे तुरंत लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है। इससे पूरी वायुसेना एक नेटवर्क के रूप में काम करती है।
2: देखिए, जो नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है ये एक एरियल प्लेटफॉर्म पे इसको माउंट किया गया है जिससे कि इसकी रेंज बढ़ जाती है और जब इसका एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है तो इसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है। और इसका जो एरिया देखता है इनिशियली जो मार्क वन है उसका 240 डिग्री कवरेज था, लेकिन इसका भी एक इम्प्रूव वर्जन आ रहा है मार्क टू जिसमें कि वो एयरबस A321 पे माउंट होगा और उसका जो कवरेज होगा 360 डिग्री होगा, यानी कि वो चारों दिशाओं में एक्यूरेसी के साथ उस चीजों को निगरानी कर सकेगा। और ये तमाम जो ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म है, जो डाइविंग एयरक्राफ्ट हैं या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, इन सारों को डिटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा।
0: हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण नेत्र लंबे समय तक मिशन पर बना रह सकता है जिससे सीमा क्षेत्रों की लगातार निगरानी संभव है। दरअसल भारत को एक साथ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती है। ऐसे में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जमीनी रडारों की सीमाओं को दूर करते हैं और सीमा के पार तक निगरानी करने में मदद करते हैं।
1: एवॉक्स प्लेटफॉर्म दरअसल शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाके काम करता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ता है जिस वजह से ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी भी मिसाइल, विमान या फिर जमीन पर ही जिससे रडार इंटरसेप्ट नहीं कर सकता उसकी जानकारी जुटाने में काफी मददगार साबित होता है।
0: एवॉक्स एक बड़े इलाके को कवर कर सकता है जिससे ये जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एक कम्बाइंड एयर डिफेंस बना सकता है। साथ ही ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर भी नजर रख सकता है।
2: देखिए, सबसे पहली बात है, अगर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है, एवॉक्स है, तो वो आपकी डेट में एरियल प्लेटफॉर्म है, वो हवा में जाता है, उसका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, उसका एरिया कवरेज बढ़ जाता है, और साथ में वो दूर तक एट द अर्ली स्टेज किसी भी मिसाइल रॉकेट या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेता है। ग्राउंड बेस्ड स्टेशन भी यही चीजें करते हैं, लेकिन उसमें बहुत तरीके की क्लटरिंग होती है। अगर ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी और उसका जो क्लटर है उसको डी क्लटर करने की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों से एवॉक्स जो है वो उसमें इसका कम असर होता है।
0: एवॉक्स सिस्टम लंबी दूरी के रडार से लैस होता है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक की जानकारी जुटा लेता है और ये दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में ताजा जानकारी मुहैया कराता है। अगर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की तलवार है तो नेत्र उसकी आंख है। बिना नेत्र के रण क्षेत्र में उतरना बहुत मुश्किल है और युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर अगर हम आधुनिक युद्ध की बात करें जिसके लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है, और उसमें नेत्र की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी क्योंकि न सिर्फ ये आंख बल्कि दिमाग से भी रण क्षेत्र में उतरता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फाल्कन एवॉक्स और 2 एम्ब्रर नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। इनमें से ज्यादातर एवॉक्स का संचालन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ही किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, दरअसल भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाली LRLACM का सफल परीक्षण किया है और इसमें सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इससे भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जमीन पर अटैक करने वाली एक बेहद लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। वो सबसोनिक रफ्तार से उड़ती है। ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में जाकर नीचे नहीं गिरती बल्कि ये टेरन हगिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी ये जमीन से बिल्कुल सट कर और पहाड़ों की ओट में छिप कर रहती है। सीधे रास्ते पर जाने की बजाय टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाने की वजह से दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि मिसाइल का अंतिम टारगेट क्या है।
2: ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ये अभी रिसेंटली इसका टेस्ट फायर किया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में, और इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। इसने रेंज अचीव किया, इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम था, इसका जो गाइडेंस सिस्टम था, जो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी और जो रेंज अचीव करना था, वो सारा मकसद अचीव हुआ। ये एक ऐसा क्रूज मिसाइल है जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि ये अर्थ के जो कंटूर है उसके हिसाब से फ्लाई करता है, एक लो हाइट पे हाई स्पीड के साथ जाके टारगेट को एंगेज करता है। जब कोई मिसाइल लो हाइट पे फ्लाई करता है तो उसको डिटेक्शन इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि रडार उसमें इनकेपेबल हो जाते हैं। तो लिहाजा अपने आप में ये एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के तहत हमने इसको इंडिजिनसली डेवलप किया है।
0: LRLACM को भारत की अपनी टॉमहॉक मिसाइल कहा जा रहा है। ये हवा में ही अपना रास्ता बदलने, दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करने की अद्भुत क्षमता रखती है। LRLACM मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये अपने साथ करीब 400 से 450 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसे मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर, नौसेना की युद्धपोतों में लगे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल से दागा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध और हालिया ईरान संघर्ष ने दुनिया को दिखा दिया कि स्टैंड ऑफ हथियार यानी दूर से सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें किसी भी युद्ध के रुख को बदल सकती हैं। अगर इस मिसाइल को भारत अपनी सीमाओं और फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात करता है तो चीन और पाकिस्तान के कई रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र सीधे तौर पर इसकी जद में आ जाएंगे।

0: देखिए, जितने भी हमारे स्टैंड ऑफ वेपन हैं, जिसमें कि तमाम क्रूज मिसाइल्स हैं, वो शामिल होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, जहां तक स्टैंड ऑफ वेपन का सवाल है। एक तो होता पावर्ड फेस, जिसमें तमाम तरीके की क्रूज मिसाइल आती हैं, जिसमें अभी आपने जिसका जिक्र किया, और दूसरे मिसाइल होती है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वेपन को रिलीज किया जाता है, वो ग्लाइड करके टारगेट पे जाता है, वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर लेता है जब वो जहां पे वो रिलीज किया जाता है। तो इसके एक पावर्ड फेज होता है, एक ग्लाइड फेज होता है। तो जितने पावर्ड फेज है उसमें तमाम तरीके के प्रोपल्शन सिस्टम का करते हैं, गाइडेंस सिस्टम काम करते हैं, और एक दूरी से, यानी कि जो दुश्मन की रेंज के बाहर से, जो उसके मीडियम रेंज मिसाइल उसके बाहर से अगर आप फायर करते हैं, तो एक आपको लॉन्च साइट की सुरक्षा मिलती है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की एक और ताकत है इसकी अचूक मारक क्षमता, और इसके पीछे भारत की सबसे आधुनिक नेविगेशन और स्वदेशी रडार सीकर तकनीक का हाथ है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करती है, इसीलिए इसे रास्ते में भटकने से बचाने और अंत में बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए मल्टीलेयर्ड गाइडेड सिस्टम से लैस किया गया है। टर्मिनल फेज के लिए इसमें अपग्रेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब यानी कि आखिरी कुछ किलोमीटर में होती है तो उसे टर्मिनल फेज कहा जाता है, और तभी इसका आरएफ सीकर एक्टिव होता है। लक्ष्य के पास पहुंचते ही सीकर रडार तरंगे छोड़ता है और दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर और युद्धपोत की सटीक लाइव तस्वीरें बनाकर मिसाइल के कंप्यूटर को देता है। इसके बाद मिसाइल बिना 1 इंच भटके सीधे लक्ष्य के बीचों बीच टकरा जाती है। शुरुआती लॉन्च से लेकर टारगेट के करीब पहुंचने तक, यानी कि सफर के 90% हिस्से में मिसाइल रडार की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ती है। इसके लिए इसमें 3 स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण किया गया है। पहला है INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये मिसाइल का अपना आंतरिक दिमाग होता है जिसे बाहर से जैम नहीं किया जा सकता। मिसाइल हवा में अपने रास्ते को और सटीक करने के लिए भारत के अपने नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन सैटेलाइट नेटवर्क से सिग्नल लेती है। टेरकॉम ये सबसे अहम तकनीक है। इस सिस्टम में दुश्मन के इलाके का 3D डिजिटल मैप मिसाइल के कंप्यूटर में पहले से ही लोड कर दिया जाता है। उड़ान के दौरान मिसाइल का रडार एल्टीमीटर नीचे की जमीन को स्कैन करता और पहले से लोड मैप से उसका मिलान करता हुआ आगे बढ़ता है, और इसी वजह से ये पहाड़ों की ओट में छिपकर उड़ जाती है। युद्ध के समय दुश्मन बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का इस्तेमाल करता है, इसीलिए स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के सीकर और नेविगेशन सिस्टम को ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से सुरक्षित किया गया है। अगर दुश्मन NAVICE या GPS के सिग्नल को ब्लॉक भी कर दे तो भी मिसाइल का स्वदेशी RF सीकर और INS सिस्टम बिना किसी बाहरी मदद के पूरी सटीकता से हमला करने में सक्षम है।
0: देखिए, जब आप मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है उसमें मोर देन वन नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें GPS है, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है, इंफ्रारेड है, थर्मल है। तो अगर इन चारों के कॉम्बिनेशन में आप ऑपरेट करते हैं तो कोई भी एक नेविगेशन सिस्टम को अगर दुश्मन जाम करता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है। लिहाजा इसलिए ये जो हमारा जो मिसाइल सिस्टम है ये पूरी तरीके से जैम प्रूफ है। एनमी इसमें इसके फ्लाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर इंटरफेयर कर सकता है तो आप ग्राउंड के से उसको कमांड देके दूसरे टारगेट पे भेज सकते हैं, लेकिन इसके जैमिंग की संभावनाएं कम है, इसीलिए इसका मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम रखा गया है।
1: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल में स्वदेशी मैनिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। टर्बोफैन इंजन बनाना बेहद जटिल तकनीक है और भारत ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जिससे लंबी दूरी की उड़ान में ईंधन की भारी बचत होती है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दरअसल भारत के पुराने निर्भया मिसाइल का ही एक हिस्सा है। साल 2013 में भारत ने निर्भया मिसाइल पर काम शुरू किया। इसके परीक्षण को लेकर कई राउंड्स भी हुए, लेकिन उसके बाद DRDO ने इसमें स्वदेशी मणिक सिस्टम को अटैच किया और साथ ही साथ इसको पूरी तरह से मेक इन इंडिया के रूप में विकसित किया। मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन कैसे LR LACM को पावरफुल बनाता है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। मानिक एक ट्विन स्पूल इंजन है जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं होता। इसे सिंगल यूज या एक्सपेंडेबल इंजन के रूप में डिजाइन किया गया है। थ्रस्ट और शक्ति क्षमता की बात की जाए तो ये 4.25 से 4.5 किलो न्यूटन की ताकत जनरेट करता है, जिसकी मदद से ये एक टन भारी मिसाइल को 1000 किलोमीटर तक लगातार हवा में उड़ाए रखता है। मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और रडार को चालू रखने के लिए इसमें 3 केवी का इनबिल्ट अल्टरनेटर लगाया गया है। हवा में एक निश्चित ऊंचाई और रफ्तार जो कि आवाज की गति के करीब है, उस स्तर पर पहुंचने के बाद मिसाइल का बूस्टर अलग हो जाता है और हवा में ही मानक टर्बोफैन इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मिसाइल अपने पंख और इंजन के दम पर 0.7 से 0.8 मैक की रफ्तार से आगे बढ़ती है।
0: इंजन है, सबसे पहले ये एक प्रोपल्शन सिस्टम है, ये एक डिजिटल प्रोपल्शन सिस्टम है। जब हम डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम की बात करते हैं तो वो उतनी ही हीट जनरेट करता है जितना दूर आप इस मिसाइल को डायरेक्ट करते हैं। तो एक ये एक कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड प्रोपल्शन सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल टर्बो फैन इंजन। तो यानी कि ये जो इसका जो पहली तो इसमें एक कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, पूरा कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है वो प्रोपल करने के लिए उसकी एनर्जी का इस्तेमाल होता, और जब जिस एनर्जी जो ये जनरेट करता है वो 4.5 KM के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि ये गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इस इंजन को डेवलप किया है।
1: भारत इससे पहले क्रूज मिसाइलों जैसे कि निर्भय के इंजन के लिए रूस के एनपीओ सैटन 36NT पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन माणिक इंजन के आ जाने से भारत की ताकत में और इजाफा हुआ है और ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी है। यानी आने वाले समय में भारत इस इंजन के लिए किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसे सुनकर हर देशवासी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने मल्टीलेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता हासिल कर ली है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, ये ऐसा भरोसा है जो भारत को हिफाजत रखने की 100% गारंटी देता है। दुश्मन चाहे कितनी भी ताकतवर मिसाइलें चला ले, कितना भी जोर आजमाइश कर ले, भारत की हवाई सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकता। ऐसा इसलिए कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को खाक में मिलाने वाला महाअस्त्र तैयार किया है, यानी एक ऐसा अभेद सुरक्षा चक्र तैयार है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। भारत ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मल्टी लेयर डिफेंस और समंदर में मध्यम दूरी के एंटी शिप मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। 10 और 11 जून को किए गए लगातार 3 परीक्षणों में भारत की मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया, और इसी के साथ भारत अब उन खास देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, यानी कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही मार गिराना है। ये मिसाइल 2000 से 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने, ट्रैक करने और हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है।
0: मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम एयर डिफेंस अम्ब्रेला ही अपने टैक्टिकल बैटलफील्ड में लगाया करते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान प्रगति की राह पे हमने हर एक VA एंड VP को, वल्नरेबल एरिया वल्नरेबल पॉइंट को, मल्टी टीयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दिया। यानी कि कोई एक सिस्टम अगर किसी मिसाइल या रॉकेट या एरियल ऑब्जेक्ट को मिस करता है तो दूसरा सिस्टम उसको पिकअप करता है। तो इस तरीके की जब हम संरचना करते हैं तो जो एरिया को हम पूरा एयर डिफेंस कवर देते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। उसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, S-400 आपके तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम जो हिंदुस्तान की आर्मी के पास है उसको डिप्लॉय किया जाता है। ये होता है मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम।
1: बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक उन्नत रक्षा नेटवर्क होता है। ये सिस्टम कई तरह की टेक्नोलॉजी के एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के जरिए काम करता है। सबसे पहले काम होता है दुश्मन की मिसाइल का पता लगाना और ट्रैक करना। इस प्रक्रिया की शुरुआत लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार से होती है जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च का पता लगाते हैं। इस सिस्टम का दूसरा चरण होता है कमांड एंड कंट्रोल। इसमें अलग अलग जगहों पर मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर और लॉन्च कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार से मिले डेटा का विश्लेषण करने और जवाबी कार्रवाई में तालमेल बिठाने के लिए ये सेंटर एक सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा होता है। अगला चरण होता है एंगेजमेंट, यानी कि मुकाबला करना। खतरे की पुष्टि होने के बाद सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइलों को एक्टिव करता है। ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन की आने वाली मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देती हैं। बीएमडी सिस्टम दो मुख्य स्तरों पर टारगेट को रोकता है, अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर और पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर।
0: देखिए, सबसे पहले जब भी कोई एरियल ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है, दुश्मन ने अगर मिसाइल फायर किया तो सबसे पहले उसको हमें डिटेक्ट करना है कहाँ से लॉन्च किया गया। जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे उतना ज्यादा आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा। जैसे आप उसको डिटेक्ट करते हैं उसके लिए आपके पास तमाम रडार हैं, एयर डिफेंस के सिस्टम हैं, फिर आप उसको ट्रैक करते हैं कि अगर आपने लॉन्च किया फ्लाइट उसने बदला दूसरे इलाके में गया तो आप किस तरीके से उसको ट्रैक करते हैं। जब उसका फ्लाइट पाथ डिटरमिन हो जाता है या अर्ली डिटेक्शन हो जाता है आप उसको लॉक करते हैं। फिर आप अपना जो आपका जो मिसाइल सिस्टम है जिससे आप उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो उस मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ये एक्सप्लोसिव बेस्ड भी हो सकता है, एक काइनेटिक भी हो सकता है। काइनेटिक का मतलब यह कि वो स्पीड से जाके इस एरियल ऑब्जेक्ट से टकराएगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा।
1: अगर पहली इंटरसेप्टर मिसाइल लक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाती तो दूसरी परत एक्टिव हो जाती है, यानी एक डिफेंस लेयर फेल हो जाए तब भी दूसरी लेयर मौजूद रहती है। मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दरअसल अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग इंटरसेप्शन के हिसाब से काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये दूर से आ रही मिसाइल को परख लेता है और अगर कहीं एक निशाना चूक जाता है तो ये कई और मौके भी देता है। रक्षा जानकार यही मानते हैं कि हर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सटीक नहीं होता, 100% उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं दुश्मन को पहले ही रोक सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक रणनीतिक सुरक्षा कवच है जिसका मकसद बड़े शहरों और परमाणु ठिकानों को लंबी दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों से बचाना है। इसके रडार बेहद ताकतवर होते हैं जो 1500 से 2500 किलोमीटर दूर से ही खतरों की पहचान कर लेते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं। भारत का बीएमडी एक दो स्तरीय सिस्टम है जिसमें एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 100 किलोमीटर तक और एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन 80 किलोमीटर तक होता है। वहीं पारंपरिक सिस्टम कम ऊंचाई पर काम करते हैं। S-400 सिस्टम 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट को रोकता है जबकि आकाश 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-400 या आकाश जैसे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के बीच मुख्य अंतर उनके टारगेट स्पेशलाइजेशन, इंटरसेप्शन की ऊंचाई और रणनीतिक उद्देश्यों में होता है। बीएमडी सिस्टम खासतौर पर उन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन है जो बेहद तेज रफ्तार जैसे कि Mach 5 या उससे ज्यादा और फिक्स ट्रेजेक्टरी पर चलती है। वहीं क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन से निपटने के लिए भारत का संपूर्ण एयर डिफेंस ग्रिड कई दूसरी परतों को भी एकीकृत करता है। भारत के पास लंबी दूरी यानी कि Tier 1 के लिए रूस से हासिल S-400 ट्रायम्फ सिस्टम है। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर है। ये दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइल को टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट कर लेता है। मध्यम दूरी यानी कि Tier 2 के लिए भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित Barak-8 मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। वहीं कम दूरी यानी कि Tier 3 के लिए स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है जो री एंट्री या नजदीकी हवाई खतरों को नाकाम कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इन सिस्टम को दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को रोकने के लिए और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 2028 तक अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए इस्तेमाल होंगी LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें। फिलहाल भारत के पास रूस से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ देश में ही बनी पृथ्वी और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो किसी भी हवाई खतरे को आसानी से राख में मिला सकते हैं। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
3: 1999 का करगिल युद्ध और देश के वीर जाबाजों की वो जाबाजी जिसने तोलोलिंग की पहाड़ियों पर तिरंगा फहराकर युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल दिया था। करगिल विजय की इसी ऐतिहासिक शौर्य गाथा और देश के अमर शहीदों को नमन करने के लिए भारतीय सेना ने एक बेहद खास और जज्बे से भरे ट्रेकिंग अभियान की शुरुआत की है। सेना की फॉरएवर इन ऑपरेशन डिविजन ने करगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐतिहासिक तोलोलिंग पीक के लिए एक स्मारक अभियान का आयोजन किया, जिसे 19 जून को द्रास में मौजूद करगिल वॉर मेमोरियल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अभियान की सबसे खास और भावुक कर देने वाली बात यह है कि इस ट्रैकिंग टीम में उन्हीं सैन्य टुकड़ियों के जवान शामिल हैं जिन्होंने 1999 की बैटल ऑफ तोलोलिंग में दुश्मन को मात देते हुए इस चोटी को दोबारा अपने कब्जे में लिया था। चोटी पर पहुंचकर जाबाजों ने एक बार फिर से पूरी शान से भारत का तिरंगा लहराया और अपने शहीद साथियों की वीरता को नमन किया। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप कर वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया है। मैच के हीरो रहे यशस्वी जायसवाल जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 110 रन बनाए। यशस्वी ने अपने वनडे करियर का ये दूसरा शतक लगाया तो रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में शानदार 79 रन जोड़े और इसके अलावा मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने करियर का पहला फाइफर यानी 5 विकेट छटके। और चेपॉक में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से मात दी। भारत को जीत के लिए 219 रनों का टारगेट मिला था जिसे उसने 28.4 ओवर्स में ही हासिल कर लिया।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: No.
5: Oh, no.
6: Welcome to Get Real.
5: I got something to say.
6: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
5: Oh, my God.
7: It's got to be deliciously desperate.
5: Why do these girls forgive him?
8: She has a soft spot for troubled men.
7: Boo bloody hoo.
6: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
5: Love runs deeper than we know.
6: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
2: खबरें तो आराम से।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: आज देश और दुनिया मना रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विशाखापट्टनम में 40 नौसैनिकों ने एक साथ किया अंडर वाटर योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया संदेश। आज देश भर में होगा नीट का एग्जाम। दिल्ली में सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन, डीटीसी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। आज बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, एक साथ नेवी में शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे की होगी कमिश्निंग। पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया गया पश्चिम बंग दिवस, शानदार रोशनी से जगमगाया ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज, हुगली में भी शानदार सांस्कृतिक समारोह। मेघालय के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिलोंग में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, लैथकोर पीक पर तैनात जवानों से भी मुलाकात की।

सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो जब एक छोटी बच्ची थी तो लोकल अखबार के किसी पन्ने पर अपना नाम छपने का ख्वाब संजोती थी। वही नन्नी बच्ची आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शान के साथ अपना नाम दर्ज करा चुकी है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट की शान स्मृति मंधाना है। जी हाँ, स्मृति, वही स्मृति मंधाना जो बचपन में अपने क्रिकेटर भाई के परफॉर्मेंस को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उन कतरनों को दिन में कई कई बार पढ़ती थी। तब नन्ही स्मृति के मन में एक ही ख्वाब होता था कि मेरे भी उपलब्धियों की चर्चा अखबार में हो। वक्त का मिजाज देखिए कि लोकल अखबार में छपने की हसरत रखने वाली स्मृति आज अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रही है।

वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली एक धुंधली तस्वीर की तासीर बड़ी ही अजीब है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। महाराष्ट्र के सांगली में गालिबन 6-7 साल की एक मासूम बच्ची अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती है और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती है। तब उस निश्चल बच्ची के मन में एक ही तसव्वुर होता है, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। वक्त का अनोखा खेल देखिए कि आज 29 साल की हो चुकी उस बच्ची को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया है। अखबार की कतरन सहेजने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की शानदार और जानदार बल्लेबाज स्मृति मंधाना है। ख्वाब के सागर में गोते लगाने का शौक भला किसे नहीं होता, पर अपने ही ख्वाब के लिए जरूरी मेहनत की कसौटी पर कोई विरला ही खरा उतरता है। कमाल यह है कि स्मृति मंधाना अपनी मेहनत, लगन और चट्टानी

0: इच्छा शक्ति के दम पर आज अपने ही ख्वाब के दायरे को चीरकर काफी आगे निकल चुकी हैं। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत आज टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन चुकी है। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर एट लार्ज चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल करने के कारणों को गिनाते हुए जो बातें लिखी हैं, उसमें स्मृति मंधाना की दमदार शख्सियत की मुख्तसर सी झलक दिख जाती है। चार्ली कैंपबेल ने लिखा है, स्मृति मंधाना लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही हैं। मुंबई में जन्मी बाएं हाथ की ओपनिंग बल्लेबाज घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। साथ ही क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक लगाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। इतना ही नहीं, 17 शतकों के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल महिला क्रिकेट शतक लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से उनके नाम है। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना के रिकॉर्ड्स की जो हल्की सी झांकी प्रस्तुत की है, उसकी पूरी और विराट तस्वीर हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले बताते हैं स्मृति के क्रिकेटर बनने की रोचक और मर्मस्पर्शी दास्तान। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मे स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधवनगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो बढ़ नहीं पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल की स्मृति का मन बल्ला पकड़ने के लिए मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को जब भी मौका मिलता तो वो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी तो पापा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा करते थे। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में ना जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का जुनून पैदा हो गया। मध्यम वर्गीय परिवार की उसी स्मृति का नाम आज अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स, स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज, आयरलैंड के गोल्फर रोरी मैक्लोरॉय और फ्रांस के बास्केटबॉल प्लेयर विक्टर वेम्बान्यामा जैसे स्पोर्ट्स दिग्गजों के साथ टाइम मैगजीन की शोभा बढ़ा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और चीवट की महिला है। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का इंटीरियर क्रिसुलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और जून 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को यह पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी, तब मैं इंजर्ड हुई थी एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द एनसीएस स्टाफ बीसीसीआई स्टाफ वर रियली हेल्पफुल एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो वील ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये है कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड स्क्रीन बन गईं। विमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद में शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया है। स्मृति अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं। स्मृति और ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग के नाम पर 17-17 शतक दर्ज है। स्मृति मंधाना विमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा 15 शतक लगाने का कीर्तिमान भी स्मृति मंधाना के नाम ही दर्ज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में विमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है। साफ है कि दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस टाइम मैगजीन ने स्मृति को 100 सबसे प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शुमार किया है, तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती। इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती है। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। विमेंस प्रीमियर लीग में अपनी कप्तानी में स्मृति मंधाना 2 बार आरसीबी को चैंपियन बना चुकी है। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवत गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवत गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवत गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से पल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देखकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवत गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवत गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
4: Definitely. People have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier, I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you. And you just have to put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood, Sangli se Smriti ka bahut gehra lagao hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda. Aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
4: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli mein Smriti ka pura bachpan bitai. Yahan tak ki Sangli ke Chintaman Rao College of Commerce se hi unhone apna BCom complete kiya. Kamal ye hai ki Sangli mein rehte hue mahaj 9 saal ki umr mein Smriti ka selection महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: You hear it once and remember everything.
6: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
5: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: जून में पड़ रही तेज गर्मी से बचने के लिए मैदानी इलाकों से लोग इन दिनों पहाड़ों की वादियों का रुख कर रहे हैं, और इसी कड़ी में इन दिनों जम्मू कश्मीर का मशहूर हिल स्टेशन पटनी टॉप भी सैलानियों का शानदार ठिकाना बना हुआ है। वहां की खूबसूरत आबोहवा और मनमोहक माहौल लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
9: धूप खिली है लेकिन मौसम सुहावना है, तो सैर सपाटे के लिए बड़ी तादाद में लोगों का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के मशहूर हिल रिजॉर्ट पत्नी टॉप की है। यहाँ पर कई लोग हरी भरी धूप पर बैठकर सुस्ताते हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो कहीं तरह तरह के खेलों में हिस्सा लेकर अपना समय गुजार रहे हैं। खास तौर से बच्चों के लिए यहाँ पर तरह तरह के खेलों और एक्टिविटीज का इंतजाम है, लिहाजा गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए माहौल बेहद माकूल है। इसीलिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि छुट्टियाँ मजे में गुजार सके।
10: मैं पूरी अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और हमें समर वेकेशन पड़ी हैं। हम यहाँ पत्नी टॉप में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने फोटोज क्लिक किए, बहुत ज़्यादा गेम्स खेले, जैसे कि हमने हॉर्स राइडिंग की, फुटबॉल खेला यहाँ पे, हमने बैडमिंटन खेला, और यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है। जैसे हम कश्मीर में आते हैं हमें इतना अच्छा लगता है, वैसे हमें लगा यहाँ पे ग्रीन ग्रीन पेड़ है, इतना हवा चल रही है ठंडी, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया।
11: मेरा नाम आरवी संभ्याल है और मैं सांबा से आई हूँ।
10: हूँ और मेरी समर वेकेशन चल रही है, इसीलिए मैं इधर पटनी टॉप आई थी। मैंने जॉर्बिंग बॉल में राइड की, ट्रैम्पलिन पे जंप किया, हॉर्स राइडिंग की। वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, सीनरी बहुत अच्छी है।
11: उधमपुर से आए हैं, समर वेकेशन के स्कूल में छुट्टियाँ पड़ी है तो हम यहाँ पटनी टॉप में आए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत बहुत ही ठंडा मौसम है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमने बहुत मजे किए यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग की, बहुत खुशी है, बहुत मजा आया।
12: यहाँ पे बहुत अच्छा कूल वेदर है, हमने हॉर्स राइडिंग की, बोटिंग की, जंपिंग की, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छे अच्छे मतलब की व्यूज हैं, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज खींच सकते हैं, बहुत मजा आ रहा है हमें। यहाँ पे बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटी भी है।
9: पटनी टॉप का इलाका इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है, तो यहाँ टूरिज्म के कारोबारों से जुड़े लोगों को भी काफी फायदा हो रहा है। लोगों की आवाजाही बढ़ने से कामकाज काफी अच्छा चल रहा है, तो इनके चेहरे भी खिले हैं।
13: मैं यहाँ पे पटनी टॉप में एडवेंचर का काम करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, शूटिंग है हमारे पास, आर्चर है, इवन की गॉगल्स भी ले सकते हो आप। और आज यहाँ पे बहुत चहल पहल है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी है, वीकेंड पे आ रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल सर, जरूर काम थोड़ा बहुत हिला है बड़ी देर के बाद, थोड़ा सा हम भी खुश हैं क्योंकि हमारा रोजगार भी थोड़ा सा बढ़ रहा है आगे की ओर, और पर्यटकों के आने से हमें भी खुशी हो रही है और सिस्टम सही चल रहा है।
9: पटनी टॉप में इन दिनों बर्फबारी नहीं हो रही, लिहाजा ना बहुत ज्यादा ठंड है और ना ही गर्मी की तपिश का एहसास हो रहा है। लिहाजा आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से लेकर दूर दूर तक से सैलानी यहाँ मनमोहक माहौल का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ की वादियों में हरियाली की रौनक खास तौर से लोगों को लुभा रही है। बहुत से लोग यहाँ अपनी शानदार तस्वीरें खिंचवाकर अपने ट्रिप को यादगार बना रहे हैं। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
8: मौसम गर्मियों का है और इस मौसम में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद की जाती है तो वो है आम, एक ऐसा फल जिसे तमाम फलों का राजा कहा जाता है। लेकिन बात अगर गुजरात के केसर की हो तो बात ही अलग है। इसका रसीला स्वाद और बेमिसाल खुशबू लोगों को बेहद पसंद है। यही वजह है कि गिर सोमनाथ में इस साल केसर आम ने नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं।

0: बेमिसाल स्वाद, लाजवाब खुशबू और रंग ऐसा कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और आमों में भी सबसे खास गिर का केसर, जिसकी अनोखी खुशबू और शाही स्वाद के आगे दुनिया का हर जायका फीका नजर आता है। लेकिन इस साल गुजरात में केसर आम की मिठास और खुशबू कुछ अलग है, क्योंकि इस साल केसर आम के स्वाद की दीवानगी ने गुजरात में वो कर दिखाया है जो आज तक नहीं हुआ। इस बार केसर आम का सीजन किसानों और आम कारोबारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। गिर सोमनाथ के तलाला आम मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ 61 दिनों तक चले सीजन में कुल लगभग 10 लाख पेटियां आई। ये आंकड़ा मामूली नहीं है, क्योंकि इसने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। दरअसल इस साल मौसम ने किसानों का भरपूर साथ दिया। अनुकूल मौसम की वजह से न सिर्फ पैदावार बंपर हुई, बल्कि केसर आम की क्वालिटी पर भी इसका बेहद शानदार असर हुआ, जिस वजह से बाजार में अब तक केसर आम की डिमांड बनी हुई है। हालांकि केसर आम की इस मिठास का जादू सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सात समंदर पार भी गिर के केसर ने धूम मचाई। इस सीजन में रिकॉर्ड 90 टन केसर आम का एक्सपोर्ट किया गया। यूनाइटेड किंगडम, दुबई और कनाडा जैसे देशों में बैठे आम के शौकीनों ने इस बार गिर के शाही स्वाद का जमकर लुत्फ उठाया। कहते हैं कि आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक जज्बात है। बात जब गिर के केसर आम की हो तो ये दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है। एक बार फिर गिर के केसर आम की जादुई स्वाद और इसकी खुशबू ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि लोग इस कदर इसके स्वाद के दीवाने क्यों हैं। दिलीप भाई मोड़ी, गिर सोमनाथ, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।